इनसेट ऑर्डर से मैं कुछ मेंशन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोप्टेरा, देन योर डिक्टाप्टेरा जिसमें कॉकरोच एंड प्रिंग मैंटिस आते हैं, आइसोप्टेरा टर्माइट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट, व्हीट का पेस्ट होते हैं. देन हिमिप्टेरा डेफिनेटली, बहुत सारे प्रेडेटरी बग्स भी होते हैं, बहुत सारे फाइटोफैगस हार्मफुल बग्स भी होते हैं. थाइसनोप्टेरा जिसके एग्जाम्पल थ्रिप्स होते हैं ना, वो भी एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट हैं.

0: बहुत सारे पैरासिटोइड्स, अलग अलग पॉलिनेटर्स जो हनी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो भी इसी में आते हैं हाइमेनोप्टेरा में. देयरफॉर दिस ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा इज कंसिडर्ड एज कि जो है मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स. एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन करेंगे कि कौन से इंसेक्ट ऑर्डर ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पाया जाता है, दैट इज योर हाइमेनोप्टेरा. बीज, वर्ब्स, एंट्स, डिफरेंट पैरासिटोइड्स. कोलियोप्टेरा इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर. सो कोलियोप्टेरा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है कि दे आर हैविंग एलाइट्रा व्हिच इज मॉडिफाइड फोर विंग. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इजंट इट? कोलियोप्टेरा आर हैविंग योर प्रोनेथस ओरिएंटेशन ऑफ हेड. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स विच यू हैव टू गो थ्रू इन डिटेल. I'm repeating once again which are the important insect orders regarding which you have to remember the characteristics of those. Odonata, Orthoptera, Dictyoptera, Isoptera, Hemiptera, Thysanoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera and Coleoptera. Or Dr. Rao probably has covered some families also. Few families you may go through. And I hope that the whole syllabus I have covered within this 1 hour time. And I think you will be preparing well. You are preparing well and you will be appearing the examination with your full potential, utilizing your full potential. So I think some instructions I've also given that wherever you feel that diagram should be drawn, it has not been asked to draw, but it will be creating some value to your answer, quality of the answer. You please do not hesitate to draw that. I'm talking of your short answer type question and broad answer type question. No, I'm not talking of your about your the first part of your question, that is objective type. Objective type mein aapko wo scope nahi hai, but jaise aapko broad question ka mila, wherever you feel that you are capable of draw the diagram of that particular question related to that particular question, you don't hesitate to draw that, and thereafter you explain it very briefly. So all the best to all of you. Any questions, any queries, any doubts, you don't hesitate to text me at any point of time. I'll try my best to answer those questions. Thank you very much. All the best.
1: Thank you so much, sir.
0: Thank you, miss.
1: दोस्तों, उम्मीद है कि आपके लिए ये रेडियो रिविजन काफी यूजफुल साबित होगा. तो एग्जाम बिल्कुल अच्छे से दीजिए. बेस्ट ऑफ लक.

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के

0: अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं, और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है, और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है, और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं, और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि

0: क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार।
1: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, आओ।
5: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
5: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
6: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। रेडियो रिवीजन जो आपके परीक्षा से पहले

0: प्रसारित होता है और आपके सेकेंड सेमेस्टर्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आज हमारे साथ आपके कोर्स लीडर मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी जी। हाँ, आज आपके कोर्स AEZ 1-1 का रिवीजन होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मंडे को आपका AEZ 1-1 फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का इंटर्म एग्जामिनेशन है और ये 2+1 वाला कोर्स था आपका इस सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का। तो आप आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस केयरफुली और मैं धीरे धीरे आपको सारे जो टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पूरा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे रिकॉर्डिंग्स में। तो फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। तो आपको आपका स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स वहाँ पे है, उस पॉइंट्स में देखिएगा कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम ऑफ नेचुरी बोल के एक किताब का नाम है विच वॉज रिटन बाय कैरोलस लिनियस और कार्ल लिनियस एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेनी टाइम्स योर एक्सलेंट एग्जामिनर हैज गिवन दिस क्वेश्चन। 10th एडिशन ऑफ सिस्टम ऑफ नेचुरी रिटन बाय कार्ल लिनियस इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश्ड एंड द आंसर इज 1758, राइट। एंड देर आर मेनी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो विच यू हैव टू रिमेंबर। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट हु मेड extensive study of Indian insects and that scientist was Fabricius, right? And some other important things to remember are Professor Maxwell Lefroy, who succeeded Nisavilli as entomologist to Government of India, right, in 1903. And before him, it was Leolin D. Nisavilli, who was posted as first entomologist to Government of India. So it was in the year 1901. And some important books and their authors also you have to remember. For example, Indian Insect Pests, ये किताब का नाम है, ये प्रोफेसर लेफ्रॉय ने लिखे थे। इंडियन इंसेक्ट लाइफ भी ये प्रोफेसर लेफ्रॉय का लिखा हुआ किताब है। सम साउथ इंडियन इंसेक्ट्स, दिस बुक वॉज रिटन बाई टी बी फ्लेचर। सो दीज थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। Handbook of Economic Entomology of South India, very important book, it was written by T.V. Ramakrishna Iyer. So these things you must remember. In addition to that, you may also remember Insect Pests of Crops. This was written by very prominent entomologist whose name is Dr. Pradhan, maybe. Now if you go through your syllabus, then the next your broad heading is major points related to dominance of insects in animal kingdom and thereafter classification of phylum Arthropoda. So these two topics I had covered in your class in great detail. If you recall those classes, it will be very easy for you. In the class I had discussed that there are 10 important points to remember regarding the factors behind the dominance by the insects in this planet. And under those 10 points, the first point was capacity for flight as the insects possess wings. And you know that the wings are the lateral extension of the exoskeleton. So, मैंने ये आपको क्लास में कहा था, ये कोई पक्षी नहीं था जो इस प्लेनेट में पहले उड़े थे, ये कोई इंसेक्ट था जो सबसे पहले इस प्लेनेट में उड़ने का क्षमता, उड़ने का एबिलिटी एक्वायर किए थे। So, how this capacity for flight help the insects in dominating this planet over the other animals or the other organisms. You know that as they are having the wings, so that they can fly with that, with the help of the wings, and they can seek for food, mate, shelter, oviposition, etc. They can colonize in a new habitat. They can escape from the enemies and also from the unfavorable conditions. They can also migrate with the help of this type of your special capacity, that is flight, which they are having. Now the next factor was more adaptability or universality. As you know that the insects are the earliest groups to make their life on the earth and to occupy vast habitats of soil and water, thereby they are found, these insects are found in a wide, very wide range of climatic conditions, and they can survive इवन एट माइनस 50

हैपोज का चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हो, उसमें दो तरह का मेटामॉर्फोसिस मेनली आपको पढ़ाया गया है. एक है कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, अनदर इज योर इनकॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. उसके बीच में डिफरेंस भी आपको पता है. सो इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज ऑब्जर्व्ड. अब कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है ये दैट यू नो कि ऑल द फोर स्टेजेस विल बी अवेलेबल, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. और ये चारों जो अलग अलग स्टेज हैं, ये चारों अलग अलग स्टेज का हैबिट, हैबिटेट, फूड एटसेट्रा का रिक्वायरमेंट अलग अलग है. और ये अलग अलग होने के कारण, मतलब अलग अलग होने से ही इसको एडवांटेज मिल रहा है कि दे कैन एक्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, राइट. एंड इंसेक्ट्स हैव वेरियस इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. सम डिफेंस मैकेनिज्म्स बिहेवियरल होते हैं, कुछ होता है स्ट्रक्चरल, कुछ होता है कलरेशनल, कुछ होते हैं केमिकल सिक्रेट करने से. एक ऐसा इंसेक्ट है, मैं बताया था आपको, क्लिक बिटल बोल के एक इंसेक्ट है, जिसको टच करने से वो मरने का ढोंग करते हैं. मतलब एक तरह से दे प्रिटेंड एज इफ दे इट इज डेड. इस बिहेवियर को बोलते हैं थैनाटोसिस. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है टू एस्केप इट्सेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमी. सो एनिमी विल थिंक दैट द प्रे इज डेड, और डेड के ऊपर वो फीड नहीं करेंगे. सो एनिमी विल वॉक अवे और फ्लाई अवे. एंड वंस अगेन when the enemy is gone, that click beetle will do its own work because it is not actually dead. Some structural defense mechanisms are also there. For example, beetles आप सभी लोगों ने देखा है, collection भी किए हैं, class में भी देखे हैं. उस beetles के ऊपर बहुत ही hardened four wings रहते हैं, जिसको हम लोग इलाइट्रा भी बोलते हैं, राइट. तो वो एक स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म है. आप एक बिटल को पकड़ के अगर क्या बोलते हैं सरफेस में थ्रो भी करेंगे, इट विल नॉट गेट डाइट बिकॉज इट इज हैविंग ए वेरी प्रोटेक्टिव कवर ऑन इट्स बॉडी. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ब्यूटिफुली कैमोफ्लेज करते हैं हैबिटेट में. इसको बोलते हैं कलरेशनल डिफेंस मैकेनिज्म. मतलब हैबिटेट का जो कलर है उसका कलर भी सेम है. तो अगर कलर जिस फॉर एग्जांपल किसी प्लांट की लीफ में है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि वहां पे एक इंसेक्ट भी बैठा हुआ, क्योंकि लीफ का कलर उसके कलर के साथ मैच कर रहा है. किसी फ्लावर में एक इंसेक्ट बैठा है, उस फ्लावर का जो कलर है उस इंसेक्ट का भी कलर वही है. सो दैट मीन्स ये जो कलरलेस कलरेशनल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एनिमीज को एक तरह से बुर्बक बनाते हैं कि वो ढूंढ नहीं पाते एक्चुअली वो इंसेक्ट वहां पे है या नहीं है. कुछ इंसेक्ट्स डिफेंस केमिकल भी सीक्रेट करते हैं. यू नो ब्लिस्टर बीटल, इफ यू टच द ब्लिस्टर बीटल, इमीडिएटली ऑरेंज कलर का एक डिफेंस केमिकल आपके हाथ में लगेंगे. आपके हाथ में लगेंगे मतलब क्या कि एनिमीज भी उसको टच करेंगे तो एनिमीज के बॉडी में लगेगा, तो एनिमीज के बॉडी के ऊपर इरिटेशन होगा एंड इट विल नॉट Try to feed on that one. और आपको तो बीज वस्क के बारे में मालूम है कि आप बीज को कभी नहीं पकड़ना चाहते, वस्क को कभी नहीं पकड़ना चाहते, क्योंकि it will immediately insert its stinger inside your body and it will insert the poison at the same time. And last but not the least, the factor which is important for dominance on this planet is हेक्सापोड लोकोमोशन. सारे इंसेक्ट के केस में आपको मालूम है कि दे आर हैविंग थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स. अब ये थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स रहने के कारण इसको लोकोमोशन में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है. सारे छह लेग वन स्टेप में, जब एक स्टेप, जब लोकोमो एक स्टेप फॉर एग्जांपल वॉकिंग या रनिंग में, जब एक कॉकरोच की बात करें

तो क्या होता है, कोई तीन लेग मूव कर रहा होता है और बाकी तीन लेग, मतलब तीन पेयर है ना, तो तीन पेयर में से तीन लेग मूव कर रहा होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री लेग्स दे आर बैलेंसिंग द बॉडी। एंड इट ऑल्टरनेटिवली जो पहले बैलेंस कर रहा था वो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, बाकी बॉडी बैलेंस में काम हेल्प करेंगे। सो इस तरह से इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है और अल्टीमेटली इट हेल्प्स द इंसेक्ट इन डोमिनेटिंग द प्लैनेट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आपको अप टू क्लासेस। सबसे पहले आपको आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्लास में आपको डिस्कस किए हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप बढ़िया से उसको गो थ्रू करेंगे। एंड देयर आफ्टर जो डिफरेंट क्लासेस हैं अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, फॉर एग्जांपल देयर आर हाउ मेनी क्लासेस अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, देयर आर 7 क्लासेस राइट, ऑनिकोफोरा, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, एराक्निडा, ट्राइलोबीटा एंड हेक्सापोडा। ये जो क्लासेस है और उस क्लासेस का जो जो प्रोमिनेंट योर कैरेक्टरिस्टिक्स है अलोंग विद द योर सम एग्जांपल्स यू मस्ट रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ हेड, व्हिच आई इन योर प्रैक्टिकल क्लासेस, इन योर थियोरी क्लासेस आई हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। सो टू रिकॉल दैट वन, to help you recalling that one, and I'll suggest you to draw the diagram first regarding to remember the different sclerites and sutures which are available on the facial portion of the insect head. ये mid term में आपका question भी था, आप लोगों ने उसको किए भी है, but फिर से उसको practice करना is very important. And then different orientation of insect head, and you know that there are 3 different orientations. One is pronathus, means the head and the appendages of the mouth parts are projected forward, usko bolte pronathus. Ye pronathus condition aapko milta hai beetles mein, that's why this pronathus condition also is known as beetle type, or it is also known as coleopteroid type, correct. Next jo orientation of insect head tha, that is known as hyponathus. Hyponathus condition mein kya hota hai ki the appendages of the mouth parts, they are projected vertically, means the angle which is created between the long axis of the insect body and the long axis of the appendages of the mouth parts, that is 90 degree, right. And the last but not so, yes, what I was forgetting was this hyponathus type. Hypognathus bhi bol sakte ho, hyponathus bhi bol sakte ho, because G is silent here. Hyponathus type is found in case of your grasshoppers, cockroaches also you can get this hyponathus type. That's why it is also known as orthopteroid type, right. And then the last one, orientation of insect head, is known as your opisthonathus. In opisthonathus condition, what happens is the appendages of the mouth parts, they are projected backward. So an acute angle is created between the long axis of the body and the long axis of the proboscis or the mouth parts. And it is found in case of your bugs. And you know that bugs, they belong to the order Hemiptera. That's why this opisthonathus condition is also known as bug type or hemipteroid type. Isko iska ek aur naam hai opisthorhynchus. So main jab bol raha hu tab aap isko pause karke ya kabhi ek dobara sun ke aap usko note down bhi kar sakte hain. And then insect head mein bahut sare cheeze humne discussion kiye the, wo sare cheez is audio recording mein bolna sambhav nahi hai. But definitely you must remember different sclerites which are available on the insect head, for example vertex, fronds, clypeus, genera, and then your labrum also, and your different sutures like inverted bicipital suture is also known as epicranial suture or ectacial cleavage line. So aap isko diagram bana ke agar practice karenge to aapko आसानी रहेगा, क्वेश्चन में भी अगर ब्रॉड क्वेश्चन में भी आता है तो आप डायग्राम बना के ही करेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। एंड देन फ्रंटोक्लाइपियल सीचर, इसका एक और नाम है, बहुत बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि व्हाट इज एपिस्टोमल सीचर। सो एपिस्टोमल सीचर सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, दैट इज एक्चुअली फ्रंटोक्लाइपियल सीचर, मींस द सीचर व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन फ्रॉन्स एंड क्लाइपियस राइट। आपका सीनियर्स का जो जेआरएफ क्वेश्चंस होते हैं, इस

irrespective of the segment and the body of the segments, the hairs will be found. Geniculate I have already discussed, and flabellate means fan-like, and you get this type of antenna in case of your stylopids, right? So this was about structure and modification of insect antenna. So you have to remember the function of the antenna also. I hope that 4-5 functions you are remembering. I'm not discussing that one. And structure wise, you draw the diagram of geniculate, you practice the diagram of the geniculate antenna, and that can be the diagram of a generalized insect antenna, and you label the portions like your antennal sclerite, antennal suture, which is followed by your main part, the first part of the insect antenna, first segment, which is known as scape, and then pedicel, followed by flagellum. May I ask you, and all of you who are listening to this audio may try to answer it, inside which portion of the insect antenna Johnston's organ is found? I'm giving you 5 seconds time. So that is, you're right, that it is pedicel inside which Johnston's organ is found. So this Johnston's organ is composed of several ganglia, right? In fact, thousands of ganglia maybe. And in mosquitoes, that organ helps the mosquito in hearing. However, in other insects, वो सुनने के लिए अलग से appendage है, जिसको बोलते हैं tympanum. So this was about your structure and modification of insect antenna, and then I'm seeing the syllabus of this course, different types of mouth parts of insects. If you remember the second practical class, you had dissected the mouth parts of cockroach or cockroach grasshoppers. जो भी insects चबा चबा के खाने वाला होता है उसका mouth parts को बोला जाता है biting and chewing type mouth parts. So this is the primitive mouth parts which the insects were having, and till now there are several groups of insects which are having this type of your mouth parts. So this is the basic type of mouth parts जो आपको जिसका different appendages को draw करके आपको याद रखना होगा, मतलब practice करना होगा. For example, जो first appendage upper part of the mouth parts में रहता है, mouth का रहता है, that is known as labrum. It is just like our upper lip. जैसे हम लोगों के केस में upper lip है, उनके केस में, insect के केस में भी chewing and biting type mouth parts में upper lip को बोलते हैं labrum. You know it. Or if you flip the labrum, then you get the labrum epipharynx. तो insect mouth में, insect का mouth cavity में कोई organ of taste नहीं रहता है. हम लोगों के केस में जैसे mouth cavity के अंदर tongue, T-O-N-G-U-E. तो that acts as organ of taste. But in insect, that labrum epipharynx acts as organ of taste. अब ये हो गया लैब्रम का बात. अब लैब्रम का आप छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके पास में उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे. फंक्शन जब लिखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा कि होल्डिंग द फूड फ्रॉम द टॉप. हम लोगों के लिप का जैसे फंक्शन है, उसका लिप का भी, अपर लिप का भी वही फंक्शन है. इन एडिशन टू दैट, जैसे हमारा लिप क्या करते हैं, हम लोगों का टीथ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. उनके केस में लैब्रम के ठीक नीचे दोनों तरफ मैंडिबल्स रहता है, उस मैंडिबल्स का बेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ये हो गया लैब्रम. देन यू कम टू मैंडिबल्स. मैंडिबल्स एज आई हैव सेड कि दोनों तरफ लैब्रम के ठीक नीचे मैंडिबल्स रहते हैं, और मैंडिबल्स आर द मेन, योर मेन और प्राइमरी जॉज यू कैन से. चीविंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ पार्ट्स में मैंडिबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मैंडिबल्स में दो तरह का टीथ होते हैं. फ्यू टीथ दे आर एबल टू cut the food into pieces which are available at the distal end of the mandibles, and some teeth are available at the base of the mandibles which are not very sharp, they are blunt, aur ye blunt hone ke karan hi they can masticate, wo crush kar sakte, masticate kar sakte, grind kar sakte. So they are known as molar teeth or grinder teeth. Diagram banaoge, function likhoge. मैंडिबल्स के ठीक नीचे

और आ जाओ दोनों तरफ, यूल गेट मैगजिला। मैगजिला को सेकेंडरी जॉ भी कहते हैं। मैगजिला का डायग्राम को रिकॉल करो, आपका जो क्लास का क्लास में जो आप ड्रॉ किए थे उसमें देखेंगे कि सबसे प्रॉक्सिमल पोर्शन में द पोर्शन इज नोन एज कार्डो विच इज अटैच्ड विद द क्रैनियम एंड कार्डो इज फॉलोड बाय लॉन्ग पोर्शन विच इज नोन एज स्टाइप्स। स्टाइप्स का बेस से मैक्सिलरी पल्प निकलता है, एंटीना जैसे दिखता है, सेगमेंटेड। हाँ, स्टाइप्स का एकदम डिस्टल एंड पे चले जाओ, डिस्टल एंड पे जाने के बाद आपको दो दो लोब दिखता है, टू लोब्स यू फाइंड, वन इज इनर लोब एंड अदर इज आउटर लोब। इनर लोब इज स्पाइनी और इट इज हेयरी, दैट लोब इज नोन एज लैसिनिया। आउटर लोब इज ब्लंट, इट इज नोन एज गैलिया। सो ये हो गया आपका मैक्सिला स्ट्रक्चरली। फंक्शनली क्या होगा? डेफिनेटली जब आप मैक्सिला पेयर्ड स्ट्रक्चर है तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण विद द हेल्प ऑफ लैसिनिया एंड गैलिया, मेनली लैसिनिया एंड द मैक्सिलरी पल्प, दे कैन ग्रिप द फूड, फूड को ग्रिप करके एंड देयर आफ्टर इट ब्रिंग्स ऑल्सो टुगेदर, इट विल ब्रिंग द फूड इनसाइड द माउथ कैविटी। So gripping the food and bringing the food towards food inside the mouth cavity is the main function of this maxilla. In addition to that, because maxillary pulps are present, pulpi are present, and pulpi always are sensory, you know. So in sensing where exactly the food is there, it helps in detecting the presence of the food. And then at the center of the mouth cavity, like us, हम लोगों के जैसा, हम लोगों का सेंटर ऑफ द माउथ कैविटी में जैसे टंग है, टी ओ एन जी यू ई, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, इन केस ऑफ चीविंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ बर्ड्स, दे ऑल्सो आर हैविंग ए टंग लाइक स्ट्रक्चर। बिकॉज इन योर क्लास आई हैव डिस्कस दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर टंग एंड इंसेक्ट्स हाइपोफायरिंग्स। सो हाइपोफायरिंग्स इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। द ओनली फंक्शन in chewing and biting the mouth parts regarding your hypopharynx is secretion of saliva. So the salivary duct opens through hypopharynx. That is its function, main function. Ab last jo appendage aapka chewing and biting type mouth parts mein hota hai, that is your labium. Jaise hum logo ke case mein lower lip hai, इनके केस में लेबियम है। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जरूर है, डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा। लेबियम का जो प्रॉक्सिमल मोस्ट पोर्शन है दैट इज नोन एज सबमेंटम। लेबियम का बिल्कुल बीच में एक इलिप्टिकल और ओवल शेप्ड एक सेगमेंट है, दैट इज नोन एज मेंटम। और जो डिस्टल पोर्शन है, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, दैट इज नोन एज प्रीमेंटम। प्रीमेंटम का बिल्कुल एपेक्स में, यानी कि डिस्टल एंड पे अगर आप जाएंगे, यू विल गेट टू पेयर्स ऑफ लोब्स। और ये टू पेयर्स ऑफ लोब्स में से जो इनर पेयर है, मतलब अंदर वाला जो पेयर है, दोज आर नोन एज ग्लॉसा। ग्लॉसा इज सिंगुलर, ग्लॉसी टुगेदर दे विल बी नोन एज glossy. Outer pair of lobes, they will be known as, they are known as paraglossa. Paraglossy is the plural. Or agar glossa, paraglossa, matlab irrespective of glossy and paraglossy together, that portion can be leveled as ligula. Or ye jo premantum ka jo abhi baat kar rahe hai, premantum ka base se aap dekhe bhi hai ki one pair of labial pulpi are present. And as I have said ki koi bhi pulpi insect mein present ho, to uska function hoga sensory. तो यहां पे लेबियल पल्पिक का फंक्शन किस तरह का सेंसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंसरी फंक्शन है, दैट इज डिटेक्शन ऑफ स्वीटेबिलिटी ऑफ द फूड। फूड के पास तो पहुंच गए इंसेक्ट ना,
लेकिन वो

फूड कंज्यूम करने लायक है कि नहीं, ये डिसाइड करेंगे कौन? ये डिसाइड करेंगे लेबियल पल्पी. सो दैट इज वन फंक्शन. अनदर फंक्शन इज डेफिनेटली होल्डिंग द फ्रूट फ्रॉम द बॉटम. जैसे हम लोग के केस में लोअर लिप नीचे से फूड को होल्ड करते हैं, अपर लिप ऊपर से फूड को होल्ड करते हैं. सिमिलरली लैब्रम मतलब इंसेक्ट के केस में अपर लिप ऊपर से फूड को होल्ड करते हैं, लेबियम इंसेक्ट के केस में लोअर लिप नीचे से फूड को होल्ड करते. सो ये हो गया आपका प्रिमिटिव माउथ पर्स में से, जिसको बोलते हैं चीविंग एंड बाइटिंग टाइप. अब डिफरेंट मॉडिफाइड माउथ पर्स भी हैं जो आपने क्लास में फॉलो किए हैं. मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि बटरफ्लाई के केस में. अब बटरफ्लाई को तो मैंडिबल्स का जरूरत नहीं है, बटरफ्लाई तो चबा चबा के नहीं खाएंगे. तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन, एक ग्रेट मॉडिफिकेशन होने का जरूरत है, है ना? तो वो मॉडिफिकेशन किस चीज का होगा? क्योंकि यू नो कि बटरफ्लाईज आर हैविंग ए कॉइल्ड लॉन्ग प्रोबोसिस. जब अनकॉइल करते तब लंबा दिखता है, कॉइल्ड रहता है तो स्प्रिंग लाइक रहता है. सो वेयर फ्रॉम दिस प्रोबोसिस इज अराइजिंग, विच पार्ट ऑफ द प्रिमिटिव माउथ पार्ट्स हैज कन्वर्टेड इनटू प्रोबोसिस, दैट इज द गैलिया ऑफ मैक्सिली. दो जो मैक्सिली मतलब दो मैक्सिले का दो गैलिया होगा आउटर लोब, ये इलोंगेटेड हो जाएंगे एंड दे आर जिपर्ड टूगेदर टू फॉर्म दिस कॉइल्ड प्रोबोसिस विच इज अनकॉइल्ड व्हेन द बटरफ्लाई इज इन एक्शन, मीन्स व्हेन इट इज टेकिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. एंड दिस मॉडिफाइड माउथ पर्स इज नोन एज साइफोनिंग टाइप माउथ पर्स. ऑलराइट, अनदर मॉडिफिकेशन हाउस फ्लाई में आते. यू नो कि हाउस फ्लाई के केस में एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर रहता है और वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होते हैं, मतलब दो लोब वाला स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होगा. एंड दैट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर इज नोन एज लैबेल्ला. लैबेल्लम सिंगुलर, लैबेल्ला प्लूरल. और वो लैबेल्ला मतलब टिप ऑफ द प्रोबोसिस में माइन्यूट पोर्स रहेंगे, तभी तो वो स्पॉन्ज डेवलप करेंगे ना. वो माइन्यूट पोर्स को कहते हैं स्यूडो ट्रैकिया. सो यूजिंग दैट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर कैपिलरी एक्शन के थ्रू द सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड से वो लिक्विड को अपटेक कर लेते हैं. ये जो मॉडिफाइड माउथ पर्स है जो हाउस फ्लाई में पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पर्स. इज दैट ऑल राइट? अपने डायग्राम बनाए थे, उस डायग्राम को फिर से प्रैक्टिस करेंगे और याद रखेंगे कि स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पर्स कहां पे पाया जाता है, हाउस फ्लाई में. देन लेट्स कम टू अनदर इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, पियर्सिंग एंड सॉकिंग टाइप माउथ पर्स. आप लोगों को पता है कि बग्स, कोई भी बग, वो भी तो चबे चबा चबा के नहीं खाते, ना ही उसके पास कोई स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, ना ही उसके पास बटरफ्लाई जैसा कॉइल्ड प्रोबोसिस है. प्रोबोसिस जरूर है बट यहाँ पे अलग तरह का, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक बाग प्लांट का टिश्यू से वो सैप को सक करना चाहते, सो इट हैज टू पियर्स द सरफेस ऑफ द प्लांट, चाहे लीफ हो या चाहे योर स्टेम हो. तो पियर्स करने के लिए उसको पियर्सिंग योर ऑर्गन चाहिए, अपेंडेज चाहिए. तो यहाँ पे ये जो बग्स होते हैं, वो बग्स में देयर विल बी फोर स्टाइलेट्स, चार स्टाइलेट होंगे और ये चार स्टाइलेट पियर्स करने का भी क्षमता रखता है, साकिंग करने का भी क्षमता रखता है. इसलिए ये जो माउथ पर्स बग्स में पाया जाता है उसको बोलते हैं पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथ पर्स. तो ये चार स्टाइलेट का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मतलब कौन सा प्रिमिटिव अपेंडेज ये स्टाइलेट फॉर्म करेगा? आपको पता है कि मैंडिबल्स प्रिमिटिव में कितना रहता है, दो. प्रिमिटिव में मैक्सिला कितना रहता है, दो. अब यहां पे बाघ में आके वो मैंडिबल फॉर्म में आ रहा है कि स्टाइलेट फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाता है. तो दो मैंडिबल दो स्टाइलेट फॉर्म करते हैं, दो मैक्सिला अनदर टू स्टाइलेट में कन्वर्ट होते हैं. So how many stylets you have got? Two mandibular.

stylet, maxillary stylets. That means you have got four stylets. So the bug is having four stylets with them. अब ये स्टाइलेट के सहारे से वो पियर्स करेंगे और सक करेंगे. अब ये स्टाइलेट बहुत डेलिकेट भी होंगे ना, बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, बहुत डेलिकेट होंगे, और डेलिकेट होने के कारण इसका प्रोटेक्शन का भी जरूरत पड़ता है. मतलब व्हेन एट रेस्ट, व्हेन द बग इज नॉट फीडिंग, द स्टाइलेट्स रिक्वायर ए प्रोटेक्टिव कवर. हु विल गिव दिस स्टाइलेट्स ए प्रोटेक्टिव कवर? मॉडिफाइड लेबियम. लेबियम एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है यहां पे, और उस ग्रुप के अंदर वो स्टाइलेट्स रेस्ट करते हैं व्हेन द बग इज नॉट फीडिंग. एंड दिस होल मॉडिफाइड माउथ पर्स इज नोन एज पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पर्स. अब यहां पे एक और चीज हमको बताना जरूरी है, क्योंकि मॉस्किटो जो एक बाग नहीं है, जो एक डिप्टेरन इंसेक्ट है, हम लोगों का ब्लड सक करते हैं ना, उसके केस में भी ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पर्स रहता है. हमने ये क्लास में बताया था. सो सारे बाग्स और डिप्टेरन में मॉस्किटोज दे आर हैविंग पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पर्स. थोड़ा सा अंतर बाघ के साथ मॉस्किटो का है. वो किस तरह का है? बाघ में हाउ मेनी स्टाइलेट्स दे हैव? दे आर हैविंग फोर स्टाइलेट्स. बट इन केस ऑफ मॉस्किटो, जो मॉस्किटो हम लोगों को बाइट करते हैं, उस मॉस्किटो में छह स्टाइलेट रहेगा. अब यहां पे मॉस्किटो में आके क्या होता है कि उसमें भी एक स्टाइलेट रिलेटेड एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. दैट मीन्स फीमेल्स, मॉस्किटो के जो फीमेल्स होंगे दे आर हैविंग सिक्स स्टाइलेट्स, बट मेल्स दे आर हैविंग फोर स्टाइलेट्स, जस्ट लाइक बग्स. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेल मॉस्किटोज आपको बाइट नहीं करते. मतलब आपको बाइट करने वाला कोई भी मॉस्किटो है तो वो फीमेल ही है, ओनली फीमेल. एंड दे हैव हाउ मेनी स्टाइलेट्स? दे हैव सिक्स स्टाइलेट. और ये छह स्टाइलेट आएगा कहाँ से? वो चार तो फिक्स है, दो मैंडिबुलर, दो मैक्सिलरी. दो जो एक्स्ट्रा स्टाइलेट है वो कहां से आएंगे? वन विल बी फ्रॉम लैब्रम एपिफेरिंग्स. यहां पे लैब्रम एपिफेरिंग्स इलोंगेट होके एक स्टाइलेट फॉर्म करता है. अनदर इज योर हाइपोफेरिंजियल स्टाइलेट. मींस हाइपोफेरिंग्स यहां पे एक और स्टाइलेट फॉर्म करके फीमेल मॉस्किटो को छह स्टाइलेट प्रोवाइड करता है. समझ में आ गया? अब अनदर, देर आर सेवरल अदर मॉडिफिकेशन ऑल्सो, बट इसमें से एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन आपको याद रखना चाहिए, दैट इज योर थ्रिप्स का जो माउथ पर्स है. थ्रिप्स का माउथ पर्स को बोलते हैं, मॉडिफाइड माउथ पर्स को बोलते हैं रेस्पिंग एंड साकिंग. ये क्या करते हैं, इस माउथ पर्स में देर विल बी थ्री स्टाइलेट्स, राइट मैंडिबल विल बी एबसेंट. And if you go through the previous year's questions, I mean your 5-6 years, 10 years previous year's questions, then for several times the external examiner has asked ki in which insect asymmetrical mouth parts is found. The answer is thrips. In which insects only three stylets are found? The answer is again thrips. Which insect is having माउथ कोन? द आंसर इज अगेन थ्रिप्स. सो वो टाइनी एक इंसेक्ट थ्रिप्स, जिससे रिलेटेड ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है. व्हिच इंसेक्ट इज हैविंग रेस्पिंग एंड साकिंग टाइप माउथ पर्स? द आंसर इज थ्रिप्स. सो आई होप दैट यू विल बी रिवाइजिंग थिंग्स केयरफुली. एंड द नेक्स्ट टॉपिक आई कवर्ड वॉज विंग वेनेशन modifications and wing coupling apparatus. Again, I'll be suggesting, please draw the diagram of generalized insect wing, label the different portions, different angles, different margins. आपको पता ही है कि humeral angle रहता है कहाँ पे रहता है. Anterior margin किसको कहते हैं? Anterior margin का एक और नाम है क्या है? Costal margin, apical margin, then anal margin, angles also, and thereafter you draw a typical insect wing having your longitudinal veins and cross veins, costa, subcosta, radius, media.

that class. Two classes I took regarding your to explain this wing coupling mechanism. Jugit wing coupling mechanism. Frenet wing coupling mechanism. जूगो फ्रेनेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म. मेल फ्रेनेट और फीमेल फ्रेनेट में आप लोगों को मॉडल के सहारे से भी बताने की कोशिश किए थे, चार्ट पेपर काट के मेल फ्रेनेट और फीमेल फ्रेनेट में अंतर क्या होता है. एंड देन हैमुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट. इन हनीबीज यू गेट, इन वस्प्स यू गेट हमूली. हमूली वो हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हाइंड विंग का कॉस्टल मार्जिन में रहता है. मोटा मोटी 20 हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो फोर विंग का एनल मार्जिन को पकड़ के रखता है जब इंसेक्ट फ्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हैमुलेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म. अनदर टॉपिक जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बहुत बार आपको बताया, दैट इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट विंग. मॉडिफिकेशन मतलब यहाँ पे डिफरेंट इंसेक्ट में कितना अलग अलग टाइप ऑफ इंसेक्ट विंग होते हैं, हॉल्टेयर किस में होते हैं, सीडो हॉल्टेयर किस में होते हैं, इलाइट्रा किस में होता है, हेम इलाइट्रा, हेमिलिट्रा जिसको आप बोलते हैं ना, हेम इलिट्रा किस में होते हैं, फ्रिंज्ड विंग्स किस में होते हैं, आपका मेम्ब्रेनस विंग्स किस में होते हैं. ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट विंग्स प्लीज गो थ्रू अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स. एंड देन डॉक्टर राव प्रोबेबली हैड कवर्ड मेटामॉर्फोसिस एंड डायपोज इन इंसेक्ट्स, types of larvae and pupae, types of larvae and pupae, this topic was there in your midterm examination. All of you have tried that one and you have done well. Kitna alag alag types of metamorphosis hote hai, larvae ka different types you already had read it, and I have checked your midterm exam, midterm copies, ki apodous larva, polypod larva, ओलिगोपोड लार्वा. फिर अगेन देर आर क्लासिफिकेशंस, पीपल के केस में भी सेम, ऑप्टेक्ट एक्सेट्रा. डॉक्टर आदर्स प्रोबली हैड कवर्ड, हैज कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, द सिस्टम्स मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो रिगार्डिंग योर सिस्टम्स, आई विल सजेस्ट यू टू अगेन प्रैक्टिस डायग्राम ऑफ सर्कुलेटरी, खास करके एक्सक्रेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली. एंड डिफरेंट मॉडिफिकेशंस का जो एग्जाम्पल्स है वो आप जरूर पढ़ के जाएंगे. एंड देन रिगार्डिंग इंसेक्ट इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, इफेक्ट ऑफ biotic factors and abiotic factors. So you know that insect ke upar sabse jyada agar impact hai to there are two factors. One is biotic factors. Biotic means definitely organism ke through koi insect ka population mein, insect ka reproduction mein koi agar affect karenge to usko biotic factor bolenge. For example your enemies, natural enemies of insects. So that is a biotic factor. In abiotic factor, you know, rainfall, relative humidity, sunshine hours, temperature, these all are under your abiotic factors, right? Then categories of pests, you know, key pests, major pests, minor pests, sporadic pests, regular pests, occasional pests. So examples you have to remember. Then regarding systematics, taxonomy, Dr. Rao has covered this topic. So you know that the class Insecta is classified into two sub classes. One is Aterigota and other one is Terigota. Ab yahan pe tera means wing, A means absent. Aterigota means the insect orders, the classes, subclass of the insect, insecta, class insecta, which is having the orders where no insect

फ्लाई का जो जो जो जो जो इमेच्योर स्टेज है उसको बोलते हैं नेड। हेमिप्टेरा मतलब बग्स का जो इमेच्योर स्टेज है उसको बोलते हैं निम्फ। बट लार्वा दैट टर्म इज यूज टू डिपिक्ट द इमेच्योर स्टेज ऑफ योर स्टेजेस ऑफ योर स्टेज ऑफ योर एंडोटेरिकोट ऑर्डर्स। सो एक्सोटेरिकोटा में कौन कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर आता है? इफिमेरोप्टेरा ओडोनाटा प्लेकोप्टेरा ग्लाइरोब्लैटोरिया ऑर्थोप्टेरा फैजमिटा डार्माप्टेरा इम्बाप्टेरा डिक्टियोप्टेरा आइसोप्टेरा सोराप्टेरा जोकोप्टेरा मेलोफेगा साइफानोप्टेरा हेमिप्टेरा एंड थाइसोनोप्टेरा। सो सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। सर ने भी आपको बताया होगा कि सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बट सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स के आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इफिमेरोप्टेरा का एग्जाम्पल है मे फ्लाई, जो मई महीना में आप का जो प्रिंसिपल ऑफिस का अपोजिट में एक टावर है जिसमें बहुत हेलोजन लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ मे फ्लाई जो व्हाइट कलर के होते हैं उसमें अट्रैक्ट होते हैं, आप लोगों ने देखे हो। ओडोनाटा यू नो ड्रैगन फ्लाई डैमसल फ्लाई। तो सारे ऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होगा, बट कुछ इंसेक्ट ऑर्डर का डिटेल में भी जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स, ओडोनाटा एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर है। कैसे? क्योंकि सारे ओडोनेट्स सारे ड्रैगन फ्लाईज डैम्सल फ्लाईज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दे ऑल आर प्रेडेटर्स, दे फीड ऑन द अदर इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल, देयरफॉर इट इज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट। सो यू मस्ट रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर ओडोनाटा विच यू ऑलरेडी नो। फॉर एग्जाम्पल यू नो कि ड्रैगन फ्लाईज एंड डैम्सल फ्लाईज का विंग्स कैसा होता है, मेम्ब्रेनस विंग्स होता है। विंग्स में ओपेक स्पॉट को क्या बोलते हैं? टेरोस्टिग्मा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। बोथ द विंग्स एंड मेम्ब्रेनस किसमें होते? ड्रैगन फ्लाइज में होते। बास्केट लाइक लेग्स ड्रैगन फ्लाइज एंड डैम्सल फ्लाइज में होते टू कैप्चर द प्रे। मैक्सिमम नंबर ऑफ उमाटीडियम किसी का अगर कॉम्पाउंडाइज में होंगे तो दैट इज योर ड्रैगन फ्लाइज। अब देखो ये कॉम्पाउंडाइज ड्रैगन फ्लाइज का मैक्सिमम पोर्शन मैक्सिमम एरिया ऑफ द हेड को कवर करता है। So, वो पीछे भी देख सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते, मोटा मोटी 360 डिग्री उसका विजन है। और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स है, मैं कुछ मेंशन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोप्टेरा, देन योर डिक्टाप्टेरा जिसमें कॉकरोच एंड प्रेइंग मैंटिस आते हैं, आइसोप्टेरा टर्माइट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट व्हीट का पेस्ट होते हैं। देन हेमिप्टेरा डेफिनेटली बहुत सारे प्रेडेटरी बग्स भी होते हैं, बहुत सारे फाइटोफैगस हार्मफुल बग्स भी होते हैं। थाइसनोप्टेरा जिसके एग्जाम्पल थ्रिप्स होते हैं ना, वो भी एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थ्रिप्स का भी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मालूम ही है, मैंने बहुत बार का मतलब इसी जो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी में हमने बोला कि जो है एसिमेट्रिक माउथ पर्स किस में रहते हैं, माउथ कोन किस में रहते हैं, फ्रिंज्ड विंग्स किस में रहते हैं, थ्री स्टाइलेट्स किस में रहते हैं, वो सारे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर थाइसनोप्टेरा इजंट इट। एंड देन अंडर द योर डिविजन योर एंडोटेरिकोटा यू नो दैट देर आर नाइन इंसेक्ट ऑर्डर्स, उसमें से एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का अगर बात करें तो न्यूरोप्टेरा जिसमें जिसका एग्जाम्पल यू नो कि एफिड लायन एंट लायंस, सो दे आर प्रेडेटर्स, एज दे आर प्रेडेटर्स दे आर एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट। देन लेपिडोप्टेरा वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेपिडोप्टेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स यू नो ऑलरेडी कि साइफोनिंग टाइप माउथ पर्स किस में होते हैं, स्केली विंग्स किस में होते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। एंड एग्जांपल्स यू नो कि बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन योर क्लास ऑल्सो। देन डिप्टेरा फ्लाइज जिसमें आता है, फ्लाइज मतलब सिर्फ हाउस फ्लाई नहीं, फ्लाइज मतलब यहाँ पे रॉबर फ्लाई होता है तुम्हारा, आपका जो है हॉर्स फ्लाई होते हैं विच आर प्रेडेटरी। सम पेस्ट ऑल्सो आर कमिंग अंडर दिस ऑर्डर डिप्टेरा, देयरफॉर इट इज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट। और डिप्टेरा में हाइंड विंग मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि हॉल्टर प्रेजेंट रहता है, सारे डिप्टेरा में ही हॉल्टर प्रेजेंट रहता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइफोनिंग टाइप माउथ पर्स योर आइदर योर स्टाइलेट और एरिस्टेट एंटेना प्रेजेंट रहता है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर डिप्टेरा। सो यू आर ऑलरेडी नोइंग द थिंग्स, only thing is that you have to recollect the things and you have to write it down. And then hymenoptera, most of the beneficial insects they come under this hymenoptera.
अब यहाँ पे

0: आर्टिफिशियल इंस्टेंट मतलब आपके दिमाग में चलता है कि हनी बीज, बट हनी बीज तो एक छोटा पार्ट है, बहुत सारे पैरासिटोइड्स, अलग अलग पॉलिनेटर्स जो हनी प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो भी इसी में आते हैं हाइमेनोप्टेरा में। देयरफॉर दिस ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा इज कंसिडर्ड एज कि जो है मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन करेंगे कि कौन से इंसेक्ट ऑर्डर ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पाया जाता है, दैट इज योर हाइमेनोप्टेरा, बीज, वर्ब्स, एंट्स, डिफरेंट पैरासिटोइड्स। कोलियोप्टेरा इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर। सो कोलियोप्टेरा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है कि दे आर हैविंग इलाइट्रा व्हिच इज मॉडिफाइड फोर विंग, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इजंट इट? कोलियोप्टेरा आर हैविंग योर प्रोनेथस ओरिएंटेशन ऑफ हेड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स विच यू हैव टू गो थ्रू इन डिटेल। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन विच आर द इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स रिगार्डिंग विच यू हैव टू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज। ओडोनाटा, ऑर्थोप्टेरा, डिक्टायोप्टेरा, आइसोप्टेरा, हेमिप्टेरा, थाइसनोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा। और डॉक्टर राव प्रोबली हैज कवर्ड सम फैमिलीज ऑल्सो, फ्यू फैमिलीज यू मे गो थ्रू, एंड आई होप दैट द होल सिलेबस आई हैव कवर्ड विद इन दिस 1 आवर टाइम। आई थिंक यू विल बी प्रिपेयरिंग वेल, यू आर प्रिपेयरिंग वेल एंड यू विल बी appearing the examination with your full potential, utilizing your full potential. So I think some instructions I've also given that wherever you feel that diagram should be drawn, it has not been asked to draw, but it will be creating some value to your answer, quality of the answer, you please do not hesitate to draw that. I'm talking of your short answer type question and broad answer type question. Now I'm not talking of your about your the first part of your question, that is objective type mein aapko wo scope nahi hai, but jaise aapko broad question ka mila, wherever you feel that you are capable of draw the diagram of that particular question related to that particular question, you don't hesitate to draw that, and thereafter you explain it very briefly. So all the best to all of you. Any questions, any queries, any doubts, you don't hesitate to text me at any point of time. I'll try my best to answer those questions. Thank you very much. All the best.
1: Thank you so much, sir.
0: Thank you, miss.
1: दोस्तों, उम्मीद है कि आपके लिए ये रेडियो रिविजन काफी यूजफुल साबित होगा, तो एग्जाम बिल्कुल अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?

0: 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि, किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें, यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
4: जैसा कि आप, हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नजर आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
3: संक्रमण होने
4: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, जिसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नज़र आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2-3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
3: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है?
4: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये, इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
3: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज़्यादातर देखा जाता है,
4: ज़्यादातर पाया ही जाता
3: है। और सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि

0: हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है?
1: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-106 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है,
0: अच्छा,
1: और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
0: और गला
1: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्राय मृत्यु हो जाती है।
0: और सर एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
1: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
0: तो इसके लक्षण क्या है?
1: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांघ वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है शरीर का तापक्रम वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है, और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है, और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
0: टीकाकरण पर विशेष बल देना है और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग,
0: खुर और मुँह,
1: हाँ, तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशन हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
0: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
1: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है,
0: अच्छा।
1: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है, और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुर पका और मुंह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है, किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है, और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में, खुरपका मुंह पका रोग में, पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशु पालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
0: उनको नुकसान होता है,
1: दूध में काफी कमी आ जाती है, और चलने में पैर के, पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है, दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है, और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है।

0: है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसमें हीट, शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं, और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा होती है।
1: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे, वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए, और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफ़ेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे हम आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती हैं ये?
0: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव, और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता, जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
1: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
0: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है, और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी, जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है, जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो, और ऊँचे स्थान पर रखें। वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें, जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें। उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वहाँ नमी की कमी रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियाँ हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती है?
0: जी, ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं, और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग हैं और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
1: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
0: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
1: अच्छा।
0: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें, और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहाँ जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ, अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू, लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
1: अच्छा।
0: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है, HS, BQ और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
1: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज़्यादा अच्छा होगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु हैं उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं

0: आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं, अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
1: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
0: जहां पर सभी पशु,
1: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर न ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें, या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल, जो जल जमाव है, वहां का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
0: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
1: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
0: अच्छा।
1: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
0: कृमिनाशक
1: दवा बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये, इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
0: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से, यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो हैं वो बीमार ना पड़े, और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटे मोटे उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
1: यहाँ तक है, जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको, जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडीन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडीन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूँकि HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूँकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियल सबको, सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है, तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है।

0: चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई जरूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का, तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ सबसे जरूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव। हाँ। तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं, और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें, अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है, और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
1: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं, किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, की जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं, तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रख रखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन, तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का, तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी, अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में और मैं अनु आप सभी के लिए खास विषय लेकर आ चुकी हूँ, आम के मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं अनिता मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि अनिता मैम SMS हैं KVK सबौर में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत। तो आज बहुत सारी बातें आज मैडम से हम जानेंगे, आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद के बारे में, क्यों परिरक्षित करना चाहिए आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों का या फिर आम को। तो आज इसके बारे में सबसे पहले मैम से जानते हैं कि आम के क्या कुछ फायदे हैं। मैम,
1: हाँ, थैंक यू अनु। आम के फलों, आम को जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि फलों का राजा, आम फलों का राजा है। तो आम फलों का राजा ये काफ़ी पुराने समय से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आम फलों का राजा कहा जा रहा है उसके पीछे सही में कारण है। यह आम का फल काफ़ी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। इसके फल में विटामिन ए और कैरोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ 100 ग्राम जो है उसमें प्रति 100 ग्राम में 4500 IU पाया जाता है विटामिन ए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा हुआ। इसके अलावा इसमें विटामिन सी संतरा और सेब से कई गुना ज़्यादा पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि आम में मक्खन, जो हम मक्खन कहते हैं, काफ़ी शक्तिवर्धक है, मक्खन के मुकाबले की शक्ति होती है।
0: अच्छा।
1: इसके अलावा इसकी गुठली, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन उस गुठली से उसके जो गिरी होता है उसके अंदर, गुठली के अंदर जो गिरी होता है उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसलिए उसको हम लोग सुखा करके आटा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिलका जो है, उसका छिलका को हम सुखा कर जलाने के काम में ला सकते हैं। इसके गुठलियों के रेशा से बुश बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक के चिकित्सक कहते हैं कि आम जो है वह ब्लड और वजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है, यदि इसके हम नियमित रूप से अपने डाइट में लें। यदि कितने लोग दुबले पतले हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आम एक बहुत अच्छा आहार है। और इसके अलावा इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है। इसमें चूंकि विटामिन मिनरल्स पाया जाता है तो ऑटोमेटिक है, और ये एनर्जी रिच फूड है, तो इसमें त्वचा में निखार आता है। जो यूरिन संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो दूर होता है, और यूरिन मूत्र जो है हमारा खुलकर आता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, नर्वस सिस्टम में किसी तरह का खराबी हो तो वो भी इसके सेवन से दूर होता है। नींद आने की किन्हीं को समस्या हो, नींद नहीं आती है, तो इनका आप सेवन करेंगे तो आपको नींद भी आएगा। और जो गर्भवती स्त्रियां यदि इसका सेवन करती है तो उसके बच्चे सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। इसका सेवन करने से कमजोरी दूर होता है। और यदि हम रात में सोने से पूर्व ताज़ा रस का सेवन करें तो कब्ज दूर होता है। और गुठली का जो गिरी होता है उसका, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसको हम लोग आटे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको यदि महीन चूर्ण बना लें तो मंजन की भांति उसको हम दांत साफ करते हैं तो पायरिया आदि रोग से हम लोग को
0: छुटकारा मिलता है।
1: इस तरह से हम देखते हैं कि आम का बहुत फायदा है। यहाँ खाने को छोड़कर यदि उसका औषधीय भी गुण है, उसका काफी पौष्टिक वैल्यू है, और उसको हमें सेवन अवश्य करना चाहिए।
0: जी मैम, अब बात करते हैं परिरक्षण और मूल्य संवर्धन की, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों करते हैं हम परिरक्षण और मूल्य संवर्धन?
1: अनु, ऐसा है कि जो भी हमारा फल सब्जी या भी कोई भी कृषि का उत्पाद होता है वह मौसमी होता है, तो उसका उसमें अलग अलग कैटेगरी है। कुछ तो होते हैं कि जैसे कि हम उसका यदि तोड़ लिए तो 2-3 महीना तक भी हम उसको सुरक्षित आराम से रख सकते हैं, जैसे कि अनाज दलहनी वगैरह है। और कुछ होते हैं कि आप 10-15 दिन ही रख सकते हैं, जैसे कि और से सब्जी फल में आते हैं। कुछ होते हैं कि 1 सप्ताह ही रख सकते हैं, जैसे कि आलू प्याज है उसको भी कई महीने रख सकते हैं, लेकिन जैसे फूल गोभी है तो 1 सप्ताह रख सकते हैं, वो भी मतलब 1 सप्ताह से तक में उसको खर्च कर देना, ख़त्म कर देना, उससे उसका क्वालिटी ख़राब होने लगता है, 2-3 दिन तक ही वो फ्रेश रहता है। कुछ चीज़ तो ऐसे है कि 1-2 दिन में ही हमारा ख़राब होने लगता है। तो उसकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है परिरक्षण या मूल्य संवर्धन का, कि बेमौसम में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। यदि जो चीज़ की मौसमी है, यदि उसका हम कोई प्रोसेसिंग नहीं, प्रसंस्करण नहीं करते हैं, परिरक्षण नहीं करते हैं, मूल्य संवर्धन नहीं करते हैं, तो वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन यदि हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो उसका हम लाइफ को बढ़ा देते हैं। वो जिस मौसम में उसकी उपलब्धता नहीं रहना चाहिए उस मौसम में भी वो उपलब्ध होता है। दूसरा, कि यदि हम कोई जो किसी चीज़ को उत्पादन में जो खर्च लगता है उससे परिरक्षित करने में कम खर्च लगता है। तो जैसे कि हम आंकड़ों की यदि बात करें तो लगभग 40% जो हमारा फल सब्जी है वह उत्पादन होकर जो उपभोक्ता तक जाने से पहले ही खत्म हो

0: जाता है,
1: खराब हो
0: जाता है। यदि उसको हम परिरक्षित करके बचा लेते हैं तो हम एक तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा लिए, क्योंकि जो खराब हो रहा था उसको बचा लिए। इसके बाद यदि हम इसको घरेलू स्तर पर करके महिलाएं करती हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ऑक्सीजन में यूज करती है तो खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा हासिल होता है। इसके अलावा यदि वो इसको स्वरोजगार रूप में अपनाती है तो आमदनी भी होता है, रोजगार भी होता है। घर बैठे महिलाएं इसका करती है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। युवाएं इसको करते हैं तो युवाओं का पलायन हमारा रोकता है, उनको घर में अपने रोजगार मिल जाता है। इस तरह से हम काफी फल सब्जी का काफी महत्व है और इसको हम अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, देखा जाता है कि तेल युक्त अचार तो बनाए जाते हैं आम के, लेकिन क्या लोगों के मन में सवाल है कि क्या तेल रहित अचार इसके बनाए जा सकते हैं?
0: बिल्कुल अनु, तेल रहित अचार हम बना सकते हैं और तेल रहित अचार आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है।
1: अच्छा।
0: इसको बनाने के लिए कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें 20% नमक, 7.5% पीसी लाल मिर्च और 1% हींग जो है, जो तो जो हमारा आम को मेजर कर लेते हैं उसके भार के अनुसार उसमें मिलाते हैं और मिश्रण को बार बार हिलाते हुए उसे कुछ घंटे धूप में रखते हैं। उसके बाद उसको बोतल में डाल देते हैं और 4-5 दिन तक उसको धूप में लगाते हैं। उसके बाद फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको आप अच्छे स्वच्छ जगह पर भंडारित कर दीजिए, उसको उपयोग कीजिए, इसमें आपको तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: हाँ, मतलब आप अगर तेल आपको पसंद नहीं है और तेल रहित आप अचार बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है इससे। मैम अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद की। ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बना सकते हैं इससे।
0: आम के बहुत ढेरों सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं, जैसे एक तो आप तेल रहित अचार मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल युक्त अचार जो कि हम सदियों से बनाते हैं, ये घर की हर गृहिणियाँ बनाती हैं, इस पर हम लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अमचूर जो पाउडर बनाते हैं वो भी लगभग हमको लगता है घर की हर महिलाएं बनाती ही है, तो अमचूर बनाती हैं महिलाएं जनरली, वो सुखा कर बनाती हैं आम की फांकों को, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यदि आम की फांकों को आप पोटासियम मेटाबसल्फाइड के 0.2% घोल में 5 मिनट तक डुबोने के पश्चात धूप में सुखाते हैं तो आमचूर का क्वालिटी गुणवत्ता आपका ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे आमतौर पर महिलाएं उसको सीधे धूप में सुखा करके बनाती हैं, लेकिन यदि ये आप एक स्टेप कर लेती हैं तो आपका आमचूर का गुणवत्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा आप पन्ना भी, आजकल जब धूप होता है तो हर घर में पन्ना बनता है, यहाँ तक कि चौक चौराहे पर भी पन्ना मिलता है और दिल्ली जैसे शहर में पैकेजिंग करके भी पन्ना बिकता है, मतलब इसका काफ़ी मार्केट है। तो ये पन्ना आप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आम के कच्चे फलों को भून लें या उबाल लें, उसका गूदा निकाल लेते हैं और उसमें प्रति किलो गूदे में 0.8 kg शक्कर, 0.4 liter पानी, 80 ग्राम नमक, 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं। तब उसके बाद इसके जैसे स्क्वैश को हम लोग बोतल में भरते हैं उसी तरह बोतल में भर देते हैं और इसमें KMS पोटासियम मेटाबसल्फाइड बोतल में भरने से पूर्व उसमें हम लोग मिला देते हैं कि जैसे 5 liter है तो उसमें 3 gram के अंदाज से उसमें मिला करके उसको पैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अमचूर बना सकते हैं, पन्ना बना सकते हैं। इसके अलावा जो आम का कच्चा आम हमारा काफी आंधी में गिर के बर्बाद हो जाता है, उस आम का हम लोग कच्चे आम का स्क्वैश बना सकते हैं। कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए आप आंधी में गिरे हुए फल भी ले सकते हैं या फिर प्रॉप फल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। उन फलों को आप अच्छे से धो कर कर स्टील के चाकू से छिलका उसका हटा दें, टुकड़ों में काट लें। यदि गुठली वाला है तो टुकड़े में नहीं भी काटते हैं तो उसको पूरा डाल दें, लेकिन यदि गुठली नहीं हुआ है तो टुकड़े में काट करके बीज का जो आपका बीज है उसको निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको पकाएंगे तो वो चूंकि हार्ड नहीं हुआ रहता है तो वो स्वाद को ख़राब कर देता है। इसलिए यदि छोटा फल है तो उसको टुकड़ों में अवश्य काट करके बीज का जो बीज है उसको निकाल लीजिए। यदि आप का पूरा मैच्योर है तो गुठले में नहीं भी टुकड़े में काटते हैं तो उसको एज सच भी आप उबाल सकते हैं, तो या तो आप टुकड़े में काटिए या फिर गुठली सहित है तो आप उसको ऐसे छील करके बराबर पानी के साथ उसको हम लोग पूर्ण रूप से गल जाए तब तक उसको हम लोग उबालते हैं। उसके उबालने के बाद उसको या हमारे पास यदि मशीन है पल्पर है तो पल्पर में डाल करके उसको गूदा को अलग कर लेते हैं, रेशा बीज को अलग कर लेते हैं। यदि नहीं है तो हम हाथ से मसल करके गुठली को हटा देते हैं। मिक्सी है तो मिक्सी में उसको हम लोग थोड़ा पीस लेते हैं, उसके बाद कपड़े से मसलिन के कपड़ा मार्किन के कपड़ा से छान करके उसके गुदा को हटा लेते हैं, रेशा को साइड कर देते हैं। इसके बाद उस जो आपका गुदा हुआ है उस गुदे को हम लोग थोड़ा सा

0: हल्का सा भफा लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ लगाए हैं, भफा करके उसको रख लेते हैं, ठंडाने देते हैं। और हम लोग जितना रस निकला उस रस को मेजर करके उसका डेढ़ा चीनी लेते हैं, चीनी का आधा पानी लेते हैं, चीनी पानी का हम लोग आँच पे चढ़ा करके जब तक चीनी नहीं गल जाए तब तक पकाते हैं,
1: चासनी।
0: उसके बाद हाँ चासनी बनाते हैं। उसका प्रति केजी चीनी के उसमें हम लोग 4 से 5 ग्राम 4 ग्राम, चूँकि कच्चे आम का बना रहे हैं इसलिए 4 ग्राम सैट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद जब चासनी हमारा, चासनी और आम दोनों, जो आम का रस दोनों ठंडा जाता है तो धीरे धीरे आम के चासनी को हम लोग आम में डालते हैं, गूदा में डालते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जब पूरे अच्छे से मिल जाता है तो 5 लीटर स्क्वैश में आपको 3 ग्राम KMS की दर से थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और आप इसको अब ये आपका बॉटलिंग कर देते हैं और इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसको जब पीना हो तो 3 से 4 भाग पानी मिलाकर 1 भाग ये मिलाकर आप इसको पीजिए और इसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप पके आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। आपको पके आम में जैसे यहाँ आप 4 ग्राम सैट्रिक एसिड डालें तो वहाँ 5 से 6 ग्राम सैट्रिक एसिड डालिए प्रति केजी चीनी के हिसाब से। और उसको आपको कच्चा आम को आपको उबालना पड़ा पानी से, तो उसमें उबालना नहीं, उसको सीधा छिलका को हटा करके उसके गुदे को निकाल लेना है, गुदा को भफा लेना है। भफा के जैसे कच्चे आम के लिए प्रक्रिया है उसी तरह पके आम के स्क्वैश बनाने की भी प्रक्रिया वही है। इसी तरह से आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं। इसके बाद आपका आम का जैम बना सकते हैं, ये कच्चा और पके दोनों आम का जैम बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कच्चा आम है तो उसको छील करके टुकड़ों में काट लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी में इसे गर्म करके गुदा को नरम कर लेते हैं। अब गुदे की मात्रा का 3/4 या बराबर, मान लीजिए खट्टा आम है तो बराबर चीनी दे दीजिए, यदि पका आम है तो 3/4 में चीनी मिला करके पकाते हैं। उसी तरह यदि पका आम, ये तो कच्चे आम का हो गया, यदि पका आम हम लेते हैं तो पका आम का गुदा कर लेते हैं उसी के मात्रा में चीनी डालकर उसको पकाते हैं। अब चाहे कच्चा आम को पका रहे हो चाहे पका आम को पका रहे हो, पकाने के बाद जो जितना आप चीनी डाले हैं प्रति केजी चीनी के हिसाब से 5 ग्राम सैट्रिक एसिड डाल देते हैं हम उसमें। यदि कच्चा आम है तो उसमें आप 4 ग्राम भी सैट्रिक एसिड डाल सकते हैं और पका आम ज़्यादा पका है तो 6 ग्राम भी सैट्रिक एसिड डाल सकते हैं। उसके बाद जब इसका तापमान 105 से 180 डिग्री तक पहुंच जाए तब इसको हम लोग उतार करके इसमें 0.02% सोडियम बेंजोएट थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और इसके बाद उसको हम लोग अच्छे डब्बे में, साफ किया हुआ डब्बा में उसको गरम गरम ही डाल करके देते हैं। फिर जब ठंडा जाता है तो उसके ऊपर एक मोम का लेयर डाल करके उसको हम पैक कर देते हैं। इस तरह से हम लोग आम का जैम बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आम का मुरब्बा भी बना सकते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए पूर्णतः विकसित और स्वस्थ एवं अधपका आम का चयन करना चाहिए। उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, फिर आम के छिलकों को हटा करके उसका 9 सेंटीमीटर मोटाई और आम की गोलाई में बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए। अब उसके बाद अब इन टुकड़ों को 2 से 3% नमक के घोल में डुबाएं ताकि इन्हें काला होने से बचाया जा सकता है। इन टुकड़ों को पतले कपड़े में लपेट कर खौलते पानी में 5 से 10 मिनट तक डुबोएं, बाद में इन्हें सूखे कपड़े पर फैलाकर सुखाएं। थोड़ी देर बाद इन टुकड़ों में जो स्टील या लकड़ी का सिकचा हो या फिर फॉर्क हो उसे थोड़ा छेद कर दीजिए और एक बर्तन में आम के टुकड़े के वजन के बराबर चीनी लेकर पानी में चासनी तैयार करें। पानी और चीनी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। उसमें आप इसके 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से सैट्रिक अम्ल मिला दें। चासनी तैयार हो जाने पर उसमें आम के टुकड़े को डाल दें और तब तक गर्म करें जब तक चासनी 3-4 तार ना छोड़ने लगे। अब मुरब्बे को ठंडा कर दें और ठंडा होने पर उसे स्वच्छ जीवाणु रहित बोतलों में भर दें। उसके बाद आप उसको पैक कर दीजिए, उसको चाहें तो उसके ढक्कन को मोम से भी सील कर सकते हैं, फिर आप इसका आनंद लीजिए। इस तरह से हम लोग विविध मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उसका परिरक्षण करके विविध परिरक्षित उत्पाद बना करके उसका सालों भर मजा ले सकते हैं, इसको रोजगार ले कर सकते हैं और अपने घर के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को भी पूर्ण कर सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और श्रोताओं आशा करते हैं कि आप भी आम के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैडम ने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन।

आर्द्रता सुबह में 80-85% और दोपहर में 50-55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15-16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दें। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10-15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10-15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन

अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

स्वस्थ रहे हम। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों की परेशानी ये होती है कि उन्हें मोशन सिकनेस होता है और ऐसी स्थिति में घूमना फिरना उनके लिए थोड़ा तो दुभर हो ही जाता है। तो मोशन सिकनेस क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं कौन। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, और आज हम बातें करने वाले हैं ढेर सारी, बस आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं मोशन सिकनेस क्या होता है। दोस्तों, मोशन सिकनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें सफर के दौरान किसी इंसान को चक्कर आता है, उल्टी होती है या सिर दर्द होता है और कई बार बेचैनी भी होती है, और ये समस्या ज़्यादातर गाड़ी, बस, ट्रेन, जहाज़ या हवाई जहाज़ के यात्रा के दौरान होती है। और कुछ लोगों में ये समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए कोई भी सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर संतुलन सही नहीं बैठ पाता है। मान लीजिए आप कार या बस में बैठे बैठे फ़ोन चला रहे हैं या फिर किताब पढ़ रहे हैं, और आपकी आंखें आपके दिमाग को क्या बता रही है कि आप स्थिर हैं, आप स्थिर होकर कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपके कानों के अंदर जो मौजूद संतुलन तंत्र है जो दिमाग को बताता है कि शरीर चल रहा है या नहीं, वो क्या बताएगा? हाँ, शरीर तो चल रहा है, पर आँखों ने बताया है कि नहीं, शरीर तो स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा, स्थिर होकर काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिमाग को दो दो संकेत मिलते हैं, और जब दिमाग को अलग अलग तरह के संकेत मिलते हैं तो उसे लगता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई जहरीली चीज अंदर आ गई है। और हमारा शरीर अपने अंदर गए किसी भी बुरी चीज को कैसे निकालता है? उल्टी करके। तो बस इसी वजह से हमारा जी मिचलाने लगता है, हमें उल्टी आने लगती है, हमें बेचैनी होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगे तो इससे बचने का एक ही तरीका होता है कि आप खिड़की के बाहर दूर देखने लग जाएं, ताकि आपकी आंखों को भी पता लगे कि नहीं भाई, हम स्थिर नहीं हैं। तो आपके कानों के संतुलन तंत्र से जो संकेत जाएगा और आपकी आंखों से जो संकेत दिमाग तक पहुंचेगा, दोनों सेम होगा। तो ऐसी स्थिति में जी मिचलाने वाली स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस से जूझने वाले आप अकेले इंसान हैं या बहुत रेयर ये स्थिति होती है, तो ऐसी बात नहीं है। साल 2015 में एक रिपोर्ट छपी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक मोशन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी स्थिति है जो हर 3 में से 1 व्यक्ति को होती है। और साथ ही उस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि अनुमान आप ये नहीं लगा सकते हैं कि कौन कब इसकी चपेट में आ जाएगा, और इसका कोई सटीक इलाज भी नहीं है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि मोशन सिकनेस इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन बनाने वाला सिस्टम ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाता, और ये सिस्टम मुख्य रूप से कान के अंदर मौजूद होता है जो बैलेंस ऑर्गन यानी कि वेस्टिबुलर सिस्टम से जुड़ा होता है। हमारे शरीर के अंदर ना एक खास तरह का सेंसर होता है जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं, और ये रिसेप्टर्स बाहरी

और अंदरूनी बदलावों को महसूस करके उसकी जानकारी दिमाग तक पहुंचाता है, और जब जानकारी पहुंचती है और अलग अलग जानकारी पहुंचती है तो दिमाग को लगता है कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और जब दिमाग को ये एहसास होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई तो गड़बड़ी हुई है, कुछ जहरीली चीज आ गई है, कुछ हानिकारक चीज आ गई है, तो हमारा दिमाग कहता है कि उल्टी करो और उसे बाहर निकालो। और सफर के दौरान ये उल्टी वाली समस्या या फिर ऐसी परेशानी सभी लोगों में एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को ना ये यात्रा शुरू होते ही बेचैनी महसूस होने लगती है, वहीं कुछ लोगों में ये परेशानी लंबे सफर के बाद सामने आती है, और कुछ लोगों को ये परेशानी तब होती है जब वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाते हैं, पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं, या फिर गाड़ी के अंदर दुर्गंध फैली होती है, तो भी लोगों में ऐसी परेशानी आती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक फ्लूइड होता है, और सफर के दौरान जब ये फ्लूइड हिलता है तो उसमें पैदा होने वाली कंपन यानी कि वाइब्रेशन गर्दन तक पहुंचती है, और गर्दन के मूवमेंट के साथ वो कंपन खोपड़ी तक जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रक्रिया से दिमाग में संतुलन बिगड़ता है और इसके कारण चक्कर और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर उल्टी भी हो सकती है। तो मोशन सिकनेस का दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हमारे दिमाग के अंदर फ्लूइड में कंपन होता है तो भी उल्टी की समस्या हो सकती है। और पहला कारण तो बिल्कुल था ही कि जो संतुलन होता है वो ठीक ठीक नहीं बैठता, दिमाग को आंखें कुछ और बता रही होती है और कान कुछ और बता रहे होते हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग वजह से परेशानी देखी जा सकती है। और इन सब के अलावा आप जब सफर पर निकलते हैं तो उस दौरान आपके पेट की स्थिति कैसी है, ये भी मोशन सिकनेस के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप खाली पेट सफर करते हैं तो फिर आपके पेट की वेगस नर्व जो कि हार्ट और गर्दन की नर्व से जुड़ी होती है वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है, और फिर इसका असर दिमाग और शरीर पर पड़ता है और आपको चक्कर जैसा महसूस होता है। और अगर आप खाली पेट नहीं है, आपने पूरा भरकर भोजन किया हुआ है यानी कि काफी ज्यादा आपने खाना खा लिया है और उसके तुरंत बाद आप सफर पर निकल गए हैं, तो ऐसे लोगों में भी उल्टी की समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी आप सफर पर निकले तो हल्का खाना ही खाएं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली पेट जाएं या फिर बहुत ज्यादा खा लें, हल्का खाकर निकले तो आपके पेट में भी ठीक ठाक संतुलन बना रहेगा और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। मोशन सिकनेस के बारे में जो अभी तक हमने समझा वो ये कि ये सफर के दौरान होता है, लेकिन कई बार ये सफर से जुड़ी हुई परेशानी नहीं होती बल्कि दिमाग की किसी बीमारी या फिर किसी दवा के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है ऐसा कुछ। कुछ मामले में तो मोशन सिकनेस ब्रेन ट्यूमर का भी संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, छोटे छोटे सफर भी आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं या फिर आप सारी सावधानियां अपना रहे हैं, इसके बावजूद आपके अंदर मोशन सिकनेस जैसी बीमारी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकती है। इसलिए अगर परेशानी ज्यादा हो तो डॉक्टर से मिल लेना भी जरूरी होता है, कम से कम आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ चलो कुछ गलत नहीं है। और अब तक हमने बीमारी के बारे में बातें की, बीमारी के कारण के बारे में बातें की, अब हम आपको बताते हैं कि सफर में उल्टी रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि भारी भोजन से बचना चाहिए, खाली पेट भी नहीं जाना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस के लिए आप कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करें। अगर जरूरी हो तो उल्टी रोकने वाली टेबलेट ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही। और ध्यान रखें कि चलती गाड़ी में नहीं सोएं अगर आपको पहले से ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो। और अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो तो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें, ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। और ध्यान रखें कि अगर आपको मोशन सिकनेस वाली परेशानी है तो सफ़र के दौरान आप अपनी नज़रें नीचे करके फ़ोन न चलाने लग जाएं, या फिर आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं सफ़र के दौरान, तो यहाँ पर भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी कि सफ़र के दौरान आपको किताब पढ़ने से भी बचना होगा, ताकि आपकी आंखें आपके दिमाग को संकेत दे पाए कि आप चल रहे हैं, आप स्थिर नहीं हैं। और आपके कान जो आपके दिमाग को संकेत देंगे, वो संकेत मिलेंगे तो आपका दिमाग भी स्थिर रहेगा। इसके साथ ही आप अपने शरीर की स्थिति को भी स्थिर रखें, यानी कि सिर, कंधे, कमर और घुटने की हलचल थोड़ा कम करें, और अगर आपको परेशानी हो तो आप आगे की ओर मुड़े हुए सीट पर बैठें या फिर सामने की सीट चुनें, ये आपकी परेशानी को थोड़ा कम करेंगे। और अगर संभव हो तो खुद ही आप ड्राइव करें यानी कि वाहन चलाएं, तो इससे तो बिल्कुल आपका दिमाग, आपके कान, आपकी आंखें, आपके दिमाग तक यही संकेत पहुंचाएंगे कि हमारा शरीर मोशन में है, तो संकेत या संतुलन की वजह से तो मोशन सिकनेस आपको नहीं होगी फिर। और इसके अलावा निकोटिन से बचें, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें उल्टी की संभावना ज्यादा होती है,
और संगीत,

संगीत तो सबसे अच्छा साथी होता है, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, संगीत सामने आता है और कहता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम्हारी परेशानी को कम करने के लिए। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर हल्का और सुखद संगीत सुने तो आपको सफर के दौरान मोशन सिकनेस की परेशानी कम होती है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और आता है कि क्या महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा होती है? तो कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ, महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक देखी जाती है और इसके पीछे शारीरिक और हार्मोनल कारण होते हैं। जानकारों का मानना यह है कि जो महिलाओं की जीवन शैली होती है वो पुरुषों से काफ़ी अलग होती है और यही एक वजह होती है कि महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा कारण होता है महिलाओं का पोस्चर। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो घर के कामकाज बहुत देर तक खड़ी रहकर करती है, खासकर रसोई में जब वो खाना बनाती है तो लगातार खड़ी रहती है, तो लगातार खड़े होने से भी ब्लड प्रेशर गिर सकता है जिसकी वजह से मोशन सिकनेस जैसी दिक्कतें बढ़ जाती है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल बदलाव नियमित रूप से होते हैं और ये भी एक अहम वजह है मोशन सिकनेस के लिए। और पीरियड्स के दौरान तो शरीर में नमक, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन लगातार बदलता रहता है जिसकी वजह से भी मोशन सिकनेस जैसी परेशानी। तो मोशन सिकनेस के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की, उम्मीद है कि आप, और अगर आपको ऐसी किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आज जिन भी बातों के बारे में मैंने आपको बताया उन बातों का आप ध्यान रखेंगे और मोशन सिकनेस जैसी परेशानी से आप खुद को बचा पाएंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए और फिलहाल के लिए मुझे यानी कि आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट उमा को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल। नमस्कार, स्वस्थ रहे हम।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून

0: क्या है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। ये है एफएम ग्रीन जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली तक। तो आज फिर से एक बार उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बातें करेंगे अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में, या फिर यूँ कहें कि मौसमी फल जो होते हैं उसका परिरक्षण हम कैसे करें, सारी बातें विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं अनीता मैम। मैं आपको बता दूं ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं केवीके सबौर, और साथ ही सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, मौसमी फल की परिरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: सबसे बड़ी बात तो है जो मौसमी फल होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ शरीर के लिए फल का नियमित सेवन काफ़ी आवश्यक है। ये फल जो होते हैं विटामिन और खनिज पदार्थ से भरपूर होते हैं। इन्हें विटामिन एवं खनिज का आहार में खजाना भी कहा जाता है। और लेकिन ये फल जो होते हैं वो मौसमी होते हैं
0: जी।
1: वो सिर्फ न किसी विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं, और यदि उचित रख रखाव नहीं रखा जाए तो वो शीघ्र ही खराब भी हो जाता है। उस मौसम में भी तुराई के बाद यदि हम सही प्रबंधन ना करें, उचित रख रखाव ना करें, तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जो डाटा है वो आंकड़ा बताता है कि लगभग 33% फल बिना प्रयोग हुए बर्बाद हो जाता है। और यह हम लोग सभी जानते हैं कि फल का उत्पादन में बहुत खर्च लगता है, लेकिन उससे काफ़ी कम लागत करके हम उसको परिरक्षित करके उपयोग योग्य बना सकते हैं। परिरक्षित फल का हम वर्ष भर सेवन करते हैं। मान लो जैसे अभी कोई सीजन है, जो कोई अभी उदाहरण ले लेते हैं, अभी अमरूद का सीजन है, तो हम सिर्फ मौसम भर अमरूद का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि उसके हम उत्पाद बना लें तो वर्ष भर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ अनावश्यक जो हमारी बर्बादी हो रहा था वो बर्बादी को बचा सकते हैं। प्लस ये जो हमारा जो स्वास्थ्य है, यदि साल भर उसका हम सेवन करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा, और जो हम पौष्टिक सुरक्षा है वो भी हम हासिल कर सकते हैं। फल का विभिन्न तरह का परिरक्षित उत्पाद जैसे हम अचार, चटनी, मुरब्बा, सुखौता, स्क्वैश, जेली, जैम, ये सब बनाकर घर में आराम से रख सकते हैं। और इन सब के अलावा ये सब उत्पाद को यदि हम अपने प्रयोग के अलावा बेचते हैं तो ये एक अतिरिक्त आय का भी साधन होता है, और ग्रामीण महिलाएँ बड़े आराम से इन जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो उनको विभिन्न तरह का उत्पाद बना सकते हैं। यदि उनको अपना पेड़ बाग नहीं हो तो वो चूंकि मौसम में सस्ता होता है, वो सस्ता खरीद कर भी उसके उत्पाद को बना करके रख सकती हैं, और विभिन्न तरह तरीके से अपने व्यक्तिगत उपयोग में या फिर बाजार में बेच करके उसका उपयोग करके फायदा ले सकते।
0: जी जी मैडम, अब बात आती है कि फल परिरक्षण में उपयोग होने वाले परिरक्षक के विषय में जाना, तो क्यों कौन कौन से परिरक्षक होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी।
1: हाँ, कुछ जो परिरक्षक है जो कि यदि आप फल सब्जी परिरक्षण में काम करना चाहते हैं, साल भर विभिन्न तरह के जो मौसमी फल हैं उनका प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, परिरक्षण करना चाहते हैं, विभिन्न तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो कुछ परिरक्षक है जिसकी की जानकारी रखना चाहिए, और आप आवश्यकता अनुसार उसे मार्केट से ले भी सकते हैं। जैसे कि एक साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड का उपयोग हम जो जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश ये सब बनाने में किया जाता है, लेकिन जो साइट्रिक एसिड की जगह पर हम नींबू का जो रस है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि साइट्रिक एसिड नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास नींबू का रस है तो नींबू का रस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये इसका अचार, चटनी, सॉस ये सब इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट है, इसका प्रयोग सॉस, चटनी, स्क्वैश तैयार करने में किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग जनरली जो गहरे रंगीन खाद्य पदार्थ होता है उसको परिरक्षण में करते हैं। इसके बाद आता है पोटासियम मेटाबासल्फाइट, इसका जो भी हल्के रंगीन स्क्वैश वगैरह होता है उसमें हम लोग पोटासियम मेटाबासल्फाइट का उपयोग करते हैं। ये मुख्यतः यही चार तरह के परिरक्षक हैं जो कि घरेलू स्तर पर हम लोग यदि फल का परिरक्षण करना चाहें तो इनका उपयोग होता है,
0: कर सकते हैं। जी, तो परिरक्षित उत्पाद को रखना बहुत ज़रूरी होता है मैडम, अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो ये ख़राब भी हो सकता है, तो कैसे रखें, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए इन उत्पादों को रखने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो परिरक्षित उत्पाद है इसके लिए जो हम जिसमें हम भंडारण इसका करेंगे उस बोतल को उसको बहुत अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो उन बोतलों को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बड़े से बर्तन में, जितना आपके पास बोतल है उसके अनुसार, वो बड़े से बर्तन में उसका ढक्कन को हटा करके और ढक्कन खटाकर उसमें ढक्कन डाल देते हैं और ढक्कन सहित उसको लगभग आधा घंटा उबालते हैं, फिर

0: अच्छी तरह से धूप में सुखाते हैं, और बोतल जब सूख जाता है तो उसके बाद ही उसमें हम लोग उत्पाद को रखते हैं और हल्के गर्म अवस्था में ही उसको हम लोग सील भी करते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास सीलिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो पिघले हुए मोम में मोम पिघला जो दिवाली वगैरह में जो मोम बच जाता है या मार्केट में भी मोम मिलता है उस मोम को ले आइए, उसको पिघला दीजिए और पिघले हुए मोम का उपयोग करके हम लोग बोतल को ढक्कन को बंद करते हैं तो वो बिल्कुल सील्ड हो जाता है और हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है उसके अंदर और हमारा उत्पाद खराब नहीं होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग बोतल में उत्पाद को भरते हैं तो लगभग 1 इंच जगह ऊपर खाली रहना चाहिए, और मान लीजिए कभी किसी तरह का उसमें अशुद्धि रह जाता है तो फर्मेंटेशन वगैरह होता है तो उससे बोतल टूटे नहीं, इसलिए हमेशा ऊपर में 1 इंच का जगह आपको खाली रखना चाहिए। और इस तरह से आप बोतल में यदि साफ सुथरा करके भंडारित करते हैं तो उत्पाद आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए धूप नहीं है, आप नहीं सुखा पा रहे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग जो आपको एक पोटासियम मेटाबिसल्फाइट है उसके घोल से भी बोतल को हम लोग अच्छे तरह से गर्म पानी से धो लेते हैं तो फिर वो भी काम हो सकता है। लेकिन बेहतर होगा कि हम गर्म पानी में खौला करके तेज धूप में उसको सुखा लें। इसके अलावा फल संरक्षण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो जिस फल का भी हम लोग संरक्षण करें उसका जो परिरक्षित उत्पाद बनाना चाहते हैं वो स्वस्थ हो, अच्छे किस्म को हो और सड़े गले या चोट खाए फल का प्रयोग ना करें। उसके बाद साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, लोहे का चाकू या बर्तन का प्रयोग ना करें, संरक्षित उत्पाद को हाथ व गीले चम्मच से ना निकालें, और बर्तन जिसमें या जार जिसमें कि आपको उत्पाद उसको बार बार ना खोलें, और बोतलें जो है हमेशा साफ धुली और सुखी रहना चाहिए। और जो मान लीजिए कि कोई बोतल का ढक्कन है यदि आप पुराना बोतल उपयोग कर रही हैं उसमें यदि छेद हो या जंग लगा हो तो उसका प्रयोग नहीं कीजिए, उसके जगह पे प्लास्टिक का जो सिंथेटिक फ्लैप है उसका उपयोग कीजिए। फिर प्लास्टिक या धातु के बर्तन में परिरक्षण ना करें, इसके लिए कांच की बोतल इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा एयर टाइट बोतलों का ही इस्तेमाल करें।
1: जी मैम, अब बात करते हैं अमरूद के बारे में, तो अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में बताएं, जैसे कि अमरूद के जेली भी बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं, क्या कुछ तरीके हैं उसके बारे में थोड़ी।
0: अमरूद का तो जो मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध उत्पाद है जो कि जनरली यूज करते हैं वो अमरूद की जेली है। और अमरूद की जेली हम लोग उसके जो जूस है उससे हम लोग बनाते हैं। अमरूद की जेली बनाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से डेवलप मैच्योर विकसित फल का चयन करते हैं जो कि बिल्कुल जिसको कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं डम्भक फल, वो डम्भक फल हमें लेना चाहिए। और इसको खूब या खूब पका भी अमरूद नहीं होना चाहिए, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अमरूद का जो फल हो वो डम्भक होना चाहिए। उसको थोड़ा सा काट के यदि हम खाएं तो वो थोड़ा मीठा स्वाद लगना चाहिए उसका, है ना। इसके बाद उस अमरूद को अच्छी तरह से पानी से हम लोग धो लेते हैं और गोलाई में उसके टुकड़ों को काटते हैं। फिर इसमें जो बर्तन में हम उसको उबाल रहे हैं उस बर्तन में अमरूद के टुकड़ों को डाल देते हैं, उसके ऊपर से पानी इतना डालते हैं कि वो अच्छे से डूब जाए। उसके बाद उसको हम लोग पकाते हैं, जब वो पूरा सीझ जाता है पक जाता है, हम हाथ से टच करके देखते हैं कि अमरूद के टुकड़े अच्छी तरह से गलकर पानी में मिल जा रहा है, तब उसको हम लोग कपड़े से उसको छान करके
1: मतलब पेस्ट बन जाता है।
0: नहीं पेस्ट नहीं, उसको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग अमरूद को उबाल रहे हैं तो उसको चलाना नहीं है, उसमें अच्छा पेस्ट नहीं बनना चाहिए। तब जो यदि पेस्ट बनेगा तो अमरूद का जो जेली बनेगा वो थोड़ा गंदा धुंधला टाइप का बनेगा। यह ध्यान रखना है कि अमरूद उसका टुकड़ा उसमें गले नहीं टूटे नहीं, लेकिन वो पक जाए गलने लायक। उसको हाथ में निकाल करके हम ऐसे देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे गल जाता है तो हम समझते हैं कि ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। लेकिन उसको बार बार चलाना नहीं है, यदि उसको बार बार चलाएंगे तो वो टूटेगा तो हमारा जेली का गुणवत्ता खराब होगा, वो थोड़ा धुंधला दिखेगा, ट्रांसपेरेंट जेली नहीं बनेगा, है ना। और बीच बीच में हल्का सा चलाना है कि वो पेंदा में वो सटे नहीं, जले नहीं, आपका जो अमरूद है टुकड़ा है वो जले नहीं, उस तरह से उसको हल्का सा उसको चलाना है बीच बीच में।
1: जी।
0: इसके बाद अब इस टुकड़ों को हम लोग अच्छे से कपड़े से छान लेते हैं। छानने के क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए कि रस जितना देर लगे उतना देर आपको अपने से लगने दीजिए रस को चूने में, उसको दबा करके रस निकालने की कोशिश नहीं कीजिए।
1: अच्छा,
0: वो जनरली से गांव में कुछ मेज है, टेबल है, टेबल को उलट दीजिए, उसका जो चारों पाया है उसमें कपड़े को बांध दीजिए और उसके नीचे

0: एक बड़ा सा बर्तन रख दीजिए और जो कपड़े को बांधे हैं उसमें आप अमरूद के टुकड़े को डाल दीजिए, टप टप धीरे धीरे धीरे जूस नीचे जो बर्तन रखे उसमें गिरेगा और उसको रस को गार करके नहीं निकालना है। इस बात को बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि यह भी यदि आप करेंगे तो भी आपका जेली का गुणवत्ता सही नहीं होगा, जेली थोड़ा गंदला हो जाएगा, ठीक है। और चाहे आपको जितना समय लगे उसको अपने से होने दीजिए, ठीक है। उसका जब पूरा रस निकल गया तो अब रस का मात्रा को ज्ञात कर ले, नापने की कितना रस है। यदि आप उसके पेक्टिन के लिए टेस्ट करना चाहते हैं तो पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं। पेक्टिन का टेस्ट करने के लिए शीशे का ग्लास या परखनली लें, घर में तो शीशे का ग्लास ही रहता है, वो ले लीजिए। उसमें एक चम्मच रस लेते हैं, उन पर रस का दुगुना स्प्रिट डाल देते हैं। रस जब मिल जाए तो उसमें बाहर टेबल पर उड़ेल देते हैं। गिरा हुआ जो उसमें अवक्षेप देखेंगे, जो अवक्षेप बना है, यदि अवक्षेप बड़ा हो तो जूस में 900 ग्राम, यदि साधारण हो तो 700 ग्राम और टूटा फूटा पतला हो तो 400-500 ग्राम के लगभग चीनी डालते हैं। मान लीजिए आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप यह देखिए कि रस में अपने हाथ से लेके देखिए चटचटापन है क्या नहीं। यदि रस में चटचटापन है तो बरसाती अमरूद में, जैसे कहीं बरसात अमरूद का समय है, तो जनरली आप यह ध्यान रखिए कि 500 से 600 ग्राम चीनी हम लोग एक लीटर जूस में देंगे। यदि आपके पास यह साधन है कि यदि हम पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर ये इतना थोड़ा चीनी की मात्रा हम लोग 500 से 600 ग्राम डालेंगे, या नहीं तो आप अलग से पेक्टिन थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं तो आपका अमरूद का जेली सही जमेगा, ठीक है। इसके बाद आप हम लोग जो चीनी की मात्रा दे के उसको पकाते हैं, जब जूस और एक थर्मामीटर मिलता है, उस थर्मामीटर को से आप उसका टेम्परेचर को माप सकते हैं। जब जूस का तापमान लगभग 100 डिग्री तक पहुंच जाए तो उसमें हम लोग जितना चीनी है उसमें हम लोग डालते हैं, चीनी और रस डाल करके उसको उबालते हैं और 100 डिग्री पहुंच जाए, मान लीजिए नहीं थर्मामीटर है तो जब अच्छे से वो खोलने लगे तो समझिए वो टेम्परेचर पहुंच गया है। तो 4-5 ग्राम साइट्रिक एसिड प्रति केजी के हिसाब से हम लोग जूस में मिला देते हैं। इसके बाद उसका जब टेम्परेचर 106-107 डिग्री पहुंच जाता है तो हम उसको उतार लेते हैं। और यदि मान लीजिए थर्मामीटर नहीं है तो कैसे उतारेंगे, तो उसका है कि एक ग्लास लीजिए, शीशे का ग्लास, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें आप जो जेली पका रही हैं उस जेली को थोड़ा डालिए। यदि वो उसमें घुलेगा नहीं, नीचे जाके जम जाएगा और सॉफ्ट रहेगा तो इसका मतलब वो रेडी है। यदि इससे ज़्यादा पका देंगी तो जेली जम जाएगा, कड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए उतारने का तापमान बहुत ध्यान से देना होता है कि इस तरह से हम लोग उसका चेक करें। दूसरा है कि यदि प्लेट में उसको डालेंगे तो उसके चारों तरफ पानी का लेयर नहीं होना चाहिए, तो भी हमारा जेली तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग जांच करेंगे कि हमारा जेली का उतारने लायक हुआ कि नहीं हुआ है। ये दो पॉइंट पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम जेली का अंतिम बिंदु का कैसे जांच करें, दूसरा कि जब जेली को चला रहे हों या फिर जब जेली का जब अमरूद का रस निकाल रहे हैं, पका रहे हैं जब, उस वक्त और रस जब निकाल रहे हैं तो उस वक्त उसको दबाए नहीं। ये दो चीज़ का जेली की गुणवत्ता को सही रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसको उतार करके और जेली को स्वच्छ चौड़ी मुंह वाले बोतल के शीशे में भर देते हैं और उसके बाद उसमें मोम को पिघला करके उसके ऊपर डालते हैं ताकि उसका एक लेयर हो जाता है। और फिर जब मोम जमने वाला हो, देखिए जब जेली ठंडा जाए तब हम लोग मोम डालते हैं, और जब मोम जमने से पहले, मोम को पूरा जमने नहीं देंगे, मोम यदि पूरा जम गया तो साइड से छोड़ देता है, मोम को पूरा जमने के पहले उसके ढक्कन को लगा देते हैं और किसी सूखे व ठंडे जगह पर उसको हम लोग भंडारित करते हैं। इस तरह से हमारा अमरूद का जेली तैयार हो जाता है
1: जी।
0: इसके अलावा यदि अमरूद का आप जो जेली का जो ऊपर आपका पल्प बच गया, इसका यदि कुछ आप बनाना चाहते हैं तो उसका एक दिन के लिए उसको छोड़ दें, और एक दिन उसे छोड़ने के बाद उसको आटे के साथ, जो भी आटा आपके पास उपलब्ध हो, शक्तिमान मक्का हो या फिर मिश्रित आटा हो, उसके साथ जैसे आप घरों में खजूर बनाते हैं उस तरह से चीनी वगैरह या गुड़ डाल करके छान के बना लेते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं और बहुत पौष्टिक भी है। इसके अलावा आपके पास यदि बेकिंग की सुविधा है तो उसके आप बिस्किट भी इसका बना सकती हैं, और यदि इसके किसी मच्छरदानी में डाल करके उसके बीज को हटा देते हैं तो उसका जो पल्प बचा उस

0: से को आप चीनी के साथ पका करके जैम के रूप में ही बना सकते हैं, और पूरे उत्पाद को बीज सहित यदि उसको आप पीस देते हैं तो उसको भी आप चीनी या गुड़ के साथ पका करके संरक्षित करके रख सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद है, मतलब कि यदि आपके पास पशु है तो ये जो बचा है उसको आप पशु को भी दे सकते हैं, तो किसी चीज़ को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसके उत्पाद बना करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों और हमारी महिलाओं खास तौर पर आप भी ये बना सकते हैं अपने घर पर ही। और तो आज का हमारा विषय था अमरूद का परिरक्षित उत्पाद, तो इसके बारे में आज आपने जाना। साथ ही मैडम ने बहुत सारे ऐसे जो हैं तरीके बताए हैं जिससे आप किसी भी फल का परिरक्षण कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले एक ऐसे फसल के बारे में जो खास तौर से आजकल के जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावा मिलेट की उन्नत खेती के बारे में, और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं शस्य विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
1: सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या जब हम सावा मिलेट्स की बात करते हैं तो ये जलवायु अनुकूल फसल है?
2: देखिए, सावा मिलेट्स जिसको हम बार्नयार्ड बोलते हैं, ये जलवायु अनुकूल फसल है। जलवायु अनुकूल का मतलब ही है कि ऐसी सभी फसलें जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, जो कम पानी में आसानी से उग जाएं और उच्च तापमान में भी चल सके, क्योंकि मौसम परिवर्तन में सबसे अधिक समस्या हो रही है तापमान का बढ़ना और दूसरा पानी की कमी होना। इस वर्ष अगर हम बात करें तो देखिए कि इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव से हमारे बिहार राज्य में लगभग 40% बरसात की कमी दर्ज की गई है। अर्थात जो बरसात आपके क्षेत्र में पिछली बार हुआ है या पिछले 30 वर्षों में हो रहा है उसकी तुलना में 40% कम होगा, अर्थात 2/3 से भी बरसात कम होगा। तो ऐसे समय में क्या हो संभावनाएं हैं कि जिन किसान भाई लोगों ने धान की खेती लगाया है या लगाने जा रहे हैं, विशेषकर ऊपरी जमीन या मध्यम जमीन में, उनकी धान की खेती प्रभावित होगी। प्रभावित होने का तात्पर्य है या तो उसका उत्पादन कम होगा, या कहीं कहीं जो विशेष ऊपरी जमीन होगी उस जमीन में जल धारण की क्षमता भी नहीं होगी, वहां धान की फसलें सूख भी सकती हैं। तो उत्पादन कम होने से धान की खेती इस वर्ष घाटे की सौदा हो सकती है, विशेषकर ऊपरी एवं मध्यम जमीन में असिंचित अवस्था में। जहां सिंचाई की सुविधा है वहां हम धान की सिंचित रोपाई करेंगे, लेकिन धान वहां भी इतना ज्यादा पानी का डिमांड हो सकता है कि धान बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो ऐसे सभी असिंचित क्षेत्र जो ऊपरी जमीन है, मध्यम जमीन है, जहां जल का जमाव नहीं होता है, उनके लिए जलवायु अनुकूल फसलें जैसे रागी, सावा, कोदो, चीना, कुटकी, इन सभी फसलों को हम लोग श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। 2023 से हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वैश्विक लेवल पे इन सभी फसलों को श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। तो ये सभी फसलें जलवायु अनुकूल हैं, अर्थात एडवर्स कंडीशन में, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी ये आपको मुनाफे का सौदा करती हैं। आप इनको बो दीजिए, ये आपको कुछ न कुछ रिटर्न दे के ही जाएंगे। ये फसलें देखा जाए तो जलवायु अनुकूल ही नहीं, ये पारिस्थितिक अनुकूल भी हैं, क्योंकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग भी शामिल होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी होता है, एनिमल भी होता है, सब कुछ शामिल है। तो देखा जाए तो इन फसलों को लगाने से हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ है, पर्यावरण को हानि भी कम होगी, खेत की उर्वरता का लाभ भी कम होता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी कम निकलती हैं, इनको जल भी कम चाहिए, इनको खाद भी

0: कम चाहिए, जब खाद कम देंगे, जल कम देंगे, तो हमारा जो भूमिगत प्रदूषण है वो भी नहीं होगा, नाइट्रेट का उत्सर्जन भी नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस भी कम होगी और हमारा मानव स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जब हम सेवन करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के जो पोषण हैं, प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि से परिपूर्ण हैं। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि अपने पुराने समय में इन्हीं सभी कंदन फसलें, इनको बोलते हैं कंदन फसलों को, का सेवन करते थे, जिनको आज हम श्री अन्न की फसलें कह रहे हैं, जिसमें सामा भी शामिल है, इन सब का सेवन करके इन सब के ऊपर आधारित थे। और देखिए कि वो लोग का औसत आयु जो है 250 वर्षों की होती थी। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल पारिस्थितिक अनुकूल है, इकोसिस्टम के अनुकूल है। तो इस वर्ष हमारे पास चूंकि एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात कम हो रही है, इसलिए किसान भाइयों इसकी खेती को आप अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जलवायु अनुकूल तो है ही, साथ ही हमारी आय को बढ़ाता है और सबसे बेहतर बात कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तो ऐसे में श्री अन्न और खासतौर से जब हम आज बात कर रहे हैं सावा मिलेट्स के बारे में, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो सर अभी सवाल ये है कि अब जो किसान भाई बहन अगर खेती करना चाहते हैं सावा मिलेट्स की, तो वो खेती कब करें और कैसे करें?
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि देखिए, सावा मिलेट्स एक ऐसा फसल है जिसको हम अपने बिहार राज्य में वर्ष में दो बार अच्छे से बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसके जितनी भी प्रजातियां हैं सभी प्रजातियां 90 दिनों से कम अवधि में, लगभग 85 दिन में पककर के तैयार हो जाती हैं, 80 से 85 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, अर्थात 3 महीने की बुआई से 3 महीने के अंदर ही आपके ये कट के तैयार हो जाती हैं। तो हम लोग देखिए, इसकी बुआई इवन मसूर है, चना है, सरसों है, और कुछ क्षेत्रों में गेहूं की कटाई के बाद भी गर्मी में इसका उपयोग बुआई कर लेते हैं। तो गर्मी में भी एक अच्छा समय होता है, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में हम बुआई कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा समय चल रहा है जिसको हम खरीफ की फसल कहते हैं, तो खरीफ में हमको जो ही बरसात का पानी मिल जाता है हम बुआई कर दें। अभी देखिए इस बार बरसात थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो अभी इसका उपयुक्त समय है, अभी हम आज के डेट से इसकी बुआई करें और 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर लेंगे तो हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे करें। तो देखिए, सावा मिलेट एक बहुत ही मोटा अनाज की फसल है, अर्थात इसको हम कहीं भी थोड़ा बहुत जुताई करके सीड को किसान फेंक देता था तो भी कुछ न कुछ उत्पादन दे देता था। आज हम लोग इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से करने की सलाह देते हैं। तो इसके लिए होता है कि हम इसकी खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर लें, खेत जो है ऐसा कर रखें जिसमें पानी का कभी जमाव ना हो, ऊपरी जमीन में ही बुआई करें। तो खेत को अच्छे से तैयार करके अब हम इसमें बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ मात्र 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और किसान भाई इसकी बुआई जो करें वो बेहतर हो कि कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी हम लोग कहते हैं 22.5 सेंटीमीटर, अर्थात लगभग 9 इंच की दूरी पर कतार से कतार की दूरी रखना है। और गहराई जो बीच का हो उसका विशेष ध्यान देना है कि किसी भी दशा में 1 इंच से ज़्यादा गहराई पर बुआई इसकी नहीं करना है, अर्थात जो गहराई है बुआई की वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखनी है और कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर अर्थात 9 इंच पर करना है। किसी कंडीशन में हम 25 सेंटीमीटर पर अर्थात 10 इंच की 9 से 10 इंच तक हम इसको कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं, बहुत अच्छा इसका पौधा उत्पन्न होता है और अच्छा लाभ मिलता है। अब बात आता है इसमें जो है बोने की विधि का। तो बोने की हमारी कई विधियां हैं, जैसे हम कतारों में बोएं फ्लैट बेड पर, और जिन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत जल जमाव की समस्या होती है वहां आजकल हम लोग क्या करते हैं, चौड़ी चौड़ी बेड बना देते हैं। बेड की चौड़ाई हम लोग लगभग 90 सेंटीमीटर रखते हैं, उस पर 4 लाइन समा की जाती है जिसको हम लोग BBF मेकर बोलते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो मेकर। तो जिन किसान भाइयों के पास रेज बेड मेकर या BBF मेकर है वो लोग थोड़ा सा रेज बेड पर या BBF पर इसकी बुआई करें और वहाँ भी स्पेसिंग 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार में बुआई करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जो BBF 90 सेंटीमीटर या BBF 150 सेंटीमीटर वाइड हम बेड बनाते हैं तो उसके बाद 30 सेंटीमीटर का फरो भी होता है, तो तो जो बरसात ज्यादा

0: होगा तो बेड पर का पानी फरों में जाते हुए कूड़ों में जाते हुए वो बाहर निकल जाती है। तो इससे कहता है कभी भी पौधे के जड़ के पास जल जमाव नहीं होता, उससे फसल का उत्पादन जो है 20 से 25% बढ़ जाती है, और कम खाद में 25% खाद भी कम देना पड़ता है उसमें। तो बेहतर होगा हमारे बिहार राज्य के सभी जिलों के किसानों से मैं जो है निवेदन करूंगा कि हो सके तो इसको रेज बेड या बीबी ब्रॉड बेड एंड फरो पर ही बुआई करें तो इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। अब बात आती है इसमें जो है इसका कौन कौन सी प्रजातियां कल सिलेक्शन करें। तो देखिए प्रजातियों के जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो अभी तक हमारे बिहार किसी विश्वविद्यालय में हम लोग बहुत से लोकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी हम लोग भी अपनी प्रजातियों को निकालने के स्थिति में आ चुके हैं, 1 साल में बाद हमारी प्रजातियां आ जाएंगी। लेकिन बाहर की जो प्रजातियां हम लोग टेस्ट किए हैं उसमें अधिक उत्पादन देने वाली एक प्रजाति है DHBM 23-3। ये प्रजाति इतनी अच्छी है कि इसकी उत्पादन क्षमता 12 कुंटल प्रति एकड़ है और मात्र 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर से निकली है, जिसको हम बोलते हैं RAU 3, और अगला प्रजाति है RAU 9। तो ये दोनों प्रजातियां राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं और इनकी उत्पादन क्षमता है करीब 9 कुंटल प्रति एकड़ तक। तो इसको भी लगा सकते हैं और औसतन ये 85-86 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। और कुछ प्रजातियां हैं बाहर की, VL 207, VL 172, ये दोनों प्रजातियां भी लगभग 9 कुंटल प्रति एकड़ की उत्पादन देती हैं और लगभग 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। VL 29 भी एक सावा की अच्छी प्रजाति है, जिसकी उत्पादन क्षमता करीब करीब 10 से 11 कुंटल है और ये बहुत ही हाई यील्डिंग है। इसकी भी प्रजाति कहीं से भी मिल जाए किसान भाइयों को तो लगा सकते हैं। तो VL 29 भी ले सकते हैं और इसका उत्पादन क्षमता है करीब 10 कुंटल प्रति एकड़ और ये पककर तैयार होती है लगभग 88 दिन में। तो इस तरह से सांवा की जो 5-6 प्रजातियां हैं सिर्फ इन्हीं को लगाएं, और वैसे तो बहुत सी प्रजातियां हैं लेकिन कम उत्पादन वाली प्रजातियों को न लगाएं।
1: जी सर, अगर हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है?
0: देखिए सांवा मिलेट्स चूंकि एक तरह से ड्राई लैंड की फसल है, वर्षा आधारित फसल है, तो इस सभी फसलों में खरपतवार का ज्यादा अतिक्रमण होता है। खरपतवार का समय पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो उत्पादन में भारी गिरावट हो जाती है। इन फसलों को कोशिश करना चाहिए कि बुआई के 10 दिन बाद से लेकर 35 दिन तक खेत जो है खरपतवार से मुक्त रहे। तो उसके लिए बहुत सी प्रजातियां, बहुत सी विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी अच्छे से करें। अगर हो सके तो गर्मी में अगर हम खेत को 7 से 8 दिन जोत करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत से खरपतवार जो पेरेनियल वीड्स हैं, बहुवर्षीय खरपतवार हैं, उनकी जो जड़ें हैं, सकर्स हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं धूप की वजह से। उसके बाद अगर हम देखें तो उसकी बुआई करें। और बहुत से हमारे ड्राई लैंड वीडर हैं, जैसे कि सिंह हैंड हुआ है, शर्मा हैंड हुआ है। आजकल क्या है कि 20-22 हज़ार रुपये में जो पावर वीडर आ रहे हैं उसका भी उपयोग करके हम कतारों के बीच में मैकेनिकल वीडिंग कर सकते हैं। अगर हमें केमिकल उपयोग करना है तो बुआई के तुरंत बाद हम लोग हर्बिसाइड है पेंडीमिथिलीन, इसका उपयोग करते हैं। उसके लिए 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। अगर हम किसान भाइयों के शब्दों में बोलें तो प्रति टंकी पानी में लगभग 1 टंकी में 15 लीटर पानी होता है, तो आपको 30 ml पेंडीमिथिलीन डालना है। 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति 15 लीटर पानी में डालना है और 1 एकड़ में करीब 8 से 9 टंकी पानी या 8 से 10 टंकी पानी उपयोग में करें। तो इस तरह से बुआई के 24 घंटे के भीतर, अर्थात आपने बुआई कर दिया, उसके तुरंत बाद आप इस पेंडीमिथिलीन को 30 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में होल करके आप स्प्रे कर दीजिए, तो अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक दवा है 2,4-D। 2,4-D 3 ग्रुप में आती है, जो है एक 58% का होता है, एक जो है आपका करीब कम डोज का होता है 30% के आसपास। तो अब हमको देखना है कि हम कौन सा, एक पाउडर वाला तो है 80% का, तो अगर हम 58% वाला लेते हैं बाजार से तो उसका करीब 22 ml प्रति टंकी पानी यानी 1.5 ml प्रति लीटर की दर से देना है और बुआई के 20 से 22 दिन पर हमें स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, मुख्य रूप से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और सक्रिय पत्ती वाले जो खरपतवार बचते हैं या जो थोड़ा बहुत और खरपतवार बचते हैं उसको हमें दो चार लेबर लगा करके

0: मैनुअली निराई करनी होती है, क्योंकि ये सभी फसलें जो है हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग करें या केमिकल का प्रयोग करें तो थोड़ा सा उचित नहीं होता है। इसलिए कम से कम हमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना है। तो ये जो हमने विधि बताई, इस तरह से हम खरपतवार का कुछ हद तक प्रबंधन कर सकते हैं। बचा खोचा हमें मैनुअली ही मानव द्वारा खरपतवारों को निराई करके से बाहर करना है।
1: जी सर, अगर हम उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो सावा मिलेट्स में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है?
0: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ये हमारी श्री अन्न की फसलें हैं, इनमें कम खाद कम पानी की जरूरत होती है। अब ये देखिए कि कम खाद कम पानी में आपको ज़्यादा पोषण देती हैं, इसीलिए इनके पोषण वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इनका नाम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने पोषक अनाज रखा। फिर इनके महत्वों को और देखते हुए इनको थोड़ा और सम्मान दिया गया, इनका नाम 2023 में श्री अन्न रखा गया। तो आज के डेट में हम श्री अन्न कहें या पोषक अनाज कहें या मोटा अनाज कहें, सब एक ही है। लेकिन मोटा अनाज अब कहने में थोड़ा सा कहीं न कहीं से इनके सम्मान को धूमिल करने के बराबर है, इसलिए श्री अन्न कह करके ही इनको हम थोड़ा सा सम्मान दें। तो जो श्री अन्न की फसलें जिसमें सावा भी शामिल है, इसमें जैसा हमने पहले कहा कि कम खाद की जरूरत पड़ती है, तो देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर मात्र 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ती है। अगर किसान भाइयों को हम बोलें तो अपने फसल में ये लोग एक बोरी यूरिया, एक बोरी डीएपी और आधा बोरी पोटास प्रति एकड़ व्यवहार करें। पोटास एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेतों में कतारों के बीच में दें या खेतों में मिला करके जुताई कर दें, जबकि नाइट्रोजन को हम दो भाग में स्प्लिट करेंगे, दो भाग में बांट के देंगे। पहला नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से, जैसे हमने बोला एक बोरा यूरिया पर्याप्त हो जाता है, तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के जो है 20 से 22 दिन पर, अगला 20 किलोग्राम हम बुआई के लगभग 50 दिन बाद जब इसमें बालियां निकलनी होती हैं, बालियां निकलने के करीब एक महीने बाद ये पक्के तैयार हो जाते हैं। अगर 50-52 दिन पर बालियां निकल रही हैं तो 82-84 दिन पर ये पक्के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से यूरिया को कम से कम दो बार में बांटना है। तो किसान भाइयों, आपके लिए अगर हम थोड़ा सा आपकी भाषा में बात करें तो एक बोरा यूरिया, एक बोरा डीएपी और आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको देना है। पोटास और डीएपी की पूरी मात्रा बुआई के समय देना है, खेतों में मिला देना है, जबकि यूरिया का पहला डोज आपको 25 किलोग्राम से प्रति एकड़ देना है बुआई के 20 से 22 दिन पर। इससे देने से कल्ले और टीलर अच्छे निकलते हैं और ग्रोथ अच्छा होता है। दूसरा डोज देना है जब बालियां निकलने लगे, मतलब बुआई के लगभग 50-52 दिन पर, तो अच्छा आपको इसका लाभ मिलता है, उत्पादन अच्छी होती है। और मैं किसान भाइयों से बताना चाह रहा हूं कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सावा की जो अच्छी प्रजाति है DHBM 23-3, इसका बीज उपलब्ध है। इसकी उत्पादन क्षमता है 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़, मात्र 85 दिन में पक्के तैयार होने वाली प्रजाति है DHBM 23-3। इसका बीज यथाशीघ्र हमारे यहाँ से प्राप्त कर लें और ये बीज हम प्रगतिशील किसानों को निःशुल्क देंगे। दूसरी प्रजाति हमारे पास VL 29 भी है, इसका सीड थोड़ा कम है, लेकिन जो भी हमारे पास 10-20 किसान अभी आ जाएंगे उनको भी हम फ्री में ये बीज अभी देंगे, अपने खेतों पे लगाएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद
1: जी सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि श्री अन्न की खेती किस प्रकार से किसान भाई बहन कर सकते हैं और ये बहुत ही उपयोगी है जैसा कि आपने बताया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सावा मिलेट्स की खेती करेंगे और आप अधिक मुनाफा भी कमाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास। टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है

0: और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
4: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
2: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
4: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए जो

किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में

धान, सबौर, सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो
2: आओ। क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
3: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
3: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
4: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
5: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
6: क्या क्या क्या?
3: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
6: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
3: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
7: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
3: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त?
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है। और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान

के छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। वैसे बहनों को संबोधित है लेकिन यहां बातें ऐसी होती है जो सबके लिए फायदेमंद है। अब देखिए आज हम बात करने वाले हैं किताबों के बारे में, भला किताबें किनके लिए फायदेमंद नहीं साबित होती है। और जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें पता है कि किताबें ना सबसे अच्छी दोस्त होती है। और जब फोन का जमाना है, सब कुछ फोन पे है, तब भी जो किताबों में सुकून है ना वो कहीं नहीं मिलता। और कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी बातें सिखा देती हैं और इस दुनिया को देखने का, यहाँ तक कि खुद को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। और कई बार हमें उन किताबों को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते, और उन्हीं कुछ किताबों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और खास तौर से

किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो लेडीज को, जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, अपने टीन एज में हैं या फिर प्रौढ़ महिला भी हैं, उन्हें ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज 10 ऐसी किताबों के बारे में बात होने वाली है जो आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी दोस्त को, अपनी मम्मी को या फिर आपकी बहन है, उन्हें, आप आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं, उन्हें ये किताबें या इनमें से कुछ किताबें उन्हें आप ज़रूर गिफ्ट करिए। सबसे पहली किताब है मित्रों मरजानी। नाम कितना प्यारा है ना, और मित्रों मरजानी लिखा है कृष्णा सोपती ने। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास मित्रों नाम की एक साहसी और बेबाक महिला की कहानी है जो कि समाज द्वारा महिला पर लगाए गए बंधनों को खुलकर चुनौती देती है। बहुत सारी बंधन है ना आज के समय में भी, आपको बहुत सारे बंधन मिलेंगे जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। तो मित्रों यही काम करती है कि समाज जो महिलाओं पर बंधन लगाता है उसे वो चुनौती देती है। इस किताब में आपको स्त्री की इच्छाओं, उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण मिलेगा। और अगर हम बात करें ना, तो ये किताब भले ही बहुत पहले लिखी गई हो, लेकिन ये किताब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है और ये किताब हर महिला को जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य में इसे नारी विमर्श की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। अगली किताब है आपका बंटी। आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है और मन्नू भंडारी की भी जो शख्सियत है ना, वो बहुत ही कमाल की है। आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे या फिर आप उनकी और भी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत ही कमाल की शख्सियत और बहुत ही कमाल की इनकी लेखनी। और उनकी एक लेखनी है आपका बंटी, ये बहुत ही कमाल की किताब है। ये कहानी ना एक बच्चे बंटी की नज़र से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। बंटी की नज़र से आप देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार टूटता है तो बच्चे पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यही इसका मुख्य विषय है। और उपन्यास में आप देखेंगे कि स्त्री के संघर्ष और उसके भावनात्मक जीवन का भी काफी बेहतरीन चित्रण है। और सबसे अच्छी बात है इस किताब की कि भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें सरल रहते हुए भी आपके ऊपर बहुत ही गजब का प्रभाव छोड़ जाती है, तो ये किताब उन्हीं किताबों में से एक है। और ये हिंदी की, आपका बंटी हिंदी की सबसे चर्चित पारिवारिक उपन्यासों में से एक है। अगली किताब है अमृता प्रीतम की पिंजर। पिंजर उपन्यास की अगर हम बात करें तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास, जिसमें नायिका ना, नायिका का नाम पूरो है, हालांकि नायिका पूरो के जीवन के माध्यम से स्त्री की पीड़ा को दर्शाया गया है। जब भारत विभाजन हुआ था उस दौरान स्त्रियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। इस किताब में आप धर्म, पहचान और मानवता के प्रश्न से रूबरू होंगे। जब ये सारे प्रश्न उठते हैं ना तो आपको अंदर से कचोट देते हैं। कहानी बेहद ही मार्मिक और संवेदनशील है। अगर हम विभाजन साहित्य की बात करें तो उनमें से श्रेष्ठ कृतियों में से पिंजर का नाम गिना जाता है, अमृता प्रीतम की लिखी पिंजर। अगली किताब है मन्नू भंडारी की लिखी हुई महाभोज। महाभोज अगर हम इस किताब की बात करें तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है। कहानी एक गरीब युवक की है और जब उस युवक की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद इस कहानी की शुरुआत होती है। किस तरीके से सत्ता और राजनीति आम जनता का शोषण करती है ये दिखाया गया है बहुत ही कमाल के तरीके से महाभोज में। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास सामाजिक अन्याय को उजागर करता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है, और आज भी ये उपन्यास उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। महाभोज एक बार जरूर पढ़िए, ये आपको समाज को देखने का, आपके आसपास के व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को समझने का एक नजरिया देता है। अगली किताब है चाक। मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक समाज में महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। उपन्यास में आप पढ़ेंगे जाति, पितृसत्ता और सामाजिक भेदभाव को और किस तरीके से नायिका अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। भाषा में ग्रामीण जीवन की एक सजीव झलक आपको दिखती है और ये किताब स्त्री सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण कृति है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक। कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें पढ़कर रोना आता है, कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको हंसाती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो ना रुलाती है ना हंसाती है बल्कि आपको कचोटती है। आप बहुत असहाय से महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या कर दे, काश उस नायिका के पास हम पहुंच जाएं और उसकी जिंदगी ठीक कर दे, उसे समझा दे।

या फिर बहुत ही आपको असहाय महसूस होगा, आप विचलित होंगे पर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। ये किताब है कांता भारती की लिखी रेत की मछली। कांता भारती की बात करें तो कांता भारती ने सिर्फ एक किताब लिखी, रेत की मछली। और इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक स्त्री संघर्ष करती है, आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़ती है। इस किताब में पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत ही संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। नायिका सामाजिक बंधनों और अन्याय के विरुद्ध अपनी पहचान बनाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके पहले जो उसे जीवन में झेलना पड़ता है ना, अपनों से जो उसे धोखा मिलता है, दगा मिलता है, वो आपको कचोट देती है अंदर से। भाषा बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, और भावनात्मक गहराई इतनी है कि किताब पढ़ते हुए मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत ही असहाय महसूस करेंगे। ये किताब स्त्री अधिकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव के प्रश्नों को उठाती है। और अगर आप 10 प्रभावशाली हिंदी पुस्तकों की लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं, तो रेत की मछली को शामिल करना एक बहुत ही अच्छा चयन हो सकता है। अगली किताब है मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई ये किताब है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवती की संघर्ष गाथा है। नायिका अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनती है, और वो कला, रंगमंच, आधुनिक समाज, आप इसमें देख पाएंगे, आपको इसमें झलक मिलेगी मुझे चांद चाहिए किताब में। पुस्तक स्त्री के स्वतंत्र पहचान की भी बात करती है, और मुझे चांद चाहिए उपन्यास की कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगेगी और साथ ही यथार्थवादी भी लगेगी। अगली किताब मैत्रेयी पुष्पा की ही लिखी हुई कस्तूरी कुंडल बसे। इस किताब की खास बात यह है कि ये खुद मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। इसमें उनके बचपन, संघर्ष और जीवन यात्रा का आपको बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ग्रामीण परिवेश में स्त्री जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है इस किताब में। साथ ही ये किताब आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है, जो बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए और खास तौर से एक महिला के लिए। ये हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक है, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा के लिखी। अगली किताब भी कृष्णा सोपती की ही लिखी हुई है, जिंदगी नामा। ये उपन्यास पंजाब के ग्रामीण जीवन को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें अनेक पात्र आपको मिलेंगे और उनकी जीवन शैली किस तरीके से है उसका बहुत ही सजीव वर्णन है। साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है जिंदगी नामा में। भाषा और शैली इसे विशेष बनाती है, साथ ही इसे हिंदी साहित्य की महान कृतियों में से भी गिना जाता है। अगली किताब है मन्नू भंडारी की ही एक कहानी ये भी ना मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसमें उनके साहित्यिक जीवन और उनके जो व्यक्तिगत संघर्ष रहे उसका वर्णन है। लेखिका ने अपने वैवाहिक जीवन के अनुभव भी इस किताब में साझा किए हैं। इस किताब को बहुत ही ईमानदारी और संवेदनशीलता से लिखा गया है, और जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है और आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है आपको इस किताब से। हालांकि 10 किताबें हो चुकी है, लेकिन एक और किताब मैं जो अंत में जोड़ना चाहूंगी वो है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई है। ये उपन्यास ना शम्मन नाम की एक लड़की की है और उसके जीवन और उसके आत्मविकास की कहानी है। इस किताब में आप पाएंगे स्त्री स्वतंत्रता की बातें, शिक्षा, प्रेम, समाज की रूढ़ियों पर एक बहुत ही गहरा विमर्श मिलता है आपको इस किताब में। और इस्मत चुगताई ने महिलाओं की भावनाओं को और उनके संघर्षों को बहुत ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है। हालांकि इस्मत चुगताई खुद भी एक बेबाक महिला रही थी और बहुत ही कमाल की इनकी भी शख्सियत रही है। आप अगर पढ़ेंगे ये किताब टेढ़ी लकीर, तो ये उस दौर के मध्यम वर्गीय समाज और उसकी मानसिकता का एक बहुत ही सजीव चित्रण आपको पेश करती है। अगर हम इस किताब की बात करें तो इस किताब को, यानी कि टेढ़ी लकीर को, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नारीवादी उपन्यासों में से गिना जाता है। तो ये किताबें आप जरूर पढ़ें, और लास्ट में जो मैंने ऐड की है टेढ़ी लकीर,
इस्मत चुगताई की लिखी हुई, इसे भी जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें। बहुत ही कमाल की ये किताबें हैं, इनमें से एक दो भी आप पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ अलग ही किया है। आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा और उसके साथ जो सबसे अच्छी बात होती है ना वो ये होता है कि आप आत्मचिंतन करेंगे। जब आप उस किताब के किरदार के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ हंसेंगे, उनके साथ खुश होंगे और उनके साथ रोएंगे और कभी उनके साथ विचलित होंगे।

असहाय महसूस करेंगे, तो फिर वो बात ही अलग होती है। और इन किताबों को पढ़िए, और कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी साथी होती है, तो ज़रूर इनमें से अगर आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं तो क्या ही कहने, लेकिन आप एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, जो भी आपको किताब अच्छी लगे उसे पढ़िए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम, आपको अच्छा लगा होगा, और आज के कार्यक्रम में जो हमने किताबों के बारे में बातें की, उन किताबों से आप बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का और अपने सपनों का रखे विशेष ध्यान। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे है, घाव करे गंभीर। तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगी डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद अनु।

0: खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़ी। तो हरी मिर्च की उपयोगिता, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
1: धन्यवाद अनु, आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है
0: जी।
1: मिर्च पर पाले का असर ज्यादा होता है, इसलिए जहां पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं। रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ट्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का

0: रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
1: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है, अपने फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
0: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बोफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 EC या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थिरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्ण कुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डायमिथेट 3 EC का 0.1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
1: जी, तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको आज की वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब

0: बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
2: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
1: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। किसान भाई बहनों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपने फसलों की भी अच्छी निगरानी कर रहे होंगे। जब हम अपने फसलों की निगरानी करते हैं तो उसमें खरपतवार दिखते हैं और ये किसान भाई बहनों के लिए बड़ी चिंता का सबब होते हैं। खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन खरपतवार नाशी कई बार गहरे प्रभाव भी छोड़ते हैं और ये प्रभाव नकारात्मक होते हैं, यानी कि अन्य फसलों पर भी प्रभाव देखा जाता है। तो बदलते वक्त के साथ खेती गृहस्थी भी थोड़ी बदली है और चीजें आसान भी हुई है। खेती गृहस्थी को आसान बनाने के लिए कुछ नई चीजें भी आ रही है, उन्हीं में से एक है नैनो हर्बिसाइड्स, यानी कि नैनो शाकनाशी या नैनो खरपतवार नाशी। और इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। तो आइए आज के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कुमार से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं नैनो हर्बिसाइड्स के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद
6: सर। आपसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि नैनो शाकनाशी क्या है?
7: यह जो है, आज के परिप्रेक्ष्य में आपका जो प्रश्न है बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो अभी का जो समय चल रहा है, जो परंपरागत खरपतवार नाशी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं। तो उसी के चलते अभी जो रिसर्च के द्वारा नए चीज आए हैं किसान भाइयों के लिए, जिसे कि हम नैनो शाकनाशी भी कहते हैं, नैनो खरपतवार नाशी भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में नैनो हर्बिसाइड भी बोलते हैं। यह एक खरपतवार नाशी है जिसे नैनो तकनीकी का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसमें कि खरपतवार नाशक तत्व जो होते हैं लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के भीतर समाहित रहता है, या नैनो कण के वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक कुशल एवं लक्षित होता है, और इसे ही नैनो खरपतवार नाशी कहा जाता है।
6: तो नैनो खरपतवार नाशी किसे कहा जाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन पहले से बाजार में बहुत सारे खरपतवार नाशी मौजूद हैं, नैनो खरपतवार नाशी की क्या जरूरत है सर? अभी इसका महत्व क्या है?
7: यह जो परंपरागत जो हम यूज करते थे, जो प्रयोग में लाते थे हमारे किसान भाई जो खरपतवार नाशी, उसके तुलना में अभी जो यह नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खरपतवार नाशी है, यह जो है ना, इसका बहुत सारे विशेषताएं हैं, जैसे कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करते हैं, मतलब कि यह एकदम जो है ना टू द पॉइंट, जहां पे हमको यूज करना है वहां पे यह काम करता है, और परंपरागत जो हम यूज करते थे उसके तुलना में यह अत्यधिक कुशल भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक रसायन की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है,

0: और इससे भी अधिक जो इसका महत्वपूर्ण चीज़ है अभी के परिपेक्ष में, जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि अपना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो यह जो नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खर पतवार नाशी है, यह जो है ना पर्यावरण सुरक्षा में भी बहुत भूमिका अदा करती है, क्योंकि इसका रेसिडुअल इफेक्ट कम होता है, मतलब अवशेष मात्रा इसका कम होता है। और भी देखें साथ ही साथ तो यह नियंत्रित रिलीज प्रदान करता है, जिससे कि मात्रा जो है ना कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो है ना जो आगे जो भी फसल भी आएंगे उसके लिए भी यह जो है ना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। और यह उपयोग की मात्रा भी अगर देखें तो परंपरागत के तुलना में इसका उपयोग बहुत ही कम होता है, ऐसे समझा जाए कि लगभग दसवां हिस्सा हम लोग यूज करते हैं परंपरागत के तुलना में। और यह धीरे धीरे भी काम करता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका जो है ना टारगेट डिलीवरी होता है, तो इसीलिए यह जो है ना धीरे धीरे काम करता है। और भी देखें तो बीज का जो छिलका होता है उसमें भी जो खरपतवार नाशी पौधे के जो बीज होते हैं, कुछ कुछ बीज बहुत कठोर होते हैं, उस कठोरता के में भी यह जो है ना बहुत आसानी से जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं उसके द्वारा भी अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो हम सुन रहे हैं कि जो बहुत सारे जो परंपरागत खरपतवार नाशी हैं उससे जो है ना प्रतिरोधी क्षमता आ रहा है, तो उसको भी जो है ना उसको भी अगर हम देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम नैनो खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो अच्छा है। और साथ ही साथ पौधे के विकास में भी बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। उसके बाद है कि जो नीचे का पानी जो लेवल था परंपरागत खरपतवार नाशी से दूषित हो रहा था, तो उसके दूषित जो प्रभाव है इसके उपयोग से कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इससे इसके चलते जो कृषि की पैदावार है उसमें भी बढ़ोतरी की बहुत संभावना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम जो है ना किसानों की आय दुगुनी करें, तो उसमें हम समझते हैं कि यह जो है ना टेक्नोलॉजी जो आने वाला समय है अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने के कगार पे हैं। और ओवरऑल देखेंगे कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो है ना स्वास्थ्य पर भी जो है ना चूँकि कम प्रभाव होगा, चूँकि इसका जो है ना रेसिडुअल इफेक्ट अवशेष का जो प्रभाव है कम है, तो इससे कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर भी बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
1: तो सर अभी जैसे कि आपने बताया तो लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद है और ये बहुत कम मात्रा में और अवशेष भी कम छोड़ता है, तो कम मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद भी इतने फायदे इसके होते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है इसके बारे में बताइए।
0: जी यह क्या है कि जैसे कि हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं थी उसमें भी हमने अभी बात भी किया, उसी में है कि यह जैसे सबसे जो पहला और जो प्रथम इसका जो यह है नैनो खर पतवार नाशी का, यह पूरा लक्षित जो करता है या जो है ना लक्षित क्रिया द्वारा काम करता है, कि मतलब हमको जहाँ पे डालना है वहीं पे भी जाता है, जिससे कि जो है ना जो खरपतवार नाशी जो पौधे के विशिष्ट भाग होते हैं जैसे बीज है या प्रकंद है, तो उसके जो है ना सभी अंगों में यह आसानी से चला जाता है, क्योंकि इसका जो है ना आकार हमने जैसा कि बताया था इसके परिभाषा में भी कि इसका जो साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसके चलते यह जो है ना पूरा जो है ना लक्षित करके जाता है और उसके लगभग सभी भागों को यह लक्षित करता है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो है ना इसका प्रवेश भी बहुत बेहतर तरीके से होता है, जो हम परंपरागत यूज करते थे चूँकि उसके साइज में अंतर था लेकिन इसका साइज छोटा होता है, तो इसका जो है ना प्रवेश भी बहुत बेहतर होता है। और साथ ही साथ प्रवेश बेहतर के साथ साथ जो इसका जो ऊपर का सतही क्षेत्रफल जितना छोटा कण होगा उसका उतना ही सतही क्षेत्रफल भरा होता है, तो इसके चलते क्या होता है कि यह बड़ा प्रभावी होता है, क्योंकि वह जो है ना उसका जो कार्य क्षमता है बहुत ज़्यादा हो जाता है।

0: जाता है, क्योंकि सतही का जो क्षेत्रफल है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा क्या है कि यह जो रासायनिक संचय और बहाव को कम करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, क्योंकि इसका जो है ना अवशिष्ट कम होता है, तो इसलिए जो है ना यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। तो इस तरह से यह जो है ना यह तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह जो है पूरा लक्षित होकर काम करता है, बेहतर ढंग से प्रवेश करता है और रासायनिक संचय के अवशिष्ट को जो है ना वह कम करते करते हुए अपना टिकाऊपन बनाए रखता है।
1: मतलब सबसे बड़ी बात है कि लक्षित होकर काम करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है
0: जी,
1: कि
0: जी,
1: जिस चीज को खत्म करना है ये उसी को खत्म करता है और अवशेष भी नहीं रहता।
0: जी,
1: सर काम कैसे करता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन नैनो हर्बिसाइड को बनाया कैसे जाता है?
0: तो इसका जो है बनाने का जो तरीका है तो मुख्यतः दो तरह से इसको बनाए जाते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में डायरेक्ट नैनो कण का उपयोग करते हैं, लोग बोलते हैं डायरेक्ट नैनोकन, और प्रत्यक्ष रूप से जो कि हम क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे चीज हैं जो डायरेक्ट खरपतवार नाशी की तरह काम करते हैं और उसको जो है ना नैनो रेंज में हम लाके उसका उपयोग करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि नैनोकनों को समाहित करके भी हम बनाते हैं। इसमें जो है ना जो परंपरागत जो अपना खरपतवार नाशी है उसको नैनो कण के साथ समाहित करके भी हम इसका बनाते हैं, जिससे कि इसका जो है ना कार्य क्षमता में जो है ना कई गुना बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो नैनो जो कण होते हैं या छोटे छोटे हैं होते हैं इसका कार्यशीलता बहुत ज़्यादा होता है, सतह का जो जो ऊर्जा है वह भी ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद सतह क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि परंपरागत में ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या है कि अब दो जो दो प्रकार है बनाने का, उसमें जैसे कि प्रत्यक्ष जिसमें नैनो कणों का हम उपयोग करते हैं उसमें जो परंपरागत जो सक्रिय अवयव होते हैं वह उसको जो है ना नैनो रेंज में स्केल में डिलीवरी सिस्टम में शामिल किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है ना इसका जो है ना प्रभावशीलता बढ़ जाती है और पर्यावरण का पे जो है ना जो बुरा प्रभाव है वह कम हो जाता है। और तीसरा जो ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा भी पहले भी किया कि जो यह टारगेट होता है और कंट्रोल रिलीज होते हैं, हम आपको जो इसमें जो है ना जो हम प्रयोग करते हैं वह बहुत लक्षित तरह से होता है और इसका नियंत्रण जो हम रिलीज का नियंत्रण है वह भी बहुत प्रभावी होता है। साथ ही साथ जो हमने चर्चा किया था कि इसका उपयोग जो है ना जो धीरे धीरे जो होता है ना तो इसको जो है ना कि जितना जहां जिस पौधे को चाहिए उस तरह से काम करके या जो है ना अपना कुशलता से उस पौधे को नाश करने में या खरपतवार नाशी को हटाने में बहुत भूमिका निभाती है। और जो दूसरा जो है नैनो कण समाहित जो करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि जो बहुत ही जो उपयुक्त होता है जैसे पॉलीमर जो यूज होता है पॉलीमर आधारित जो हम लोग बाहक यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पॉली के प्रेक्टो पीसीएल जो यूज करते हैं यह जो है ना बहुत ही उसके लिए जो है ना कंफर्टेबल होता है जो है ना बहुत उसके लिए सहयोगपन का काम करता है। दूसरा है कि मिट्टी के आधारित पे भी हम लोग बाहक का यूज करते हैं जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं क्ले वेस्ट बाहक, तो उसमें उसका खासियत यह है कि जो क्ले हम यूज करते हैं वह तो ऑलरेडी प्राकृतिक चीज़ है, हम उसमें वहाँ रसायन का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ से भी इसकी जो है ना महत्ता और भी बढ़ जाती है चूँकि यह प्राकृतिक रूप से हम इसका यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है सबसे बड़ा किसान भाइयों के लिए क्या होता है कि इसमें खर्च जो है ना कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है, क्योंकि जो है ना अच्छे गुणवत्ता अगर हम मिट्टी क्ले को यूज करते हैं तो उसमें भी जो है ना नैनो कण को समाहित करने में बड़ा अच्छी भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ जो है ना इसमें क्या होता है कि सोखने की भी क्षमता बढ़ जाती है।
1: अच्छा
0: जी, तो इसमें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है ना और भी है जैसे सिलिका आधारित बाहक है जिसको कि मेसोपोरस सिलिका नैनो कण भी बोलते हैं, उसी तरह कार्बन आधारित बाहक होते हैं जिसमें कि मुख्यतः जो है ना तेल वगैरह का भी जो है ना यूज करते हैं, तो इसमें जो है ना जो मुख्य

जो चीज होते हैं इसमें जो है कार्बन होते हैं और कार्बन से जो संबंधित है जैसे ग्राफीन वगैरह होता है उसका जो है ना उपयोग जो है ना बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना दो इसका मुख्य तरीका है बनाने का कि जिसमें कि हम नैनो कण को हम जो है ना प्रत्यक्ष रूप से हम यूज करते हैं, दूसरा नैनो कणों को डिफरेंट तरह के पॉलीमर में या क्ले

0: तो यह तीन तरह के होते हैं, जैसे कि पहला इसको बोलते हैं कार्बनिक खरपतवार नाशी, दूसरा अकार्बनिक खरपतवार नाशी, और तीसरा है जो है ना संयुक्त नैनो खरपतवार नाशी। तो यह जो है ना जो तीनों का जो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कार्बनिक खरपतवार नाशी के रूप में जो नैनो खरपतवार नाशी होता है, इसमें मुख्यतः मुख्य चीज जो होता है ना कार्बनिक चीज का उपयोग किया जाता है, जैसे तेल वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो जिससे कि इसकी जो है ना क्षमता में बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे इसका जो है ना उपयोगिता बढ़ता है। तो और दूसरा है कि कार्बनिक खरपतवार जो नाशी होता है, इसमें हम लोग मुख्यतः जो धातु युक्त जो है ना नैनो कण होता है जो बहुलता से मिल जाता है, वैसे नैनो खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, जिससे कि इसमें जो इसकी खासियत क्या है और कार्बनिक खरपतवार नाशी का, इसमें जो धातु कण यूज करते हैं ना, तो उसमें जो है ना छिद्र पोरस चीज होता है, और उसमें जो पोरस में आसानी से जो अपना परंपरागत जो खरपतवार नाशी जैसे एट्राजिन है, सेमाजिन है, ग्लूफोसाइनेट ग्लेफोसाइनेट है, तो यह सब जो है ना बहुत आसानी से उसमें समाहित हो जाते हैं, इससे इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। और जो तीसरा है इसको संयुक्त नैनो शाख नाशी भी बोलते हैं, तो इसमें दोनों तरह के चीज यूज करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो यह देखते हुए कि कहीं दोनों के उपयोग से इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाए, तो तीसरा जो है ना संयुक्त नैनो शाकनाशी का भी इसमें यूज होता है। इसमें संयुक्त रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मिला रहता है, और उदाहरण तौर पे जो हम लोग यहाँ एक आया है जैसे है ना बेंटाजोन इनकेप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो यह जो है ना जो हर्बिसाइड का उदाहरण है नैनो हर्बिसाइड का, जो कि बेंटाजोन इनकैप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो इसमें जो है ना किसान भाई लोग इस तरह के जो है ना नैनो हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। उसी तरह जो है ना पीसीएल जो है ना एटीजेन एनपीएस है, पीसीएल जो एक पॉलीमर है और एट्राजिन नैनो पार्टिकल बेस्ड है, उसी तरह पीसीएल एमेट्रॉन है नैनो पार्टिकल है, पीसीएल सिमाजिन्स नैनो पार्टिकल्स है, तो इसमें जो है ना दोनों तरह के, इसमें जो परंपरागत जो खरपतवार नाशी है उसको नैनो कण के साथ मिक्सित जब करते हैं तो इसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाता है।
1: मतलब बनाया दो प्रकार से जाता है, लेकिन अभी जो मौजूद है तीन प्रकार के हैं, एक कार्बन बेस्ड है, दूसरा जो कि अकार्बनिक है, और तीसरा संयुक्त है जिसमें दोनों प्रकार के मिलाए हुए हैं। अब तक हमने नैनो खरपतवार नाशी से जुड़ी लगभग हर बात जानी है, लेकिन सबसे अहम बात जो किसान भाई बहन के लिए ज़रूरी होती है कि इसे उपयोग कैसे करेंगे, नैनो खरपतवार नाशी का उपयोग करने का क्या तरीका है, ये सर बताएं आप।
0: यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमने बहुत चीज़ देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है, यह है क्या, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका उपयोग।
1: जी जी,
0: क्योंकि इसका उपयोग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो कण बहुत छोटा होता है, अपना जो सूक्ष्म जो मतलब इतने छोटे छोटे हैं, अपने आँख से इसको देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, और इसका उपयोग निश्चित तौर पर सुरक्षात्मक ढंग से ही करना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग किया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसान भाई भावनात्मक में आके या किसी तरह के दूसरे को देख के भी जो है ना तो कभी कभी ज़्यादा यूज कर लेते हैं, तो उस तरह से हमको बचना चाहिए, जहाँ पे जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा भी है, तो इसके साथ सावधानी भी बरतने की उतनी ही ज़रूरत हो जाती है। और जो तीसरा जो है कि इसका जो उपयोग पौधों के सक्रिय चरणों के आधार पे करें तो और अच्छा होता है, कि जो पौधा जो खरपतवार जो पौधे होते हैं तो उसका जो विकसित जो पूरा सक्रिय फेज जो होता है, अगर उस समय टारगेट करें तो जो है ना नैनो हर्बिसाइड या नैनो खरपतवार नाशी जो है ना अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि उस फेज में या

0: बहुत एक्टिव तरह से काम करेगा, बहुत सक्रिय रूप से काम करेगा, जिससे कि उसमें जो है ना खरपतवार नाशी पे जो है ना बुरा इफेक्ट तो पड़ना है, पड़ना चाहिए, ताकि वह पौधा मर जाए और जो अपना जो जो खाद्य पौधा है उसको जो है ना विकास व्यवहार अच्छा हो। और भी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यतः इसको जो है ना बहुत तरह से यूज करते हैं, लेकिन जो अभी तक देखा गया है कि इस जब हम स्प्रे करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, तो इसलिए किसान भाइयों को इसका उपयोग जो है ना स्प्रे तरह से करें तो अच्छा है। और जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका उपयोग तभी करें जब देखें कि हवा की बहाव नहीं है। अच्छा। उसमें बहाव होने से जो है जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि बहाव के साथ कुछ जो है ना खरपतवार नाशी जो नैनो खरपतवार नाशी है अपने खाद्य पौधे पे भी आ जाए तो उससे जो है ना उसमें हानि की संभावना है। तो हम यहाँ किसान भाई को जरूर यह चीज़ बताएंगे कि जिस समय हवा का बहाव कम हो और उस समय जो है नहीं करें तो यह ज़्यादा कारगर भी होगा और इसका हानिकारक जो प्रभाव है कम है। और किसान भाई जब भी यूज करें तो जरूर या उपयोग करें तो उस समय जरूर मुंह पे कुछ कपड़ा हो या जो मास्क है उसका यूज करें, क्योंकि यह हमने बताया था प्रारंभ में यह बहुत छोटे होते हैं तो जितना ही छोटा होगा तो हो सकता है कि उसका प्रभाव ही उतना ही होगा। और तीसरी और जो आगे की बात है कि किसान भाई अगर नहीं जानते हैं किसी तरह का कि हम कितना लें क्या करें, तो जो परंपरागत हम यूज करते थे प्रयोग करते थे उसका जो है ना दसवां हिस्सा से
1: काम के, हो जाता
0: हाँ के तुलना में आप लें, अगर पहले एक लीटर लेते थे तो उसका दसवां हिस्सा 0.1 हो जाएगा। इस तरह से जो है ना किसान भाई ध्यान में रखें इसका उपयोग, और जब जरूरत हो तभी करें
1: जी।
0: हाँ, जब जरूरत हो तभी करें और जरूर बुद्धिमत्ता को प्रयोग करके ही करें, भावनात्मक में दूसरे को देखा होसी करके किसान भाई इसका उपयोग नहीं करें, जहाँ जितना जरूरत हो उतना ही करें।
1: तो मतलब नैनो खरपतवार नाशी बहुत फायदेमंद है, लेकिन जितनी इसकी आवश्यकता होती है उतनी ही उतना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और हवा का बहाव ये भी ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही इसकी मात्रा कितनी है ये तो ज़रूरी है ही, और मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि ये हमारे किसान भाई बहनों के काम आएगी, और जो परंपरागत खरपतवार नाशी है उसका एक विकल्प है, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान भी होते थे तो उसका एक ये बेहतरीन विकल्प है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियां दी,
0: धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू,

0: कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिम की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूले। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहे और खरपतवार नियंत्रित रखे। ध्यान दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है। और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दे कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज

जाने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
0: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन

0: के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
0: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
0: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
0: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
0: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
0: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
0: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओं, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
0: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए।
1: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
0: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा

बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
1: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: 你把我把你小妹把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你把你
1: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था।

0: कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
1: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
4: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
5: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
5: हमें कुछ नहीं चाहिए।
0: मैसिडोनिया चलो,
5: वापस चलो सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
5: सबर करो साथियों।
2: अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
5: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,

शाबाश मेरे वीरो, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: हाँ? महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य।
5: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का

जन्म कहां हुआ था? तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्य कालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों अभी गर्मा सब्जियों का मौसम चल रहा है और अगर गर्मा सब्जियों में या फिर किसी भी तरह के सब्जी में कीट लग जाते हैं तो फिर किसानों की आय बहुत घट जाती है। ऐसे में जरूरी होता है कि उन कीटों की पहचान करें और उनका प्रबंधन करें। आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह से जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सर आप गर्मा सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहनों को विस्तार से बताइए कि कौन कौन से कीट होते हैं जो गर्मा सब्जियों में लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए।
2: नमस्ते किसान भाइयों। सबसे ज़्यादा जो कद्दू वर्गीय जो सब्जी है जो इस मौसम में लगते हैं, अब इस कद्दू वर्गीय में कौन कौन है तो इसमें जो नेनुआ है, उसके बाद करेला है, उसके बाद आपको जो है विभिन्न प्रकार के खीरा है और कद्दू है, ये सारी चीज़ें जो है, परवल है, ये सब जो है कद्दू वर्गीय में आती हैं। उसके बाद किसान भाइयों की भिंडी भी इस सीजन में लगता है। तो ये मुख्यतः जो है इस मौसम में लगने वाले जो है ये विभिन्न प्रकार के फसल है। अब हम इसमें बात करते हैं कि किन किन फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कद्दू वर्गीय में। कद्दू वर्गीय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें जो हम लोग बात करें तो जैसे करेला की बात करते हैं, तो करेला में क्या होता है कि शुरुआती कंडीशन में इसमें जो शक करने वाले होते हैं, जो पौधे के पत्तियों से रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे। और इसके चलते क्या होता है कि आप देखेंगे कि करेला का जो पत्तियां हैं, पौधे में जो पत्तियां पाई जाती हैं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें जो है ये थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स आएंगे और बाद में क्या होता है कि ये सूखने लगते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं सो सूखने लगती हैं। और ये जो है एक सकिंग टाइप का जो पेस्ट है उसके चलते होता है, जैसे जो थ्रिप्ट है या वाइट फ्लाई है इसके चलते होता है। तो इसे हम लोग, दूसरी बात क्या है कि और जो दूसरा है इसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, तो फ्रूट फ्लाई इसके चलते क्या होगा, जो करेला का जो फल होता है तो इसके जो शिशु होते हैं वो वहाँ पे जा करके पहले से छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, छिद्र क्रिएट करते हैं और बाद में जो है ये करेले के अंदर उसको खा करके और करेला को नष्ट कर देते हैं। तो इनसे हमको बचाव के लिए अगर हम जैसे कि इनके फ्रूट फ्लाई के लिए अगर बात करें तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के आजकल जो है कि प्रपंच या ट्रैप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आ गया है। और इसके ट्रैप में जो एक क्यू लियोर ट्रैप है, उस क्यू लियोर ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा लकड़ी का चीज जो है कि उसमें लगा होता है और उसके अंदर ऐसा सेंट निकलता है कि उसमें लगता है कि इसमें मादा का सेंट निकल रहा है, जिसके चलते जो कीट का जो फ्रूट फ्लाई का जो कीट का नर होता है उसमें ट्रैप में जाके फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या होता है कि जो नर की संख्या है वो बहुत कम हो जाती है और जिसके चलते पुनः जो है इस कीटों का जो जनसंख्या है उतना नहीं बढ़ पाता है और हमारा जो करेला का जो फल है वो बच जाता है। दूसरा जो है जो रस चूसने वाले जो कीट है उसको, उसके बचाव करने के लिए हम जो येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक कार्ड का, जैसे कि हम लोग जो एक जो पढ़ने वाला जो पेपर होता है वो या लिखते जो हम लोग हैं उसी साइज का एक कार्ड होता है और वो कार्ड जो होता है पीला रंग के होता है और इस पीले रंग के कार्ड पे इस पे गोंद लगा होता है और इस जो गोंद लगे हुए जो कार्ड है, जो पीले कार्ड है, इसको हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से करेले के फील्ड में लगभग 1.5 फीट ऊंचाई पे

तो हम लोग लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उनको लगता है कि ये उसका करेला का फूल है, और उस करेले के फूल को समझ करके वो उस पर जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है वो उसी में चिपक जाते हैं, जिसके चलते क्या है कि पुनः जो है कि ये जो कीट है उसकी संख्या कम हो जाती है, और जो हमारे जो करेला की फसल में जो विभिन्न प्रकार के जो ये रोग का भी ये फैलाव करते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो ये आपके करेला पे हो गया। और पुनः जब हम लोग बात करें तो जैसे कि खीरा है, तो खीरे में भी लगभग ये फ्रूट फ्लाई का ही प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा होता है, और खीरे में भी हम इस प्रकार के ट्रैप को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिसको जो नेनुआ बोलते हैं किसान भाइयों, तो नेनुआ में भी सेम टाइप की बात आती है। इसके बाद क्या है कि ठीक है आपको अगर ट्रैप नहीं मिलता है तब क्या करें, तो उस कंडीशन में चूंकि ये सब्जियां हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी मतलब पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद इसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, तुरंत उसको हम लोग सब्जी खा लेते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत जो विषाक्त जो कीटनाशी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से क्या है कि वो हमारे जो शरीर है उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का हम लोगों का ये कारण बनता है। तो उसे इसे में है कि नीम का तेल जो होता है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको 1500 PPM जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में हम लोग इसको शाम के समय में जो है कि इसको छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद भी जो है कि अगर लगता है कि नहीं सो अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है अगर नीम के वायल से, लेकिन मुख्यतः ये है देखा गया है कि नीम के वायल को अगर हर एक हफ्ते पे अगर हम रिपीट करते हैं मतलब दोहराते हैं तो ये इंसेक्ट की संख्या कम रहती है और आपको रासायनिक कीटनाशी की ओर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसान भाइयों अगर ये भी उपलब्ध है आपको नहीं है, तो अगर ये फ्रूट फ्लाई से समस्या है तब उस कंडीशन में जो है इसमें जो इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है उसकी जो है 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में इस और उसमें कुछ स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करें, तो इससे जो है कि आपको इसे निदान हो जाएगा। अब जो बात करते हैं इस कुकुरबिट्स या लतीदार के अलावे, तो लतीदार में किसान भाइयों एक और कीट है जिसको हम लोग को उस पर चर्चा करना चाहिए, जैसे कि उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं रेड पम्पकिन बिटिल, जो लौकी में जनरली आप देखते होंगे जहाँ पे भी कद्दू जो लगता है तो उसके झांका पे या नीचे में भी आपको देखते हैं तो लाल लाल टाइप के आपको कीट दिखाई देते हैं जिसको लाल भृंग हम लोग कहते हैं। तो ये लाल भृंग को रोकथाम करने के लिए शुरुआती कंडीशन में क्या होता है कि अगर राख है किसान भाइयों के पास उपलब्ध है राख, तो इसको राख का भुड़काव सवेरे के समय में करने से ये जो कीट है ये भाग जाते हैं, और भागने के कारण आपको कोई रासायनिक कीटनाशी इस्तेमाल किए बिना इसे आप बच सकते हैं। ये कीट जो है मुख्यतः जो है आपके जो ज़मीन में जो सटे पहले तो ये पत्तियों को खाते हैं पत्तियों, उसके बाद क्या है कि अगर आपका फल निकलता है कद्दू का निकलता है जो ज़मीन से सटे हुए रहता है तो उसमें भी ये हल्का सा छिद्र बनाता है, और बाद में जो है इसके अंदर खा करके और सब्जी को जो है मतलब वो ख़राब कर देता है, वो उसके मार्केट वैल्यू को जो है कम कर देता है। तो ये है एक तो राख छिड़काव करना है, दूसरा जो है इसमें एक फेनभल का जो पाउडर आता है उसका 2% मात्रा जो है उसे 10 से 15 केजी जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उसको सवेरे के समय में भुड़काव करने से ये जो लाल भृंग है इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये तो हुई आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए। अब जो एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट है वो है भिंडी, तो भिंडी के लिए भी भिंडी में जो है कौन कौन जनरली कीट लगते हैं, तो भिंडी में सबसे ज़्यादा जो है आप देखते होंगे कि जो
उसका जो फल है

तो फल को आप देखते होंगे कि उसमें छोटा सा पहले छिद्र करता है, फिर बाद में क्या होता है कि आपके भिंडी को टेढ़े मेढ़े कर देता है वो। तो ये फल एवं प्ररोह बेधक कीट इसको बोलते हैं। तो ये इसके चलते क्या होता है, ये आपका दो तरह से क्षति करता है। एक शुरुआती कंडीशन में ये क्या करता है कि जो भिंडी का जो छोटे पौधे होते हैं, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है, तो

और आपका जो है कि कभी कभी आप देखेंगे क्या कि जो भिंडी का जो बढ़ने वाला जो एरिया है, जो भाग है, ऊपरी वाला भाग, वो झुका हुआ नीचे की ओर गिरा हुआ है, क्योंकि उसको काट देते हैं इसके शिशु। तो अब इससे हम लोग कैसे, इसका बचाव कैसे करें? तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि आप अगर ऐसे भिंडी आपके अगर में दिखती है तो उसको आपको तोड़ करके खेत में कभी नहीं फेंके, उसको एक जगह जमा करें और उसको मिट्टी में दबा दें। तो पहला काम तो ये है। उसके बाद क्या है कि नीम आधारित जो है कि कीटनाशी हम लोग जो है कि इसमें छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि नीम की 1500 ppm की मात्रा जो है 4 liter पानी में, प्रति लीटर पानी में इसको छिड़काव करना है। दूसरा जो कीटनाशी है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये इमामेक्टिन बेंजोएट पुनः जो है 0.4 gram प्रति लीटर पानी में, या यूँ कहें तो 10 लीटर पानी में 4 gram इमामेक्टिन बेंजोएट की दवा इसमें देना है। अब इमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है, ये एक झिल्ली के तरह होता है। तो पहले इसको हम लोग को घुला लेना है और घुलाने के बाद तब इसको जो है हमारा स्प्रेयर है उस स्प्रेयर में डालना है और उसमें कुछ स्टिकर की मात्रा, जैसे कि अगर स्टिकर आपके पास नहीं हो तो 1 rupee वाला जो शैम्पू का सैसे आता है वो इसमें डालिए और पुनः उसको अच्छी ढंग से मिला लेने के बाद इसको जो है कि शाम के समय 4 बजे के बाद इसको जो है छिड़काव करिए। तो ये हो गया। दूसरा जो कीटनाशी है वो स्पाइनोसेड है, स्पाइनोसेड 45 EC। यह एक लिक्विड के फॉर्म में ये कीटनाशी पाया जाता है और इसका जो है आधा ml मात्रा जो है प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से आप इसे जो है कि रोकथाम कर सक, इससे हो जाता है। अब दूसरा जो है कि एक है जो लाल बग होता है एक भिंडी में, और ये क्या करता है कि ये इसके जो शिशु और जो वयस्क होते हैं वो रस चूसते हैं आपके जो भिंडी के जो पत्तियां होती है उसके, और जिसके चलते क्या होता है कि ये पत्तियां सूख जाती है। तो चूंकि ये एक बग है, रस चूसने वाली कीट है, इसलिए इसके कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट के लिए थायोमेथोक्जम का जो है 35 EC का 300 gram प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करना है, ठीक है। थायोमेथोक्जम 75 EC। और दूसरी जो दवा है इसको हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसकी जो है 1 ml मात्रा जो है प्रति 3 liter पानी में इसका छिड़काव करना है। अगर संख्या ज़्यादा हो तो आधा ml प्रति लीटर पानी में, साथ में हम किसान भाइयों बराबर बोलते हैं कि स्टिकर इसमें मिलाना ही मिलाना है। स्टिकर के मिलाने से, अगर स्टिकर या शैम्पू के मिलाने से ये कीटनाशी की क्षमता को बढ़ा देता है और ये कीटों के रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, इसलिए स्टिकर आप ज़रूर लगाएं। तो ये भिंडी में लगने वाले जो मुख्यतः जो कीट है। दूसरा, अब चूंकि बीच बीच में किसान भाइयों पानी भी हो जा रहा है जो इस साल जो हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपका जो भिंडी का जो पूरा पत्ती है तो उसमें जो भेन होता है वो पीला दिखता है, और बाद में क्या होता है कि पूरी जो भिंडी का जो पत्ती है वो चितकावर टाइप से हो जाती है, पीली टाइप से हो जाती है, और एडवर्स कंडीशन में जब और ज़्यादा जब इसकी व्यापकता होती है तो कभी कभी आपका भिंडी भी पीला पीला जब निकलने लगता है। तो ये भी जो सफ़ेद मक्खी है उसके चलते होती है, और यही जो मक्खी है सफ़ेद मक्खी ये इसके विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे पे स्थानांतरित करती है। इसीलिए जब किसान भाइयों आपको अगर आपके खेत में ऐसा दिखता है पत्तियों पे ऐसा अगर ऐसा सिम्टम दिखता है ऐसा, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे दिखे अगर किसी ब्रांच में है तो उस ब्रांच को मतलब किसी चीज़ से काटिए, और काटने के बाद उसको मिट्टी में दबा देना। अगर पूरे पौधे में ही अगर है तो पूरे पौधे को ही नीचे से जड़ से उखाड़ करके और उसको खेत में नहीं छोड़ना है, उसको जितने भी अगर 5-10 पौधे में है आपके खेत में तो उसको उखाड़ करके और उसको जो है मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। चूँकि अगर आप किसान भाई उखाड़ करके अगर फील्ड में ही छोड़ देंगे, खेत में ही छोड़ देंगे,

0: तो उसमें जो उस कीट का जो जीवन चक्र के जो रहता है, तो पुनः आपका जो स्वस्थ पौधा है उसके ऊपर वो जाता है, और जाने के बाद उसको पुनः उसमें जो विषाणु है उस विषाणु को वो अंतरित कर देता है, उसमें डाल देता है, और जिसके चलते हैं कि आपका जो अच्छा पौधा है भिंडी का उसमें भी ये रोग फैल जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको किसान भाई ख्याल रखना है, और मतलब इन चीज़ों के करने से हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो जो गर्मी के गर्मा का जो सब्जी लगा हुआ है इसको आप अच्छे से कीटों से नियंत्रित कर सकेंगे, और अपनी उत्पादकता को बढ़ा करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि किसान भाई बहन आप सर के द्वारा जो भी बताए गए उपाय हैं उन्हें अपनाएंगे और कीटों का बेहतर प्रबंधन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
8: See you at the vaccination center soon.
9: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
10: FM Green, हरियाली से खुशहाली तक।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90

FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है। और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने

पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है।

0: स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए एचपीवी का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
1: अरे भाभी, ये एचपीवी वे या जो भी नाम ही इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
0: और तुमने वीडियो देखा?
1: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
2: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
1: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
0: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100 सवा 100 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
1: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
0: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है, पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
2: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है, और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
1: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
0: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
1: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
0: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
2: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम

0: परिणाम संभव है। एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
1: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुफ्त? सच में? हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, एएनएम से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है: वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
1: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
2: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
1: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
2: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
1: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
2: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
1: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
2: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र

0: की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए। यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
1: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
0: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
1: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
0: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
1: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
0: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
1: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
0: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो, यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं।

0: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
2: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
0: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
2: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यू विन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे अनु एफएम ग्रीन पर. जी हाँ श्रोता, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ कुछ अच्छी बातें होती हैं, हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए ज़रूरी बातें होती हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी बातें होती हैं. तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मिट्टी, जी हाँ मिट्टी अगर ना हो तो हम खेती की कल्पना नहीं कर सकते. हाँ, कुछ ऐसे तरह की खेती हैं जैसे कि मशरूम है, उसे हम घर में छांव वाले घर में उगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फसल जो सदियों से हमारे किसान भाई उगा रहे हैं वो धरती पर, वो मिट्टी पर उगा रहे हैं और परंपरा से ये खेती बाड़ी की रीत चलती आ रही है. लेकिन ज़रूरी ये है कि हम मिट्टी भी अच्छे तरीके से जांचें कि उस मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद है या नहीं, ये हमारे फसलों को पोषक तत्व प्रदान करेगी या नहीं, तभी हमारा जो मेहनत है, जो हम मेहनत उस खेती बाड़ी में उस फसल को उगाने में लगा रहे हैं वो सार्थक होता है. तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हमारे किसान भाई और बहन खेती करें, फसल उत्पादन करें, कुछ बोएं, गेहूं बोएं या आप धान बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, तो आप उससे पहले मिट्टी का जांच ज़रूर कर लें. बहुत ज़रूरी है ये. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप मिट्टी का जांच ज़रूर करेंगे, इसकी जो महत्व है वो आप ज़रूर जान लेंगे, लेकिन एक तरीका होता है मिट्टी के सैंपल को उठाना धरती पर से, फिर उसको लैब तक ले जाना. तो ये एक नियम है, ये तरीका है, ये एक प्रोसेस है, आपको उससे गुजरना होगा. अगर आप इस तरीके से, आप इस प्रोसेस से मिट्टी को लैब तक ले जाते हो जांच करवाने के लिए, तभी आपको एक सही रिजल्ट मिलता है. तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे बीच हैं आज डॉक्टर राज किशोर कुमार, और मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से. डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: थैंक यू मैडम.
0: सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी मैंने बस संक्षिप्त में बताया कि बहुत ज़रूरी होता है कि पोषक तत्व तो मिले मिट्टी से हमारे फसलों को, तो आप थोड़ा विस्तार में बताएं कि मिट्टी के नमूने जो हम लेते हैं धरती पर से जांच के लिए, उसका क्या उद्देश्य होता है?
1: मैडम, मिट्टी के नमूने प्राप्त करने की विधि और प्रक्रिया उद्देश्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती है. मिट्टी के नमूने का विश्लेषण फसलों के लिए मिट्टी की उर्वरता मूल्यांकन और उर्वरक का सिफारिशों के लिए किया जाता है. बहुत सावधानी से किए गए मिट्टी विश्लेषण के परिणाम भी उतनी अच्छे नहीं आते हैं. अतः मृदा परीक्षण की दक्षता, देखभाल और कौशल जिसके साथ मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाते हैं उस पर निर्भर करती है. मिट्टी विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रयोगशाला में नहीं बल्कि खेत से प्रारंभ होता है, जहां से नमूने लिए जाते हैं. अलग अलग जगहों पर मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है. इसे देखते हुए ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि ऐसे नमूने का चयन करें जो सारे क्षेत्र का एक साथ समान प्रतिनिधित्व करे.
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग क्षेत्र के मिट्टी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसल जो है वो उगाए जाते हैं. चाहे हमारे बिहार क्षेत्र में अगर यहाँ की मिट्टी अलग है, तो यहाँ पे कुछ फसल ऐसे हैं जो उगाए जाते हैं जो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे राज्य में नहीं उगाए जा सकते, क्योंकि मिट्टी समान नहीं है. तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे किसान भाई भी ये जानना चाहते हैं कि मृदा परीक्षण के लिए क्या विशेष तकनीक है, किन विशेष तकनीक से उन्हें गुजरना होगा?
1: मैडम, मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले मृदा, हम ये जानना, हमको आपको ये बता दे कि मृदा संसाधन प्रबंधन एक अनिवार्य घटक है. एकत्र किए गए प्रत्येक नमूने को क्षेत्र का एक सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए. प्रयोगशाला विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की उपयोगिता नमूने की शुद्धता पर निर्भर करती है, इसलिए बड़ी संख्या में नमूने का संग्रह उचित है ताकि उप नमूने द्वारा वांछित आकार का नमूना प्राप्त किया जा सके. सामान्य तौर पर नमूनाकरण प्रत्येक 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक नमूने की दर से किया जाता है. हालांकि 5 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र के लिए कम से कम एक नमूना एकत्र किया जाना ही चाहिए. मृदा सर्वेक्षण कार्य के लिए हम विशेष तरह एक मिट्टी प्रोफाइल प्रतिनिधि से आसपास के क्षेत्र के मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकते हैं.
0: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने ये बताया कि तकनीक क्या है, तो हम ये

0: अब जानना चाहते हैं कि चलिए हम मृदा परीक्षण के लिए अपने फील्ड में चले गए, हमें जहाँ से मिट्टी उठानी है, लेकिन इसके लिए ऐसा थोड़ी है कि हम अपने हाथ से खोद लें या खुरपी से खोद लें और ऐसे उठा के लेके चले जाएं। उसके लिए कुछ सामग्री की भी ज़रूरत होगी जिसके अनुसार हम उसे लैब तक ले जाएं। तो कौन कौन से सामग्री हम यूज़ कर सकते हैं मृदा परीक्षण के लिए?
1: मैडम, मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले हम कुदाल या मिट्टी भरमा ये जैसे सामग्री यूज करते हैं, जैसे ये मिट्टी भरमा, एक ट्यूब भरमा, पोस्ट होल या स्क्रू प्रकार भरमा या कुदाल भी हो सकता है, दूसरा खुरपी, तीसरा कोर नमूना, चौथा नमूना बैग। नमूना बैग या विशिष्ट प्रकार के कपड़े का बैग होता है। पांचवा प्लास्टिक की ट्रे या बाल्टी मिट्टी। ये उप नमूना के लिए हम लोग मिश्रण के लिए एक साफ बाल्टी या ट्रे या साफ कपड़ा लेते हैं। उसके बाद मिट्टी का नमूना के लिए सूचना पत्र, इसमें कपड़ों के थैलियों के बांधने के लिए चिन्हों और टैग के लिए पेंसिल से नकल करने की जरूरत पड़ती है।
0: अच्छा, तो ये कुछ तरीके होते हैं। यहाँ पर तरीकों के साथ डॉक्टर साहब ने आपको ये भी बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ आपके पास रहनी चाहिए जब आप मृदा परीक्षण के लिए आप जाते हो। तो इसके बाद डॉक्टर साहब अपने इकाई की बात कही, तो हम जानना चाहते हैं कि मृदा परीक्षण में जो नमूना इकाई है इसका हम कैसे चयन कर सकते हैं?
1: इसके लिए किसी क्षेत्र का एक दृश्य सर्वेक्षण वास्तविक नमूने लेने से पहले होना चाहिए, जिसके अनुसार फील्ड को समान भागों में विभाजित करें और जिनमें से प्रत्येक को अलग से नमूना लिया जाता है। और यदि क्षेत्र की सभी स्थितियां समान हैं तो एक क्षेत्र से एकल नमूना इकाई के रूप में माना जाता है। ऐसी इकाई 1 से 2 हेक्टेयर से अधिक होनी नहीं चाहिए और यह एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो किसानों की एक देख रेख में हो, जहां 20 से 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक नमूना एकत्र किया जा सके और उसका संग्रह किया जा सके।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर लवण जो प्रभावित मिट्टी होती है, अगर हमें उसका नमूना लेना हो तो हम कैसे लें?
1: इसके लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि लवण प्रभावित मिट्टी का कारण क्या है, उसका स्रोत की पारगम्यता क्या है, मौसमी वर्षा का क्या स्रोत है, जल जमाव का क्या स्थिति है, जल तालिका की क्या स्थिति है, मृदा प्रबंधन का इतिहास क्या है, फसल की सिंचाई आवृत्ति, प्रजातियों और पौधों के कवर और कड़े पैन या सांद्रता की गहराई कितनी है। इसके लिए ये सब पहले चिन्हित करनी चाहिए। उसके बाद लवण प्रभावित मिट्टी को 2 तरीकों से नमूना लिया जाता है, इसका उपयोग जिप्सम की आवश्यकता की निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए नमूनों के 1 से 4 हेक्टेयर में के स्थानों को 2 स्थानों में हटाया जा सकता है। यदि मिट्टी समान रूप से लवण से प्रभावित हो और यदि पैच विशिष्ट हो, मतलब उसका जो पैच बहुत क्षारीय मिट्टी का सब ज़्यादा हो, तो इसके लिए बड़े पैच के लिए अलग से नमूने लिए जाते हैं। और कभी भी अगर लवण की मात्रता ज़्यादा हो तो मिट्टी के विभिन्न गहराइयों जैसे 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर और 60 से 100 सेंटीमीटर तक के मिट्टी की गहराई का नमूने लिया जा सके, जिससे उसकी उचित सांद्रता कितनी है उसका आंकलन हम कर सकते हैं।
0: जी जी, तो डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि हमारे पास एक जानकारी पत्र भी रहना चाहिए जब हम मृदा परीक्षण के लिए जाते हैं फील्ड पर, तो ऐसे में अगर जो कोई हमारे किसान भाई और बहन नमूने की पहचान करना चाहते हैं तो जानकारी पत्र में उन्हें क्या क्या लिखना है?
1: इसके लिए सबसे पहले उसमें जानकारी पत्र के लिए किसान का नाम होना चाहिए, खेत का स्थान होना चाहिए, सर्वेक्षण संख्या होना चाहिए, फिर पिछली फसल उगाई गई उसका डिटेल होना चाहिए, अगले मौसम में क्या वो लगाएंगे उसका आकलन होना चाहिए, संग्रह की तारीख होना चाहिए, नमूनाकर्ता जो मिट्टी का जो कलेक्शन किया है उनका नाम होना चाहिए। ये सब इत्यादि जानकारी एक बैग के ऊपर लेवल के रूप में करना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि अप्रमाणिक साइट है जहाँ से असामान्य सेचित दलदला जमीन, पुराना रास्ता, चैनल, पुराने बंड, पेड़ के पास के क्षेत्र, पिछले अगर कंपोस्ट के ढेर हो, अन्य इस तरह के क्षेत्र का कब से कभी नमूना नहीं लेना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, ये तो आपने जान लिया हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों और बहनों की आपको कहाँ से नमूना नहीं लेना है। और आपको उसमें क्या क्या जो आपकी जानकारी पत्र है उसमें आपको याद रखने के लिए क्या क्या नोट डाउन करना है वो भी

0: ये आपने जान लिया। तो डॉक्टर साहब, अब बाढ़ी आती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों को बताएं कि नमूना इकाई का चयन करने के बाद जो हम सैंपल बनाते हैं उसकी प्रक्रिया कैसे होती है?
1: इसके लिए अलग अलग सैंपलिंग यूनिट दिखाने के लिए सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र का नक्शा तैयार करना पड़ता है। इसमें विभिन्न क्षेत्र को पत्र ए बी सी आदि द्वारा मानचित्र पर निर्देशित किया जाता है। हल परत का एक टुकड़ा जो 1520 चरणों के अंतराल पर काटा जाता है या कवर किए जाने वाले क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। आमतौर पर एक के लिए 10-20 स्पॉट लेना चाहिए और क्षेत्र के आधार पर समग्र नमूना लेना चाहिए
0: जी।
1: मिट्टी का 1-2 सेंटीमीटर भी ही लेना चाहिए। नमूना कुदाल के ब्लेड पर एकत्र किया जा सके और एक साफ बाल्टी में दिया जाता है। इसी तरह चिन्हित सभी स्थानों पर नमूने को एकत्र किया जाता है। बाल्टी से मिट्टी को साफ कागज या कपड़े के टुकड़े पर डालें और अच्छी तरह से मिलाएं और मिट्टी के समान रूप से फैलाएं और इसे 4 तिबाहियों में विभाजित करें, 2 और 2 विपरीत को अस्वीकार करें। क्वार्टर और बाकी मिट्टी को फिर से मिलाएं, लगभग आधे के साथ छोड़ दें। जब तक प्रक्रिया को जुलाएं जब तक मिट्टी की आधा किलो बच जाए और इसे इकट्ठा करें और एक साफ कपड़े के साथ थैली में डालें। नमूने के लिए इस्तेमाल किया गया बैग हमेशा साफ होना चाहिए
0: जी। तो ये तो हुआ कि नमूना इकाई का चयन करने के बाद आप सैंपल कैसे बनाते हैं, पूरी प्रक्रिया डॉक्टर साहब ने आपको बताई। अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से लिख कर इसकी जानकारी दे देंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे हमारा जो मेन पॉइंट है, जो सबसे अहम प्रक्रिया है इसमें, वो है कि मिट्टी तो हम मतलब जिस भी प्रोसेस से जिस भी तरीके से आपने कहा कि हमारे पास ये सामग्री होनी चाहिए मिट्टी परीक्षण के लिए, इसके बाद हमें कौन से जगह की या किस तरह के मिट्टी के नमूने नहीं लेने हैं वो भी आपने बताया, और साथ ही यहाँ पर सैंपल बनाने की प्रक्रिया भी आपने बताई। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इसे लैब भेजेंगे यानी कि प्रयोगशाला भेजेंगे, तो मृदा नमूनों को हम कैसे भेजेंगे अब प्रयोगशाला में?
1: इसके लिए ये किसान द्वारा परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूने भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उचित पहचान चिन्ह नमूना बैग के साथ लेबल पर भी मौजूद रहे। अधिकांश जानकारी मुद्रित के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से मिट्टी के नमूने बैग या अमिट स्याही के साथ उन पर प्रेषण सूची के साथ बैग पर संख्या विवरण की तुलना करें। पहचान चिन्ह लगाकर विभिन्न स्थानों की संख्याओं को अलग किया जाना चाहिए। किसान मिट्टी के नमूने सीधे प्रयोगशाला में ले आ सकते हैं तथा नमूनों को फील्ड एक्सटेंशन स्टाफ के माध्यम से प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं। यदि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कर्मचारी नमूने खुद एकत्र करते हैं तो पर्याप्त फील्ड नोट हो सकता है। सभी अज्ञात नमूनों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर नमूने के बारे में विशिष्ट जानकारी हो तो उसको 66 नंबर रजिस्टर पर उसको दर्ज करना चाहिए और उसको प्रत्येक नमूने के एक प्रयोगशाला नंबर भी दिया जाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया श्रोताओं की जो नमूने हैं सीधे आप प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं या फिर नमूनों को फील्ड एक्सटेंशन जो स्टाफ हैं वो उनके द्वारा प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से आप प्रयोगशाला तक मिट्टी को पहुँचा सकते हैं, उसके सैंपल को पहुँचा सकते हैं। तो अब यहाँ पर नमूने अगर हम संग्रह कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसके बाद मिट्टी के नमूनों को हम सुखाएं कैसे?
1: प्रयोगशाला में जो भी मिट्टी आते हैं उनमें प्राप्त नमी कम होती है, हो सकते हैं। मिट्टी को ट्रे या हवा में सुखाया जाता है। सुखाने के दौरान ट्रे को क्रमांकित किया जा सकता है या उसमें प्लास्टिक टैग संलग्न किया जाना चाहिए। इसको एक गर्म हवा कैबिनेट के रेक में रखा जाता है जिसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नहीं अधिक नहीं होना चाहिए तथा आर्द्रता भी इससे 30-60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिट्टी के ओवन में सुखाना चाहिए। मौजूदा अधिकांश पोषक तत्व की उपलब्धता को भी प्रभावित करते, इसलिए हमेशा हवा से सुखाने की सिफारिश किया जाना चाहिए। सुखाने के बाद नमूनों को तैयारी कक्ष में ले लिया जाता है जो प्रयोगशाला से अलग, मुख्य प्रयोगशाला से अलग होता है। मिट्टी के नमूने को लकड़ी के दराज में, कार्डबोर्ड बक्से में इत्यादि में संग्रह किया जाना चाहिए और पीसने के बाद मिट्टी के 2 mm की छलनी के माध्यम से ही छलनी के माध्यम से जमीन के नमूने के केवल एक हिस्से को पारित करना और त्यागना शेष त्रुटिपूर्ण है। कणों के ठीक होने तक दोहराते रहे और पीसते रहे। छलनी

0: को पारित करने के के लिए पर्याप्त है और केवल कंकड़ जैविक अवशेष कंक्रीट रहते हैं, उसे बाहर कर देना चाहिए। यदि मिट्टी को कि मिट्टी के लिए हमें ट्रेस एलिमेंट जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब का अगर हमें परीक्षण करना है तो इस सब से बने कंटेनरों से में स्टोर करने या उससे पीसने से हमें सदा हमेशा बचना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मृदा जांच बहुत ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी है ये भी हमने आपको शुरू में बताया था कि जो आपके उस मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्व हैं या नहीं जो आपके फसलों को चाहिए, क्योंकि हमारी जो फसल है वो मिट्टी से ही पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगर बंजर ज़मीन होगी तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं फसल की बुआई में वो सही रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई है कि आप कैसे परीक्षण कर सकते हैं, कैसे नमूना उठा सकते हैं मिट्टी का, और इसके साथ ही आप उसको लैब तक कैसे ले जा सकते हैं, कौन से जगह से आपको नमूने नहीं लेने हैं, और उसके बाद आप नमूनों को कैसे सुखाएंगे। तो इस तरीके से पूरी जानकारी आप सभी को मिली है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। और हमारे साथ स्टूडियो में इस जानकारी के साथ मौजूद थे डॉक्टर राजकिशोर कुमार जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू मैडम।
1: किसान भाइयों, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको दो बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार तीन बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में, जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
0: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
1: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पर जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
0: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
1: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर उसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं, और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पे एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
0: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है, और जब फसल में तुड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं और अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहीं अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीजों की जरूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स की जरूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और खास तौर से महिलाओं को जरूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो।

और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है, और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज़्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है, पदार्थ है, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है, आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है, पीठ या कमर दर्द जिसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी, बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्ग को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है, और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा, इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुनझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफ़ी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं, और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज 5,000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का

0: कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद हैं वो आप खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं। और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही ले। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही। इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जाँच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर जरूरत आपको लगे तो। दोस्तों, महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जांच कर ली जाए और जांच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐंठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जांच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और हर रोज की तरह आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती से जुड़ी बातें। और अभी फिलहाल यहां इस समय परवल जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। नए नए अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें परवल भी शामिल हो जाता है गर्मी के मौसम में। अब यहां पर खेती की बात कर रहे हैं तो इस समय हमारे जो किसान भाई हैं परवल की खेती करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे खेती परवल की और क्या क्या सावधानियां बरतनी है हमारे किसान भाइयों को इसकी खेती के दौरान, और भी बहुत सारी बातें परवल की खेती से जुड़ी, इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता कुमारी मैडम। मैं आप सभी को बता दूं ये वैज्ञानिक हैं केवीके सबौर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू अनु।
0: मैडम सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं और किसान भाइयों को परवल की खासियत के बारे में बता दीजिए कि इसमें क्या क्या गुण हैं।
1: परवल एक कद्दूवर्गीय सब्जी का महत्वपूर्ण सदस्य है और परवल के बारे में परवल की बहुत सारी चीज़ें अपने घरों में बनती हैं
0: जी,
1: जैसे अचार है, सब्जी है, चटनी है। इसका लोग कम तेल मसाला में भी अलग अलग उत्पाद बना करके खाना पसंद करते हैं। खास बात यह है भागलपुर के क्षेत्र के लिए कि भागलपुर में लगभग ये जितना भी दियरा का क्षेत्र है उसका मुख्य फसल परवल है और यहाँ हजारों एकड़ में परवल की खेती होती है। किसान के लिए आने वाले समय में कद्दूवर्गीय सब्जी का एक महत्वपूर्ण उत्पाद की तरह परवल आता है और यह नाथनगर, सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर, कहलगांव, पीरपैंती जैसे ब्लॉकों प्रखंडों में परवल की खेती बहुत बड़े भूभाग में की जाती है और इसमें किसान जो लगाते हैं इसको जब अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में पानी निकल जाता है बाढ़ का, उसके बाद लोग परवल लगाना प्रारंभ करते हैं और परवल लगाते हैं। परवल के साथ साथ वो करेले की बीज को भी डाल देते हैं, करेले की बीज को डाल देते हैं तो परवल समय के आने के साथ साथ परवल अपना बढ़वार में आता है। लेकिन उससे पहले हमारे किसान हैं जो करेले को एक इंटरक्रॉप की तरह लेकर के उत्पाद ले लेते हैं और करेला का फसल को बेच लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो नीचे में परवल लगाते हैं और ऊपर की तरफ मिर्च लगाते हैं, जैसे वो मिर्च का भी उत्पादन अभी परवल के साथ साथ ले रहे हैं
0: जी। मैडम अभी क्षेत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार की क्षेत्र होनी चाहिए जहां परवल की खेती हमारे किसान भाई कर पाएं, या फिर जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु कैसा होना चाहिए इसकी खेती के लिए।
1: परवल मुख्यतः सालों भर भी आप रख सकते हैं अगर है, लेकिन चूंकि यह दीरा क्षेत्र में लगता है तो दीरा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: और जुलाई अगस्त में जब बाढ़ आता है तो किसानों का स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है फलन पे रहता है, फलन के एकदम उत्कर्ष चरम पे रहता है, उस समय हमारे किसान भाइयों का फसल बह जाता है। तो अब आने वाले दिनों में देखा गया है कि बहुत सारा ऐसा गांव है, आप जैसे खैरपुर है, लत्तीपुर है, इन सब गांव में परवल जो है ऊपरी भूमि में भी किसान अब लगाना प्रारंभ कर दिए हैं, जिससे उनको स्वयं का लत मिलना प्रारंभ हो गया है
0: जी। मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए मैडम इसकी?
1: इसके लिए मुख्यतः मिट्टी एक है कि दीरा में बलुआही मिट्टी होती है और चूंकि परवल जब जमीन पर चलता है तो जहां जहां गांठ होता है वहां वहां से परवल का जड़ें आ जाती हैं और वो ज़्यादा तेजी से फैलाव दीरा वाले क्षेत्र में ही होता है। लेकिन ऐसी ये एक भ्रम के तौर पर ही है क्योंकि जब ये ऊपरी भूमि में जाने लगे और हमारे किसान इसको अलान पर देने लगे तो इस तरह की समस्याओं का कोई या इस तरह के किसी भी प्रकार का इनपुट वहाँ नहीं रहता है, फिर भी परवल की खेती बहुत अच्छे तरीके से हो रही है
0: जी। तो यहाँ पर अभी मैडम ने बताया कि परवल आप किस क्षेत्र में उगा सकते हैं और एक भ्रांति के बारे में भी मैडम ने बताया कि लोग सोचते हैं कि ये बालू वाली जगह पर ही इसका जो है उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अभी मैडम ने बताया कि किसान भाई अब जो है ऊपर ज़मीन पर भी इसकी खेती कर रहे हैं। तो अब जो खेती हो रही है मैडम परवल की, उसमें बहुत सारी

0: सावधानियों की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं और सुधार कहाँ पर करनी है। तो कुछ ऐसी बातों के बारे में बताइए जब हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं तो सावधानियाँ उनको बरतनी चाहिए।
1: जी, परवल में सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को सावधानी यह लेनी चाहिए कि किस परवल में नर और मादा अलग अलग पौधों में होता है
0: जी।
1: तो वो नर और मादा का सही अनुपात को मेंटेन करें, सही अनुपात में लगाएं, और अनुशंसित जो है नर मादा का वो 5 नर मादा पे 1 नर लगाना चाहिए, मतलब कि 10:2 के इस अनुपात में किसानों को लगाना चाहिए। लेकिन किसान भाई से जब बहुत सारे किसानों से जब बात मेरी हुई तो किसानों ने अपना जो बताया कि जब हम 5 और 1 पर देते हैं तो नर है जो बहुत तेजी से फैलता है और मादा को छा ये कर देता है, ढकने का प्रयास करने लगता है। उस केस में किसानों ने अपना 1:9 का रेशियो अनुपात में लगाया, 1 नर और 9 मादा, तो उनको उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। पहला सावधानी ये है। दूसरा सावधानी क्या होता है कि नर और मादा का अनुपात सही मायने में नहीं रखा जाता है तो परागण की क्रिया सही सही नहीं होती है, और जब परागण की क्रिया सही नहीं होती है तो फल है जो सही अनुपात में लगता नहीं है, जो उनको एक उत्पादन प्राप्त होना चाहिए हमारे किसान भाइयों को उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है कि फल में परागण हो भी जाता है और सही परागण तरीके से नहीं हो पाता है तो छोटे छोटे फल सड़ करके गिरना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे किसान को ही कहीं ना कहीं हानि होती है
0: जी।
1: किसान इस तरह का अनुपात को पहला मेंटेन करें। दूसरा चीज है कि परवल के बारे में कि परवल में सफेद फूल होता है। सफेद फूल होता है तो होता क्या है कि परवल में फल मक्खी की भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं
0: जी।
1: तो किसान को लाइट ट्रैप पर जाना चाहिए, किसान को परवल में लाइट ट्रैप जरूर लगाएं जिससे फल मक्खी से उनको निदान प्राप्त हो जाता है
0: जी।
1: तीसरी समस्या आती है कि चूंकि यह दीरा में ज्यादा लगाया जाता है और दीरा में गंगा जी की मिट्टी में निमाटोड का बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है, जड़ों में गांठ हो जाती है परवल में, और जड़ में गांठ होने जाने के कारण जो पोषक तत्व है सारा ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, और जब पौधा फलन में आता है तो पौधे का जो मांग होता है वो बढ़ जाता है, और उस स्थिति में क्या होता है कि पूरा का पूरा लत सूख जाता है फलन पर आने वाले अवस्था में। तो किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें नीमयुक्त खली का उपयोग करें, नीमयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करें, और साथ साथ गेंदा को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, सरसों को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, जो कि प्राकृतिक रूप से निमाटोड का नियंत्रण हो जाता है
0: जी। मैडम, अभी बाजार में जब हम परवल खरीदने जाते हैं तो 2 किस्म के परवल हमें देखने को मिलते हैं, एक डार्क ग्रीन और एक हल्का ग्रीन, और एक में वाइट धारीदार भी रहते हैं, तो इसमें क्या अंतर है, क्या बीज से ये अंतर उत्पन्न होती है या फिर क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: परवल की कई प्रजातियां हमारे यहाँ लोकल में लगती हैं, जैसे स्वर्ण रेखा लगती है, स्वर्ण रेखा।
0: तो कौन सी किस्म हमारे क्षेत्र के लिए बहुत, मतलब किसान भाइयों को बीज जो है वो चयन करना?
1: हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक, जो कि बिना धारी वाला होता है, थोड़ा चमकीला होता है, हल्के रंग का होता है,
0: इसको बहुत ज्यादा
1: करता है। स्वर्ण रेखा काफी दिनों से हमारे यहाँ लग रहा है। बहुत सारी लोकल प्रजातियां हैं, जैसे निमिया है, डंडाली है, ये सब भी किसान लगा रहे हैं। और मुख्यतः किसान परवल का जो लत है बाढ़ में बह जाने के कारण बंगाल से ला रहे हैं, गया से ला रहे हैं, समस्तीपुर से ला रहे हैं, तो किसान अपने द्वारा बहुत सारे ऊपरी भूमि में भी रखे हुए हैं, तो किसान लोकल भी इसकी आपूर्ति करना प्रारंभ करती है
0: जी। तो किसान भाइयों, अभी आप जान रहे थे परवल की खेती आपको कैसी करनी चाहिए और क्या कुछ सावधानियां हैं जो मैडम ने बताई, वो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इससे आपको हानि बिल्कुल भी नहीं होगी और मुनाफा, आपके उत्पादन में अधिक मुनाफा मिलेगा आपको। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे, फ्रिक्वेंसी यही है, याद रखिए 90.8 MHz ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: इतनी गंभीर बीमारी है, टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और मैं हूँ आरजे अनु। आप सभी का स्वागत है हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम में और आज एक खास विषय आप सभी के सामने फिर से पेश है। और दोस्तों, अगर बात करें सब्जियों की तो सब्जियों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है हमारे किसान भाइयों को इसे उगाने में। जितना पौष्टिक ये होता है उतनी ही मेहनत से इसे उगाया भी जाता है, लेकिन अब कुछ रोग और कुछ व्याधि इसमें लग जाएँ तो सारे के सारे मेहनत वहीं के वहीं धरे पड़ जाते हैं। तो आज हम कुछ रोग के बारे में जानेंगे जिससे कि हमारे किसान भाई पहले से सतर्क रहें, रोग को पहचान सकें और अगर वो रोग लग जाते हैं तो उन्हें उनकी रोकथाम वो कैसे कर सकते हैं। तो आज अलग अलग जो विभिन्न प्रकार की जो सब्जी हैं हमारे, जैसे कि मिर्च की बात करें हम, कद्दू की बात कर लें, भिंडी की बात करें, लोबिया या बोरा, साथ ही परवल की बात करें, तो ये जो सब्जी हैं वो प्रमुख तौर पर गर्मी में और साथ ही वर्षा ऋतु में आपको मिल जाएंगे खाने को और बाज़ार में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम इसी के कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय है गर्मी और वर्षा ऋतु में सब्जियों में होने वाले प्रमुख बीमारियां और साथ ही उनका हम प्रबंधन कैसे करें ये। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर मोहम्मद अंसार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा रोग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। मिर्च से स्टार्ट करते हैं। मिर्च जो है हर मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, हर मौसम में हम इसे खाते हैं। मिर्च में लगने वाले जो रोग हैं आप उनके नाम बताएं और साथ ही हम उनसे अपने मिर्च के इस पौधों को कैसे बचा सकते हैं उसकी जानकारी बताएं।
6: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिर्च जो है एक बहुत प्रमुख जो है सब्जी मानी जाती है, जिसका हम लोग बहुत सारी सब्जियों में इसको यूज़ करते हैं, हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे मुख्यतः गर्मी में और वर्षा ऋतु में सब्जी मुख्य तरीके से उगाई जाती है। इसमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, खास करके जो ये हमारी गर्मी में है और जो बारिश जो शुरू हो जाती है इसमें बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि जब पौधा छोटे अवस्था में ही होता है, जुवेनाइल स्टेज में ही होता है, तो उसी में ही बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। तो किसान भाई जब इसका मिर्च का बीज डालते हैं खेतों में या नर्सरी तैयार करते हैं, उस टाइम इसमें पौधों में गलन लोग शुरू लगता है, जिससे शुरू में ही पौधे गल जाते हैं। तो वो क्या होता है कि हमको उसमें पौधे मिल नहीं पाते, जिससे हम लोग उसको मुख्य

खेत में रोपाई या ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को ये बात देखने की ज़रूरत है कि जब हम लोग बीज डालें तो ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पे जल जमाव ना हो, क्योंकि नमी की मात्रा ज़्यादा होता है खेत में जब, तो उसी वक्त में इसमें जड़ों में गलन इसका शुरू हो जाता है, जिससे ये पौधे धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग इसको, इसका जो नर्सरी तैयार करें, जब बीज डालें, तो ऐसे जगह पे हम लोग नर्सरी का की जगह का चुनाव करें जहाँ पे पानी ना भरता हो, जल जमाव की समस्या ना हो। और जो भी हम लोग बेड तैयार करेंगे जिसमें हम लोग बीज डालते हैं, उसको मिट्टी से 15 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर उठा के हम लोग बेड बनाएं, उसके अंदर बीज इसमें डालें, तो हम लोगों का काफ़ी हद तक इसमें रोग से हम लोग इसको बचा लेते हैं। दूसरी एक जो बड़ी समस्या मिर्च में आती है, जो अभी हम लोग देखने को मिल रहा है, जो बारिश भी शुरू हो गई है, इसमें फलों का सड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है। फल सड़ता है और दूसरा इसकी जो टहनियाँ होती हैं, तने होती हैं, उनमें उसमें उसका सूखना शुरू हो जाता है, उस जिसको हम लोग डैम्पिंग, ये इसको हम लोग इसको एंथ्रेक्नोज डिजीज बोलते हैं, हम लोग एंथ्रेक्नोज इसको श्यामवरण भी हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें फलों, इसमें दो तरीके के लक्षण दिखते हैं, एक तो ये फलों का सड़ना और दूसरा तनों का सूखना का। तो हम लोग पहले जब फलों की बात करते हैं, तो फल क्या होता है, फल वो सड़ना शुरू होते हैं जो थोड़ा सा मेच्योर, जो पक्के मेच्योर हो जाते हैं, जिनका पकने की अवस्था में आ जाते हैं, उनमें ज़्यादातर फलों में ये सड़न होती है और फल काले होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। दूसरी समस्या जो इसमें दिखती है, जो एक जो लक्षण दूसरा जो हम लोग देखते हैं खेत के अंदर, उसमें टहनियाँ इसमें काली होने लगती हैं, ऊपर से सूख करके नीचे की तरफ बढ़ती हैं और देखते ही देखते पूरा पौधा सूख के ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर एक प्रमुख बात यह है कि जो ये बीमारी जो लगी हुई है मिर्च के पौधे पर, ये जो मिट्टी में चले जाते हैं, फल टूट के मिट्टी में गिर जाते हैं, तो ये जो फफूंद है ये मिट्टी में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। जब हम दूसरी बार इसमें मिर्च की फसल दूसरे सीज़न में उगाते हैं, तो उसमें वो फिर बीमारी आनी शुरू हो जाती है, तो मृदा जनित हो जाती है। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसमें फफूंदनाशी का हम लोग स्प्रे करेंगे। तो पहला हम लोग जो छिड़काव करेंगे, मैंकोजेब दवा मार्केट में आती है, हम लोग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। और दूसरा जो हम लोग दवा का छिड़काव करेंगे, एक डाइफेनोकोनाजोल करके एक दवा मार्केट में आती है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है, डाइफेनाकोनाजोल है, वो मार्केट में अवेलेबल है, उसको हम लोग ले करके उसका 1 ml 2 लीटर पानी में उसका हम लोग घोल बनाएंगे और कम से कम 7 से 8 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव हम लोग करेंगे। तो इससे निश्चित तौर पे हम लोग देखेंगे कि बीमारी की जो समस्या लगती है वो धीरे धीरे कम होगी। और हम लोग एक चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर कोई पौधा पूरी तरीके से सूख गया है तो उसको हम लोगों को खेत से फौरन निकाल के फेंक देना है, क्योंकि वो मिट्टी में जाएगा तो उसे फिर वो आने वाले जब समय में जब हम दोबारा मिर्च लगाएंगे तो उसमें बीमारी फिर से उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी एक समस्या जो हम लोग देखते हैं मिर्च के अंदर, वो पौधों का अचानक सूख जाना, पौधों में फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, फल अच्छी तरीके से तुड़ाई हो रही है, अचानक हम लोग देखते हैं कि पौधा ही सूख गया। तो उसमें हम लोगों का क्या होता है कि इसमें लक्षण जो दिखते हैं हरे भरे पौधों में कि जो पत्तियां होती हैं वो लटक जाती हैं, जो दिन में जब गर्मी होती है तो उसमें पत्तियां नीचे लटकी हुई होती हैं, और जब रात का समय होता है, शाम होती है, फिर पत्ती वो फिर से वो स्वस्थ दिखने लगती हैं, फिर जब दिन आता है दूसरे दिन तो फिर वो पत्ती सूख जाती है। तो ये 2-3 दिन इस तरीके से चलता है, 4 दिन चलता है, फिर वो फाइनली पौधा वो जो है सूख ही जाता है। तो इससे उसमें क्या होता है, उसके जो वैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, फैल जाते हैं पूरी तरीके से, जिससे जो पानी जो पौधा लेता है ज़मीन के अंदर से वो पानी नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। तो ये जो बैक्टीरियल विल्ट जो हम लोग जीवाणु की वजह से जो सूखना पौधों के अंदर होता है, एक बहुत बड़ी मिर्च की समस्या है। तो इसको किसान भाई सबसे पहले ध्यान दें कि अगर जिस खेत में ये बीमारी अगर लगातार आ रही है, आप लोग मिर्च की फसल लगा रहे हैं, तो कम से कम 3 वर्षों तक हम लोगों को इसके अंदर फसल चक्र का अपनाएं। कोई भी जो मिर्च वर्ग के जो फसल है उसको हम लोग नहीं लें उस खेत के अंदर, अगर लेते हैं तो ये समस्या बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई किसान भाई इसमें मिर्च लगा रहा है खेत में, तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, जब भी हम लोग मिर्च लगाएंगे तो हम लोग इसको दवा में, इसको ट्रीटमेंट इसका देंगे, इसके जड़ों को हम लोग दवा में इसको डुबाएंगे फिर खेत में लगाएंगे। तो एक दवा मार्केट में के साइक्लिन करके आती है, जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, उसको हम लोग 1 ग्राम दवा जो है 20 लीटर पानी के करीब से घोल उसको हम लोग बना लेंगे और उसमें जड़ों को थोड़ी देर के लिए डुबा करके फिर हम लोग मुख्य खेत में उसको लगाएंगे। तो इससे जो है हमारी बीमारी की जो लगने की समस्या है वो थोड़ा कम हो जाएगी। अगर खेत में पौधा लगा हुआ है, फलन हो रही है और अब पौधा सूख गया, तब तो हमको फौरन इसमें ऐसी दवा डालना होगा जो खेत में खड़े हुए फसल में उसमें दवा डाली होगी। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे, जो दवा का छिड़काव करेंगे इसके जड़ों में देंगे,

0: ताकि उसके वेस्कुलर सिस्टम में दबा जाए और जहां वो जीवाणु को मारे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक दवा आती है मार्केट में मुख्य तरीके से मिलती है, तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लेंगे 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बना करके पौधों की जो जड़ों हैं जड़ों में उसको दवा डालना है ताकि वो जड़ से वो दवा अंदर जाए पौधों के अंदर और फिर वहाँ अच्छे तरीके से काम करे। अगर हम लोग इस जो कोई पौधा सूख रहा है और अगर हम लोग दवा पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो हो सकता है कि वो दवा प्रभावी ना हो, तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना है। और जो एक मिर्च में हम लोग यहाँ देखते हैं बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है जिसके अंदर पत्तियाँ ऐंठ जाती हैं, उसको हम लोग यहाँ के भाषा में कुकड़ी भी बोलते हैं, मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश हम लोग उसको कर्लिंग बोलते हैं। तो पत्ती उसमें क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो वो एक विषाणु जनित बीमारी है जिसको हम लोग लीफ कर्ल वायरस की वजह से बोलते हैं, वो बीमारी आती है। तो ये जो बीमारी होती है ये मुख्य तरीके से जो है एक कीट होता है जिसको हम लोग सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, वो सफ़ेद मक्खी से वो बीमारी एक पौधों से दूसरे पौधों में फैलती है। तो वो बीमारी ग्रसित पौधे से रस चूस करके वो स्वस्थ में जब भी जाएगी रस वहाँ से अपना खाना लेने के लिए, तो वो विषाणु वहाँ पे भी चला जाएगा। तो इस तरीके से देखते देखते पूरे खेत में वो कर्लिंग की समस्या आ जाती है जो पत्ती ऊपर की तरफ ऐंठ जाती है। तो इस तरीके से अगर इसमें पत्ती का ऐंठना ही नहीं होता है, पत्ती भी ऐंठती है, पौधा भी छोटा रह जाता है, पौधा झाड़ी नुमा भी हो जाता है, और इसके अंदर अगर फल फूल लगते भी हैं तो वो छोटे और गठीले तरीके से हो जाते हैं जिनका कोई मार्केट में उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। तो इसका हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से कोई बीमारी दिखती है तो अगर पौधे अगर खेत में अगर इस तरीके से अगर कोई लक्षण आपको दिख रहा है तो फौरन उस पौधे को उखाड़ के नष्ट कर देना है और इसको हम लोगों को फौरन खेत में इसको दवा का छिड़काव करना है जो सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए दवा दी जाती है। तो इसके लिए हम लोगों को इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का मार्केट में खूब अवेलेबल है। इसको हम लोग 1 ml/3 L के हिसाब से, या दूसरी दवा थायामिथक्साम करके आती है 1 g/3 L पानी के हिसाब से, इसका हम लोग 7 से 8 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सफ़ेद मक्खी है उनका खेतों में जो लगे हुए हैं उनको हम लोग नियंत्रित करेंगे, जिससे बीमारी जिससे फैलती है उसको हम लोग कम कर देंगे। इसको रोकने का और भी अच्छा तरीका है कि हम लोग नर्सरी अवस्था में ही इसको रोकना शुरू करें, क्योंकि नर्सरी में जब हम लोग बीज डालते हैं तो किसान भाई खुले में लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पत्ती 2-3 पत्तियाँ निकल आती हैं तो उसमें सफ़ेद मक्खी लगनी शुरू हो जाती है, तो वहीं से वो बीमारी वायरस जो है फैलना शुरू हो जाता है नर्सरी की अवस्था से ही। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी नर्सरी लगाएं तो उसको हम लोग बारीक एक जाली आती है उस जाली से हम लोगों को नर्सरी को ढकना है। तो उससे दो चीज़ें होंगी कि एक तो बीमारी जो वायरस फैलाने वाले कीड़े हैं वो नहीं उसके अंदर जाएंगे नर्सरी के अंदर, और दूसरा और भी जो पत्ती को चबाने वाले कीट हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो नर्सरी आपने तैयार करी है उसके पौधे जो होंगे वो स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से होंगे, और जब वो मुख्य खेत में जाएंगे रुपाई के लिए तो उसमें भी बीमारी कम आएगी। यदि आती है तो हम लोग इसका जो दवा अभी हमने बताया कि सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए उसका छिड़काव करेंगे। दूसरी बात है, किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी हम लोग मिर्च की फसल लगाते हैं तो हम लोग ध्यान दें कि अपने खेत के चारों तरफ कम से कम 2 लाइन बॉर्डर के तौर पे उसमें हम लोग मक्का या ज्वार उगाएं। तो उससे क्या होगा, जो बॉर्डर वाली जो फसल हम लोग लगाते हैं उससे क्या होता है कि सफ़ेद मक्खी डायरेक्ट खेत में नहीं घुसनी है, वो उनका एक प्रोटेक्शन हो जाता है किनारे किनारे मेड़ों पर। तो 2 लाइन हम लोग मक्के की अवश्य लगाएं उसके किनारे किनारे खेत के मेड़ों पर, जिससे उसमें मधुमक्खी ये वही सफ़ेद मक्खी का उसके अंदर प्रवेश उसके अंदर हम लोग उसको बाधित कर सकें। दूसरा एक इसमें जो कर्लिंग की समस्या आती है, किसान भाई देखते हैं कि कर्लिंग 2 तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तो जो कुकड़ी होती है ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं जिसको अभी हमने बताया जो विषाणु की वजह से होती है, एक दूसरी समस्या होती है पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो विषाणु नहीं है वो एक माइट होता है, छोटा कीड़ा होता है आँख से नहीं दिखता है, वो पत्ती की निचली सतह पर लग करके उसका रस चूसता है जिससे पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, नीचे की तरह की से मुड़ती है और थोड़ी लंबी हो जाती हैं। तो माइट है, उसके उस माइट को रोकने के लिए स्पायरोमेसिफेन करके दवा आती है, स्पायरोमेसिफेन 1 ml/L के हिसाब से आप उसका घोल करके छिड़काव करें कम से कम 2 बार 7 से 8 दिन के अंतर पर, तो हम लोग इसको माइट को भी रोक देंगे, तो वो जो इस तरह से अगर पत्ती है तो वो ठीक हो जाएंगी वो।
1: तो ये तो बात हो गई है मिर्च की, मिर्च में लगने वाले रोगों के नाम बताएं डॉक्टर साहब ने आपको, और साथ ही इसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। आजकल देखा जाए तो कद्दू का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई कर रहे हैं सर, तो कद्दू में कौन कौन से रोग हैं, कद्दू के पौधे में लग सकते हैं और उनका बचाव कैसे कर सकते हैं हम?
0: जी, कद्दू एक मुख्य फसल है जो गर्मी में और वर्षा ऋतु में दोनों में होती है। तो इसको इसमें मुख्यतः तीन

तीन बीमारियां आती हैं जिसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। किसान भाई इसमें इसको आप खेत में देखते भी होंगे। एक तो होता है कि पौधा पूरी तरीके से ही सूख जाता है अचानक, तो हम लोगों को देखना है कि उसके जड़ के पास में कोई कीट लगा, कीट तो नहीं लगा हुआ है या कोई बीमारी लगी इसको जड़ को, हम लोग उसको देखना है उसको जा करके। तो अगर हम लोगों को जड़ों में अगर देखता है कि अगर कोई काला काले रंग का कोई घेर लेके घेरा हुआ या कवर कर रखा है तने को, तो हम लोग समझते हैं कि उसके अंदर कोई फफूंद लगा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो अभी हमने बताया है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या कार्बनडाजिम दवा आती है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसको हम लोगों को जड़ों में उसका डालना है उस दवा को, हाँ ड्रेंचिंग करना है उस दवा को। और अगर हम लोगों को मैं उस टाइम अगर पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो हो सकता है ये बहुत प्रभावी ना हो, क्योंकि जड़ों से सूखना शुरू होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये है समझना है कि जो जड़ में फफूंद लगा है उसको हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। तो हम ये दो दवा का अगर छिड़काव करते हैं तो इससे पौधों का सूखना रुकेगा। जब हम लोग बीज लगाते हैं कद्दू का, तो सबसे पहले हम लोगों को वही देखने की ज़रूरत होती है, हम लोग ट्राइकोडर्मा का यूज करें। ट्राइकोडर्मा हम लोगों को जो है वर्मी कंपोस्ट जो हम लोगों के पास में जो मिलता है, हम लोग 100 किलो जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर 1 किलो के करीब हम लोग जो मार्केट का जो मिलता है फॉर्मुलेशन, उसको हम लोग मिला करके 14 से 15 दिन के लिए उसके छावदार स्थान पर रखते हैं ताकि उसके अंदर वो ट्राइकोडर्मा अच्छी तरीके से फैल जाए। जब हम लोग गड्ढा बनाते हैं कद्दू वर्गीय फसलों को लगाने के लिए, उसमें लौकी हो सकती है, परवल है, या आपका ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, तो इन सब में जो हम लोग लगाते हैं बीज लगाते हैं, तो हम लोग पहले गड्ढा बनाते हैं। उन गड्ढे में पहले हम लोग वर्मी कंपोस्ट वो भी ट्राइकोडर्मा मिला हुआ उसको हम लोग पहले गड्ढे के अंदर भर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ पे अगर कोई इस तरह से फफूंद होगा तो ट्राइकोडर्मा उनको रोकेगा, और जिससे हमारे जो पौधे निकलेंगे उसके अंदर उनमें जड़ों में इस तरह से कोई विकार या कोई बीमारी इस तरह से नहीं दिखेगी। तो अगर हम लोग ट्राइकोडर्मा वर्मी कंपोस्ट में मिले हुए वर्मी कंपोस्ट को अगर हम लोग डालते हैं गड्ढों में, तो उससे हम लोग बीमारी काफ़ी हद तक रोक लेते हैं। दूसरा, पत्तियों पर जो एक बीमारी लगती है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक पाउडर की परत सी जम जाती है, दो पाउडरी मिल्ड्यू हम लोग उसको बोलते हैं कि एक इस तरह से परत जमती है, तो देखते हैं कि पूरा पौधा ही सफ़ेद हो जाता है। जब हम लोगों की नमी बहुत ज़्यादा खेतों के अंदर होती है तो उस वक्त ये बीमारी ज़्यादा आती है खेतों के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी है कि जब भी कोई इस तरह से हम लोग बीमारी आने की संभावना जो बनी रहती है, तो हम लोग बीमारी आने से पहले ही मैंकोजेब जो 2 ग्राम या 2.5 ग्राम जो दवा है उसको प्रति लीटर के हिसाब से पहले से ही छिड़काव करके रखेंगे खेत में, जिससे उसके अंदर इस तरह से कोई बीमारी ना आए, पहले से ही हमने छिड़काव करके उसमें रखना है। दूसरी बात है जो हम लोग देखते हैं कि और भी फफूंदनाशी अगर मान लो बीमारी आ भी गई है खेत में, लग रही है बीमारी की बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हम लोग उसके अंदर जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं जो है वो उसको हम लोगों को डालना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम, क्योंकि उसमें फिर हम लोग कोई दवा डालेंगे तो काम नहीं करेगा इस तरीके से। तो हम लोग हेक्साकोनाजोल आता है, टेब्यूकोनाजोल आता है, तो या हेक्साकोनाजोल या ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का मिक्स्ड फॉर्मुलेशन आता है, मिला हुआ रहता है, तो इस तरह से जो दवा आती है इनका दवा हम लोग ले करके वो 1 ग्राम के हिसाब से इसको हम लोग लेके पत्तियों पर छिड़काव करना शुरू करेंगे, ताकि जो उस तरह से जो फफूंद ऊपर लगी है वो उसको हम लोग साथ समय ठीक कर सकें। अभी जो मिर्च ये कद्दू वर्गीय फसलों में जो हम लोगों को एक उभरती हुई समस्या जो दिख रही है वो विषाणु जनित बीमारियों की है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो लक्षण हम लोगों को मिर्च में टमाटर में जो दिखते थे, पत्तियों के अंदर पीला हो जाना या पत्तियों के ऊपर कुकड़ी हो जाना, पत्तियां ऐड जाती हैं, उस तरीके की समस्याएं अब हम लोगों को कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिल रही है। उसमें आपका खीरा, तरबूज, करेला, खीरा, इस सारे में जो है इस तरह की बीमारी दिखती है, जिसमें पत्तियां पीली हो जाती हैं, मोज़ेक तरीके का दिखने लगता है, उजला हो जाता है और पत्तियां ऐड जाती हैं। तो ये एक विषाणु जनित बीमारी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी चीज़ करना ये है कि जो ये बीमारी वही मक्खी, सफ़ेद मक्खी से फैलता है जो मिर्च के अंदर जो इस तरह से कुकड़ी या कर्लिंग उसके अंदर बीमारी को फैलाता है। तो हम लोगों को यहाँ देखने की ज़रूरत यह है कि अगर वो हम लोग ये बीमारी अक्सर लगनी कब शुरू होती है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई जो मिर्च उगाते हैं या टमाटर उगाते हैं, टमाटर मुख्यतः रबी की फसल है, जब टमाटर की फसल ख़त्म होने वाली होती है तो उसके बीच में कद्दू वर्गीय फसलों को लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे कद्दू लगाते हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो उसके अंदर जब जो विषाणु इसमें लगता था टमाटर के अंदर, वो विषाणु वो कद्दू वर्गीय फसलों में चला जाता है, तो टमाटर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब कद्दू वहाँ पे जो पौधा तैयार होता है उनमें मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पौधों में उस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं।
तो सबसे

पहले इस चीज़ को हमको देखना है कि जब भी हम लोग इस तरीके से कोई बीज लगाएं किसी टमाटर के में या मिर्च में किसी फसल में, तो उसमें हम लोगों को टाइम से उसके अंदर दवा का छिड़काव करना ज़रूरी है, ताकि जो सफ़ेद मक्खी टमाटर या मिर्च में लगती हो वो इसके अंदर कद्दू वर्गीय फसलों में ना आने पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि जब पत्ती 2-3 पत्तियां निकल आएँ तब हम लोगों के अंदर इमिडाक्लोप्रिड या थायमेथोक्साम जो भी हमने दवा बताया है इसका हम लोग

0: से हम लोग देखते हैं कि बीमारी को हम लोग बहुत हद तक कम कर देते हैं।
1: अगर गर्मियों की बात करें, हमारे साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें, तो भिंडी अभी बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है और लोग इसे खाते भी हैं, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, भिंडी उत्पादन के समय बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई रोगों के बारे में जाने और उनका बचाव कैसे करें, भिंडी के पौधे में जो रोग लगते हैं उनको पहचाने, तो कौन कौन से रोग इस पौधे में लग सकते हैं और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
0: जी जी बिल्कुल, जो भिंडी की फसल है, हम लोग देखते हैं कि मार्च से ही आनी शुरू हो जाती है और अभी बरसात में भी खूब भिंडी मिलती है हम लोगों को। भिंडी हम लोग दो सीज़न में लगाते हैं, एक तो हम लोग गर्मी वाला लगाते हैं, एक वर्षा ऋतु वाला लगाते हैं, दोनों अलग अलग में लगाते हैं। तो जो गर्मी में हम लोग लगाते हैं, जो मार्च के करीब लगाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें जो भिंडी में है, जो मुख्यतः जो बीमारी आती है वो मोज़ेक की समस्या है, जिसमें पत्ती एकदम गोल्डन की तरह मोज़ेक चमकती हुई दिखती है खेतों में, अगर हम लोग देखते हैं उसको हम लोग येलो वेन मोज़ेक बोलते हैं। तो उस तरह से खेत में एक चमकदार पत्ती जो पीली उजली सी दिखनी शुरू हो जाती है। तो भिंडी में एक सबसे बड़ी बीमारी यही हम लोगों को दिखती है खेतों के अंदर। अब आते हैं हम लोग भिंडी के सीज़न के ऊपर। जो भिंडी दो सीज़न में जो हम लोग लगाते हैं, एक तो हम लोगों का लगाने का समय है जब हम लोग ये मार्च में लगाते हैं, दूसरा एक वर्षा ऋतु में जो हम लोग जुलाई वगैरह में लगाते हैं, जो अभी आ रहा समय। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो गर्मी में लगाते हैं मार्च के समय में, उसमें कम जो बीमारी होती है उसमें थोड़ा कम आती है, और जब हम लोग इधर देखते हैं जो बरसात में लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके की समस्या आती है जिसमें पत्ती पूरी तरीके से पीली हो जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जब भी किसान भाई लगाएं तो इसमें दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। जब भी हम लोग भिंडी लगाते हैं, जो चूँकि बीज जो मार्केट में मिलते हैं वो ऑलरेडी उनमें ट्रीटमेंट किया होता है, तो उस टाइम हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब पत्ती में, जब पौधे बीज डालने के बाद में जब दो तीन पत्तियाँ निकल आती हैं, तो उसी टाइम से हमको छिड़काव करना ज़रूरी होता है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि किसान भाई क्या करते हैं कि जब पौधों में बीमारियाँ आनी शुरू हो जाए, पौधा बड़ा हो गया, भिंडी निकलने, फूल निकल रहे हैं, फल भी निकल रहे हैं, उस टाइम बीमारी आती है, तभी हम लोग दवा छिड़काव के बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जब भी भिंडी में दवा का छिड़काव हमको करना है, तो जब पत्तियां दो तीन पत्ती निकल के आ जाए पौधे के बीज लगाने के बाद में या सोइंग करने के बाद में, तभी हमको उसी टाइम दवा डालना है। क्योंकि बहुत छोटे पौधे, छोटे अवस्था में ही बीमारी आ जाती है और वो पौधा बड़ा बड़ा बड़ा होते होते उसके अंदर वो लक्षण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि शुरुआती अवस्था में ही उसमें दवा डालना ज़रूरी होता है। तब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर ध्यान देंगे कि सफ़ेद मक्खी, जो गोल्डन मोज़ेक जो बीमारी आती है वो सफ़ेद मक्खी से फैलता है, ये भी उसी ग्रुप का ही वायरस है। तो हम लोगों को जो सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवा बताई, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथोक्साम, इन दवाओं को हम लोगों को 7 से 8 दिन के अंतराल पर या 8 से 12 दिन के अंतराल पर इन दवाओं का छिड़काव करना है, जब 3-4 पत्तियाँ निकल आए इसके अंदर, उसी चाहे बीमारी हो या ना हो, लेकिन हम लोगों को दवा डालना ज़रूरी होता है। अगर हम उस टाइम दवा डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें ट्रांसमिशन या जो सफ़ेद मक्खी से जो वायरस फैलता है, हम उसी अवस्था में सफ़ेद मक्खी को मार देंगे, तो पौधा बड़ा होते होते होते अगर उसके अंदर कोई बीमारी आती है तो बीमारी का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तब हमारा फल फूल आता है उसमें हमको उपज भी मिलती है। लेकिन अगर शुरुआती अवस्था में अगर विषाणुओं के लक्षण दिखने शुरू हो गए, तब हम लोगों को उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर हम लोगों के पास में एक ही फिर ऑप्शन रह जाता है कि पौधे को उखाड़ के फेंक देना। तो अगर हमारे पास, अगर किसान भाई भिंडी लगाए हुए हैं, अगर एक दो पौधे में अगर कहीं भी अगर इस तरह से लक्षण दिख रहा है, तो हमको सबसे पहले उस पौधे को हटा देना है। हो सकता है कि उसी एक दो पौधे की वजह से पूरे खेत में वो बीमारी फैल जाए और देखते देखते पूरे पौधे पीले हो जाएं। तो अगर एक दो पौधे में अगर इस तरह से कोई लक्षण दिख रहा है, तो बगैर कोई लालच किए, बगैर कुछ उसमें दिमाग लगाए, उसको हम लोग को हटा देना है, ताकि उससे बीमारी दूसरे पौधों में ना फैलने पाए। तो सफ़ेद मक्खी को जो मारने के लिए दवा है, उसी को हम लोग छिड़काव करेंगे। दूसरा, जो बॉर्डर के लिए भी हम लोग बात कर रहे थे, बॉर्डर पर मक्का या ज्वार की 2 लाइन हम लोग जरूर लगाएं इसमें।
1: तो ये बातें हो गई हैं भिंडी की, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब, हम लोबिया यानी कि जिसे हम स्थानीय भाषा में बोरा भी कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, साथ ही उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसे भी बताएं।
0: जी, बोरा जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, लोबिया या काउपी हम लोग बोलते हैं उसको, बोरा में हम लोग देखते हैं दो बीमारी बहुत आम है यहाँ पे आती है। एक तो आती है कि जो पत्ते होते हैं उनमें काले काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, इसके हम लोग एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। वो पुरानी पत्तियों, जो पत्तियां होती हैं, जो नई पत्तियां होती हैं।

0: उनमें कम होती हैं, जो नीचे की पत्तियां होती हैं जो थोड़ा पुरानी हो जाती हैं उनमें इस तरह से काले धब्बे बनने शुरू होते हैं। तो कभी कभी वो काले धब्बे क्या होते हैं, पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और वो देखते ही देखते पूरे पौधे को गला देते हैं। जब इसमें फलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जब फलियां आती हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि काले काले से धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस ये जो बीमारी आती है इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। देने वाली जो बात है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग मैंकोज़ेब, बीमारी हो या ना हो हम लोग एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर कर दें। जब पौधा हमारा थोड़ा सा 4-5 पत्ती जब उसके अंदर आ जाए उसके अंदर छिड़काव हमको कर देना है। मैंकोज़ेब 2 ग्राम के हिसाब से हम लोगों को उसके अंदर छिड़काव कर देना है। यदि उसके बाद अगर उसके अंदर बीमारी आ रही है, उसमें इस तरह से कोई लक्षण दिख रहे हैं कि वो पत्ती काली पूरी हो जा रही है या तने में कालापन आ जा रहा है या फलियों में कालापन लगने शुरू हो जा रहे हैं, तो डाइफेनोकोनाज़ोल जो दवा है वो 1 ml 2 लीटर के हिसाब से हम लोगों को दवा का छिड़काव कर देना है। तो उससे क्या होगा, वो काले धब्बे जो हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक जो इसमें जो पत्ती में एक समस्या आती है वो गोल्डन मोज़ेक की है। गोल्डन मोज़ेक एक बहुत बड़ी समस्या है। जो हम लोग देखते हैं कि पत्तियां उजली सी हो जाती हैं उसमें, वही बीमारी हमारे मूंग में भी आती है, वही बीमारी हमारी फ्रेंच बीन में भी आती है, वही बीमारी हमारी इसमें आती है अरहर में भी आती है। तो उसी वही ग्रुप का एक वायरस है जो लोबिया की फसल में लगता है और हम लोग देखते हैं कि पत्तियां देखते ही देखते उजली हो जाती हैं। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवाओं का छिड़काव, वही दवा का छिड़काव हमको इसके अंदर करना है 7-8 दिन के अंतराल पर या 10-12 दिन के अंतराल पर। तो उससे क्या होगा, वो सफ़ेद मक्खी को हम लोग कम कर देंगे खेत के अंदर और जो पौधे होंगे जो निकलेंगे वो स्वस्थ होंगे उसके अंदर।
1: अगर गर्मी की बात करें साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें तो जो परवल जो है वो खास सब्जी है इस ऋतु की, तो डॉक्टर साहब इसमें जो लगने वाले रोग होते हैं परवल के पौधों में वो कौन कौन से होंगे और साथ ही इसका रोकथाम हम कैसे करें?
0: जी, परवल हम लोग देखते हैं यहाँ पे गंगा के किनारे या और भी आसपास के किसान जो है काफ़ी परवल उगाते हैं और उनका अच्छा रेट भी मिलता है हम लोग किसान भाइयों को। लेकिन हम लोग कभी कभी इसमें देखते हैं कि बहुत सारी इसके अंदर बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को 2 चीज़ इसमें ध्यान देने की चीज़ें होती हैं देखने हैं खेत के अंदर। एक तो इसके अंदर जो इनकी लत है, जो वाइंस है, उसके अंदर कोई सड़न तो नहीं पैदा हो रही जो पूरी लत सूख जाती है। उसमें क्या होता है कि कहीं एक जगह पे हमको दिखता है कि काला घेरा या काला धब्बा दिखता है, वो तने को पूरा कवर कर लेता है। तो देखते देखते वो पूरे तने को पूरा काला कर देता है जिससे वो पूरा पौधा ही सूखना शुरू हो जाता है। पहले एक पार्ट उसका सूखेगा, एक तना सूखेगा, धीरे धीरे वो क्या होगा और तनों पर फैल जाएगा लतों में और देखते देखते वो पूरा सूख जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है कि जब भी इस तरह का कोई लक्षण दिखे, अगर कहीं थोड़ा सा दिख रहा है या किसी एक लत में दिख रहा है तो उसको हमको काट के हटा देना है। अगर इस तरह से लक्षण अगर किसान भाई खेत में देखते हैं तो फौरन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा हम लोग बोले 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका हम लोग खेत में फौरन छिड़काव कर देना है, इससे हम लोग उसको रोक सकते हैं। दूसरा एक जो हम लोग पत्तियों में देखते हैं बीमारी आती है वो एक धब्बा सा बनता है, काला धब्बा जो ब्लाइट अपीयरेंस एक देता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं पत्तियाँ वहाँ काली होकर गलनी शुरू हो जाती हैं। और इस तरीके का लक्षण हम लोग देखते हैं कि पत्तियों पे फैलने के बाद जो फल निकलते हैं उन फलों में वो उस तरीके का लक्षण शुरू हो जाता है। वो काले पहले छोटे से दाग धब्बे बनते हैं, वो देखते देखते फिर पूरे पौधे पूरे फल को गला देते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर किसी एरिया में अगर किसान भाई परवल लगाते हैं और इस तरह की समस्या दिखती है तो बीमारी हो या ना हो हम लोग मैंकोज़ेब का एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर करेंगे। उसको छिड़काव करने के बाद में भी अगर हमको कहीं पे दिख रहा है इस तरह से कोई लक्षण तो हम लोग को मैंकोज़ेब और मेटलेक्सिल का कॉम्बिनेशन वाला दवा आता है जो मिक्स होता है, उसको हम लोग 2.5 से 3 ग्राम के हिसाब से घोल बना करके उसको प्रति लीटर के हिसाब से उसको हम लोग छिड़काव करेंगे। तो इससे हम लोग देखते हैं कि वो जो समस्या होती है उसको हम लोग ख़त्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे खेत के अंदर से। लेकिन इसका साथ समय छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंतज़ार करेंगे कि फल फूल आने लगे या हम लोग भिंडी में इंतज़ार करें कि अब फल के तुड़ाई का वक्त आ गया या मिर्च में हम लोग सोचें कि मिर्च में अब फल आ रहा है या है अब बीमारी आ गई तो कोई छिड़काव करें, तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा नहीं मिलता। हम लोगों को समय से डरना है, बीमारी आने से पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। यदि बीमारी आने से पहले हम लोग सचेत रहेंगे और उस टाइम बताए गए दवाओं का अगर हम लोग सही समय पर छिड़काव करते रहेंगे तो हम लोग बीमारियों को निश्चित तौर पर रोक देंगे और हम लोगों को अच्छी उपज प्राप्त होगी।
1: जी, तो किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपके परिश्रम का पूरा मुनाफा मिले, तो ज़रूरी है कि आपके

0: जो सब्जियों के पौधे हैं वो रोग मुक्त रहें। और डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी है कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं आपके सब्जियों के पौधे में और आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ज़रूर आशा करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप इस वार्ता को सुनेंगे, आप बहुत कुछ जानेंगे, रोगों को पहचानने की जो क्षमता है वो भी आप में विकसित होगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल

न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था, प्रस्तुति का तरीका

0: वाकई सराहनीय है। चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
1: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
1: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षा प्रद, प्रेरणा प्रद और ज्ञान वर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
1: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओ हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओ इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अश्रोताओ हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओ ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे घर के सारे सामान
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल
4: सारी फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं।

0: हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आम तौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की। लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते,
2: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
4: अरे मर गया।

0: इस बार गर्मी में जान लेडीज गर्मी ने।
1: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
2: ऊपर
3: ले जाना होगा,
2: सारा सामान
3: उसी में तो ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर,
3: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी, चलो
2: चलो चलो,
3: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए,
2: ध्यान से संभल कर।
1: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
4: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे

पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोकगीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा दाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता, मैं ही जीवन हूं धरती का। मुझे नष्ट मत करो, मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ
2: हाँ, 7-8 छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती, अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
1: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
1: और हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी। अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: हाँ? वो गौरा कह रही है हाँ? कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी 2-3 नहीं, बड़े बड़े 7-8 छत्ते लगे हैं। हाँ,
4: 7-8 छत्ते।
1: हाँ।
4: कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो 2 गगरी भर तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: चप्पल फाड़ गए।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांतों भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
4: हाँ,
2: चल चल चल चल।

तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में।

0: एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज ही ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो चलो। खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे। मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं। अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है,
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी। नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो। चाची,
4: हाँ क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
2: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं।
5: बिल्कुल,
2: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है

0: बात तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
1: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये
2: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
3: चिब्बू भाग ले यहां से,
4: बाद में दाल काटेंगे।
2: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
5: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया। ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे
0: वाह सबका कर्तव्य है।
2: दोस्तों इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
6: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को
6: कुसुमलता
7: जगबंधु
6: चेतना
7: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार, नमस्कार।
8: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
9: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ

0: 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, जो ले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली तक। और हरियाली की बातें हम करते हैं और उसमें खेती बाड़ी की बात ना करें तो थोड़ा अधूरा बिल्कुल रहता है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर। जी हाँ, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए अलग अलग प्रकार की खोज कर रहे हैं और उसी में से एक है डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड और साथ ही मृदा सूचना प्रणाली। आज इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी अगर आप हमारा आज का ये वार्ता सुनते हैं तो। जी हाँ, इस खास विषय को आपको बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर नींटू मंडल। और मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरल यानी बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहला डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो डॉक्टर साहब से हमारे जो सवाल है वो ये है कि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है वो बताएं हमारे सभी श्रोताओं को।
3: नमस्कार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का बारे में आप लोग पहले से ही जानकार है। ये भारत सरकार का कृषि मंत्रालय से चलाया जा रहे पूरा देश में सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम।
2: जी,
3: सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का क्यों जरूरत हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कृषि में मृदा एक ऐसा मीडियम है जिसका ऊपर कोई भी तरह का फसल, कुछ भी फाउंडेशन हम लोग करते हैं, लेकिन मृदा को सटीक उपाय में उसका मेंटेन नहीं किया जाएगा तो ये फ्यूचर के लिए बहुत ही घातक हो सकता है हमारा आने वाले पीढ़ी के लिए। इसलिए मृदा का सटीक उपाय में उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है।
2: मतलब उनकी देख रेख करना, टेस्ट करना कि इस सॉइल में, इस पर्टिकुलर सॉइल में क्या कुछ पोषक तत्व की कमी है या फिर किस प्रकार इसमें ज़्यादा लवण है, ये कुछ इस प्रकार की जो टेस्ट होते हैं।
3: हाँ, जैसे हम लोगों का तबीयत खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले ही थर्मामीटर से टेम्परेचर, उसके बाद ब्लड शुगर, इस टाइप का टेस्ट होता है।
2: जी जी,
3: सेम वे में मृदा में भी
2: लैब से टेस्ट होता है। जी,
3: टेस्ट होता है अगर मृदा स्वस्थ है कि नहीं, ये देखने के लिए बहुत पैरामीटर है। तो मृदा सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम में ऐसा 12 पैरामीटर है।
2: अच्छा।
3: इसके अंदर में फास्ट है पीएच। पीएच का मतलब है मृदा आम्लिक है कि अल्कलाइन है।
2: अच्छा।
3: वो देखने के लिए फिर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, वो भी मृदा में नमक का मात्रा ज्यादा होगा तो वो भी प्रॉब्लम होता है, वो देखने के लिए है। ऐसे पोषक तत्व में से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी एलिमेंट जैसे गंधक, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे लोहा, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरन, ये सब कुल मिला के 12 पैरामीटर है जिसका मात्रा कितना है मिट्टी में और उसके बाद जो फसल उगाया जाएगा उसमें भी कितना जरूरत होगा। तो जो मिट्टी में है और जितना जरूरत होगा दोनों का माइनस करके उसमें खाद का उपयोग करना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम भारत सरकार का कृषि एंड कृषक कल्याण मंत्रालय

0: धारा पूरा देश में चलाया जा रहा है। हमारा बिहार में भी इसका हर जिला में ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हमारा यूनिवर्सिटी, इसका कृषि विज्ञान केंद्र और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जितना है, इसके साथ जो स्टेट डिपार्टमेंट का भी जितना लेबोरेटरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वो भी इसमें शामिल है। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसका लाभ हमको लगता है किसान भाई लोग ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, ये आपने जाना कि जो मृदा को हम समय समय पर उनका टेस्ट करते रहें कि ये स्वस्थ है या नहीं, और तब अगर हम फसल उस पर उगाते हैं तो ज़रूर मुनाफा होगा और आपको कोई भी हानि नहीं होगा, क्योंकि पहले से जो प्लानिंग की जाती है सारी चीज़ें देखकर तो सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से होता है और सफल खेती आप कर सकते हैं तब। और इसका उपयोग डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे?
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड में एक तो 12 पैरामीटर का मात्रा रहेगा, उसके बाद एक कितना खाद कितना कंपोस्ट डालना चाहिए इसका भी मात्रा उसमें लिखा रहेगा।
1: अच्छा।
0: यानी कि साइंटिफिक बेसिस में जो खाद उपयोग उसका सटीक विधि, कौन सा टाइप का खाद डालना है, कौन सा फसल के लिए, तो उसका भी रिकमेंडेशन रहता है। पहले जैसे हम लोग बताए थे पीएच अगर कम होगा तो एसिडिक है, आम्लिक है मिट्टी, उसको सुधार डालने के लिए भी चूना का प्रयोग, लाइम का प्रयोग करना है, उसका भी मात्रा उसमें लिखा रहेगा। जैसे जिसमें नमक का मात्रा ज़्यादा है, सलाइन है, उसको भी सुधारने के लिए क्या करना चाहिए ये भी उसमें रहेगा। उसका मतलब है सिर्फ पोषक तत्व प्रबंधन ही नहीं, मृदा में अगर प्रॉब्लम होगा उसमें भी सुधार लाने के लिए क्या हमको डालना होगा, इस कौन सा उत्पादन होगा, उसका मात्रा कितना होगा, ये भी उसमें रिकमेंडेशन लिखा रहेगा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का यूज करने से लॉन्ग टर्म में सटीक उपाय में मृदा को ठीक रखते हुए अच्छा पैदावार हम लोग ले पाएंगे।
1: जी तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि सिर्फ उसमें टेस्टिंग ही नहीं की जाती कि उसमें क्या कमी है या फिर ज़्यादा एसिडिक है, लवणीय है, उसको आप एसिडिक को फिर एसिडिक अगर आपका मिट्टी है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, एसिड कम कर सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर्स हमें दवाइयाँ देते हैं हमारा टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट करके, उसी प्रकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग किया जाता है। साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिक जो है फिर आपको बताते हैं कि कैसे, अगर ज़्यादा लवणीय है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा एसिडिक है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, सारी विधियाँ आपको बताई जाती है। तो ये तो बात हो गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं डिजिटल। आज वैसे भी देख रहे हैं कि हमारा देश जो है डिजिटल की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इसे भी जोड़ा गया है, तो क्या है ये डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड?
0: डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये भी भारत सरकार का कृषि कल्याण मंत्रालय का एक नया स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कोई भी किसान का, जैसे एग्जांपल ले लीजिए भागलपुर जिला का शाबोर एरिया में कोई किसान, उसका खेत में मिट्टी का नमूना लिया गया
1: जी।
0: तो जब नमूना लिया जाएगा तब उसका जीपीएस से, जीपीएस मोबाइल में भी अभी उपलब्ध है, उससे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद फिर जिस किसान का खेत में जीपीएस से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके के नमूना लिया गया, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण वो पोर्टल में एक अवेलेबल है
1: जी।
0: उसके बाद नज़दीक कौन सा एरिया में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वो भी इन्फॉर्मेशन पोर्टल में अवेलेबल है, जैसे भागलपुर जिला में और हमारा कृषि विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान विभाग में भी लेबोरेटरी है। कितना नज़दीक में आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में पहुंच सकते हैं ये भी इन्फॉर्मेशन उस वेब पोर्टल में अवेलेबल है। उसके बाद उसका प्रयोगशाला में जांच किया जाएगा, जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आया जो टेस्ट करेंगे वो उस वेब पोर्टल में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद अगर कोई किसान उस पोर्टल में, वेब पोर्टल में, ये वेब पोर्टल का एड्रेस भी आप लोगों को हम बता देते हैं, ये जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार का ये वेब एड्रेस है www.soilhealth.dac.gov.in। ये गूगल में भी सर्च किया जाएगा तो ये सॉयल हेल्थ वेब पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें क्लिक करके एक किसान पोर्टल है उसका थ्रू में जो नमूना लिया गया है किसान का

नाम, जिला का नाम, उसके बाद शाबोरी नाम देके किशन का नाम देने से वो पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी कि 12 जो पैरामीटर है कौन सा कितना मात्रा में है। उसके बाद उसमें ऑप्शन है, अगर क्लिक करेंगे किशन भाई लोग, जैसे इसके बाद हमको धान लगाना है और गेहूं लगाना है, उसके हिसाब से फिर कितना खाद डालना पड़ेगा।

0: तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आपका जिला में अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन भी रियल टाइम में आप लोग पता कर सकते हैं। उसका मतलब है ये जो डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इसका थ्रू से एक स्पेसिफिक आपका लोकेशन में किसान का नाम, उसका मिट्टी में क्या क्या चीज है, क्या उसको डालना पड़ेगा, उसके बाद ये कोई खाद आपको कहाँ मिलेगा, नियर बाय कौन सा एरिया में मिलेगा, उसका भी कीमत कितना है, इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक ही प्लेटफॉर्म में
1: जी।
0: तो ये राष्ट्रीय लेवल में बनाया गया है, हमारा बिहार स्टेट ही नहीं पूरा देश का जितना राज्य है सबका इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा
1: जी। तो ये फायदे हैं कुछ डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड के किसान भाइयों। और तो क्या पूरे देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए क्या कोई सॉफ्टवेयर अभी उपलब्ध है डॉक्टर साहब?
0: पूरा देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए भी सॉफ्टवेयर भारत सरकार द्वारा कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाया गया है
1: जी।
0: ये भी जो वेब एड्रेस पहले मैंने बताया उसमें अवेलेबल है, उसका अंदर में साइंटिफिक तरीका से जो खाद कितना मात्रा में डालना होगा ये रिकमेंडेशन अवेलेबल है। उसके इतना नहीं, उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया जा सकता है स्पेसिफिक कुछ एरिया में, जैसे कि ऐसा एरिया कुछ हो सकता है जिसमें जिंक का कमी बहुत है, ऐसे बहुत नहीं होता है, किसी में लोहा का कमी है, किसी में बोरोन का कमी ज्यादा है, वो भी आपको डिजिटल में दिखाएगा। उसके बाद उस एरिया के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कोरोना का टाइम में आप लोग सब जानते हैं टेलीमेडिसिन शुरू हुआ था, उसमें डॉक्टर को फोन करके हम लोग पूछ सकते थे ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रहे तो हमको क्या करना चाहिए। सिमिलरली इसमें स्पेसिफिक अगर कोई पोषक तत्व का आपका कमियां है और किसमें बहुत ज्यादा होगा यानी कि टॉक्सिक लेवल में है, उस केस में भी क्या करना चाहिए, इसके लिए भी आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं, ये नंबर भी अवेलेबल है
1: जी। तो इसके बाद बात करते हैं हम मृदा सूचना प्रणाली की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में तो आप सभी जान गए होंगे, अब मृदा सूचना प्रणाली क्या है डॉक्टर साहब, ये बताएं सभी श्रोताओं को।
0: मृदा सूचना प्रणाली एक ये भी भारत सरकार का एक प्रोग्राम है
1: जी,
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मृदा सूचना प्रणाली में जैसे भागलपुर जिला का हम लोग उदाहरण लेते हैं, भागलपुर जिला में बहुत सारा ब्लॉक है, जैसे ये सॉयल हेल्थ कार्ड मिशन चलाया जा रहा है तो पूरा जिला का एक डिजिटल मैप बनाया गया है। डिजिटल मैप में पूरा डिस्ट्रिक्ट का, पूरा बिहार राज्य का, पूरा देश का भी आप डिजिटल फर्टिलिटी मैप ये बनाया गया है। फर्टिलिटी मैप मतलब उसके अंदर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जितना पैरामीटर 12 पैरामीटर है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीआईएस बोला जाता है, जीआईएस का माध्यम से ये मैप बनाया गया है। इस मैप से आपका मिट्टी का क्या स्टेटस है ये रियल टाइम आप मॉनिटर कर सकते हैं। रियल टाइम का मतलब है सिर्फ एक बार भी नहीं, टाइम इंटरवल में इसका रिविजिट किया जाएगा, दोबारा टेस्ट किया जाएगा, किसमें आप जो फसल उगा रहे हैं, जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसके बाद भी किस तरह का चेंजेस आ रहा है ये भी हम लोग रियल टाइम में देख पाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे हमारा हेल्थ भी डायनेमिक स्टेटस का मतलब है आज ठीक है, कुछ दिन के बाद खराब भी हो सकता है, इसलिए ऐसा भी मिट्टी का भी ऐसा हाल है, इसलिए इसको डायनेमिक प्लेटफॉर्म जो रियल टाइम में एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का थ्रू से जोड़ के पूरा राज्य तथा पूरा देश में बनाया गया है।
1: मतलब उसमें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो मृदा है उसमें क्या कुछ है, क्या कुछ की कमी है, जो 12 पैरामीटर्स आपने बताया उस हिसाब से
0: प्लस टाइम स्केल में एक साल में दो साल में कितना चेंजेस आ रहा है,
1: मतलब एक बार ही सिर्फ वो डाटा उपलब्ध नहीं रहता है, उस रिन्यू होता जाता है।
0: रिन्यू होता है, इसलिए इसको रियल टाइम बोला जाता है
1: जी जी।
0: तो ये इंफॉर्मेशन आज हम लोग सब लोग परेशान है, सब लोग देख रहे हैं क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका क्या इम्पैक्ट सबका ऊपर आ रहा है। एग्रीकल्चर में भी बहुत क्लाइमेट चेंज का प्रभाव फसल का पौधा भर में भी आने वाला है, तो इसलिए मृदा भी ये जो चेंजिंग क्लाइमेट के साथ कैसे चेंज हो रहा है इसका बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो ये जो सॉयल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और रियल टाइम बेसिस में ये पूरा देश

0: उसमें जाकर आपके पास आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: उसमें जैसे नमूना पंजीकरण मोबाइल ऐप,
1: ऐप का कोई नाम है
0: नहीं, ये वेब पोर्टल जो सॉयल हेल्थ DAC.gov.in है और किसान का जो ऐप है इसका नाम है किसान सुविधा।
1: अच्छा, किसान सुविधा ऐप का नाम है।
0: हाँ, इसके अंदर में नमूना पंजीकरण, सॉयल हेल्थ जो टेस्ट रिपोर्ट इसका ऐप है, फिर सॉयल हेल्थ कार्ड ऑनलाइन नहीं एक ऑप्शन रखा, ऑफलाइन के लिए भी रखा गया है अगर कोई प्रिंट आउट लेना चाहेंगे तो। फिर किसान कॉर्नर में जाके आपका नमूना आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक मतलब आपका सैंपलिंग हुआ, उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसमें प्रिपेयर हुआ कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, ये ट्रैकिंग किया जा सकता है। फिर आप अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। फिर जैसे बताया था कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा, किसका टॉक्सिसिटी है और डिफिशियंसी है, उसके लिए भी वो ब्लिंक करेगा। ब्लिंक मतलब रेड ब्लिंक करेगा, उसका मतलब है इसमें समथिंग प्रॉब्लम है, कोई टॉक्सिसिटी है और कोई डिफिशियंसी है ज्यादा, तो उसके लिए भी एक्सपर्ट ओपिनियन का ऑप्शन उसमें है। फिर फसल के लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीन्स सटीक मात्रा में कौन सा टाइप ऑफ खाद देना है। सिर्फ खाद ही नहीं, उसके साथ अगर आपके पास ऑर्गेनिक अवेलेबल है जैसे फार्मी कंपोस्ट है, फार्मी एंड मैन्योर है और दूसरा टाइप का कोई भी ऑर्गेनिक लोकल लेवल में अवेलेबल है वो भी आप डाल सकते हो। फिर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताएगा कितना खाद ऑर्गेनिक डालने से आप बचा सकते हो, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं ऑर्गेनिक को हम उपयोग करेंगे तो मृदा स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मृदा का जितना भी क्वालिटी है
1: उसको बनाए रखता है,
0: उसको बना के रखता है
1: जी। तो किसान भाइयों, आज एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर हमारे बीच डॉक्टर निंटू मंडल सर थे और उन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं और मुझे लगता है कि इसका उपयोग आप सभी करेंगे तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा मृदा के बारे में जानने के लिए कि आपके क्षेत्र में, आपके खेत में जो मिट्टी है उसमें क्या कुछ कमी है या फिर कुछ तत्वों की अधिकता है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और बताई ही नहीं जाती हैं, उसको आप कैसे सुधार सकते हैं वो सारी भी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ आप सबके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
9: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार

बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्कार, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस दर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है, या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी। हमारे साथ हैं टीकन भाभी भी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बाहर ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अब भी है, क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूं, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बच्चियां आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर

0: चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
1: चलिए सबसे पहले वही सवाल लगते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है?
0: सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है। पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करे? देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
1: ये फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल, बांझपन, शायद सबसे खतरनाक अफवाह।
2: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है, तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा, आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वे मां हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से मां है। ये अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
2: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
0: समझ में आता है, लेकिन सोचो, अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान ले, तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
2: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
0: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजार घरों तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
2: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
0: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
1: ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
3: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं, इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों, बाद में ले लेंगे।
0: पर आधिकारिक जनसंदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है, ये बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है।
2: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
0: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ

0: बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
1: अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
0: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा। अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया। यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उसी पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण हैं? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
1: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज मां है। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है।
0: जब आप ऐसे एक एक करके बताते हैं ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब गड़मड़ हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, मुद्दे को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा। अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूं? कहना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, ये टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो पूछे, क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वो पूछे, क्या इससे मैं आगे चलकर मां नहीं बन पाऊंगी, तो कहो ये झूठी अफवाह है।
1: ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है।
2: हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
0: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि ये किस लिए है, ये भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
1: बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
2: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वो हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूं क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वो बोली ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
0: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता है।
2: और मैं ये भी सोच रही हूं कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए, वहां तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौं चढ़ा लेते हैं। तो यही

0: बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुनकर होगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
1: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात। अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधिकारिक जनसंदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
0: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है। अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से, जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है, उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं।
0: और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा कहते सुनूंगी, तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
1: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत। यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाह तेज होती है पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओ, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल। और जब चुप्पी होती है, तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए। अब मैं समझ रही हूं कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है न पूछना ही बड़ी गलती है।
0: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों, तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
1: ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
0: एक बात और, मैंने देखा है जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है, लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
1: और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है, उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
0: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसीलिए मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ चलें, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुंचेगा।
1: अब एक छोटा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी, आपका जवाब क्या होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और

0: आजमा है। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। एक, एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले बस घबरा जाती थी।
2: यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरे को समझा पाना भी है।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहां जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही

0: उपलब्ध है, यानी पैसा ना होना सही इलाज के लिए बाधा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: ये बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर ये बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते। हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्च डराता है।
2: और यही कारण है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहर के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आई है तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथा, जहां लागू हो यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: यूविन का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़े आता है।
2: बिल्कुल सही, इसलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो। तकनीक मदद के लिए है, छाटने के लिए नहीं।
0: ये बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना, सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं को किसी सरकारी केंद्र पर ले चले। बहुत अच्छा आइडिया है, पास वाले में चलते हैं। तब तक हमारे स्रोतों को सेहत सही लाभ कई का गीत सुनाइए।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टेकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है, उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों की भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली। पर जब वहां बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वही उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहां बैठा इंसान भी होता है। अगर वो सम्मान से बात करे तो सेवा का असर दुगना हो जाता है।
0: और यही एक बड़ी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहां महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा ये अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, ये जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आधिकारिक संदेश साफ कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है, पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निःशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लड़कियों की बात है, हमसे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी।

0: मैं बेटी के साथ गई थी, पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, जब कुछ लक्षण होंगे तब देखेंगे, पर तब तक देर हो जाए तो।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
2: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है, पर दादी कहती हैं, हमारे जमाने में ये सब नहीं था। पति कहता है, देख लो, मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है, सरकारी चीज है, संभल कर। ऐसे में क्या करे?
0: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने निकलूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
1: इसलिए निर्णय की धुरी साफ रखो, घर की राय सुनो, पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है, पर झूठ का अधिकार नहीं है।
0: और अब मुझे ये भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वो सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वो जिम्मेदार है।
1: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
2: ये बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचारकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए SSL के जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं, जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
0: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ, फिर तारीख मिलेगी। किसी ने UN कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
1: पर तुमने पूछा ना?
0: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प हैं। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक, नहीं तो केंद्र पर भी जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
1: यही नागरिक समझ है। मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
2: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवा में जानकारी मांगना झिझक का नहीं, अधिकार का विषय है। खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों से दूरी महसूस करते हैं।
0: और एक बात, जब मैंने सुना कि ये लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसी चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
1: यही सूचना असमानता है। सुविधा होती है पर खबर नहीं पहुंचती, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाह भी पहुंच जाती है। इसलिए जानकारी को सिर्फ जारी कर देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना जरूरी है।
2: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर करता है जब वो गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
0: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
1: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बात होती है।
2: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UVIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे को अंतिम सच न माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक

0: या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: ये सूची मैं लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाता है, पर लिखी चीज साथ रहती है।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके को लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है। पहले जो डर था, अब उसकी जगह एक जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जेठानी को भी कहूंगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वो हमेशा कहती है, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूंगी, समय नहीं बनता, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं, अपने जीवन की कीमत पहचानने की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूंगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही है सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम और सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। 1. 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। 2. जहां सुविधा हो, यूविन पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो, सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। 3. डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4. सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण है। 5. परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6. सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7. जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना और उसे लेना दोनों आपकी ताकत है। और साथियों, यहां एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में न लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था जवाबदेह हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही दो तरफ की होती है, व्यवस्था को समझाना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है, क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ता है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनना पड़ता है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी संदेश जीवित रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और संस्थानों के साथ दूरी जैसी चुनौतियां हों। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा।

0: असली काम तब पूरा होता है जब घर की महिला कहे, मुझे समझ में आ गया।
1: सही कहा। पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्यों है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: और एक अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी न मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध न हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं ये भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, टिककर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले की सबसे बड़ी सीख है। सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत

जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो, और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों के स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो।

0: you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: Yo, what's up?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूले। ध्यान रखें, कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें।

गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं, तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। और बहुत सारी बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी के लिए, किसान भाइयों और बहनों, और बहुत कुछ जानने को भी आपको मिलता है। तो आज भी एक बहुत ही लाभप्रद बातें आप सभी के बीच हम रखेंगे। और आज हमारे आज विषय हैं, हम आपको बता दें कि कार्बन का प्रबंधन आप कैसे करेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर श्वेता सांभवी मैम। और मैं आपको बता दूँ, ये सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, और बहुत सारी जानकारी आज मैम हमें देंगी। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु। किसान भाइयों, आज जो मैं आपको थोड़ा कार्बन प्रबंधन मिट्टी में हम कैसे करेंगे, इस पे मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। और आज के समय में जलवायु परिवर्तन, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, कि समय के साथ जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है। तो मिट्टी है, मिट्टी में सबसे जो इम्पोर्टेंट कहिए या सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी में आपका कार्बन
0: जी।
1: तो कार्बन को मिट्टी में बनाए रहने से मिट्टी में जो जीवाणु है उनकी आपको नंबर्स या उनका जो की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इससे हम कार्बन को मिट्टी में बनाए, और जितने भी पोषण तत्व है मिट्टी में वो आपको कार्बन के मिट्टी में रहने की वजह से, जिसको हम जनरली ऑर्गेनिक कार्बन या आप उसको कहो कि जो जैविक कार्बन होता है, हम उसको वो कार्बन कहते हैं। वो ऐसा नहीं है जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो कार्बन वो आपको मिट्टी में कैद रहता है, और उससे आपके जितने भी जीवाणु है मिट्टी में उसी की वजह से वो जिंदा रहते हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जो पिछले कुछ दशक में, 2-3 दशक से पहले तो यूरोप इन सब में हुआ, संरक्षित खेती, संरक्षण खेती यानी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो आपको जैसा कि पता होगा कि भारत जो है ना,

0: भौगोलिक विभिन्नताओं से परिपूर्ण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है
1: जी।
0: हमारे देश के लगभग 58% से ज्यादा लोग अपनी जीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं और इस प्रकार कृषि रोजगार और जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन से देश की कृषि प्रभावित हो रही है, ऐसे समय में जरूरत है कि कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना जिससे फसल उत्पादन पे कोई असर ना पड़े, अच्छा उत्पादन मिलता रहे। और ऐसी ही तकनीक है संरक्षित खेती या संरक्षण कृषि, जिसको हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, या इसको किसान भाई जीरो टिलेज या सीड ड्रिल इन सब के माध्यम से जो खेती कहते हैं वो कहते हैं। यह एक पद्धति है जिसमें कि कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ और टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि मृदा, जल, वातावरण, जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। संरक्षित कृषि की वजह से जमीन की उत्पादकता में काफी इजाफा होता है, साथ ही साथ यह पानी, ऊर्जा और जमीन की उर्वरकता का भी संरक्षण करती है। संरक्षित खेती में हम क्या करते हैं ना कि सब मिट्टी की न्यूनतम जुताई की जाती है, जिससे क्या होता है कि आपको ईंधन, मानव श्रम इन दोनों की बहुत ज्यादा बचत होती है। आजकल आज के समय में आपको भी पता होगा कि ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोई भी मशीन है वो उनसे चलता है और उसकी कीमत में कितनी अत्यधिक वृद्धि हो गई। पेट्रोल आज 100 के पार है, डीजल भी लगभग 100 पहुंच चुका है। तो जब हम न्यूनतम जुताई करेंगे तो इनकी बचत होती है। और आज के समय आपको जो मजदूर है, मजदूर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो हम मजदूरी को भी बचा सकते हैं, क्योंकि हम जुताई अगर कम करेंगे तो हमें मजदूर भी कम जरूरत होगी और आपको ईंधन भी आपका कम लगेगा।
1: तो ये कुछ बातें हैं इससे जुड़ी हुई। और प्रबंधन की बात करते हैं मैम, तो किस प्रकार से हम प्रबंधन करें कार्बन प्रबंधन?
0: देखिए, कार्बन प्रबंधन के लिए क्या है ना कि मिट्टी में जैविक जो कार्बन है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका देसी खाद। देसी खाद जैसे हम गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब हरा खाद, बहुत सारे जब हम धान की खेती करते हैं तो धान से पहले हमें जो समय मिलता है उस समय हम लगा देते हैं आपको कुछ भी ढेंचा, ये सब हरा मूंग, ये सब लगा देते हैं, इसको हम हरा खाद कहते हैं और इसको हम फिर जमीन में आप डाल देते हैं। तो इनका पर्याप्त उपयोग करने से हम जैविक कार्बन को बढ़ा सकते हैं। अगर जमीन में जैविक कार्बन बढ़ता है उससे नाइट्रोजन की मात्रा खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कार्बन जो है वो नाइट्रोजन को जो जितना एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में उसको अपने आप में खींचता है। तो संरक्षित खेती में मिट्टी को की स्वास्थ्य और उससे पैदावार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो मिट्टी का सतह है उसमें फसल अवशेषों का पर्याप्त आवरण हो। आवरण मतलब कि फसल अवशेष, जैसे हम फसल काटते हैं उसके जड़ और जो ऊपर की थोड़ी ठूंठ रह जाती है उसको हम अगर अच्छी तरह से प्रबंधन करें कि उसको मिट्टी में वापस डाल दें, उससे हम क्या कहते हैं कार्बन वो जब सड़ता है कंपोस्ट बनता है, उससे आपको मिट्टी में कार्बन और दूसरे जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, दूसरे जो है वो आपको नाइट्रोजन, ये सब मिट्टी में आते हैं। अब मृदा में फसल अवशेष का स्थायी आवरण होने के कारण उसमें जो सूक्ष्म जीव है उनकी जैविक गतिविधियां बढ़ जाती है और इससे मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ना फसल को समुचित मात्रा में जितने भी पोषक तत्व है वो प्राप्त होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थों का मृदा में भौतिकी गुण, जैसे उसकी संरचना, जो मिट्टी की संरचना है, जल धारण की क्षमता है, उसका भार है, जो हम जितना उर्वरक है, जो हम यूरिया, पोटाश, ये सब जो ऊपर से डालते हैं, इसका उपयोग, इसके जो उपयोग क्षमता, मतलब हम जितना डालते हैं उतना आपको जो आपके पैदावार है या हम जो लगाते हैं उसको वो मिल सके, जो पौधे लगाते हैं उसको वो मिल सके। अगर कार्बन रहेगा तो वो कार्बन उसको जितना प्रदान करने में, उसको उपयोग करने में मदद करता है। जो पोषक तत्व है, अगर हम जैसे बारिश हो गई तो पोषक तत्व क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व आपका बारिश के पानी के साथ निकल जाते हैं, उसको बह जाता है, तो हम रिटेंशन मतलब कि उसको रोकना। तो अगर कार्बन मिट्टी में रहता है तो उसको रोकते हैं। और जो ये खाद, ये कंपोस्ट, जो हम देसी खाद, जो हम गोबर खाद है, या हम कचरा को खाद बना देते हैं, बहुत सारा अभी हम लोगों ने देखा है कि जो सिटी वेस्ट है या घर का कचरा, उसको कहा जाता है कि अलग अलग रखिए, आप किचन के कचरे को अलग रखिए और जो प्लास्टिक है, शीशा है, इस टाइप का टिन वगैरह को अलग रखिए और इसको हम सिर्फ खाद बना देंगे। और इससे क्या होगा कि उसको खाद बना के हम उसको खेत में डाल सकते हैं। जो मिट्टी के आसपास जो जड़ है, जो पौधे उसके जड़ के आसपास उसको हम

0: मतलब साइंटिफिक टर्म्स है राइजोस्फीयर कहते हैं. तो इन राइजोस्फीयर में क्या है ना कि जितने भी सूक्ष्म तत्व है आपके बैक्टीरिया फंजा ये सब जीवाणु जो है ये मदद करते हैं सारे पोषण तत्व को उपलब्ध कराने में, उसकी उपलब्धता को बढ़ाने में. तो जितना खाद रहेगा उसमें उतने जीवाणु ज्यादा पैदा लेंगे. केमिकल्स में कभी भी जीवाणु नहीं हो सकते हैं. तो इन सब की वृद्धि के लिए हम केचुआ खाद और ये सब डालते हैं जिससे मिट्टी में जैविक कार्बन जो है वो हम उसको बढ़ा सकते हैं और उसको हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं.
1: जी तो मैम, अगर जलवायु की हम बात करें तो जलवायु में इसकी क्या भूमिका है अगर हम ये सारे प्रबंधन करते हैं तो?
0: अब इन सारे प्रबंधन से क्या होता है कि जितना हम अभी तक देखिए कृषि क्या है, मुख्यतः कृषि के तीन मुख्य स्तंभ है, मिट्टी, पानी और बीज. लेकिन अभी जो परंपरागत कृषि तकनीक जैसे कि अत्याधुनिक जुताई हो रही है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है और जैविक खाद का उपयोग कम हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत गिरावट आ गई है. अब जितना मिट्टी में उपस्थित जितना जैविक कार्बन है उसको समान रूप से सभी जीवाणु इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उससे मिट्टी की जो भी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण है ये इसमें कमी आ रही है. अब इन कमी और जो जलवायु में जो परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी में देखिए मिट्टी में जो जितने भी जैविक आपके जीवाणु रहते हैं वो आपको एक तरह से बैलेंस करते हैं. बैलेंस मतलब बनाए रखते हैं. अगर मिट्टी में पानी ज्यादा रहता है तो वातावरण में वही पानी अगर रहता है तो वातावरण के टेम्परेचर को, उसके तापमान को नियंत्रण करने में मदद करता है. क्योंकि वो जब मिट्टी जब धूप होती है तो वही पानी पहले भाप बनता है तो मिट्टी बहुत जल्दी गर्म नहीं होती. और हाँ, तो उस तरह से क्या होता है ना कि अगर जो वैश्विक उष्मीकरण है यानी जो गर्मी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इनको कम करने, इसको कम करने में जो ये जैविक कार्बन है ये मदद करता है. वो वातावरण से जो भी जो आपका उष्म है उसको टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने में उसको मदद करता है. इस तरह के प्रबंधन से सिर्फ ये नहीं होता है कि हम उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, सिर्फ कि पौधों के आप उत्पादकता को बढ़ाते हैं, इसके साथ आप वातावरण में जो जितने भी हार्मफुल यानी जो आपके कीटनाशक इन सब का जो आपके जो निकलते हैं उससे जो भी आपको जो आपको हानि कर सके, हानिकारक जो पदार्थ सब निकलते हैं केमिकल्स, वो आपके वातावरण में जो जाते हैं उसको ये अपने अंदर सोख लेता है. उससे वातावरण आपका प्रदूषित नहीं होता. अगर वातावरण जो प्रदूषित होता उसी से आज की स्थिति में हमारा जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि जो ऊपर के सतह है उसमें ये केमिकल्स जाके जमा हो रहे हैं और उसकी सतह में छेद कर रहे हैं, जिससे हम जो आपका ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का मेन है कि हम उसमें आपका ओजोन लेयर जो है उसमें आपको छेद हो रहा है और वो ओजोन की परत पतली होने या उसमें छेद होने की वजह से वो किरणें हमारे तक पहुंच रही है. तो मेनली जो केमिकल्स है इनकी वजह से, अगर हम केमिकल्स को वातावरण में कम जाने दें, इसको हम जमीन में ही रख लें, तो ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा और उसके पोल्यूशन को रोकेगा. तो बहुत मदद करता है. अगर कार्बन मिट्टी में अच्छा रहे तो ये सिर्फ आपके पैदावार के लिए नहीं, आपके पौधों के लिए नहीं, आपके वातावरण को भी बहुत तरह से संरक्षण प्रदान करता है.
1: जी, और एक अंतिम सवाल ये है जो अक्सर इस ये जानना चाहते हैं हमारे श्रोतागण और हमारे किसान भाई कि मिट्टी पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि मिट्टी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए कि मिट्टी अच्छी होगी तभी जो फसल है वो अच्छे होंगे. तो क्या इसका क्या असर होगा मिट्टी पर, वो भी बता दें मैम.
0: देखिए, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन के बढ़ाने मात्रा बढ़ने से मिट्टी का आपका मिट्टी का स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, जो खाद्य सुरक्षा है मतलब जो आपके फूड है उसमें पेस्टिसाइड या किसी भी चीज के इनकी गुणवत्ता को हम कम बढ़ा सकते हैं. जैसे पेस्टिसाइड को हम मिट्टी में ही रख लेंगे, कार्बन अपने में रख लेगा, तो वो खाने में या उस फल फूल में नहीं जाने देगा. जो जल है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है. और हम कार्बन अच्छे रहने से हम रसायन का प्रयोग हमको कम करना होता है, क्योंकि जो आपको जो भी पोषक तत्व है कार्बन की वजह से वो वातावरण से मिट्टी में जाता है और उससे आपको मिल जाता है. अब इससे भूमि को अपरक्षण भी को भी रोका जा सकता है. जो हम कहते हैं कि बारिश होती है और बहुत ऊपरी तह से बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स जो बह जाते हैं पानी में, हाँ, तो वो उसको वो रोकने में सफल रहता है.
1: मतलब बैलेंस बनाए रखने में. जी
0: हाँ, बैलेंस बनाया रहता है. आपका पोषण प्रबंधन, खाद और इन सब का प्रयोग से आपका जल संरक्षण और इसका संरक्षण होता है. मतलब वो जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर का रिटेंशन, पानी का रिटेंशन, पानी को हम

0: सकते हैं मिट्टी में और लंबे समय तक वो पानी उपलब्ध होता है। एक अनुमान के अनुसार कहा गया है कि अवक्रमित मिट्टी में केवल एक टन कार्बन युक्त मिट्टी बढ़ा देने से प्रति हेक्टेयर फसल को कई किलोग्राम तक बढ़ाया जाए। अगर हम किसी तरह एक टन कार्बन एक हेक्टेयर में हम उसको कार्बन को रिटेन कर सके मिट्टी के अंदर, तो हम कई केजी तक उसकी फसल को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और मिट्टी में जितने उपस्थित कार्बन से जितने भी जीवाश्म है उससे निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस को हम प्रतिवर्ष 75% तक अवशोषित करने की क्षमता रखती है। और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के दौर में यह सबसे बड़ी राहत की बात हो सकती है। अगर हम मिट्टी में कार्बन बढ़ाए तो 75% तक हम जितना भी आपके हार्मफुल है एलिमेंट्स जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, ऐसे हम जो भी गैसेस निकल रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कार्बन कितना ज़रूरी है मिट्टी के लिए, फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए। तो आशा करते हैं कि इस प्रबंधन को आप अपनाएंगे और अच्छे से खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।

0: कॉलेरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस, एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
6: मैम आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
7: जी,

0: जैसे मैं पहले बताना चाहूंगी कि बैसिलस किसी को पता नहीं है, जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है, या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं, बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, उसी के तरह बैसिलस हो गया या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
1: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बैसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है।
0: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफून की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कंपटीशन करता है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोलैसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
1: तो मैम, अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बैसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है,
0: जी,
1: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है,
0: जी।
1: तो मैम, किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बैसिलस?
0: तो जैसे मैंने बताया पहले से ही कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से, मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते हैं कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीट ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम, अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज़ करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है। तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले

0: जो है फफूंद नाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंद नाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इस पे इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 liter पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 gram टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंद नाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। अब अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं, जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंजीसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडी बर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगरजी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगरजी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाज़ार में वो आसानी से मिल
0: जाए। जी बिल्कुल।
1: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
0: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से

0: ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है, जो बाकी के जैव नियंत्रण कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहाँ पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज़्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में। इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप ज़रूर बैसिलस का इस्तेमाल करें, और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में, आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है, या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस, और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
7: So, see you at the vaccination center soon.
8: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: दोस्तों आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हाँ, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है, बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया, और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है।
1: और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं।

जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी शुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है, और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
5: Yo, what's up?

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
0: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
1: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज़ करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
0: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
1: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लॉविंग करते हैं, और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लॉविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है? हम सीधी बुआई करने के लिए, जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं, उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन

पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियाँ, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को, तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पडलिंग यानी कि हम कई बार, एक पडलर होता है तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे वो अच्छे अच्छे फाइन, मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेते हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी, जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे, तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पर कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो, और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपेरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने प्लांटिंग के समय बताया, हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डेपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डेपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक पडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्ले ही होती है,
स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से।

0: तो हम इरिगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरिगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डेपॉग नर्सरी से, वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं, अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स और सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20-25 दिन पुराना निकाला था, तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं, तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ, और विशेषता ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें, तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग, मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, वैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए आप उन तीनों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियाँ होती है।
0: जी,
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात

0: जमीन है उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं, तो जैसे एक से एक 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले एक दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड, तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग, मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था डेपोक नर्सरी, तो ये डेपोक नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगे, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है, तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डेपोक नर्सरी। तो ये डेपोक नर्सरी हम श्री विधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डेपोक नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्री विधि में यूजुअली डेपोक नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बेसिक नर्सरी हैं हमारी।
1: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितने तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.

0: see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें।

गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं, तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, अंग उमंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम अंग की बात करते हैं, अंगिका की बात करते हैं, अंग प्रदेश की बात करते हैं, तब हमारे दिमाग में, या फिर आप जो भागलपुर से नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने कभी ना कभी भागलपुर का नाम सुना है, तो वो सिल्क सिटी की बात ज़रूर करेंगे। सिल्क जो हमारे भागलपुर का बहुत मशहूर सिल्क है, तसर सिल्क, जो अपने देश में तो अलग अलग हिस्सों में जाता ही है, विदेशों में भी तसर सिल्क की बहुत मांग होती है। तो किस तरीके से हमारा भागलपुर, हमारा प्यारा भागलपुर सिल्क सिटी बन गया और क्या इसका इतिहास रहा है, क्या ये मुगलों के काल में शुरू हुआ या अंग्रेजों के समय पे शुरू हुआ या फिर इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, आज इस बारे में हम जानेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे। बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। और अगर हम बात करें ना कि भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जो जाना जाने लग गया है और इतनी प्रसिद्धि मिली है भागलपुर के सिल्क को, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? माना जाता है कि प्राचीन काल से भागलपुर का नाता सिल्क से रहा है। और अगर हम भागलपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो उनमें से एक नाम था चंपा, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। और चूंकि हमारा भागलपुर गंगा नदी के किनारे है और आपको ये पता है कि आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो शहर या जो भी राज्य नदी के किनारे बसा होता है, वहाँ पर जो व्यवसाय होता है वो काफ़ी फलता फूलता है। आपने इतिहास में ये सारी बातें पढ़ी होंगी। तो क्या हुआ कि गंगा नदी एक व्यापारिक मार्ग था और गंगा नदी के किनारे हमारा अंग महाजनपद, तो माना जाता है कि यहाँ रेशम और वस्त्र व्यापार की परंपरा काफी पुरानी है। और क्योंकि गंगा मार्ग से वस्त्रों का आदान प्रदान होता था तो उनमें एक सिल्क भी था। अगर बात करें तो खासतौर से पूर्वी भारत यानी कि मगध या बंगाल से यहाँ पर वस्त्रों का

आवागमन होता था। अगर हम उस वक्त की मतलब प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में प्रत्यक्ष रूप से जो कारखाना के स्तर हैं उसके प्रमाण काफी कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि उस वक्त वस्त्र की यहाँ पर बुनाई होती थी और रेशमी कपड़ों के व्यापार के भी संकेत कई सारे मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा भागलपुर है यहाँ पर काफी वन हुआ करता था, जंगल हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो वन आधारित तसर है यानी कि रेशम है इसका उत्पाद यहाँ पर काफी अच्छा होता था और स्थानीय स्तर पर भी इसे काटा जाता था, बुना जाता था। इसी वजह से माना जाता है कि की जो परंपरा रही होगी काफी प्राचीन रही होगी। और अंग जनपद को हम चंपा के नाम से इसलिए भी जानते थे क्योंकि यहाँ पर चंपा के पेड़ काफी ज्यादा थे। और वहीं अगर हम पाल काल की बात करें ना, मतलब कि 8वीं से 12वीं सदी के बीच में, तो उस वक्त पे इस क्षेत्र में पाल शासकों का काफी प्रभाव था। और उस वक्त का जो प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसके कारण यहाँ पर काफी बौद्ध भिक्षु भी आते थे, उनका भी आवागमन बढ़ा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यात्रा काफी बढ़ी। और जब लोग बाहर से आते हैं तो व्यापार भी फलता फूलता है। तो ऐसे में जब उनसे संपर्क हो रहा था तो उनके वस्त्रों को देखा गया जिसमें रेशमी कपड़े भी शामिल थे, तो इन कपड़ों का भी आदान प्रदान बढ़ा। और वहीं अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में रेशम उत्पादन की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिसे ये संकेत मिलता है कि भागलपुर क्षेत्र भी इस कारीगरी से जुड़ा हुआ था। और अब तक तो हमने बात की कि प्राचीन काल और मध्य काल में क्या हुआ, लेकिन मुगल काल में देखा जाता है कि सिल्क का जो व्यवसाय था इसे काफी विस्तार मिला। मुगलों ने क्या किया, वो कर प्रणाली लेकर आए, बाजार और संरक्षण भी उन्होंने दिया बहुत सारे मामलों में। तो इस माध्यम से क्या हुआ कि जो कारीगर थे जो इधर उधर फैले हुए थे अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे, तो अब कारीगरों को संगठित मुगलों ने किया था। और इसके साथ ही शाही दरबार में रेशमी वस्त्रों की मांग काफी अधिक थी, तो इसकी वजह से भी रेशम का उत्पादन बढ़ा और इसकी जो पहचान है वो भी काफी मजबूत हुई। शाही दरबार में मांग थी तो पहचान तो मजबूत होनी ही थी। और प्राचीन काल में जो उल्लेख है रेशमी वस्त्रों के, वो बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में इसके दस्तावेजी प्रमाण काफी प्रबल रूप से मिलते हैं और बड़े पैमाने पर इसका उल्लेख मुगल काल में दिखता है और बहुत स्पष्ट दिखता है। मध्य काल में रेशम उद्योग का काफी विकास हुआ। मुगल काल में माना जाता है कि भागलपुर रेशम बुनाई का प्रमुख केंद्र बन गया था और यहाँ पर स्थानीय कारीगर हथकरघा यानी कि जो अभी भी आप देखेंगे चंपानगर में हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता है, तो हैंडलूम से रेशमी कपड़े तैयार करते थे। और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो तसर रेशम के लिए बहुत अनुकूल था, तो इस वजह से भी यहाँ पर तसर रेशम का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। और तसर रेशम के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाही दरबारों में इसकी मांग काफी ज्यादा थी, तो ये एक विशेष परिधान में उस वक्त पे शामिल हो चुका था। वहीं अगर हम बात करें अब ब्रिटिश काल की, तो माना जाता है कि जो भी सिल्क के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए ये स्वर्णिम दौर था, क्योंकि 18वीं से 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भागलपुर के रेशम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया, क्योंकि वो देश से बाहर भी जा रहे थे और उनका मुख्य कारण तो यही था ना भारत में आने का कि वो व्यापार कर सके। और यहाँ भागलपुर का जो तसर सिल्क था इतना कमाल का था कि उन्हें इसमें भी अवसर दिखा, तो उन्होंने यहाँ पर के जो तसर सिल्क थे उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया और फिर यहाँ से रेशमी कपड़े यूरोप निर्यात होने लग गए थे ब्रिटिश काल में। तब भागलपुरी सिल्क की एक पहचान बन गई थी और ये एक ब्रांड बन गया था कि ये भागलपुरी सिल्क है। और इस समय में बहुत बड़ी संख्या में बुनकर परिवार इस उद्योग से जुड़ गए थे, पहले से जुड़े हुए थे लेकिन जब ये एक ब्रांड बन गया और भागलपुरी सिल्क को एक बहुत ही मजबूत पहचान मिली, तब बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए थे तसर सिल्क के व्यवसाय से। अगर हम भागलपुरी तसर सिल्क की विशेषताओं की बात करें तो इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा होता है थोड़ा, और ये काफी खूबसूरत दिखता है, ये हल्का होता है पर मजबूत होता है और काफी टिकाऊ भी होता है। और कहते हैं तसर सिल्क को कुछ लोग एसी, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप तसर सिल्क के कपड़े पहन रहे या फिर चादर ओढ़ रहे हैं तो फिर ये गर्मियों में आपको ठंडे का एहसास कराते हैं और वहीं सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखने की क्षमता भी होती है तसर सिल्क में। और ख़ास तौर से अभी भी बहुत जो जिन्हें सिल्क की अच्छी पहचान है, जो सिल्क के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद करते हैं, वो ये भी पसंद करते हैं कि उनके पास जो सिल्क के उत्पाद पहुँच रहे हैं, जो कपड़े पहुँच रहे हैं, वो हाथ से बुने हों और पारंपरिक डिज़ाइन में हो, उसकी बात ही अलग होती है, उसका एहसास ही अलग होता है।
और भागलपुर में अभी भी कुछ जगहों पर हाथ से बिल्कुल पारंपरिक तरीके से सिल्क के जो चादर है वो बनाए जाते हैं, सिल्क की साड़ियां बनाई जाती

है। और लेकिन अब हम बात करें तो आज भी हजारों परिवार रेशम के उद्योग से जुड़े हुए हैं। पावर लूम है और आधुनिक डिजाइन का भी प्रयोग किया जा रहा है और ये प्रयोग बढ़ा भी है क्योंकि वो सस्ते होते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं, तो वैसी भी डिमांड आज के वक्त पे बन रही है जिसकी वजह से आधुनिक डिजाइन का प्रयोग बढ़ा है। वहीं सरकार द्वारा भी कई सारे सिल्क क्लस्टर योजनाएं भी चलाई जाती है, लेकिन उद्योग को कच्चे माल की कमी होती है और मशीनों की जो लागत आती है और बाजार में भी एक प्रतिस्पर्धा आ गई है, एक कॉम्पिटिशन आ गया है क्योंकि अब बहुत सारे लोग सस्ता चाहते हैं, सुंदर चाहते हैं, फिर चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। तो इस वजह से अब बाजार में आधुनिक डिजाइन आ गए हैं और जो हाथ से बनाया करते थे उनकी मांग थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी जिन्हें सिल्क की पहचान है, जिन्हें सिल्क के कपड़े काफी अच्छे लगते हैं, वो आज भी हाथ से बने हुए सिल्क की डिमांड करते हैं और ओरिजिनल सिल्क की डिमांड करते हैं। दोस्तों हमारे भागलपुर में तो तसर सिल्क काफी फेमस है, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग तरह के जो प्राकृतिक रेशम है वो पाए जाते हैं और जिनमें से कि चार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो मलबरी रेशम है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा उत्पादित रेशम है तो वो मलबरी रेशम ही है, और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है तो शहतूत, जिसे कि हम अंग्रेजी में मलबरी कहते हैं, उसके पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उसी से मलबरी सिल्क का उत्पादन होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। और मलबरी सिल्क की ये विशेषता होती है कि ये काफी चिकना होता है, चमकदार होता है और मुलायम भी होता है। ये खास तौर से कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। वहीं हम तसर सिल्क के बारे में तो अब तक बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि ये वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कीड़ों से बनाया जाता है, और क्योंकि हमारा भागलपुर, हमारा जो अंग जनपद था, एक वक्त पे यहाँ पर काफी घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ पर जो कीड़े होते थे उनसे तसर सिल्क बहुत ही आसानी से बनाया जाता था। और ये हल्का सुनहरा रंग का होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, और अभी मैंने बताया कि इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये एसी जैसा फील देता है, गर्मी में आपको ठंडे का एहसास कराएगा, ठंड में आपको गर्मी का एहसास कराएगा। और इसका जो उत्पादन होता है तसर रेशम का, वो खास तौर से बिहार में होता है, बिहार में विशेषकर भागलपुर में होता है, इसके अलावा झारखंड में होता है और छत्तीसगढ़ में भी तसर रेशम काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा एरी सिल्क भी है, ये अरंडी के पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उससे ये प्राप्त किया जाता है। ये मुलायम काफी होता है, गर्म होता है, और इसे कहते हैं कि ये अहिंसा सिल्क भी है क्योंकि इसमें ना कीड़े को बिना मारे ही धागे से निकाल दिया जाता है। अगर आपको सिल्क बनाने के प्रोसेस के बारे में बताएं तो जो कीड़े होते हैं उन्हें पहले पानी में खौलाया जाता है, उससे क्या होता है कि कीड़े मर जाते हैं और उनके चारों तरफ जो रेशे होते हैं फिर उसे निकाला जाता है। लेकिन एरी रेशम इनसे थोड़ा अलग होता है, इसमें कीड़े को मारने की प्रक्रिया नहीं होती है, बिना कीड़े को मारे ही इसे सिल्क निकाल लिया जाता है, और ये खास तौर से असम और उत्तर पूर्व भारत में काफी प्रचलित होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें की हिंसा नहीं पसंद है और वो नहीं चाहते कि किसी को भी नुकसान पहुंचे, तो वो एरी रेशम का उपयोग ज्यादा करते हैं। वहीं एक और सिल्क है मूंगा रेशम, ये केवल असम में पाया जाता है। इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा पीला होता है और ये काफी टिकाऊ होता है और ये काफी महंगा भी होता है। तो ये जो कुछ प्रकार के रेशम है वो अपने भारत में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भागलपुर में खास तौर से तसर सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं, और तसर सिल्क आज भी भागलपुर से देश के अलग अलग हिस्सों में और साथ ही विदेशों में भी इसकी मांग की जाती है तसर सिल्क की। तो आपके पास भी शायद कोई तसर सिल्क के कपड़े होंगे, कोई शॉल होगा और उस पे मंजूषा या फिर मधुबनी का काम करवा लीजिए तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको बाजार में भी ऐसे कपड़े मिल जाएंगे, जहां पर आप सिल्क के कपड़े लेने जाएंगे वो आपको ऐसे कपड़े दिखाएंगे जो कि हाथ से बुने हुए हैं, उसके ऊपर हाथ से उस पे कलाकारी की हुई है, तो वो अलग फील देता है, ऐसा महसूस कराता है जैसे आप अपने जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और अंग उमंग कार्यक्रम में हम यही तो करते हैं, अपनी मिट्टी के बारे में बताते हैं, अपने अंग प्रदेश की मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए आज अंग उमंग कार्यक्रम में। इतना ही, बस जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि ध्यान रखें कि जहां भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो इससे सिर्फ आप खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाएंगे और इससे हमारे शहर की तस्वीर भी बदलेगी। तो थोड़ा भी जहां भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई का ख्याल जरूर रखें। इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए।

0: आगे जीरो जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं कोदो मिलेट के बारे में। कोदो मिलेट जो कि काफी फायदेमंद होता है किसान भाई बहनों के लिए भी और जो उसका उपयोग करते हैं उनके लिए भी। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे कोदो मिलेट की खेती की जाती है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर, सबसे पहला सवाल कि क्या कोदो एक जलवायु अनुकूल फसल है?
6: कोदो बिल्कुल ही जलवायु अनुकूल सी फोर क्रॉप है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की श्री अन्य फसलों में कोदो मिलेट्स भी एक महत्वपूर्ण श्री अन्य या पोषक अनाज अथवा मोटे अनाज की फसल है। ये सभी मोटे अनाज या कंदन फसलें या पोषक अनाज या फिर हम श्री अन्य की फसलें कहें, ये सभी के सभी जलवायु अनुकूल है, क्योंकि इन सबको बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। सुखाड़ की स्थिति में भी ये अपना उत्पादन दे जाती हैं और साथ ही साथ कम उर्वर जमीन में भी इनका उत्पादन मिल जाता है। उच्च तापमान पर भी ये सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो आज जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक लेवल पर जल की कमी हो रही है, सुखाड़ की स्थिति आ रही है, तापमान का बढ़ना आप लोग जान ही रहे हैं, तो ऐसे ही समय में श्री अन्य फसलों का महत्व बढ़ जाता है। बिहार में देखा जाए तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों सिचुएशन साथ साथ रहता है। साउथ बिहार में सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है, जबकि नॉर्थ बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इस वर्ष हमारे मौसम वैज्ञानिकों का जो पूर्वानुमान दिया गया है और हम लोग देख भी रहे हैं कि

0: ई एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात विगत वर्षों की तुलना में कम हो रही है और अनुमान है कि इस वर्ष 40% तक बरसात में कमी होगी। तो ऐसे विषम परिस्थिति में ये जो श्री यानी कि विभिन्न फसलें हैं सावा, कोदो, कौनी, चीना, ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और निश्चित तौर पे किसान भाइयों के लिए एक लाभ की लाभकारी फसल है।
1: जी सर, अगर हम अब बात करें कि कैसे कोदो मिलेट की खेती करनी चाहिए और कब करनी चाहिए।
0: देखिए, कोदो मिलेट की खेती हमारे किसान भाई लोग बहुत परंपरागत तरीके से बहुत प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। हम 1960 के बाद ही गेहूं चावल पर निर्भरता डिपेंड किए हैं, तो ये कोई नई फसल नहीं है, ये प्राचीन फसल है। लेकिन चूंकि गेहूं और चावल की उत्पादकता ज़्यादा मिलने से ये सभी फसलें विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य की स्थिति है कि बरसात में कमी हर जगह होने लगी है, हर रीजन में बरसात कमी होने लगी है, तो वहाँ इन फसलों का महत्व तो बढ़ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कोदो मिलेट को अपने बिहार राज्य की बात करें तो जितने भी किसान भाइयों की ऊपरी ज़मीन है जहाँ जल जमाव नहीं हो पाता है, ऊपरी और मध्य जमीन में, हम कोदो मिलेट को बरसात शुरू होने से या यो कहें कि 15 जून से लेकर के अगर हम 15 जुलाई के बीच में करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद खेती साबित होती है। इसके लिए हमें खेत की तैयारी कर लेना चाहिए, अच्छे से तैयार 2 से 3 बार जुताई किया हुआ खेत ज़्यादा सही रहता है। हालांकि आजकल हम लोग इन सभी मिलेट फसलों को जीरो टिल विधि से भी बुआई कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो किसान भाइयों के लिए अपना ऑप्शन है, जीरो टिल मशीन है तो जीरो टिल से भी बुआई कर सकते हैं, अदरवाइज 2 से 3 बार जुताई करके पाटा चलाने के बाद खेत तैयार हो जाता है। उसमें खाद की मात्रा अभी जो हम बताएंगे उसको डाल करके इसकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जब भी समय मिले कर लेना चाहिए। बात आती है इसमें उर्वरक प्रबंधन की, क्योंकि जितने भी हमारी ये मिलेट की फसलें हैं इनको धान की कंपेयर में जस्ट आधी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। कोदो मिलेट को भी कहें तो किसान भाई लोग आप अपने खेत में जितना धान के खेत में खाद देते हैं उसका जस्ट आधा देना है इसमें, आधे खाद में और बिना सिंचाई के भी ये खरीफ में आराम से फसल आपको प्रति एकड़ 9 से 10 क्विंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है कोदो मिलेट। तो अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो इसके लिए जो रिकमेंडेड है वो प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 35 से 40 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत पड़ती है। अब जो किसान भाई लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए एक हम मोटी मोटा बता दें कि आपको लगभग 50 किलोग्राम यानी एक बोरा यूरिया, 45 से 50 किलोग्राम यूरिया और एक बोरा DAP, आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ पर्याप्त हो जाता है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें, जबकि नाइट्रोजन यानी जिसको हम यूरिया के रूप में दे रहे हैं, हमने बताया एक बोरा यूरिया पर्याप्त होता है जो 45 किलोग्राम की होती है, तो यूरिया की मात्रा 2 बार में देना है। पहला बुआई के 20 से 22 दिन पर जब इसमें कल्ले यानी टिलर निकलना शुरू करते हैं, दूसरा बुआई के करीब 55 से 60 दिन पर जब इसमें बालियां निकलने की स्थिति में होती हैं। चूँकि कोदो मिलेट जनरली 100 से 105 दिन की फसल है तो नाइट्रोजन को लगभग कम से कम 2 बार में देना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप देखें तो जितना आप अपने धान में खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, उसका लगभग आधा मात्रा ही इसमें देने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसका बीज दर का, तो प्रति एकड़ की बात करें तो केवल 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त हो जाता है प्रति एकड़ के लिए। बुआई की विधि की बात किया जाए तो इसको कतारों में अगर बुआई किया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। कतार से कतार की दूरी आप 22 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं, अर्थात 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय विशेष ध्यान देना है कि बीज की गहराई उथली रहे। जैसे हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो 1 इंच से कम ही गहराई रखते हैं, मतलब गहराई किसी भी कंडीशन में 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर अगर बोते हैं तो सबसे अच्छा जमाव होता है। तो विशेषकर हमें यही ध्यान देना होता है जब हम मशीन से बुआई करते हैं, किसी कारणवश हमारा सीड ड्रिल 1 इंच से ज़्यादा गहराई पर बो रहा है तो दिक्कत होता है, उसके लिए ध्यान दिया जाता है।

0: कि जब हम सीड ड्रिल से या जीरो ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हों तो हमारा 10% बीज जमीन पर दिखना चाहिए। अब 10% बीज अगर जमीन पे इक्का दुक्का दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका गहराई सही है। अगर कोई भी बीज जमीन पर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप गहरा बो दिए हैं, फिर आपका जमाव नहीं होगा। तो इसलिए एक विशेष सावधानी देना है कि गहराई 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में रखें, किसी भी कंडीशन में 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न बोएं। अब बात आती है इसमें
1: उत्तम प्रजातियों की जी सर,
0: क्योंकि हम अगर परंपरागत प्रजातियां लेते हैं तो उसका उत्पादन कम है। कोदो की अभी हमारी यूनिवर्सिटी बिहार कृषि विश्वविद्यालय अभी हम लोग के पास कोई अपनी प्रजाति नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर की प्रजातियों को पिछले 3 वर्षों में यहाँ टेस्ट किए हुए हैं, जिसमें इंदिरा कोदो एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है। समझ लीजिए कि इंदिरा कोदो वन लगभग 105 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। 12 क्विंटल दाने आपको प्रति एकड़ मिल जाते हैं मात्र 105 दिनों में। दूसरी प्रजाति है जेके 155 भी अपने आप में बहुत अच्छी प्रजाति है और लगभग यह भी 11 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे देती है, करीब 105 से 110 दिनों के बीच में पककर तैयार हो जाती है। तीसरी प्रजाति है जेके 439 और अगला है जेके 65। इन सब प्रजातियों का भी उत्पादन करीब 10 क्विंटल तक प्रति एकड़ मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो हमारी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, हाई यील्डिंग प्रजातियां हैं, जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं, इनका ही सिलेक्शन करें। तो इसमें इंदिरा कोदो एक अथवा जेके 155, जेके 65 इन प्रजातियों को का चयन कर सकते हैं। जो भी किसान भाई अभी इच्छुक हैं वो अभी हम 20 किसानों को फ्री में बिल्कुल निशुल्क 2-2 केजी बीज डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर इंदिरा कोदो एक और जेके 155 का यूनिवर्सिटी से उपलब्ध करा देंगे। आप इसको अपने खेतों पे लगाएं और दूसरे किसान भाइयों को भी प्रोत्साहित करें।
1: जी सर, अगर अब हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो वो किस प्रकार से किया जाए?
0: कोदो देखिए एक बहुत ही मतलब खरपतवार के प्रति सेंसिटिव फसल है। अगर हम बुआई के 15 से 35 दिन के बीच तक खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं उत्पादन में 50-60% तक की गिरावट हो जाती है। इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन का उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडीमिथिलीन का प्रति हेक्टेयर 500 से 800 लीटर पानी में आवश्यकतानुसार घोल करके छिड़काव करना चाहिए। अब सक्रिय तत्व का मतलब है कि 30% का आता है, तो बाजार का प्रोडक्ट जो है 3.3 लीटर हो जाता है। तो आप किसान भाइयों के शब्दों में कहें तो लगभग 1 एकड़ में 1.25 लीटर पेंडीमिथिलीन जो बाजार का प्रोडक्ट है वो पर्याप्त हो जाता है। आवश्यकतानुसार आप 400 लीटर पानी में घोल करके, या आप पानी कम भी कर सकते हैं, 200 लीटर में भी घोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ड्रोन से करेंगे तो मात्र 50 लीटर पानी में ही हो जाएगा, लेकिन आपका दवा जो है प्रति एकड़ 1.25 लीटर पेंडीमिथिलीन पड़ना चाहिए बाजार का प्रोडक्ट। तो इसे बुआई करके तुरंत बाद आप स्प्रे कर दीजिए खेत में, इसे अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आएंगे। फिर उसके बाद बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए 2,4-D 58% का रसायन लिया जा सकता है, जिसका लगभग 25 ml दवा प्रति टंकी पानी में ले लिया जाए, या यूं कहे 1.5 ml प्रति लीटर की दर से आप व्यवहार करें तो आ जाता है करीब 24 से 25 ml प्रति टंकी। टंकी जो 15 लीटर की होती है उसे करिए, प्रति एकड़ लगभग आपको 10 टंकी पानी देना जरूरी हो जाता है। तो इससे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मर जाते हैं, फील्ड में अन्य प्रकार के खरपतवार जो बच जाते हैं उसको हाथों द्वारा निराई करके समाप्त किया जा सकता है।
1: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप किसान भाई बहनों को 2 किलो बीज मुफ्त में दे रहे हैं, तो इसके बारे में एक बार थोड़ा विस्तार से बता दीजिए।
0: इसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है मिलेट उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट वैल्यू चेन। तो

0: इस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट के तहत हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसमें हम जो अच्छी प्रजातियां हैं उन्हीं का बीज किसान भाइयों को देंगे। तो जो जेके 155 है उसका बीज हमारे पास उपलब्ध है, इंदिरा कोदो 1 का बीज भी उपलब्ध है। तो लगभग 20-25 किसानों को भी हम फ्री में जो पहले आएंगे पहले ले जाएंगे 2 किलो बीज हम दे देंगे। बाकी जो इंटरेस्टेड किसान हैं वो बिहार सरकार के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके वहां से भी बीज प्राप्त कर लेंगे, वहां भी फ्री में बीज मिल जाएगा। और वहां एक सुविधा और है, बिहार सरकार मिलेट उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपया प्रति एकड़ उनके खाते में इनपुट के रूप में पैसा दे रही है और 2,000 रुपये का ऑलरेडी इनपुट दे देती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बिहार सरकार प्रति एकड़ आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेट उगाने के लिए आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दे देती है, जिससे आपका इसके प्रति रुझान बढ़े। तो इस अवसर का लाभ लेना चाहिए।
1: सर, किसान भाई बहन क्या कैसे मतलब बीज प्राप्त कर सकते हैं वो डायरेक्ट यहाँ विश्वविद्यालय
0: में आकर के, मेरे यहाँ भी आकर के बात कर सकते हैं या डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म में जाकर के वहाँ से भी बीज ले सकते हैं।
1: जी सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई कोदो मिलेट के बारे में। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले एक ऐसे फसल के बारे में जो खास तौर से आजकल के जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावा मिलेट की उन्नत खेती के बारे में। और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं शस्य विज्ञान विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
1: सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या जब हम सावा मिलेट्स की बात करते हैं तो ये जलवायु अनुकूल फसल है?
0: देखिए, सावा मिलेट्स जिसको हम बार्नयार्ड बोलते हैं, ये जलवायु अनुकूल फसल है। जलवायु अनुकूल का मतलब ही है कि ऐसी सभी फसलें जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, जो कम पानी में आसानी से उग जाएं और उच्च तापमान में भी चल सके, क्योंकि मौसम परिवर्तन में सबसे अधिक समस्या हो रही है तापमान का बढ़ना और दूसरा पानी की कमी होना। इस वर्ष अगर हम बात करें तो देखिए कि इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव से हमारे बिहार राज्य में लगभग 40% बरसात की कमी दर्ज की गई है। अर्थात जो बरसात आपके क्षेत्र में पिछली बार हुआ है या पिछले 30 वर्षों में हो रहा है

0: तुलना में 40% कम होगा, अर्थात दो तिहाई से भी बरसात कम होगा। तो ऐसे समय में क्या हो संभावनाएं हैं कि जिन किसान भाई लोगों ने धान की खेती लगाया है या लगाने जा रहे हैं, विशेषकर ऊपरी जमीन या मध्यम जमीन में, उनकी धान की खेती प्रभावित होगी। प्रभावित होने का तात्पर्य है या तो उसका उत्पादन कम होगा, या कहीं कहीं जो विशेष ऊपरी जमीन होगी उस जमीन में जल धारण की क्षमता भी नहीं होगी, वहां धान की फसलें सूख भी सकती हैं। तो उत्पादन कम होने से धान की खेती इस वर्ष घाटे की सौदा हो सकती है, विशेषकर ऊपरी एवं मध्यम जमीन में, असिंचित अवस्था में। जहां सिंचाई की सुविधा है वहां हम धान की सिंचित रोपाई करेंगे, लेकिन धान वहां भी इतना ज्यादा पानी का डिमांड हो सकता है कि धान बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो ऐसे सभी असिंचित क्षेत्र जो ऊपरी जमीन है, मध्यम जमीन है, जहां जल का जमाव नहीं होता है, उनके लिए जलवायु अनुकूल फसलें जैसे रागी, सावा, कोदो, चीना, कुटकी, इन सभी फसलों को हम लोग श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। 2023 से हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वैश्विक लेवल पे इन सभी फसलों को श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। तो ये सभी फसलें जलवायु अनुकूल हैं, अर्थात एडवर्स कंडीशन में, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी ये आपको मुनाफे का सौदा करती हैं। आप इनको बो दीजिए, ये आपको कुछ न कुछ रिटर्न दे के ही जाएंगे। ये फसलें देखा जाए तो जलवायु अनुकूल ही नहीं, ये पारिस्थितिक अनुकूल भी हैं, क्योंकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग भी शामिल होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी होता है, एनिमल भी होता है, सब कुछ शामिल है। तो देखा जाए तो इन फसलों को लगाने से हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ है, पर्यावरण को हानि भी कम होगी, खेत की उर्वरता का लाभ भी कम होता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी कम निकलती हैं, इनको जल भी कम चाहिए, इनको खाद भी कम चाहिए। जब खाद कम देंगे, जल कम देंगे, तो हमारा जो भूमिगत प्रदूषण है वो भी नहीं होगा, नाइट्रेट का उत्सर्जन भी नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस भी कम होगी, और हमारा मानव स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि इनका जब हम सेवन करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के जो पोषण हैं, प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि से परिपूर्ण हैं। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि अपने पुराने समय में इन्हीं सभी कंदन फसलें, इनको बोलते हैं कंदन फसलों को, का सेवन करते थे, जिनको आज हम श्री अन्न की फसलें कह रहे हैं, जिसमें सावा भी शामिल है, इन सब का सेवन करके इन सब के ऊपर आधारित थे। और देखिए कि वो लोग का औसत आयु जो है 250 वर्षों की होती थी। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल पारिस्थितिक अनुकूल है, इकोसिस्टम के अनुकूल है। तो इस वर्ष हमारे पास चूंकि एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात कम हो रही है, इसलिए किसान भाइयों इसकी खेती को आप अपना करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जलवायु अनुकूल तो है ही, साथ ही हमारी आय को बढ़ाता है, और सबसे बेहतर बात कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तो ऐसे में श्री अन्न, और खास तौर से जब हम आज बात कर रहे हैं सावा मिलेट्स के बारे में, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो सर, अभी सवाल ये है कि अब जो किसान भाई बहन अगर खेती करना चाहते हैं सावा मिलेट्स की, तो वो खेती कब करें और कैसे करें?
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि देखिए, सावा मिलेट्स एक ऐसा फसल है जिसको हम अपने बिहार राज्य में वर्ष में दो बार अच्छे से बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जितनी भी प्रजातियां हैं सभी प्रजातियां 90 दिनों से कम अवधि में, लगभग 85 दिन में पककर के तैयार हो जाती हैं, 80 से 85 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, अर्थात 3 महीने की बुआई से 3 महीने के अंदर ही आपके कट के तैयार हो जाती हैं। तो हम लोग देखिए, इसकी बुआई इवन मसूर है, चना है, सरसों है, और कुछ क्षेत्रों में गेहूं की कटाई के बाद भी गर्मी में इसका उपयोग बुआई कर लेते हैं। तो गर्मी में भी एक अच्छा समय होता है, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में हम बुआई कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा समय चल रहा है जिसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। तो खरीफ में हमको जो ही बरसात का पानी मिल जाता है हम बुआई कर दें। अभी देखिए, इस बार बरसात थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो अभी इसका उपयुक्त समय है। अभी हम आज के डेट से इसकी बुआई करें और 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर लेंगे तो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे करें। तो देखिए, सावा मिलेट एक बहुत ही मोटा अनाज की फसल है, अर्थात इसको हम कहीं भी थोड़ा बहुत जुताई करके सीड को किसान

0: एक देता था तो भी कुछ न कुछ उत्पादन दे देता था। आज हम लोग इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से करने की सलाह देते हैं, तो इसके लिए होता है कि हम इसकी खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर लें, खेत जो है ऐसा रखें जिसमें पानी का कभी जमाव ना हो, ऊपरी जमीन में ही बुआई करें। तो खेत को अच्छे से तैयार करके अब हम इसमें बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ मात्र 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और किसान भाई इसकी बुआई जो करें वो बेहतर हो कि कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी हम लोग कहते हैं 22.5 सेंटीमीटर, अर्थात लगभग 9 इंच की दूरी पर कतार से कतार की दूरी रखना है। और गहराई जो बीज का हो उसका विशेष ध्यान देना है कि किसी भी दशा में 1 इंच से ज़्यादा गहराई पर बुआई इसकी नहीं करना है, अर्थात जो गहराई है बुआई की वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखनी है और कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर अर्थात 9 इंच पर करना है। किसी कंडीशन में हम 25 सेंटीमीटर पर अर्थात 10 इंच की 9 से 10 इंच तक हम इसको कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं, बहुत अच्छा इसका पौधा उत्पन्न होता है और अच्छा लाभ मिलता है। अब बात आता है इसमें जो है बोने की विधि का, तो बोने की हमारी कई विधियाँ हैं, जैसे हम कतारों में बोएं फ्लैट बेड पर, और जिन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत जल जमाव की समस्या होती है वहाँ आजकल हम लोग क्या करते हैं चौड़ी चौड़ी बेड बना देते हैं। बेड की चौड़ाई हम लोग लगभग 90 सेंटीमीटर रखते हैं, उस पर 4 लाइन समा की जाती है जिसको हम लोग BBF मेकर बोलते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो मेकर। तो जिन किसान भाइयों के पास रेज बेड मेकर या BBF मेकर है वो लोग थोड़ा सा रेज बेड पर या BBF पर इसकी बुआई करें और वहाँ भी स्पेसिंग 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार में बुआई करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जो BBF 90 सेंटीमीटर या BBF 150 सेंटीमीटर वाइड हम बेड बनाते हैं तो उसके बाद 30 सेंटीमीटर का फरो भी होता है, तो जो बरसात ज़्यादा होगा तो बेड पर का पानी फरो में जाते हुए कूड़ों में जाते हुए वो बाहर निकल जाती है। तो इससे कहता है कभी भी पौधे के जड़ के पास जल जमाव नहीं होता, उससे फसल का उत्पादन जो है 20 से 25% बढ़ जाती है और कम खाद में 25% खाद भी कम देना पड़ता है उसमें। तो बेहतर होगा हमारे बिहार राज्य के सभी जिलों के किसानों से मैं जो है निवेदन करूंगा कि हो सके तो इसको रेज बेड या बीबी ब्रॉड बेड एंड फरो पर ही बुआई करें तो इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात आती है इसमें जो है इसका कौन कौन सी प्रजातियां कल सिलेक्शन करें, तो देखिए प्रजातियों के जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो अभी तक हमारे बिहार किसी विश्वविद्यालय में हम लोग बहुत से लोकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी हम लोग भी अपनी प्रजातियों को निकालने के स्थिति में आ चुके हैं, 1 साल में बाद हमारी प्रजातियां आ जाएंगी। लेकिन बाहर की जो प्रजातियां हम लोग टेस्ट किए हैं उसमें अधिक उत्पादन देने वाली एक प्रजाति है DHBM 23-3। ये प्रजाति इतनी अच्छी है कि इसकी उत्पादन क्षमता 12 क्विंटल प्रति एकड़ है और मात्र 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर से निकली है जिसको हम बोलते हैं RAU 3, और अगला प्रजाति है RAU 9। तो ये दोनों प्रजातियां राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं और इनकी उत्पादन क्षमता है करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक, तो इसको भी लगा सकते हैं और औसतन ये 85-86 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। और कुछ प्रजातियां हैं बाहर की VL 207, VL 172, ये दोनों प्रजातियां भी लगभग 9 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन देती हैं और लगभग 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। VL 29 भी एक सावा की अच्छी प्रजाति है जिसकी उत्पादन क्षमता करीब करीब 10 से 11 क्विंटल है और ये बहुत ही हाई यील्डिंग है, इसकी भी प्रजाति कहीं से भी मिल जाए किसान भाइयों को तो लगा सकते हैं, तो VL 29 भी ले सकते हैं और इसका उत्पादन क्षमता है करीब 10 क्विंटल प्रति एकड़ और ये पक कर तैयार होती है लगभग 88 दिन में। तो इस तरह से सावा की जो 5-6 प्रजातियां हैं सिर्फ इन्हीं को लगाएं, और वैसे तो बहुत सी प्रजातियां हैं लेकिन कम उत्पादन वाली प्रजातियों को न लगाएं।
1: जी सर, अगर हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है?
0: देखिए सावा मिलेट्स चूंकि एक तरह से ड्राई लैंड की फसल है, वर्षा आधारित फसल है, तो इस सभी फसलों में खरपतवार का ज्यादा अतिक्रमण होता है। खरपतवार का समय पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो उत्पादन में भारी गिरावट हो जाती है। इन फसलों को कोशिश करना चाहिए कि बुआई के 10 दिन बाद से लेकर 35 दिन तक खेत जो है खरपतवार से मुक्त रहे। तो उसके लिए बहुत सी प्रजातियां, बहुत सी विधियां हैं।

0: जिसमें सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी अच्छे से करें। अगर हो सके तो गर्मी में अगर हम खेत को 7 से 8 दिन जोत करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत से खरपतवार जो पेरेनियल वीड्स हैं, बहुवर्षीय खरपतवार हैं, उनकी जो जड़ें हैं, सकर्स हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं धूप की वजह से। उसके बाद अगर हम देखें तो उसकी बुआई करें। और बहुत से हमारे ड्राई लैंड वीडर हैं, जैसे कि सिंह हैंड हुआ है, शर्मा हैंड हुआ, आजकल क्या है कि 20-22 हज़ार रुपये में जो पावर वीडर आ रहे हैं उसका भी उपयोग करके हम कतारों के बीच में मैकेनिकल वीडिंग कर सकते हैं। अगर हमें केमिकल उपयोग करना है तो बुआई के तुरंत बाद हम लोग हर्बिसाइड है पेंडीमिथिलीन, इसका उपयोग करते हैं। उसके लिए 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। अगर हम किसान भाइयों के शब्दों में बोलें तो प्रति टंकी पानी में लगभग एक टंकी में 15 लीटर पानी होता है, तो आपको 30 ml पेंडीमिथिलीन डालना है। 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति 15 लीटर पानी में डालना है और 1 एकड़ में करीब 8 से 9 टंकी पानी या 8 से 10 टंकी पानी उपयोग में करें। तो इस तरह से बुआई के 24 घंटे के भीतर, अर्थात आपने बुआई कर दिया, उसके तुरंत बाद आप इस पेंडीमिथिलीन को 30 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए, तो अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक दवा है 2,4-D। 2,4-D 3 ग्रुप में आती है, जो है एक 58% का होता है, एक जो है आपका करीब कम डोज का होता है 30% के आसपास। तो अब हमको देखना है कि हम कौन सा, एक पाउडर वाला होता है 80% का, तो अगर हम 58% वाला लेते हैं बाजार से तो उसका करीब 22 ml प्रति टंकी पानी यानी 1.5 ml प्रति लीटर की दर से देना है और बुआई के 20 से 22 दिन पर हमें स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, मुख्य रूप से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार बचते हैं या जो थोड़ा बहुत और खरपतवार बचते हैं उसको हमें 2-4 लेबर लगा करके मैनुअली निराई करनी होती है। क्योंकि ये सभी फसलें जो है हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग करें या केमिकल का प्रयोग करें तो थोड़ा सा उचित नहीं होता है। इसलिए कम से कम हमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना है। तो ये जो हमने विधि बताई, इस तरह से हम खरपतवार का कुछ हद तक प्रबंधन कर सकते हैं। बचा खोचा हमें मैनुअली ही मानव द्वारा खरपतवारों को निराई करके से बाहर करना है।
1: जी सर, अगर हम उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो सावा मिलेट्स में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है?
0: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ये हमारी श्री अन्न की फसलें हैं इनमें कम खाद कम पानी की जरूरत होती है। अब ये देखिए कि कम खाद कम पानी में आपको ज़्यादा पोषण देती हैं, इसीलिए इनके पोषण वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इनका नाम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने पोषक अनाज रखा। फिर इनके महत्व को और देखते हुए इनको थोड़ा और सम्मान दिया गया, इनका नाम 2023 में श्री अन्न रखा गया। तो आज के डेट में हम श्री अन्न कहें या पोषक अनाज कहें या मोटा अनाज कहें, सब एक ही है। लेकिन मोटा अनाज अब कहने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं से इनके सम्मान को धूमिल करने के बराबर है, इसलिए श्री अन्न कह करके ही इनको हम थोड़ा सा सम्मान दें। तो जो श्री अन्न की फसलें जिसमें सावा भी शामिल है, इसमें जैसा हमने पहले कहा कि कम खाद की जरूरत पड़ती है, तो देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर मात्र 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की जरूरत पड़ती है। अगर किसान भाइयों को हम बोलें तो अपने फसल में ये लोग 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP और 0.5 बोरी पोटाश प्रति एकड़ व्यवहार करें। पोटाश एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेतों में कतारों के बीच में दें या खेतों में मिला करके जुताई कर दें, जबकि नाइट्रोजन को हम 2 भाग में स्प्लिट करेंगे, 2 भाग में बांट के देंगे। पहला नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से, हमने बोला 1 बोरा यूरिया पर्याप्त हो जाता है, तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के जो है 20 से 22 दिन पर, अगला 20 किलोग्राम हम बुआई के लगभग 50 दिन बाद जब इसमें बालियां निकलनी होती हैं, बालियां निकलने के करीब 1 महीने बाद ये पक्के तैयार हो जाते हैं। अगर 50-52 दिन पर बालियां निकल रही हैं तो 82-84 दिन पर ये पक्के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से यूरिया को कम से कम 2 बार में बांटना है। तो किसान भाइयों, आपके लिए अगर हम थोड़ा सा आपकी भाषा में बात करें तो 1 बोरा यूरिया, 1 बोरा DAP और 0.5 बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको देना है। पोटास और DAP की पूरी मात्रा बुआई के समय देना है, खेतों में मिला देना है, जबकि यूरिया का पहला डोज आपको

0: स्पीड थोड़ा कम है, लेकिन जो भी हमारे पास 10-20 किसान अभी आ जाएंगे उनको भी हम फ्री में ये बीज अभी देंगे, अपने खेतों पे लगाएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद
1: जी सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि श्री अन्न की खेती किस प्रकार से किसान भाई बहन कर सकते हैं और ये बहुत ही उपयोगी है जैसा कि आपने बताया, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप सावा मिलेट्स की खेती करेंगे और आप अधिक मुनाफा भी कमाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन

90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए खास कार्यक्रम एग्जाम के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले उनके खास कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। दोस्तों, रेडियो रिवीजन में आज आपके कोर्स ABP 121 यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का रेडियो रिवीजन होने वाला है और आज आपके कोर्स लीडर डॉक्टर अवधेश पाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: सर, रेडियो रिवीजन शुरू कीजिए।
1: नमस्कार सभी ABP 121 के बच्चों को। मैं यहाँ आपके कल, चूंकि आपका 14 तारीख को एग्जाम है, इंटरम एग्जाम, और मैं आपके जैसे ये इस कोर्स के रिवीजन के लिए उपस्थित हूँ यहाँ पर। आपको जैसे पता है कि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जो 30 मिनट्स के लिए जिसमें होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट 1-to-1 आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और सेकेंड पार्ट जो है आपका, उसमें सब्जेक्टिव होते हैं, तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट नोट्स होता है और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे आपका ये सभी सिलेबस को आपने देखा ही होगा, कवर किया होगा, सारा कोर्स आपका इसमें कंप्लीट है। और सिलेबस जो है आपका मेजरली दो भाग में बटा हुआ है, एनवायरमेंटल स्टडीज और दूसरा आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें जो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं आपके क्लासेस में सारा बताया हुआ था कि एनवायरमेंटल स्टडीज वाला जो पार्ट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से कवर करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक बार पूरे सिलेबस को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन, क्या प्रोबेबल क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं और किस प्रकार के इसको कवर करने की आप तैयारी करेंगे। तो आप सिलेबस को अगर अपने पास रखेंगे और देखेंगे तो पहला आपका जो यूनिट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर में, तो वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, और इसमें आपको जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल स्टडीज़ के बारे में बात करनी है, रिसोर्सेज के बारे में बात करनी है जो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में आते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, फूड रिसोर्सेज हो गए, तो एनर्जी रिसोर्स हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड रिसोर्सेज। तो ये सारे जितने रिसोर्सेज के बारे में आप बात करेंगे तो उनका कैसे यूज होता है, उनका एक्सप्लोटेशन कैसे

होती है, ओवर एक्सप्लोटेशन कैसी होती है, और किस प्रकार से उनको हम लोग बचा सकते हैं, और उनसे उनका यूज में किस तरीके से हम लोग सारे रिसोर्सेज को फायदा में लेकर आएंगे, और उनको कैसे हम बचा सकते हैं, और कारण क्या है इनका, ये सब रिन्यूएबल का दोस्त होने का कारण क्या है, कैसे उनको हम लोग रोक सकते हैं, उसकी बात पर आप थोड़ा सा विचार करिएगा, और इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में जितने भी हमने बताया रिसोर्सेज उनको आप थोड़ा तैयार कर लेंगे, और इसमें रोल ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में, उस पर भी एक ध्यान देने की बात आ गई, हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आए, और इसमें तो एनर्जी के बारे में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, और वो कैसे उनको रीगेन किया जा सकता है, कैसे उसको बदलते हैं, और एनर्जी का अल्टरनेट सोर्स क्या हो सकते हैं, ये सब थोड़ा कोर्स होगा। मैं थ्रू आउट द सिलेबस के बारे में अगर बात करते हैं तो पूरे सिलेबस को आप उस टर्म पर पढ़ने का कोशिश करिए जो कहीं पर लेटेस्ट, कहीं पर वर्ल्ड में, कहीं आपके उसमें कहीं ये घटना घटी हो इससे संबंधित, तो वो एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा चीज़ है जो आए दिन कहीं ना कहीं प्राय रूप में ग्लोबली होते रहता है, तो जो चीज़ कहीं हो रहा होता है तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से बन जाता है। तो जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन आजकल जैसे हमारा होता है पेट्रोल वगैरह के दाम बढ़ने का, चाहे उसमें इथेनॉल मिलाने का, ये सब एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो मैं भी लोगों का ध्यान उधर जाता है तो एक्सटर्नल के दिमाग में जाता है, उसका क्वेश्चन बन जाता है। आपका दूसरा यूनिट आता है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के अंदर में आपको पढ़ाया गया है सब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इकोसिस्टम का, उसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये सब क्या होते हैं, कैसे एनर्जी फ्लो करता है फ्रॉम वन इकोसिस्टम के लेवल से दूसरे इकोसिस्टम, दूसरे लेवल तक, तो इनके बारे में पढ़ना है। इकोलॉजिकल सक्सेशंस के बारे में आपको पढ़ाया गया था, तो ये सब जो कि आपका सीधा सीधा शॉर्ट नोट्स में आता है, और इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे। फूड चेन्स और फूड वेब क्या होता है, फूड वेब के बारे में बताया गया था आपको, फूड चेन्स के बारे में बताया गया है। फूड चेन के अंदर में कोई एक चेन दे दिया जाएगा, वहाँ एक मिसिंग जो लिंक होगा उसके बारे में लिखना होता होगा कि इसमें कौन सा चीज़ फिट कर सकता है। तो फूड चेन में आपको होता है कि एक प्रोड्यूसर होता है, उसको कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर होता है, ऐसे कर करके चेन ऊपर तक जाती है, तो उसमें आपको फिलअप करने के लिए एग्जाम्पल के उसमें पूछा जा सकता है। और इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताया गया था आपको, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एक्सेट्रा वगैरह के बारे में पढ़ाया गया था, उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे इसको कवर करना है, और पिरामिड्स कौन सा पिरामिड्स अपसेट डाउन होता है, उल्टा होता है, वो सब के बारे में आपको बताया गया है, आप उसे थोड़ा सा कवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कितनी परसेंट एनर्जी जो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाने पर लॉस होता है, कैसे लॉस होता है, ये सब के बारे में आपको इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एग्जाम्पल के नाम टाइप में आप देख सकते हैं कि कोई इकोसिस्टम के बारे में आपको डिस्क्राइब करने की बात आ सकती है, या एग्जांपल लेकर इकोसिस्टम के बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में बहुत आपके बहुत सारे टाइप्स के थे, तो उसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेकर किसी चीज को एक्सप्लेन करने के बारे में बोला जा सकता है कि सपोज करिए फूड चेन ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम है ना, स्ट्रीम इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर्स के बारे में बोल सकते हैं, ओशियन इकोसिस्टम, तो इनका एग्जांपल लेकर आपको इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे आप किताब में देखिएगा, नोट्स में भी आपको दिया गया है, जिसमें वन वर्ड्स को बहुत सारे क्वेश्चन बनने के प्रोबेबल चांस होते हैं, है ना, जैसे आपका इकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है, तो ये सब एग्जाम्पल में भी आएगा और आपका चैन के रूप में भी आ सकता है कि कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन वी कम टू नेक्स्ट चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है एंड इट्स कंजर्वेशन, ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सिलेबस में, इस कोर्स में आपका सबसे मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट वो है पार्ट है, तो जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के कारण क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको मतलब वो करना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे आर्टिकल, सेक्शन, शेड्यूल, ये सब में कहाँ पर ये सबको मेंशन किया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, देख लेंगे, आपको ये सब प्रोवाइड किया गया है। और इसमें आपको आती है डेफिनेशंस, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आएगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, हमारे इंडिया का कितने बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस है, इंडिया को कितने उसमें बांटा गया है, वो सब आपको बताया गया है, वो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे के उसको वो करेंगे। और इसमें आपका सोशल, एथिकल, एस्थेटिकल, ये सब वैल्यू जो है वो सब आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। और
एक तरह से आप देखिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया या कंजर्वेशन की बात अगर करते हैं तो ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर क्या इसका पोजीशन है, नेशनल लेवल पर क्या है।

हमारे स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर क्या इनका वो है, तो उसको बताया गया था आपको कि कितने हमारे नेशनल पार्क है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व से, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब का बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। इंडिया को क्यों मेगा डाइवर्सिटी नेशन कहा जाता है, इसमें बहुत तरह के आपको एनवायरमेंटल कंडीशन से, आपको ट्रॉपिकल से लेकर मेडिटेरेनियन से लेकर टेम्परेट रीजन, ये सब टाइप के मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बताए थे। तो उसमें देखिएगा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितना है, कहाँ कहाँ पर है, उनकी क्या खासियत होती है, हॉटस्पॉट की क्राइटेरिया क्या होती है, तो ये सब आप ध्यान दे लीजिएगा। उसमें उसमें आपको ये सब इम्पोर्टेंट आएगा, आपको एक दो एग्जांपल के साथ किया जाएगा। जैसे आपको हम लोग इसमें बताए थे इंडो बर्मा के बारे में, वहाँ पर आपको पिचर प्लांट होता है, नेपेंथिस खासियाना, एपेंडिज्म क्या होती है, और सबसे बड़ी बात आती है कि आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की हम लोग बात करेंगे, तो थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी को, क्या क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, हैबिटेट लॉस का कारण होता है, पोचिंग की बात होती है ना, तो उसमें आप थोड़ा सा देख दें, मैन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम क्या होता है, ये IUCN क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये सब के बारे में आपको रिवाइज कर लेना होगा। ये सारी चीज़ आपको बताए गए हैं, उनको फिर से एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्लियर रहिएगा उसमें। और कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे, तो उसमें इन सीटू और एक्स सीटू की बात कर रहे थे। इन सीटू में आपको पूरा उन्होंने बताया था बायोस्फीयर रिजर्व्स है अपने इंडिया में कितने हैं, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ये सब बहुत तरह के, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट्स के साथ हम लोगों ने लिंक किया हुआ था। और बिहार में हम, तो बिहार का रेफरेंस से आपको जानना चाहिए कितने नेशनल पार्क है, कितने सेंचुरीज हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एक बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब कॉन्सेप्ट जो होता है, तो उसमें कोर रीजन, पेरिफेरल रीजन होता है, बफर जोन होते हैं, उनका क्या खासियत होता है क्या नहीं, और कितने नंबर्स में हैं वर्ल्ड में, या फिर आप इंडिया में कितने नंबर में बायोस्फीयर रिजर्व से सबसे लार्जेस्ट कौन था, ओल्डेस्ट कौन था, कौन कहाँ पर है, कौन किस चीज़ के लिए मशहूर है, कौन सा स्पीशीज़ वहाँ पर मिलता है, प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, तो ये सब आपको नोट्स में दिया गया, स्लाइड्स में भी आपको पढ़ाए हुए हैं, दिए गए हैं, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से ये कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप आजकल पोल्यूशन का बहुत मतलब वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, मेराइन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इनके रेफरेंस से आपको इनका कॉज क्या है, इनका इफेक्ट क्या होता है, इनका इम्पैक्ट कितना है, कितने लेवल तक ये जाकर हैजार्डस वो इफेक्ट डालते हैं, और इनका कंट्रोल मेजर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हर एक पोल्यूशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। न्यूक्लियर हैजर्ड्स के बारे में मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियर हैजर्ड्स के बारे में कैसे उनको मैनेजमेंट किया जा सकता है, न्यूक्लियर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से सोर्स होता है न्यूक्लियर लीकेज का, और वो सब के बारे में करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट और ये सब के बारे में बताया गया था। अर्बन पॉपुलेशन जो है, अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, जिससे शहरीकरण ज़्यादा हो जाती है, तो कैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ने का चांसेस होता है, उनको कैसे रोकथाम किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको बताया गया है। और इंडिविजुअल्स के क्या रोल होते हैं प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन में, तो इसके और इसके रिलेटेड जो है आपका बहुत सारे एक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल एक्ट्स हैं, पोल्यूशन एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। एक्ट्स का तो एक अलग से आपको मैंने एक चैप्टर और नोट्स भी दिया हुआ था, जिसमें पूरा आपको एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स जितने भी हैं उनके बारे में आपको जानना है कि वो कब इस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ पर हुए थे, किससे रिलेटेड है वो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन शेड्यूल ये सब में कहीं मेंशन है तो उनका नंबर याद कर लीजिएगा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। सोशल इश्यूज और एनवायरमेंटल जो होते हैं उनका इम्पोर्टेंट बहुत अपना एक खास है, क्योंकि आजकल आजकल एनवायरमेंटल चीज़ों को सोशल इश्यूज के साथ ज़्यादा जोड़ा जाता है, तो उसमें आपको करना होगा ये अनसस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है, अपना अर्बन का प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाने पर, वाटर कंजर्वेशन क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, शहरीकरण के दौरान में कैसे उसको हम लोग करते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल एथिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब शॉर्ट नोट्स में आएंगे। इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सब ऑब्जेक्टिव में भी आपके आ सकते हैं, जिसके सोर्स आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों होता है, कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन से गैसेस रिलेटेड, कौन कहाँ से क्या इसका प्रॉब्लम है, वो सारे चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से आप मतलब कर सकते हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के बारे में भी आपको जानना होगा, न्यूक्लियर एक्सीडेंट में दो चार एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया हुआ था आपका, चेर्नोबिल वगैरह का, हिरोशिमा का, तो उनके बारे में जानना है, उनका डेट्स याद रखिएगा किस जगह पर हुआ था, वो सब के बारे में आपको जानना होगा। प्लस ये जैसे मैंने एक्ट के बारे में तो सब आपको बता ही दिया। आपका एक और इंपॉर्टेंट इस पर
ये है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट का।

0: जो आपका सेवेंथ यूनिट है, तो इसमें आपको जैसे पॉपुलेशन इज द कॉज फॉर एवरी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है उससे रिलेटेड कैसे हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी पॉपुलेशन हो, कम जनसंख्या हो, ह्यूमन राइट्स की बात उसमें आती है, फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम की बात आती है, आपकी बीमारी जो होती है वो फैलने की सोशल सोसाइटी में होती है उनको कैसे रोक दिया जाए, चाइल्ड वेलफेयर की बात आती है, तो ये सारे रिलेटेड भी आपके एनवायरनमेंट से है जुड़े हुए, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जो आपको क्लासेस में क्लास में वो किया गया है। और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका तो आपको थोरो वो स्टडी कराया गया है जिसमें आपको नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बताया गया था, जिसमें आपका फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड सबके बारे में एक एक करके बताया गया है। अगर कॉमन क्वेश्चन आता है एनवायरनमेंट के लिए तो आपने आपको जैसे बताया गया था कि उसमें बिफोर डिजास्टर्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या करते हैं, आफ्टर डिजास्टर क्या करते हैं, वो चार पाँच टॉपिक आपका उसमें बताया गया था, प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, मिटिगेशन कैसे की जाती है, रिस्पॉन्स कैसे होता है, और रिहेबिलिटेशन और ये सब के बारे में आपको डिटेल में ये सब बताया गया है, उनको लेकर आपने इसमें अच्छे से वो करना है। प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट की बात जब आती है तो एक एक डिजास्टर्स का अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, और अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं उनके बारे में, ड्रिल्स होती है, मॉक ड्रिल्स, उसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से बताएंगे। एंड रिसेंटली अगर कहीं पर डिजास्टर्स हुए हुए होंगे, मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो उससे संबंधित आपके क्वेश्चन इसे आ सकते हैं, इसको उसको आपके कोर्स के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको करिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा मल्टीपल चॉइस, और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आएंगे, और दूसरे में आपका शॉर्ट नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स आपका टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्वेश्चन जितना मार्क्स का होता है उतना ही का करना चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाकर टॉपिक वाइज उसको डिस्क्राइब करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट, उसमें कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सब पढ़ाया गया, आप उसको अच्छे से करिए। थैंक यू, चलिए ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच सर, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो स्टूडेंट्स कल एग्जाम दीजिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ। और हर रोज कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ खास बातें, क्योंकि आपको पता है कि जब उन्नत कृषि कार्यक्रम आप सभी के सामने हाजिर होता है तो डेफिनेटली आप सभी के लिए कुछ खास बातें हाजिर होंगी। तो आज ऐसे ही एक विशेष जो हमारा विषय है वो है धान में खरपतवार प्रबंधन। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर SK चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और वैसे मैं बता दूं कि हमारे किसान भाइयों और हमारे श्रोतागण, आप सभी को बता दें कि जब हम खेती करते हैं तो ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम अपने फसलों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें, और ऐसे में सबसे ज़रूरी होता है कि खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अपनी फसलों को खरपतवार से कैसे बचाएं और किस तरीके से बचाएं। तो इसे ही कहते हैं खरपतवार प्रबंधन, और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर SK चौधरी। तो सबसे पहले जब बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, तो डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहें

0: कहेंगे कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है।
1: नमस्कार किसान भाइयों, बिहार में धान की खेती मुख्य रूप से खरीफ मौसम में की जाती है, परंतु यहाँ इसकी उपज क्षमता प्रति हेक्टेयर औसत से बहुत कम है। और तो और बिहार में लगभग 35 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है, जो कि अपेक्षाकृत कम है। इसका मुख्य कारण है इस खेती में तकनीकी ज्ञान की कमी। धान की खेती प्रायः 3 प्रकार की जमीन में की जाती है। बिहार में इस खेती 25% ऊपरी जमीन में, 25% मध्यम जमीन में और 40% निचली जमीन एवं 10% गहरे पानी वाले क्षेत्र में की जाती है। विगत वर्षों में वर्षा की कमी होने के कारण या आवश्यकता अनुसार समय पर वर्षा नहीं होने पर धान की रोपाई समय से नहीं हो पाती है, तथा किसान सही समय सही किस्म के चुनाव, बिचड़े की तैयारी इत्यादि ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यह है तकनीकी ज्ञान से कि किस जमीन में किस प्रकार की किस्म का चयन करें, कितना खाद दे, कितनी पानी की व्यवस्था करे, उसका कीट व्याधि का सुरक्षा किस प्रकार करे, इस सब में तकनीकी किसान को अभाव रहता है। और तो और मेरा आज का विषय है खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन एक ऐसा है जो अगर नहीं करेंगे, अगर समय से नहीं किएंगे तो इसमें उपज में बहुत कमी हो सकती है। और तो जो धान सीधी बुआई होता है उसमें 100% तक का यील्ड जो उपज है वो कम हो जाती है।
0: मतलब कि जो 100% यील्ड है वो उपज कम हो जाती है अगर इसका प्रबंधन ना करे तो। और इसलिए हमारे किसान भाइयों को घाटा भी हो सकता है अगर ये व्यवसायिक तौर पर अगर फसलों को बेचने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं बाजारों में तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि इसलिए 100% यील्ड के लिए आपको खरपतवार प्रबंधन करना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, आप आगे भी कुछ कह रहे थे।
1: बोल रहे अभी जो खरपतवार प्रबंधन है इस पे अगर समय से कर लिए तो उपज बढ़ेगा ही, साथ साथ इसका क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों पे प्रभाव पड़ता है।
0: हाँ।
1: जिस खेत में बहुत से खरपतवार रहता है उसमें उपज तो कम होता ही है, लेकिन उस जो उपज का जो चमक जो होता है धान की वो भी कम हो जाती है, इसका मार्केट वैल्यू या उसका प्राइस दूसरे से कम हो जाएंगे
0: और हमारे किसान भाइयों का मेहनत भी बेकार चला जाता है। जितना वो मेहनत करते हैं उतना फसल उन्हें प्राप्त भी नहीं हो पाता है।
1: तो हमारे बिहार में मुख्यतः 2 प्रकार के धान लगाते हैं, एक तो जिसमें समय की कमी हो तो सीधी बुआई करते हैं, दूसरा नर्सरी लगा के उसको कदवा करके फिर से ट्रांसप्लांटिंग करके लगाते हैं। तो दोनों विधि से खरपतवार नियंत्रण अलग अलग तरीके से होता है। जैसा कि देखेंगे, पहला हम बता देते हैं धान का जो खरपतवार है सीधी बुआई से लगाने वाले धान में किस तरह से करें, तो मैं एक करके बताता हूँ जो कि आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ध्यान में रखना चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। धान को बीज को खेत में डालने के बाद तथा उसको अंकुरण होने के पहले एक बहुत ही कारगर दवा है, नाम है पेंडीमिथिलीन, जो कि ये प्री इमरजेंस है। प्री इमरजेंस कहने का मतलब है जो उसमें मतलब वो खरपतवार निकलने से पहले आप उसमें डाल दीजिए, स्प्रे करिए, जो कि मार्केट में स्टॉम्प 35-30 इसी के नाम से मिलता है।
0: अच्छा।
1: इसको आप 1333 मिलीलीटर प्रति एकड़ या 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में नमी होने पर छिड़काव अवश्य रूप से करें, या अगर ये दवा अगर बाजार में नहीं उपलब्ध है तो इसका एक अलग है ऑक्सीड्राइजील, जो मार्केट में टॉप स्टार या रेफेट नाम से मिलता है। ये 50 ग्राम प्रति एकड़ या नहीं तो 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से स्प्रे करें, इससे बहुत हद तक खरपतवार नहीं निकलेंगे खेत में। उसके बाद धान जब अंकुरण हो गया, धान खेत में लग गया, उसके बाद भी अगर आप ठीक से खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो एक भी नहीं आएगा। धान अंकुरण के बाद निम्नलिखित खरपतवार नाशी है जो कि हम लोग रिकमेंड करते हैं या चाहे बोलते हैं, ये किसान आप लोग खेत में स्प्रे निश्चित रूप से करें। धान में वैसे तो बहुत तरह से खरपतवार निकलते हैं, और तो और खरीफ मौसम में खरपतवार निकलना एक नेचुरल या चाहे प्राकृतिक ये है जो उसमें सारे क्लाइमेटिक कंडीशन फुलफिल करता है। तो इस विधि से भी खरीफ में ज़्यादा घास निकलता है अपेक्षाकृत रबी मौसम में। तो धान अंकुरण के बाद 4-5 खरपतवार नाशी

0: है जो कि मैं बता रहा हूँ। पहला है बिस्पैरीबैग सोडियम, जिसको मार्केट में नॉमनी गोल्ड के नाम से मिलता है। ये 10% ईसी से मार्केट में है उपलब्ध। आप इसको 80 से 100 ml प्रति एकड़ या नहीं तो 250 ml प्रति हेक्टेयर को आप स्प्रे करिए, जो कि 15 से 20 दिन बाद आप इसको खेत में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है फिनोक्सोप्रॉप, जो कि 9.3 ईसी के मात्रा में मार्केट में मिलता है, जो 400 ml प्रति एकड़ या चाहे 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में स्प्रे करें, ये धान को अंकुरण के 25 दिन के बाद। उसके बाद तीसरा दवा है इथॉक्सी सल्फिरान, जो कि मार्केट में सनराइज के नाम से मार्केट में मिलता है, जो कि 40 का दर जो है 40 ml प्रति एकड़ या नहीं तो 100 ml प्रति हेक्टेयर। ये चौड़ी पत्ती के या मोथा कुल के लिए है, जो कि 15 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथा दवा है एजीम सल्फिरान, जो कि मार्केट में 50 WDG के नाम से उपलब्ध है। ये 1820 ml प्रति एकड़ नहीं तो 50 ml प्रति हेक्टेयर, ये सिर्फ मोथा कुल के लिए है, ये भी 25 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये सब तो थोड़ा दवा महंगा होगा, एक सबसे किसान भाइयों के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ती दवा है 2,4-D इथाइल एस्टर, जो मार्केट में 38 ईसी के नाम से मिलेगा। ये चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए है, इसको आप 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करिए 20 से 25 दिन के बाद। ये जितने भी दवा के नाम बताएं, ये धान में सीधी बुआई के लिए उपयुक्त है।
1: सीधी बुआई के लिए,
0: सीधी बुआई कहने का मतलब इसमें नर्सरी नहीं लगाते हैं, चाहे ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं, बस धान में ये प्लॉइंग करके आप उसमें या तो चाहे लाइन स्वइंग से या नहीं तो स्प्रे मतलब छिड़काव विधि से आप धान लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: धान की दूसरी विधि है लगाने की, नर्सरी पहले लगाइए 20 से 21 दिन के बाद उसको उखाड़ के ट्रांसप्लांटिंग करिए, जो कि कदवा करके खेत में लगाते हैं डिफरेंट स्पेसिंग में 20 से 25 या 25x25 या 15x25। इसी हिसाब से दूसरा विधि है धान के नर्सरी विधि से लगाने के लिए, खरपतवार नाशी अलग है। अगर आप धान को नर्सरी लगा लिए हैं 20 से 25 दिन हो गया है, तो आप उसको उखाड़ के और मेन फील्ड जो कदवा किए हैं उसमें आप लगाएंगे, उसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग अलग होता है। उसमें सबसे प्रमुख जो दवा है वो है ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर जो मार्केट में मीचेट नाम से मिलता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है 50 ईसी के नाम से मार्केट में मिलेगा। मीचेट 50 ईसी, इसका जो दर है 1.5 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये आप स्प्रे करिए 2.5 लीटर से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर। ये 4 से 5 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब आप चार ट्रांसप्लांटिंग कर देने के 4 से 5 दिन के बाद आप इसको बालू में मिक्स करके और अच्छे तरीके से मिला के इसको खेत में छिड़काव करें। और ये ध्यान रखिएगा जो खेत में 1 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, तब इसको आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत बहुत सारे जो खरपतवार है वो इससे नहीं निकलेंगे इसके निकलने से बाद। अगर ब्यूटाक्लोर नहीं मिले तो पेट्राक्लोर है, जो मार्केट में रेफेट नाम से मिलता है, 750 ग्राम AI है, 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर को, ये भी 3 से 7 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, धान का 3 से 7 दिन के बाद लगाने के बाद इसका स्प्रे करिए। दूसरा तीसरा दवा है ऑलमिक्स, जो कि इसमें 2 खरपतवार नाशी का कम्बिनेशन है, पहला क्लोरीमिरॉन और दूसरा मेटसल्फिरॉन। ये एक जो डब्बा में आता है 4 यूनिट का रहता है, वो 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। ये 15 से 20 दिन के बाद आप इसको ट्रांसप्लांटिंग में स्प्रे कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और ये भी बताया कि कब करना चाहिए, दवाओं के बारे में बताया कि कौन कौन से दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि बिस्पैरबिक सोडियम के बारे में कहा, इथॉक्सी सल्फ्यूरान के बारे में कहा। और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आपने बहुत सारी बातें की डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर एक और सवाल दिमाग में आता है कि अगर खरपतवार प्रबंधन करते हैं इसका लाभ हम जानना चाहेंगे। आपने बताया जैसे कि 100% यील्ड होता है, इसके अलावे कुछ लाभ अगर हो तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: खरपतवार नियंत्रण करने से बहुत से ही लाभ है। खरपतवार क्या है, जो किसान भाइयों नहीं लगाते हैं वो अपने आप जो उपज

0: निकल आता है उसको खरपतवार कहते हैं। अगर खरपतवार खेत में रहेगा तो इसका एक तो लाभ ये है, सबसे जो प्रमुख लाभ है इसका उपज बढ़ेगा। दूसरा अगर लाभ देखेंगे तो दूसरा जो आप खाद देते हैं, जो आप उर्वरक देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, वो क्या होता है अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो खरपतवार का नेचर या चाहे आदत होता है वो क्या करता है बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करने का। तो आप जो खाद देंगे धान के लिए वो क्या करेगा खरपतवार ले लेगा। तो आपको समुचित जो उपज होना चाहिए जितना खाद देने से उसमें कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है और तो और वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट, धान को नहीं जाके चल जाएगा खरपतवार में। तीसरा फायदा ये है जो धान में प्रमुख जो होती है उसका नेचर होता है टिलरिंग देने का। टिलरिंग तभी देगा जब उसमें स्पेस होगा, जगह होगा। और खरपतवार क्या करता है जो बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई खेत में बहुत तेजी से होता है, तो वो धान को बहुत कम स्पेस देता है जिससे कि टीलर निकलने की जगह ही नहीं छोड़ता है। और उसके अलावा बहुत सा है जैसे पानी दिए, पानी की जो धान को चाहिए वो खरपतवार ले लेगा। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो फायदा है अगर खरपतवार नियंत्रण कर देंगे तो ये सारे जितना भी लाभ है वो खरपतवार को न जाके धान को, धान अगर धान में अगर आप खाद देंगे अगर बिना खरपतवार का नियंत्रण किए हुए तो उसमें कंट्रोल नियंत्रण होने के बजाय ज्यादा और तेजी से ग्रोथ हो जाएगा।
1: अच्छा, तो इसीलिए जरूरत है खरपतवार प्रबंधन की और डॉक्टर साहब आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आप खरपतवार प्रबंधन यानी कि आप फसल लगाते हैं तो आप टाइम टू टाइम समय पर आप देखते रहें कि फसलों में अगर खरपतवार आ रहे हैं तो आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो इसलिए इसका प्रबंधन ज़रूर करें और खास ख्याल रखें अपने फसलों की सुरक्षा का। तो और भी बातें और भी विशेष चर्चाओं के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे आप सभी के सामने, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए खास कार्यक्रम एग्जाम के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले उनके खास कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। दोस्तों, रेडियो रिवीजन में आज आपके कोर्स ABP 121 यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का रेडियो रिवीजन होने वाला है और आज आपके कोर्स लीडर डॉक्टर अवधेश पाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा।
1: सर, रेडियो रिवीजन शुरू कीजिए।
2: नमस्कार सभी ABP 121 के बच्चों को। मैं यहाँ आपके कल, चूंकि आपका 14 तारीख को एग्जाम है इंटरम एग्जाम, और मैं आपके जैसे ये इस कोर्स के रिवीजन के लिए उपस्थित हूँ यहाँ पर। आपको जैसे पता है कि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है जो 30 मिनट्स के लिए जिसमें होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट 1-to-1 आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और सेकेंड पार्ट जो है आपका उसमें सब्जेक्टिव होते हैं, तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट नोट्स होता है और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे आपका ये सभी सिलेबस को आपने देखा ही होगा, कवर किया होगा, सारा कोर्स आपका इसमें कंप्लीट है। और सिलेबस जो है आपका मेजरली दो भाग में बटा हुआ है, एनवायरमेंटल स्टडीज और दूसरा आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें जो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं आपके क्लासेस में भी सारा बताया हुआ था कि एनवायरमेंटल स्टडीज वाला जो पार्ट है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से कवर करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक बार पूरे सिलेबस को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन, क्या प्रोबेबल क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं और किस प्रकार के इसको कवर करने की आप तैयारी करेंगे। तो आप सिलेबस को अगर अपने पास रखेंगे और देखेंगे तो पहला आपका जो यूनिट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर में, तो वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, और इसमें आपको जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल स्टडीज़ के बारे में बात करनी है, रिसोर्सेज के बारे में बात करनी है जो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में आते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, फूड रिसोर्सेज हो गए, तो एनर्जी रिसोर्स हो गया सबसे

इम्पोर्टेंट है, लैंड रिसोर्सेज, तो ये सारे जितने रिसोर्सेज के बारे में आप बात करेंगे तो उनका कैसे यूज होता है, उनका एक्सप्लोटेशन कैसी होती है, ओवर एक्सप्लोटेशन कैसी होती है, और किस प्रकार से उनको हम लोग बचा सकते हैं, और उनसे उनका यूज में किस तरीके से हम लोग सारे रिसोर्सेज को फायदा में लेकर आएंगे, और उनको कैसे हम बचा सकते हैं, और कारण क्या है इनका, ये सब रिन्यूएबल का दोस्त होने का कारण क्या है, कैसे उनको हम लोग रोक सकते हैं, उसकी बात पर आप थोड़ा सा विचार करिएगा, और इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में जितने भी हमने बताया रिसोर्सेज उनको आप थोड़ा तैयार कर लेंगे, और इसमें रोल ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में, उस पर भी एक ध्यान देने की बात आएगी, हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आए, और इसमें तो एनर्जी के बारे में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, और वो कैसे उनको रीगेन किया जा सकता है, कैसे उसको बताते हैं, और एनर्जी का अल्टरनेट सोर्स क्या हो सकते हैं, ये सब थोड़ा कोर्स होगा। मैं थ्रू आउट द सिलेबस के बारे में अगर बात करते हैं तो पूरे सिलेबस को आप उस टर्म पर पढ़ने का कोशिश करिए जो कहीं पर लेटेस्ट, कहीं पर वर्ल्ड में कहीं आपके उसमें कहीं ये घटना घटी हो इससे संबंधित, तो वो एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा चीज़ है जो आए दिन कहीं ना कहीं प्राय रूप में ग्लोबली होते रहता है, तो जो चीज़ कहीं हो रहा होता है तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से बन जाता है। तो जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन आजकल जैसे हमारा होता है पेट्रोल वगैरह के दाम बढ़ने का, चाहे उसमें इथेनॉल मिलाने का, ये सब एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो मैं भी लोगों का ध्यान उधर जाता है तो एक्सटर्नल के दिमाग में जाता है, उसका क्वेश्चन बन जाता है। आपका दूसरा यूनिट आता है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के अंदर में आपको पढ़ाया गया है सब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इकोसिस्टम का, उसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये सब क्या होते हैं, कैसे एनर्जी फ्लो करता है फ्रॉम वन इकोसिस्टम के लेवल से दूसरे इकोसिस्टम, दूसरे लेवल तक, तो इनके बारे में पढ़ना है। इकोलॉजिकल सक्सेशंस के बारे में आपको पढ़ाया गया था, तो ये सब जो कि आपका सीधा सीधा शॉर्ट नोट्स में आता है, और इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे। फूड चेन्स और फूड वेब क्या होता है, फूड वेब के बारे में बताया गया था आपको, फूड चेन्स के बारे में बताया गया है। फूड चेन के अंदर में कोई एक चेन दे दिया जाएगा, वहाँ एक मिसिंग जो लिंक होगा उसके बारे में लिखना होगा कि इसमें कौन सा चीज़ फिट कर सकता है। तो फूड चेन में आपको होता है कि एक प्रोड्यूसर होता है, उसको कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर होता है, ऐसे कर करके चेन ऊपर तक जाती है, तो उसमें आपको फिलअप करने के लिए एग्जाम्पल के उसमें पूछा जा सकता है। और इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताया गया था आपको, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एक्सेट्रा वगैरह के बारे में पढ़ाया गया था, उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे इसको कवर करना है, और पिरामिड्स कौन सा पिरामिड अपसेट डाउन होता है, उल्टा होता है, वो सब के बारे में आपको बताया गया है, आप उसे थोड़ा सा कवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कितनी परसेंट एनर्जी जो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाने पर लॉस होता है, कैसे लॉस होता है, ये सब के बारे में आपको इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एग्जांपल के नाम टाइप में आप देख सकते हैं कि कोई इकोसिस्टम के बारे में आपको डिस्क्राइब करने की बात आ सकती है, या एग्जांपल लेकर इकोसिस्टम के बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में बहुत आपके बहुत सारे टाइप्स के थे, तो उसमें आपको एग्जांपल के तौर पर लेकर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के बारे में बोला जा सकता है कि सपोज करिए फूड चेन ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम है ना, स्ट्रीम इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर्स के बारे में बोल सकते हैं, ओशियन इकोसिस्टम, तो इनका एग्जांपल लेकर आपको इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे आप किताब में देखिएगा, नोट्स में भी आपको दिया गया है, जिसमें वन वर्ड्स को बहुत सारे क्वेश्चन बनने के प्रोबेबल चांस होते हैं, है ना, जैसे आपका इकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है, तो ये सब एग्जांपल में भी आएगा और आपका चैन के रूप में भी आ सकता है कि कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन वी कम टू नेक्स्ट चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है एंड इट्स कंजर्वेशन, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सिलेबस में, इस कोर्स में आपका सबसे मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट वो है पार्ट है, तो जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का कारण क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको मतलब वो करना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे आर्टिकल, सेक्शन, शेड्यूल, ये सब में कहाँ पर ये सबको मेंशन किया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, देख लेंगे, आपको ये सब प्रोवाइड किया गया है। और इसमें आपको आती है डेफिनेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आएगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, हमारे इंडिया का कितने बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस है, इंडिया को कितने उसमें बांटा गया है, वो सब आपको बताया गया है, वो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे के उसको वो करेंगे। और इसमें आपका सोशल, एथिकल, एस्थेटिकल, ये सब वैल्यू जो है वो सब आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। और एक तरह से आप देखिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस

हो गया या कंजर्वेशन की बात अगर करते हैं तो ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर क्या इसका पोजीशन है, नेशनल लेवल पर क्या है, हमारे स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर क्या इनका वो है, तो उसको बताया गया था आपको कि कितने हमारे नेशनल पार्क है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व से, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब का बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। इंडिया को क्यों मेगा डाइवर्सिटी नेशन कहा जाता है, इसमें बहुत तरह के आपको एनवायरमेंटल कंडीशन से, आपको ट्रॉपिकल से लेकर मेडिटेरेनियन से लेकर टेम्परेट रीजन, ये सब टाइप के मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बताए थे। तो उसमें देखिएगा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितना है, कहाँ कहाँ पर है, उनकी क्या खासियत होती है, हॉटस्पॉट की क्राइटेरिया क्या होती है, तो ये सब आप ध्यान दे लीजिएगा। उसमें उसमें आपको ये सब इम्पोर्टेंट आएगा, आपको एक दो एग्जांपल के साथ किया जाएगा। जैसे आपको हम लोग इसमें बताए थे इंडो बर्मा के बारे में, वहाँ पर आपको पिक्चर प्लांट होता है नेपेंथिस खासियाना, एपेंडिजम क्या होती है, और सबसे बड़ी बात आती है कि आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की हम लोग बात करेंगे तो थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी को, क्या क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, हैबिटेट लॉस का कारण होता है, पोचिंग की बात होती है ना, तो उसमें आप थोड़ा सा देख दें, मैन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम क्या होता है, ये IUCN क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये सब के बारे में आपको रिवाइज कर लेना होगा। ये सारी चीज़ आपको बताए गए हैं, उनको फिर से एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्लियर रहिएगा उसमें। और कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे तो उसमें इन सीटू और एक्स सीटू की बात कर रहे थे, इन सीटू में आपको पूरा उन्होंने बताया था बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं अपने इंडिया में कितने हैं, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ये सब बहुत तरह के, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट्स के साथ हम लोगों ने लिंक किया हुआ था। और बिहार में हम तो बिहार का रेफरेंस से आपको जानना चाहिए कितने नेशनल पार्क है, कितने सेंचुरीज हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एक बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब कॉन्सेप्ट जो होता है तो उसमें कोर रीजन, पेरिफेरल रीजन होता है, बफर जोन होते हैं, उनका क्या खासियत होता है क्या नहीं, और कितने नंबर्स में हैं वर्ल्ड में या फिर आप इंडिया में कितने नंबर में बायोस्फीयर रिजर्व से, सबसे लार्जेस्ट कौन था, ओल्डेस्ट कौन था, कौन कहाँ पर है, कौन किस चीज़ के लिए मशहूर है, कौन सा स्पीशीज़ वहाँ पर मिलता है, प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, तो ये सब आपको नोट्स में दिया गया, स्लाइड्स में भी आपको पढ़ाए हुए हैं, दिए गए हैं, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से ये कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आप आजकल पोल्यूशन का बहुत मतलब वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, मेराइन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इनके रेफरेंस से आपको इनका कॉज क्या है, इनका इफेक्ट क्या होता है, इनका इम्पैक्ट कितना है, कितने लेवल तक ये जाकर हैजार्डस वो इफेक्ट डालते हैं, और इनका कंट्रोल मेजर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हर एक पोल्यूशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। न्यूक्लियर हैजर्ड्स के बारे में मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियर हैजर्ड्स के बारे में कैसे उनको मैनेजमेंट किया जा सकता है, न्यूक्लियर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से सोर्स होता है न्यूक्लियर लीकेज का, और वो सब के बारे में करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट और ये सब के बारे में बताया गया था। अर्बन पॉपुलेशन जो है, अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, जैसे शहरीकरण ज़्यादा हो जाती है तो कैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ने का चांसेस होता है, उनको कैसे रोकथाम किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको बताया गया है। और इंडिविजुअल्स के क्या रोल होता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन में, तो इसके और इसके रिलेटेड जो है आपका बहुत सारे एक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल एक्ट्स है, पोल्यूशन एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। एक्ट्स का तो एक अलग से आपको मैंने एक चैप्टर और नोट्स भी दिया हुआ था जिसमें पूरा आपको एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स जितने भी हैं उनके बारे में आपको जानना है कि वो कब इस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ पर हुए थे, किससे रिलेटेड है वो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन शेड्यूल ये सब में कहीं मेंशन है तो उनका नंबर याद कर लीजिएगा, आप फिल इन द ब्लैंक्स और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। सोशल इश्यूज और एनवायरमेंटल जो होते हैं उनका इंपॉर्टेंट बहुत अपना एक खास है क्योंकि आजकल एनवायरमेंटल चीज़ों को सोशल इश्यूज़ के साथ ज़्यादा जोड़ा जाता है, तो उसमें आपको करना होगा ये अनसस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है, अपना अर्बन का प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाने पर, वाटर कंजर्वेशन क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, शहरीकरण के दौरान में कैसे उसको हम लोग करते हैं, वाटर सेड मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल एथिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब शॉर्ट नोट्स में आएंगे। इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सब ऑब्जेक्टिव में भी आपके आ सकते हैं, जिसके सोर्स आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों होता है, कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन से गैसेज रिलेटेड, कौन कहाँ से क्या इसका प्रॉब्लम है, वो सारे चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से आप मतलब कर सकते हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के बारे में भी आपको जानना होगा, न्यूक्लियर एक्सीडेंट में दो चार एग्जांपल हम लोगों ने दिया हुआ था आपका चेर्नोबिल वगैरह का, हिरोशिमा का, तो उनके बारे में जानना है, उनका डेट्स याद रखिएगा किस जगह पर हुआ था,
वो सब के बारे में आपको जानना होगा। प्लस ये जैसे मैंने एक्ट के बारे में तो

0: आपको बता ही दिया। आपका एक और इम्पोर्टेंट इस पे ये है, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट का, जो आपका सेवेंथ यूनिट है। तो इसमें आपको जैसे पॉपुलेशन इज द कॉज फॉर एवरी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड कैसे हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी पॉपुलेशन हो, कम जनसंख्या हो, ह्यूमन राइट्स की बात उसमें आती है, फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम की बात आती है, आपकी बीमारी जो होती है वो फैलने की सोशल सोसाइटी में होती है उनको कैसे रोक दिया जाए, चाइल्ड वेलफेयर की बात आती है। तो ये सारे रिलेटेड भी आपके एनवायरनमेंट से है जुड़े हुए, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जो आपको क्लास में वो किया गया है। और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका तो आपको थोरो वो स्टडी कराया गया है, जिसमें आपको नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बताया गया था, जिसमें आपका फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड सबके बारे में एक एक करके बताया गया है। अगर कॉमन क्वेश्चन आता है एनवायरनमेंट के लिए तो आपने आपको जैसे बताया गया था कि उसमें बिफोर डिजास्टर्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या करते हैं, आफ्टर डिजास्टर क्या करते हैं, वो चार पाँच टॉपिक आपका उसमें बताया गया था। प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, मिटिगेशन कैसे की जाती है, रिस्पॉन्स कैसे होता है, और रिहेबिलिटेशन और ये सब के बारे में आपको डिटेल में ये सब बताया गया है, उनको लेकर आपने इसमें अच्छे से वो करना है। प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट की बात जब आती है तो एक एक डिजास्टर्स का अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, और अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं उनके बारे में, ड्रिल्स होती है, मॉक ड्रिल्स, उसके के बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से बताएंगे। एंड रिसेंटली अगर कहीं पर डिजास्टर्स हुए होंगे, मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो उससे संबंधित आपके क्वेश्चन इसे आ सकते हैं, उसको आपके कोर्स के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको करिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आएंगे, और दूसरे में आपका शॉर्ट नोट्स होगा। शॉर्ट नोट्स आपका टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्वेश्चन जितना मार्क्स का होता है उतना ही का करना चाहिए। और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाकर टॉपिक वाइज उसको डिस्क्राइब करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट, उसमें कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सब पढ़ाया गया, आप उसको अच्छे से करिए। थैंक यू, चलिए, ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच सर, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो स्टूडेंट्स कल एग्जाम दीजिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
4: See you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

नाजरीन, आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सब और दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजिन के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी के राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम।

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर बैंगन मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको दो बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार तीन बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है। और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
1: मैम बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
2: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं,

0: और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पे जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
1: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
0: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर उसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं। परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पे एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
0: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए लेकिन बारिश को देखते हुए

0: और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग, जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है, उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है। और जब फसल में तुड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं और अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम

0: हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीजों की जरूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स की जरूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और खास तौर से महिलाओं को जरूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान, सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है। और जब उनका मेनोपॉज होता है, यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है, तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज़्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है, पदार्थ है, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है, तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जिसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती है और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी, बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं, या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं, या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्ग को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है। और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है, और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या

भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा। इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही। इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुंझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफ़ी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज़ 5,000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद है वो आप खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही ले। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही। इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जाँच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी
की टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर जरूरत आपको लगे तो। दोस्तों महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जाँच कर ली जाए और जाँच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो

0: फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐंठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है, या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जाँच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. See you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: Yo, what's up? Baby, let's go.
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM. उन्नत कृषि।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और हर रोज़ की तरह आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती से जुड़ी बातें। और अभी फिलहाल यहां इस समय परवल जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। नए नए अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें परवल भी शामिल हो जाता है गर्मी के मौसम में। अब यहां पर खेती की बात कर रहे हैं तो इस समय हमारे जो किसान भाई हैं परवल की खेती करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे खेती परवल की और क्या क्या सावधानियां बरतनी है हमारे किसान भाइयों को इसकी खेती के दौरान, और भी बहुत सारी बातें परवल की खेती से जुड़ी, इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता कुमारी मैडम। मैं आप सभी को बता दूं ये वैज्ञानिक हैं केवीके सबौर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: थैंक यू अनु।
0: मैडम सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं और किसान भाइयों को परवल की खासियत के बारे में बता दीजिए कि इसमें क्या क्या गुण हैं।
8: परवल एक कद्वरीय सब्जी का महत्वपूर्ण सदस्य है और परवल के बारे में परवल की बहुत सारी चीज़ें अपने घरों में बनती हैं।
0: जी,
8: जैसे अचार है, सब्जी है, चटनी है, इसका लोग कम तेल मसाला में भी अलग अलग उत्पाद बना करके खाना पसंद करते हैं। खास बात यह है भागलपुर के क्षेत्र के लिए कि भागलपुर में लगभग ये जितना भी दियरा का क्षेत्र है उसका मुख्य फसल परवल है और यहाँ हजारों एकड़ में परवल की खेती होती है। किसान के लिए आने वाले समय में कद्दूवर्गीय सब्जी का एक महत्वपूर्ण उत्पाद की तरह परवल आता है और यह नाथनगर, सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर, कहलगांव, पीरपैंती जैसे ब्लॉकों प्रखंडों में परवल की खेती बहुत बड़े भूभाग में की जाती है और इसमें किसान जो लगाते हैं इसको जब अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में पानी निकल जाता है बाढ़ का, उसके बाद लोग परवल लगाना प्रारंभ करते हैं और परवल लगाते हैं। परवल के साथ साथ वो करेले की बीज को भी डाल देते हैं। करेले के बीज को डाल देते हैं तो परवल समय के आने के साथ साथ

0: केवल अपना बढ़वार में आता है, लेकिन उससे पहले हमारे किसान हैं जो करेले को एक इंटरक्रॉप की तरह लेकर के उत्पाद ले लेते हैं और करेला का फसल को बेच लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो नीचे में परवल लगाते हैं और ऊपर की तरफ मिर्च लगाते हैं, जैसे वो मिर्च का भी उत्पादन अभी परवल के साथ साथ ले रहे हैं।
1: जी मैडम, अभी क्षेत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार की क्षेत्र होनी चाहिए जहां परवल की खेती हमारे किसान भाई कर पाएं, या फिर जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु कैसा होना चाहिए इसकी खेती के लिए?
0: परवल मुख्यतः सालों भर भी आप रख सकते हैं अगर है, लेकिन चूंकि यह दीरा क्षेत्र में लगता है तो दीरा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित होता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: और जुलाई अगस्त में जब बाढ़ आता है तो किसानों का स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है फलन पे रहता है, फलन के एकदम उत्कर्ष चरम पे रहता है, उस समय हमारे किसान भाइयों का फसल बह जाता है। तो अब आने वाले दिनों में देखा गया है कि बहुत सारा ऐसा गांव है, आप जैसे खैरपुर है, लत्तीपुर है, इन सब गांव में परवल जो है ऊपरी भूमि में भी किसान अब लगाना प्रारंभ कर दिए हैं, जिससे उनको स्वयं का लत मिलना प्रारंभ हो गया है।
1: जी, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए मैडम इसकी?
0: इसके लिए मुख्यतः मिट्टी एक है कि दीरा में बलुआही मिट्टी होती है, और चूंकि परवल जब जमीन पर चलता है तो जहां जहां गांठ होता है वहां वहां से परवल का जड़ें आ जाती हैं और वो ज़्यादा तेजी से फैलाव दीरा वाले क्षेत्र में ही होता है। लेकिन ऐसी ये एक भ्रम के तौर पर ही है, क्योंकि जब ये ऊपरी भूमि में जाने लगे और हमारे किसान इसको अलान पर देने लगे तो इस तरह की समस्याओं का कोई या इस तरह के किसी भी प्रकार का इनपुट वहाँ नहीं रहता है, फिर भी परवल की खेती बहुत अच्छे तरीके से हो रही है।
1: जी, तो यहाँ पर अभी मैडम ने बताया कि परवल आप किस क्षेत्र में उगा सकते हैं, और एक भ्रांति के बारे में भी मैडम ने बताया कि लोग सोचते हैं कि ये बालू वाली जगह पर ही इसका जो है उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अभी मैडम ने बताया कि किसान भाई अब जो है ऊपर ज़मीन पर भी इसकी खेती कर रहे हैं। तो अब जो खेती हो रही है मैडम परवल की, उसमें बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है, किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं और सुधार कहाँ पर करनी है, तो कुछ ऐसी बातों के बारे में बताइए जब हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं तो सावधानियां उनको बरतनी चाहिए।
0: जी, परवल में सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को सावधानी यह लेनी चाहिए कि किस परवल में नर और मादा अलग अलग पौधों में होता है
1: जी।
0: तो वो नर और मादा का सही अनुपात को मेंटेन करें, सही अनुपात में लगाएं, और अनुशंसित जो है नर मादा का वो 5 नर मादा पे 1 नर लगाना चाहिए, मतलब कि 10:2 के इस अनुपात में किसानों को लगाना चाहिए। लेकिन किसान भाई से जब बहुत सारे किसानों से जब बात मेरी हुई तो किसानों ने अपना जो बताया कि जब हम 5 और 1 पर देते हैं तो नर है जो बहुत तेजी से फैलता है और मादा को छा ये कर देता है, ढकने का प्रयास करने लगता है। उस केस में किसानों ने अपना 1:9 का रेशियो अनुपात में लगाया, 1 नर और 9 मादा, तो उनको उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। पहला सावधानी ये है। दूसरा सावधानी क्या होता है कि नर और मादा का अनुपात सही मायने में नहीं रखा जाता है तो परागण की क्रिया सही सही नहीं होती है, और जब परागण की क्रिया सही नहीं होती है तो फल है जो सही अनुपात में लगता नहीं है, जो उनको एक उत्पादन प्राप्त होना चाहिए हमारे किसान भाइयों को उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है कि फल में परागण हो भी जाता है और सही परागण तरीके से नहीं हो पाता है तो छोटे छोटे फल सड़ करके गिरना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे किसान को ही कहीं ना कहीं हानि होती है। किसान इस तरह का अनुपात को पहला मेंटेन करें। दूसरा चीज है कि परवल के बारे में कि परवल में सफ़ेद फूल होता है, सफ़ेद फूल होता है तो होता क्या है कि परवल में फल मक्खी की भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं
1: जी।
0: तो किसान को लाइट ट्रैप पर जाना चाहिए, किसान को परवल में लाइट ट्रैप जरूर लगाएं जिससे फल मक्खी से उनको निदान प्राप्त हो जाता है
1: जी।
0: तीसरी समस्या आती है कि चूंकि यह दीरा में ज़्यादा लगाया जाता है और दीरा में गंगा जी की मिट्टी में निमाटोड का बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा है, जड़ों में गांठ हो जाती है परवल में, और जड़ में गांठ होने जाने के कारण जो पोषक तत्व हैं सारा ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, और जब पौधा फलन में आता है तो पौधे का जो मांग होता है वो बढ़ जाता है, और उस स्थिति में क्या होता है कि पूरा का पूरा लत सूख जाता है फलन पर आने वाली अवस्था में।

0: तो किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें नीमयुक्त खली का उपयोग करें, नीमयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करें और साथ साथ गेंदा को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, सरसों को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, जो कि प्राकृतिक रूप से निमाटोड का नियंत्रण हो जाता है।
1: जी मैडम, अभी बाज़ार में जब हम परवल खरीदने जाते हैं तो दो किस्म के परवल हमें देखने को मिलते हैं, एक डार्क ग्रीन और एक हल्का ग्रीन, और एक में वाइट वाइट धारीदार भी रहते हैं, तो इसमें क्या अंतर है, क्या बीज से ये अंतर उत्पन्न होती है या फिर क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: परवल की कई प्रजातियां हमारे यहाँ लोकल में लगती हैं, जैसे स्वर्ण रेखा लगती है, स्वर्ण रेखा।
1: तो कौन सी किस्म हमारे क्षेत्र के लिए बहुत, मतलब किसान भाइयों को बीज जो है वो चयन करना है?
0: हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक, जो कि बिना धारी वाला होता है, थोड़ा चमकीला होता है, हल्के रंग का होता है,
1: इसको बहुत ज्यादा
0: करता है स्वर्ण रेखा, काफी दिनों से हमारे यहाँ लग रहा है। बहुत सारी लोकल प्रजातियां हैं, जैसे निमिया है, डंडाली है, ये सब भी किसान लगा रहे हैं। और मुख्यतः किसान परवल का जो लत है बाढ़ में बह जाने के कारण बंगाल से ला रहे हैं, गया से ला रहे हैं, समस्तीपुर से ला रहे हैं, तो किसान अपने द्वारा बहुत सारे ऊपरी भूमि में भी रखे हुए हैं, तो किसान लोकल भी इसकी आपूर्ति करना प्रारंभ करती है।
1: जी तो किसान भाइयों, अभी आप जान रहे थे परवल की खेती आपको कैसी करनी चाहिए और क्या कुछ सावधानियां हैं जो मैडम ने बताई, वो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इससे आपको हानि बिल्कुल भी नहीं होगी और मुनाफा, आपके उत्पादन में अधिक मुनाफा मिलेगा आपको। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे, फ्रिक्वेंसी यही है, याद रखिए 90.8 MHz FM ग्रीन। नमस्कार, उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और मैं हूँ आरजे अनु। आप सभी का स्वागत है हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम में और आज एक खास विषय आप सभी के सामने फिर से पेश है। और दोस्तों, अगर बात करें सब्जियों

0: की तो सब्जियों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है हमारे किसान भाइयों को इसे उगाने में, जितना पौष्टिक ये होता है उतनी ही मेहनत से इसे उगाया भी जाता है। लेकिन अब कुछ रोग और कुछ व्याधि इसमें लग जाए तो सारे के सारे मेहनत वहीं के वहीं धरे पर जाते हैं। तो आज हम कुछ रोग के बारे में जानेंगे जिससे कि हमारे किसान भाई पहले से सतर्क रहें, रोग को पहचान सकें, और अगर वो रोग लग जाते हैं तो उन्हें उनकी रोकथाम वो कैसे कर सकते हैं। तो आज अलग अलग जो विभिन्न प्रकार की जो सब्जी हैं हमारे, जैसे कि मिर्च की बात करें हम, कद्दू की बात कर लें, भिंडी की बात करें, लोबिया या बोरा, साथ ही परवल की बात करें, तो ये जो सब्जी हैं वो प्रमुख तौर पर गर्मी में और साथ ही वर्षा ऋतु में आपको मिल जाएंगे खाने को और बाज़ार में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम इसी के कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय है गर्मी और वर्षा ऋतु में सब्जियों में होने वाले प्रमुख बीमारियां और साथ ही उनका हम प्रबंधन कैसे करें ये। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर मोहम्मद अंसार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा रोग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। मिर्च से स्टार्ट करते हैं। मिर्च जो है हर मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, हर मौसम में हम इसे खाते हैं। मिर्च में लगने वाले जो रोग हैं आप उनके नाम बताएं और साथ ही हम उनसे अपने मिर्च के इस पौधों को कैसे बचा सकते हैं उसकी जानकारी बताएं।
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिर्च जो है एक बहुत प्रमुख फसल जो है, सब्जी मानी जाती है, जिसका हम लोग बहुत सारी सब्जियों में इसको यूज़ करते हैं, हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे मुख्यतः गर्मी में और वर्षा ऋतु में सब्जी मुख्य तरीके से उगाई जाती है। इसमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, खास करके जो ये हमारी गर्मी में है और जो बारिश जो शुरू हो जाती है इसमें बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि जब पौधा छोटे अवस्था में ही होता है, जुवेनाइल स्टेज में ही होता है, तो उसी में ही बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। तो किसान भाई जब इसका मिर्च का बीज डालते हैं खेतों में या नर्सरी तैयार करते हैं, उस टाइम इसमें पौधों में गलन शुरू लगता है, जिससे शुरू में ही पौधे गल जाते हैं। तो वो क्या होता है कि हमको उसमें पौधे मिल नहीं पाते, जिससे हम लोग उसको मुख्य खेत में रोपाई या ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को ये बात देखने की ज़रूरत है कि जब हम लोग बीज डालें तो ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पर जल जमाव ना हो, चूँकि नमी की मात्रा ज़्यादा होता है खेत में जब, तो उसी वक्त में इसमें जड़ों में गलन इसका शुरू हो जाता है, जिससे ये पौधे धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग इसको इसका जो नर्सरी तैयार करें, जब बीज डालें, तो ऐसे जगह पे हम लोग नर्सरी का की जगह का चुनाव करें जहाँ पे पानी ना भरता हो, जल जमाव की समस्या ना हो, और जो भी हम लोग बेड तैयार करेंगे जिसमें हम लोग बीज डालते हैं उसको मिट्टी से 15 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर उठा के हम लोग बेड बनाएं, उसके अंदर बीज इसमें डालें, तो हम लोगों का काफ़ी हद तक इसमें रोग से हम लोग इसको बचा लेते हैं। दूसरी एक जो बड़ी समस्या मिर्च में आती है, जो अभी हम लोग देखने को मिल रहा है, जो बारिश भी शुरू हो गई है, इसमें फलों का सड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है। फल सड़ता है और दूसरा इसकी जो टहनियाँ होती हैं, तने होती हैं, उसमें उसका सूखना शुरू हो जाता है, उस जिसको हम लोग डैम्पिंग, ये इसको हम लोग इसको एंथ्रेक्नोज डिजीज़ बोलते हैं, हम लोग एंथ्रेक्नोज, इसको श्यामरण भी हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें दो तरीके के लक्षण दिखते हैं, एक तो ये फलों का सड़ना और दूसरा तनों का सूखना का। तो हम लोग पहले जब फलों की बात करते हैं, तो फल क्या होता है, फल वो सड़ना शुरू होते हैं जो थोड़ा सा मेच्योर, जो पक्के मेच्योर हो जाते हैं, जिनका पकने की अवस्था में आ जाते हैं, उनमें ज़्यादातर फलों में ये सड़न होती है और फल काले होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। दूसरी समस्या जो इसमें दिखती है, दूसरा जो हम लोग देखते हैं खेत के अंदर, उसमें टहनियाँ इसमें काली होने लगती हैं, ऊपर से सूख करके नीचे की तरफ बढ़ती हैं और देखते ही देखते पूरा पौधा सूख के ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर एक प्रमुख बात यह है कि जो ये बीमारी जो लगी हुई है मिर्च के पौधे पर, ये जो मिट्टी में चले जाते हैं, फल टूट के मिट्टी में गिर जाते हैं, तो ये जो फफूंद है ये मिट्टी में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। जब हम दूसरी बार इसमें मिर्च की फसल दूसरे सीज़न में उगाते हैं तो उसमें वो फिर बीमारी आनी शुरू हो जाती है, तो मृदा जनित हो जाती है। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसमें फफूंदनाशी का हम लोग स्प्रे करेंगे। तो पहला हम लोग जो छिड़काव करेंगे, मैंकोजेब दवा मार्केट में आती है, हम लोग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। और दूसरा जो हम लोग दवा का छिड़काव करेंगे, एक डाइफेनोकोनाजोल करके एक दवा मार्केट में आती है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है, डाइफेनाकोनाजोल है, वो मार्केट में अवेलेबल है, उसको हम लोग ले करके उसका 1 ml 2 लीटर पानी में उसका हम लोग घोल बनाएंगे और कम से कम 7 से 8 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव हम लोग करेंगे। तो इससे निश्चित तौर पे हम लोग देखेंगे कि बीमारी की जो समस्या लगती है वो धीरे धीरे कम होगी। और हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर कोई

पूरी तरीके से सूख गया है तो उसको हम लोगों को खेत से फौरन निकाल के फेंक देना है, क्योंकि वो मिट्टी में जाएगा तो उससे फिर वो आने वाले जब समय में जब हम दोबारा मिर्च लगाएंगे तो उसमें बीमारी फिर से उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी एक समस्या जो जो हम लोग देखते हैं मिर्च के अंदर, वो पौधों का अचानक सूख जाना। पौधों में में फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, फल अच्छी तरीके से तुड़ाई हो रही है, अचानक हम लोग देखते हैं कि पौधा ही सूख गया। तो उसमें हम लोगों का क्या होता है कि इसमें लक्षण जो दिखते हैं हरे भरे पौधों में कि जो पत्तियां होती हैं वो लटक जाती हैं। जो दिन में जब गर्मी होती है तो उसमें पत्तियां नीचे लटकी हुई होती हैं, और जब रात का समय होता है शाम होती है फिर पत्ती वो फिर से वो स्वस्थ दिखने लगती हैं। फिर जब दिन आता है दूसरे दिन तो फिर वो पत्ती सूख जाती है। तो ये दो तीन दिन इस तरीके से चलता है, चार दिन चलता है, फिर वो फाइनली पौधा वो जो है सूख ही जाता है। तो इससे उसमें क्या होता है, उसके जो वैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, फैल जाते हैं पूरी तरीके से, जिससे जो पानी जो पौधा लेता है ज़मीन के अंदर से वो पानी नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। तो ये जो बैक्टीरियल विल्ट जो हम लोग जीवाणु की वजह से जो सूखना पौधों के अंदर होता है, एक बहुत बड़ी मिर्च की समस्या है। तो इसको किसान भाई सबसे पहले ध्यान दें कि अगर जिस खेत में ये बीमारी अगर लगातार आ रही है, आप लोग मिर्च की फसल लगा रहे हैं, तो कम से कम 3 वर्षों तक हम लोगों को इसके अंदर फसल चक्र का अपनाएं। कोई भी जो मिर्च वर्ग के जो फसल है उसको हम लोग नहीं लें उस खेत के अंदर, अगर लेते हैं तो ये समस्या बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई किसान भाई इसमें मिर्च लगा रहा है खेत में, तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, जब भी हम लोग मिर्च लगाएंगे तो हम लोग इसको दवा में इसको ट्रीटमेंट इसका देंगे, इसके जड़ों को हम लोग दवा में इसको डुबाएंगे फिर खेत में लगाएंगे। तो एक दवा मार्केट में के साइक्लिन करके आती है जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, उसको हम लोग को 1 ग्राम दवा जो है 20 लीटर पानी के करीब से घोल उसको हम लोग बना लेंगे और उसमें जड़ों को थोड़ी देर के लिए डुबा करके फिर हम लोग मुख्य खेत में उसको लगाएंगे। तो इससे जो है हमारी बीमारी की जो लगने की समस्या है वो थोड़ा कम हो जाएगी। अगर खेत में पौधा लगा हुआ है, फलन हो रही है और अब पौधा सूख गया, तब तो हमको फौरन इसमें ऐसी दवा डालना होगा जो खेत में खड़े हुए फसल में उसमें दवा डाली होगी। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे जो दवा का छिड़काव करेंगे इसके जड़ों में देंगे, ताकि उसके वैस्कुलर सिस्टम में दवा जाए और जहां वो जीवाणु को मारे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक दवा आती है मार्केट में मुख्य तरीके से मिलती है, तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लेंगे 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बना करके पौधों की जो जड़ों हैं जड़ों में उसको दवा डालना है, ताकि वो जड़ से वो दवा अंदर जाए पौधों के अंदर और फिर वहाँ अच्छे तरीके से काम करे। अगर हम लोग इस जो कोई पौधा सूख रहा है और अगर हम लोग दवा पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो हो सकता है कि वो दवा प्रभावी ना हो, तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना है। और जो एक मिर्च में हम लोग यहाँ देखते हैं बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है, जिसके अंदर पत्तियाँ ऐंठ जाती हैं, उसको हम लोग यहाँ के भाषा में कुकड़ी भी बोलते हैं, मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश हम लोग उसको कर्लिंग बोलते हैं। तो पत्ती उसमें क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। तो वो एक विषाणु जनित बीमारी है जिसको हम लोग लीफ कल वायरस की वजह से बोलते हैं, वो बीमारी आती है। तो ये जो बीमारी होती है ये मुख्य तरीके से जो है एक कीट होता है जिसको हम लोग सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, वो सफ़ेद मक्खी से वो बीमारी एक पौधों से दूसरे पौधों में फैलती है। तो वो बीमारी ग्रसित पौधे से रस चूस करके वो स्वस्थ में जब भी जाएगी रस वहाँ से अपना खाना लेने के लिए, तो वो विषाणु वहाँ पे भी चला जाएगा। तो इस तरीके से देखते देखते पूरे खेत में वो कर्लिंग की समस्या आ जाती है, जो पत्ती ऊपर की तरफ ऐंठ जाती है। तो इस तरीके से अगर इसमें पत्ती का ऐंठना ही नहीं होता है, पत्ती भी ऐंठती है, पौधा भी छोटा रह जाता है, पौधा झाड़ी नुमा भी हो जाता है, और इसके अंदर अगर फल फूल लगते भी हैं तो वो छोटे और गठीले तरीके से हो जाते हैं, जिनका कोई मार्केट में उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। तो इसका हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से कोई बीमारी दिखती है, तो अगर पौधे अगर खेत में अगर इस तरीके से अगर कोई लक्षण आपको दिख रहा है, तो फौरन उस पौधे को उखाड़ के नष्ट कर देना है, और इसको हम लोगों को फौरन खेत में इसको दवा का छिड़काव करना है जो सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए दवा दी जाती है। तो इसके लिए हम लोगों को इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का मार्केट में खूब अवेलेबल है। इसको हम लोग 1 ml प्रति 3 लीटर के हिसाब से, या दूसरी दवा थायामिथक्साम करके आती है 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से, इसका हम लोग 7 से 8 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सफ़ेद मक्खी है उनका खेतों में जो लगे हुए हैं उनको हम लोग नियंत्रित करेंगे, जिससे बीमारी जिससे फैलती है उसको हम लोग कम कर देंगे। इसको रोकने का और भी अच्छा तरीका है कि हम लोग नर्सरी अवस्था में ही इसको रोकना शुरू करें, क्योंकि नर्सरी में जब हम लोग बीज डालते हैं तो किसान भाई खुले में लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पत्ती 2-3 पत्तियाँ निकल आती हैं तो उसमें सफ़ेद मक्खी लगनी शुरू हो जाती है, तो वहीं से वो बीमारी वायरस जो है फैलना शुरू हो जाता है।

नर्सरी की अवस्था से ही। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी नर्सरी लगाएं तो उसको हम लोग बारीक एक जाली आती है, है उस जाली से हम लोगों को नर्सरी को ढकना है। तो उससे दो चीज़ें होंगी कि एक तो बीमारी जो वायरस फैलाने वाले कीड़े हैं वो नहीं उसके अंदर जाएंगे नर्सरी के अंदर, और दूसरा और भी जो पत्ती को चबाने वाले कीट हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो जो नर्सरी आपने तैयार करी है उसके पौधे जो होंगे वो स्वस्थ होंगे अच्छी तरीके से।

0: किनारे किनारे मेड़ों पर। तो दो लाइन हम लोग मक्के की अवश्य लगाएं उसके किनारे किनारे खेत के मेड़ों पे, जिससे उसमें मधुमक्खी, ये वही सफ़ेद मक्खी का उसके अंदर प्रवेश, उसके अंदर हम लोग उसको बाधित कर सकें। दूसरा एक इसमें जो कर्लिंग की समस्या आती है, किसान भाई देखते हैं कि कर्लिंग दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तो जो कुकड़ी होती है ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं, जिसको अभी हमने बताया जो विषाणु की वजह से होती है। एक दूसरी समस्या होती है पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो विषाणु नहीं है वो एक माइट होता है, छोटा कीड़ा होता है, आँख से नहीं दिखता है, वो पत्ती के निचली सतह पर लग करके उसका रस चूसता है, जिससे पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, नीचे की तरह की से मुड़ती है और थोड़ी लंबी हो जाती हैं। तो माइट है, उसके उस माइट को रोकने के लिए स्पायरोमेसिफेन करके दवा आती है। स्पायरोमेसिफेन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका घोल करके छिड़काव करें कम से कम 2 बार 7 से 8 दिन के अंतर पर, तो हम लोग इसको माइट को भी रोक देंगे। तो वो जो इस तरह से अगर पत्ती है तो वो ठीक हो जाएंगी वो।
1: तो ये तो बात हो गई है मिर्च की, मिर्च में लगने वाले रोगों के नाम बताएं डॉक्टर साहब ने आपको, और साथ ही इसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। आजकल देखा जाए तो कद्दू का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई कर रहे हैं सर, तो कद्दू में कौन कौन से रोग हैं कद्दू के पौधे में लग सकते हैं और उनका बचाव कैसे कर सकते हैं हम?
0: जी, कद्दू एक मुख्य फसल है जो गर्मी में और वर्षा ऋतु में दोनों में होती हैं। तो इसको इसमें मुख्यतः तीन बीमारियां आती हैं जिसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। किसान भाई इसमें इसको आप खेत में देखते भी होंगे। एक तो होता कि पौधा पूरी तरीके से ही सूख जाता है अचानक, तो हम लोगों को देखना है कि उसके जड़ के पास में कोई कीट लगा, कीट तो नहीं लगा हुआ है या कोई बीमारी लगी, इसको जड़ को हम लोग उसको देखना है उसको जा करके। तो अगर हम लोगों को जड़ों में अगर देखता है कि अगर कोई काले रंग का कोई घेर लेके घेरा हुआ या कवर कर रखा है तने को, तो हम लोग समझते हैं कि उसके अंदर कोई फफूंद लगा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो अभी हमने बताया है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या कार्बनडाजिम दवा आती है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसको हम लोगों को जड़ों में उसका डालना है उस दवा को, वहाँ ड्रेंचिंग करना है उस दवा को। और अगर हम लोगों को मैं उस टाइम अगर पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो हो सकता है ये बहुत प्रभावी ना हो, क्योंकि जड़ों से सूखना शुरू होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये है समझना है कि जो जड़ में फफूंद लगा है उसको हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। तो हम ये 2 दवा का अगर छिड़काव करते हैं तो इससे पौधों का सूखना रुकेगा। जब हम लोग बीज लगाते हैं कद्दू का, तो सबसे पहले हम लोगों को वही देखने की ज़रूरत होती है, हम लोग ट्राइकोडर्मा का यूज करें। ट्राइकोडर्मा हम लोगों को जो है वर्मी कंपोस्ट जो हम लोगों के पास में ये जो मिलता है, हम लोग 100 किलो जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर 1 किलो के करीब हम लोग जो मार्केट का जो मिलता है फॉर्मुलेशन, उसको हम लोग मिला करके 14 से 15 दिन के लिए उसके छावदार स्थान पर रखते हैं, ताकि उसके अंदर वो ट्राइकोडर्मा अच्छी तरीके से फैल जाए। जब हम लोग गड्ढा बनाते हैं कद्दू वर्गीय फसलों को लगाने के लिए, उसमें लौकी हो सकती है, परवल है, या आपका ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, तो इन सब में जो हम लोग लगाते हैं बीज लगाते हैं, तो हम लोग पहले गड्ढा बनाते हैं। उन गड्ढे में पहले हम लोग वर्मी कंपोस्ट, वो भी ट्राइकोडर्मा मिला हुआ, उसको हम लोग पहले गड्ढे के अंदर भर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ पे अगर कोई इस तरह से फफूंद होगा तो ट्राइकोडर्मा उनको रोकेगा, और जिससे हमारे जो पौधे निकलेंगे उसके अंदर उनमें जड़ों में इस तरह से कोई विकार या कोई बीमारी इस तरह से नहीं दिखेगी। तो अगर हम लोग ट्राइकोडर्मा वर्मी कंपोस्ट में मिले हुए वर्मी कंपोस्ट को अगर हम लोग डालते हैं गड्ढों में, तो उससे हम लोग बीमारी काफ़ी हद तक रोक लेते हैं। दूसरा, पत्तियों पर जो एक बीमारी लगती है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक पाउडर की परत सी जम जाती है, दो पाउडरी मिल्ड्यू हम लोग उसको बोलते हैं कि एक इस तरह से परत जमती है, तो देखते हैं कि पूरा पौधा ही सफ़ेद हो जाता है। जब हम लोगों की नमी बहुत ज़्यादा खेतों के अंदर होती है तो उस वक्त ये बीमारी ज़्यादा आती है खेतों के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी है कि जब भी कोई इस तरह से हम लोग बीमारी आने की संभावना जो बनी रहती है, तो हम लोग बीमारी आने से पहले ही मैंकोजेब जो 2 ग्राम या 2.5 ग्राम जो दवा है उसको प्रति लीटर के हिसाब से पहले से ही छिड़काव करके रखेंगे खेत में, जिससे उसके अंदर इस तरह से कोई बीमारी ना आए, पहले से ही हमने छिड़काव करके उसमें रखना है। दूसरी बात है जो हम लोग देखते हैं कि और भी फफूंदनाशी अगर मान लो बीमारी आ भी गई है खेत में, लग रही है बीमारी की बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हम लोग उसके अंदर जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं जो है वो उसको हम लोगों को डालना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम, क्योंकि उसमें फिर हम लोग कोई दवा डालेंगे तो काम नहीं करेगा इस तरीके से। तो हम लोग हेक्साकोनाजोल आता है, टेब्यूकोनाजोल आता है, तो या हेक्साकोनाजोल या ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का मिक्स्ड फॉर्मुलेशन आता है, मिला हुआ रहता है, तो इस तरह से जो दवा आती है इनका दवा हम लोग ले करके वो 1 ग्राम के हिसाब से इसको हम लोग लेके पत्तियों पर छिड़काव करना शुरू करेंगे, ताकि जो उस तरह से जो फफूंद ऊपर लगी है वो उसको हम लोग साथ समय ठीक कर सकें। अभी जो मिर्च ये कद्दू वर्गीय फसलों में जो हम लोगों को एक उभरती हुई समस्या जो दिख रही है वो विषाणु जनित बीमारियों की है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो

0: जो लक्षण हम लोगों को मिर्च में टमाटर में जो दिखते थे, पत्तियों के अंदर पीला हो जाना या पत्तियों के ऊपर कुकड़ी हो जाना, पत्तियां ऐड जाती हैं, उस तरीके की समस्याएं अब हम लोगों को कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिल रही है। उसमें आपका खीरा, तरबूज, करेला, खीरा, इस सारे में जो है इस तरह की बीमारी दिखती है, जिसमें पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, मोज़ेक तरीके का दिखने लगता है, उजला हो जाता है और पत्तियाँ ऐड जाती हैं। तो ये एक विषाणु जनित बीमारी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी चीज़ करना यह है कि जो ये बीमारी वही मक्खी, सफ़ेद मक्खी से फैलता है जो मिर्च के अंदर जो इस तरह से कुकड़ी या कर्लिंग उसके अंदर बीमारी को फैलाता है। तो हम लोगों को यहाँ देखने की ज़रूरत यह है कि अगर वो हम लोग ये बीमारी अक्सर लगनी कब शुरू होती है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई जो मिर्च उगाते हैं या टमाटर उगाते हैं, टमाटर मुख्यतः रबी की फसल है, जब टमाटर की फसल ख़त्म होने वाली होती है तो उसके बीच में कद्दू वर्गीय फसलों को लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे कद्दू लगाते हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो उसके अंदर जब जो विषाणु इसमें लगता था टमाटर के अंदर, वो विषाणु वो कद्दू वर्गीय फसलों में चला जाता है। तो टमाटर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब कद्दू वहाँ पे जो पौधा तैयार होता है उनमें मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पौधों में उस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमको देखना है कि जब भी हम लोग इस तरीके से कोई बीज लगाएं किसी टमाटर के में या मिर्च में किसी फसल में, तो उसमें हम लोगों को टाइम से उसके अंदर दवा का छिड़काव करना ज़रूरी है, ताकि जो सफ़ेद मक्खी टमाटर या मिर्च में लगती हो वो इसके अंदर कद्दू वर्गीय फसलों में ना आने पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि जब पत्ती, दो तीन पत्तियाँ निकल आएँ, तब हम लोगों के अंदर इमिडाक्लोप्रिड या थायमेथोक्साम जो भी हमने दवा बताया है, इसका हम लोगों को छिड़काव करना शुरू कर देना है। 7 से 8 दिन के अंतर पर इस दवा को हमको छिड़कते रहना है। दूसरी चीज़ है, जैसे अभी हम लोग बताएं कि जो बॉर्डर वाले हैं, जो किसान जो मुख्य खेत है उसके किनारे किनारे पे हम लोग क्या करते हैं, दो लाइन मक्के की या ज्वार की हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो उससे सफ़ेद मक्खी का जो खेत के अंदर जो प्रवेश होता है उसको हम लोग रोकते हैं। तो इससे हम लोग देखते हैं कि बीमारी को हम लोग बहुत हद तक कम कर देते हैं।
1: अगर गर्मियों की बात करें, हम साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें, तो भिंडी अभी बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है और लोग इसे खाते भी हैं, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, भिंडी उत्पादन के समय बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई रोगों के बारे में जानें और उनका बचाव कैसे करें, भिंडी के पौधे में जो रोग लगते हैं उनको पहचानें। तो कौन कौन से रोग इस पौधे में लग सकते हैं और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
0: जी जी बिल्कुल, जो भिंडी की फसल है हम लोग देखते हैं कि मार्च से ही आनी शुरू हो जाती है और अभी बरसात में भी खूब भिंडी मिलती है हम लोगों को। भिंडी हम लोग दो सीज़न में लगाते हैं, एक तो हम लोग गर्मी वाला लगाते हैं, एक वर्षा ऋतु वाला लगाते हैं, दोनों अलग अलग में लगाते हैं। तो जो गर्मी में हम लोग लगाते हैं, जो मार्च के करीब लगाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें जो भिंडी में है जो मुख्यतः जो बीमारी आती है वो मोज़ेक की समस्या है, जिसमें पत्ती एकदम गोल्डन की तरह मोज़ेक चमकती हुई दिखती है खेतों में, अगर हम लोग देखते हैं उसको हम लोग येलो वेन मोज़ेक बोलते हैं। तो उस तरह से खेत में एक चमकदार पत्ती जो पीली उजली सी दिखनी शुरू हो जाती है। तो भिंडी में एक सबसे बड़ी बीमारी यही हम लोगों को दिखती है खेतों के अंदर। अब आते हैं हम लोग भिंडी के सीज़न के ऊपर। जो भिंडी दो सीज़न में जो हम लोग लगाते हैं, एक तो हम लोगों का लगाने का समय है जब हम लोग ये मार्च में लगाते हैं, दूसरा एक वर्षा ऋतु में जब हम लोग जुलाई वगैरह में लगाते हैं, जो अभी आ रहा समय। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो गर्मी में लगाते हैं मार्च के समय में, उसमें कम जो बीमारी होती है उसमें थोड़ा कम आती है, और जब हम लोग इधर देखते हैं जो बरसात में लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके की समस्या आती है, जिसमें पत्ती पूरी तरीके से पीली हो जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जब भी किसान भाई लगाएं, तो इसमें दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। जब भी हम लोग भिंडी लगाते हैं, जो चूँकि बीज जो मार्केट में मिलते हैं वो ऑलरेडी उनमें ट्रीटमेंट किया होता है, तो उस टाइम हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब पत्ती में जब पौधे बीज डालने के बाद में जब दो तीन पत्तियाँ निकल आती हैं, तो उसी टाइम से हमको छिड़काव करना ज़रूरी होता है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि किसान भाई क्या करते हैं कि जब पौधों में बीमारियाँ आनी शुरू हो जाए, पौधा बड़ा हो गया, भिंडी निकलने फूल निकल रहे हैं, फल भी निकल ले रहे हैं, उस टाइम बीमारी आती है, तभी हम लोग दवा छिड़काव के बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जब भी भिंडी में दवा का छिड़काव हमको करना है, तो जब पत्तियां दो तीन पत्ती निकल के आ जाए पौधे के बीज लगाने के बाद में या सोइंग करने के बाद में, तभी हमको उसी टाइम दवा डालना है। क्योंकि बहुत छोटे पौधे छोटे अवस्था में ही बीमारी आ जाती है, है और वो पौधा बड़ा बड़ा बड़ा होते होते उसके अंदर वो लक्षण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि शुरुआती अवस्था में ही उसमें दवा डालना जरूरी होता है। तब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर ध्यान दें कि

0: सफेद मक्खी जो गोल्डन मोज़ेक जो बीमारी आती है वो सफेद मक्खी से फैलता है, ये भी उसी ग्रुप का ही वायरस है। तो हम लोगों को जो सफेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवा बताई, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथोक्साम, इन दवाओं को हम लोगों को 7 से 8 दिन के अंतराल पर या 8 से 12 दिन के अंतराल पर इन दवाओं का छिड़काव करना है, जब 3-4 पत्तियां निकल आए इसके अंदर, उस चाहे बीमारी हो या ना हो, लेकिन हम लोग को दवा डालना ज़रूरी होता है। अगर हम उस टाइम दवा डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें ट्रांसमिशन या जो सफ़ेद मक्खी से जो वायरस फैलता है, हम उसी अवस्था में सफ़ेद मक्खी को मार देंगे, तो पौधा बड़ा होते होते होते अगर उसके अंदर कोई बीमारी आती है तो बीमारी का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तब हमारा फल फूल आता है उसमें हमको उपज में मिलती है। लेकिन अगर शुरुआती अवस्था में अगर विषाणुओं के लक्षण दिखने शुरू हो गए तब हम लोगों को उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर उसमें फिर हम लोगों के पास में एक ही फिर ऑप्शन रह जाता है कि पौधे को उखाड़ के फेंक देना। तो अगर हमारे पास अगर किसान भाई भिंडी लगाए हुए हैं, अगर 1-2 पौधे में अगर कहीं पर भी अगर इस तरह से लक्षण दिख रहा है तो हमको सबसे पहले उस पौधे को हटा देना है। हो सकता है कि उसी 1-2 पौधे की वजह से पूरे खेत में वो बीमारी फैल जाए और देखते देखते पूरे पौधे पीले हो जाएं। तो अगर 1-2 पौधे में अगर इस तरह से कोई लक्षण दिख रहा है तो बगैर कोई लालच किए बगैर कुछ उसमें दिमाग लगाए उसको हम लोग को हटा देना है ताकि उससे बीमारी दूसरे पौधों में ना फैलने पाए। तो सफ़ेद मक्खी को जो मारने के लिए दवा है उसी को हम लोग छिड़काव करेंगे। दूसरा जो बॉर्डर के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, बॉर्डर पर मक्का या ज्वार की 2 लाइन हम लोग जरूर लगाएं इसमें।
1: तो ये बातें हो गई हैं भिंडी की, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब हम लोबिया यानी कि जिसे हम स्थानीय भाषा में बोरा भी कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, साथ ही उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसे भी बताएं।
0: जी, बोरा जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, लोबिया या काउपी हम लोग बोलते हैं उसको, बोरा में हम लोग देखते हैं 2 बीमारी बहुत तो आम है यहाँ पे आती है। एक तो आती है कि जो पत्ते होते हैं उनमें काले काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, इसके हम लोग एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। वो पुरानी पत्तियों जो पत्तियां होती हैं, जो नई पत्तियां होती हैं उनमें कम होती हैं, जो नीचे की पत्तियां होती हैं जो थोड़ा पुरानी हो जाती हैं उनमें इस तरह से काले धब्बे बनने शुरू होते हैं। तो कभी कभी वो काले धब्बे क्या होते हैं, पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और वो देखते ही देखते पूरे पौधे को गला देते हैं। जब इसमें फलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जब फलियां आती हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि काले काले से धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस ये जो बीमारी आती है इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है, देने वाली जो बात है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग मैंकोजेब, बीमारी हो या ना हो हम लोग एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर कर दें। जब पौधा हमारा थोड़ा सा 4-5 पत्ती जब उसके अंदर आ जाए उसके अंदर छिड़काव हमको कर देना है, मैंकोजेब 2 ग्राम के हिसाब से हम लोगों को उसके अंदर छिड़काव कर देना है। यदि उसके बाद अगर उसके अंदर बीमारी आ रही है, उसमें इस तरह से कोई लक्षण दिख रहे हैं कि वो पत्ती काली पूरी हो जा रही है या तने में कालापन आ जा रहा है या फलियों में कालापन लगने शुरू हो जा रहे हैं, तो डाइफेनोकोनाजोल जो दवा है वो 1 ml 2 लीटर के हिसाब से हम लोगों को दवा का छिड़काव कर देना है। तो उससे क्या होगा, वो काले धब्बे जो हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक जो इसमें जो पत्ती में एक समस्या आती है वो गोल्डन मोज़ेक की है। गोल्डन मोज़ेक एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हम लोग देखते हैं कि पत्तियां उजली सी हो जाती हैं उसमें, वही बीमारी हमारे मूंग में भी आती है, वही बीमारी हमारी फ्रेंच बीन में भी आती है, वही बीमारी हमारी इसमें आती है अरहर में भी आती है। तो उसी वही ग्रुप का एक वायरस है जो लोबिया की फसल में लगता है और हम लोग देखते हैं कि पत्तियां देखते ही देखते उजली हो जाती हैं। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवाओं का छिड़काव, वही दवा का छिड़काव हमको इसके अंदर करना है 7 से 8 दिन के अंतराल पर या 10 से 12 दिन के अंतराल पर। तो उससे क्या होगा, वो सफ़ेद मक्खी को हम लोग कम कर देंगे खेत के अंदर और जो पौधे होंगे जो निकलेंगे वो स्वस्थ होंगे उसके अंदर।
1: अगर गर्मी की बात करें साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें तो जो परवल जो है वो खास सब्जी है इस ऋतु की, तो डॉक्टर साहब इसमें जो लगने वाले रोग होते हैं परवल के पौधों में वो कौन कौन से होंगे और साथ ही इसका रोकथाम हम कैसे करें?
0: जी, परवल हम लोग देखते हैं यहाँ पे गंगा के किनारे या और भी आसपास के किसान जो है काफ़ी परवल उगाते हैं और उनका अच्छा रेट भी मिलता है हम लोग किसान भाइयों को। लेकिन हम लोग कभी कभी इसमें देखते हैं कि बहुत सारी इसके अंदर बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को 2 चीज़ इसमें ध्यान देने की चीज़ें होती हैं देखने हैं खेत के अंदर। एक तो इसके अंदर जो इनकी लत है, जो वाइंस है उसके अंदर कोई सड़न तो नहीं पैदा हो रही जो पूरी लत सूख जाती है। उसमें क्या होता है कि कहीं एक जगह पे हमको दिखता है कि काला घेरा या काला धब्बा दिखता है, वो तने को पूरा कवर कर लेता है। तो देखते देखते वो पूरे तने को पूरा काला कर देता है जिससे वो पूरा पौधा ही सूखना शुरू हो जाता है। पहले एक पार्ट उसका सूखेगा, एक तना सूखेगा, धीरे धीरे वो क्या होगा और तनों पर फैल जाएगा।

0: हाथों में और देखते देखते वो पूरा सूख जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे ये ध्यान देने की चीज़ है कि जब भी इस तरह का कोई लक्षण दिखे, अगर कहीं थोड़ा सा दिख रहा है या किसी एक लत में दिख रहा है, तो उसको हमको काट के हटा देना है। अगर इस तरह से लक्षण अगर किसान भाई खेत में देखते हैं, तो फौरन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा हम लोग बोले 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, उसका हम लोग खेत में फौरन छिड़काव कर देना है। इससे हम लोग उसको रोक सकते हैं। दूसरा एक जो हम लोग पत्तियों में देखते हैं बीमारी आती है, वो एक धब्बा सा बनता है, काला धब्बा जो ब्लाइट अपीयरेंस एक देता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं पत्तियाँ वहाँ काली होकर गलनी शुरू हो जाती हैं। और इस तरीके का लक्षण हम लोग देखते हैं कि पत्तियों पे फैलने के बाद जो फल निकलते हैं, उन फलों में वो उस तरीके का लक्षण शुरू हो जाता है। वो काले पहले छोटे से दाग धब्बे बनते हैं, वो देखते देखते फिर पूरे पौधे पूरे फल को गला देते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर किसी एरिया में अगर किसान भाई परवर लगाते हैं और इस तरह की समस्या दिखती है, तो बीमारी हो या ना हो, हम लोग मैंकोजेब का एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर करेंगे। उसको छिड़काव करने के बाद में भी अगर हमको कहीं पे दिख रहा है इस तरीके से कोई लक्षण, तो हम लोग को मैंकोजेब और मेटल एक्सिल का कॉम्बिनेशन वाला दवा आता है जो मिक्स होता है, उसको हम लोग 2.5 से 3 ग्राम के हिसाब से घोल बना करके उसको प्रति लीटर के हिसाब से उसको हम लोग छिड़काव करेंगे। तो इससे हम लोग देखते हैं कि वो जो समस्या होती है उसको हम लोग ख़त्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे खेत के अंदर से। लेकिन इसका साथ समय छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंतज़ार करेंगे कि फल फूल आने लगे, या हम लोग भिंडी में इंतज़ार करें कि अब फल के तुड़ाई का वक्त आ गया, या मिर्च में हम लोग सोचें कि मिर्च में अब फल आ रहा है या है अब बीमारी आ गई तो कोई छिड़काव करें, तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा नहीं मिलता। हम लोगों को समय से डरना है, बीमारी आने से पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। यदि बीमारी आने से पहले हम लोग सचेत रहेंगे और उस टाइम बताए गए दवाओं का अगर हम लोग सही समय पर छिड़काव करते रहेंगे, तो हम लोग बीमारियों को निश्चित तौर पर रोक देंगे और हम लोगों को अच्छी उपज प्राप्त होगी।
1: जी, तो किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपके परिश्रम का पूरा मुनाफा मिले, तो ज़रूरी है कि आपके जो सब्जियों के पौधे हैं वो रोग मुक्त रहें। और डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी है कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं आपके सब्जियों के पौधे में, और आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ज़रूर आशा करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप इस वार्ता को सुनेंगे, आप बहुत कुछ जानेंगे, रोगों को पहचानने की जो क्षमता है वो भी आप में विकसित होगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूले। ध्यान रखें, कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षा प्रद, प्रेरणा प्रद और ज्ञान वर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी।

0: आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
0: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: श्रोताओ, इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अशोता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
3: फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती,

0: बच्चे उसके पानी में खेलते और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, मेरा भाई क्या देख रहा, काट।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस्ते क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
2: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
5: अरे मर गए इस बार गर्मी में जान, लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
6: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
7: लगता है नदी खोदी हो गई है।
6: क्या?
7: हमारे

0: फसल बह गई।
1: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा।
2: सामान
1: जल्दी से ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर।
1: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
2: चलो चलो।
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
2: ध्यान से संभल कर।
3: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
4: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया। लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार। अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए।

मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता, मैं ही जीवन हूं धरती का। मुझे नष्ट मत करो, मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहाँ निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ,
2: हाँ। सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी।
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
5: हाँ चाची।
6: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
6: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: हाँ?
6: वो गौरा कह रही है
1: हाँ?
6: कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
1: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
6: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ।
1: सात आठ छत्ते? कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
1: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी पर तो हो ही जाएगा।
6: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: चप्पर फाड़ गए।
1: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
6: क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
1: ठीक है ना, चल चल।

0: ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं, पता नहीं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज ही ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो चलो। खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये

0: शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
0: इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
2: मगर कैसे?
0: भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है?
2: और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
0: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा रहेगा।
3: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
0: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है,
2: मगर ये औरतें और बच्चे।
0: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं
1: है?
0: हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ, हाँ, हाँ, बचाएंगी। हाँ,
0: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
1: ठीक है।
0: अरे कोई है? हाँ, अरे बाहर निकलो,
1: निकलो बाहर।
0: चाची।
4: हाँ, क्या बात है?
0: ताई, बुआ जल्दी बाहर आए, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
3: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
0: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
1: बिल्कुल
0: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
1: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
0: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो प्राणों को, हथियार लो। ये कुछ नहीं कर सकते चाची, आप हम पेड़ों से चिपक गई हैं। अब चलाओ कुल्हाड़ी।
5: मैं देखता हूँ सबको बड़ी बहादुर बनती है।
0: हम जान दे देंगे, मगर पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखते क्या है, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
5: अरे साथियों,

0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
1: चिब्बू भाग ले यहां से,
2: बाद में गले काटेंगे।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
3: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया। ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे
4: हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
5: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को
5: कुसुमलता,
6: जगबंधु,
5: चेतना
6: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
7: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, जो ले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली तक। और हरियाली की बातें हम करते हैं और उसमें खेती बाड़ी की बात ना करें तो थोड़ा अधूरा बिल्कुल रहता है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर। जी हाँ, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए अलग अलग प्रकार की खोज कर रहे हैं, और उसी में से एक है डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड और साथ ही मृदा सूचना प्रणाली। आज इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी अगर आप हमारा आज का ये वार्ता सुनते हैं तो। जी हाँ।

0: इस खास विषय को आपको बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर नींटू मंडल, और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरल यानी बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो डॉक्टर साहब से हमारे जो सवाल है वो ये है कि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है वो बताएं हमारे सभी श्रोताओं को।
1: नमस्कार।

0: के लिए। इसलिए मृदा का सटीक उपाय में उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है,
1: मतलब उनकी देखरेख करना, टेस्ट करना कि इस सॉइल में, इस पर्टिकुलर सॉइल में क्या कुछ पोषक तत्व की कमी है या फिर किस प्रकार इसमें ज़्यादा लवण है, ये कुछ इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं।
0: हाँ, जैसे हम लोगों का तबीयत खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले ही थर्मामीटर से टेम्परेचर, उसके बाद ब्लड शुगर, इस टाइप का टेस्ट होता है।
1: जी जी,
0: सेम वे में मृदा में भी
1: लैब से टेस्ट होता है। जी,
0: टेस्ट होता है अगर मृदा स्वस्थ है कि नहीं, ये देखने के लिए बहुत पैरामीटर है। तो मृदा सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम में ऐसा 12 पैरामीटर है।
1: अच्छा।
0: इसके अंदर में फास्ट है पीएच, पीएच का मतलब है मृदा आम्लिक है कि अल्कलाइन है।
1: अच्छा।
0: वो देखने के लिए फिर एक इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी होता है, वो भी मृदा में नमक का मात्रा ज्यादा होगा तो वो भी प्रॉब्लम होता है, वो देखने के लिए है। ऐसे पोषक तत्व में से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी एलिमेंट जैसे गंधक, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे लोहा, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरन, ये सब कुल मिला के 12 पैरामीटर है जिसका मात्रा कितना है मिट्टी में और उसके बाद जो फसल उगाया जाएगा उसमें भी कितना जरूरत होगा। तो जो मिट्टी में है और जितना जरूरत होगा दोनों का माइनस करके उसमें खाद का उपयोग करना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम भारत सरकार का कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरा देश में चलाया जा रहा है। हमारा बिहार में भी इसका हर जिला में ये प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारा यूनिवर्सिटी, इसका कृषि विज्ञान केंद्र और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जितना है, इसके साथ जो स्टेट डिपार्टमेंट का भी जितना लेबोरेटरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वो भी इसमें शामिल है। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसका लाभ हमको लगता है किशन भाई लोग ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, ये आपने जाना कि जो मृदा को हम समय समय पर उनका टेस्ट करते रहें कि ये स्वस्थ है या नहीं, और तब अगर हम फसल उस पर उगाते हैं तो ज़रूर मुनाफा होगा और आपको कोई भी हानि नहीं होगा, क्योंकि पहले से जो प्लानिंग की जाती है सारी चीज़ें देखकर तो सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से होता है और सफल खेती आप कर सकते हैं तब। और इसका उपयोग डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे?
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड में एक तो 12 पैरामीटर का मात्रा रहेगा, उसके बाद एक कितना खाद, कितना कंपोस्ट डालना चाहिए इसका भी मात्रा उसमें लिखा रहेगा।
1: अच्छा।
0: यानी कि साइंटिफिक बेसिस में जो खाद उपयोग, उसका सटीक विधि, कौन सा टाइप का खाद डालना है, कौन सा फसल के लिए, तो उसका भी रिकमेंडेशन रहता है। पहले जैसे हम लोग बताए थे पीएच अगर कम होगा तो एसिडिक है, आम्लिक है मिट्टी, उसको सुधार डालने के लिए भी चूना का प्रयोग, लाइम का प्रयोग करना है, उसका भी मात्रा उसमें लिखा रहेगा। जैसे जिसमें नमक का मात्रा ज़्यादा है, सलाइन है, उसको भी सुधारने के लिए क्या करना चाहिए ये भी उसमें रहेगा। उसका मतलब है सिर्फ पोषक तत्व प्रबंधन ही नहीं, मृदा में अगर प्रॉब्लम होगा उसमें भी सुधार लाने के लिए क्या हमको डालना होगा, इस कौन सा उत्पादन होगा, उसका मात्रा कितना होगा, ये भी उसमें रिकमेंडेशन लिखा रहेगा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का यूज करने से लॉन्ग टर्म में सटीक उपाय में मृदा को ठीक रखते हुए अच्छा पैदावार हम लोग ले पाएंगे।
1: जी, तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि सिर्फ उसमें टेस्टिंग ही नहीं की जाती कि उसमें क्या कमी है या फिर ज़्यादा एसिडिक है, लवणीय है, उसको आप एसिडिक को, फिर एसिडिक अगर आपका मिट्टी है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, एसिड कम कर सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर्स हमें दवाइयाँ देते हैं हमारा टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट करके, उसी प्रकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग किया जाता है। साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिक जो हैं फिर आपको बताते हैं कि कैसे, अगर ज़्यादा लवणीय है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा एसिडिक है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, सारी विधि आपको बताई जाती है। तो ये तो बात हो गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं डिजिटल। आज वैसे भी देख रहे हैं कि हमारा देश जो है डिजिटल की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इसे भी जोड़ा गया है, तो क्या है ये डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड?
0: डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये भी भारत सरकार का कृषि कल्याण मंत्रालय का एक नया स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कोई भी किसान का, इसे एग्जांपल ले लीजिए, भागलपुर

0: उस जिला का शाबोर एरिया में कोई किसान उसका खेत में मिट्टी का नमूना लिया गया
1: जी।
0: तो जब नमूना लिया जाएगा तब उसका जीपीएस से जीपीएस मोबाइल में भी अभी उपलब्ध है उससे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद फिर जिस किसान का खेत में जीपीएस से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले के नमूना लिया गया उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण वो पोर्टल में एक अवेलेबल है
1: जी।
0: उसके बाद नजदीक कौन सा एरिया में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वो भी इंफॉर्मेशन पोर्टल में अवेलेबल है। जैसे भागलपुर जिले में और हमारा कृषि विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान विभाग में भी लैबोरेटरी है। कितना नजदीक में आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में पहुंच सकते हैं ये भी इंफॉर्मेशन उस वेब पोर्टल में अवेलेबल है। उसके बाद उसका प्रयोगशाला में जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आया जो टेस्ट करेंगे वो उस वेब पोर्टल में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद अगर कोई किसान उस पोर्टल में वेब पोर्टल में ये वेब पोर्टल का एड्रेस भी आप लोगों को हम बता देते हैं। ये जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार का ये वेब एड्रेस है www.soilhealth.dac.gov.in। ये गूगल में भी सर्च किया जाएगा तो ये सॉयल हेल्थ वेब पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें क्लिक करके एक किसान पोर्टल है उसके थ्रू में जो नमूना लिया गया है किसान का नाम जिला का नाम उसके बाद शाबोर ये नाम देके किसान का नाम देने से वो पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यानी कि 12 जो पैरामीटर है कौन सा कितना मात्रा में है उसके बाद उसमें ऑप्शन है। अगर क्लिक करेंगे किसान भाई लोग जैसे इसके बाद हमको धान लगाना है और गेहूं लगाना है उसके हिसाब से फिर कितना खाद डालना पड़ेगा। खाद डालने के लिए भी एक तो रिकमेंडेशन आएगा। उसके बाद मान लीजिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है उसी टाइम में डीएपी अवेलेबल नहीं है सिर्फ यूरिया है और म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आपका जिला में अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन भी रियल टाइम में आप लोग पता कर सकते हैं। उसका मतलब है ये जो डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसका थ्रू से एक स्पेसिफिक आपका लोकेशन में किसान का नाम उसका मिट्टी में क्या क्या चीज है क्या उसको डालना पड़ेगा उसके बाद ये कोई खाद आपको कहाँ मिलेगा नियर बाय कौन सा एरिया में मिलेगा उसका भी कीमत कितना है इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक ही प्लेटफॉर्म में
1: जी।
0: तो ये राष्ट्रीय लेवल में बनाया गया है हमारा बिहार स्टेट ही नहीं पूरा देश का जितना राज्य है सबका इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा
1: जी। तो ये फायदे हैं कुछ डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड के किसान भाइयों। और तो क्या पूरे देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए क्या कोई सॉफ्टवेयर अभी उपलब्ध है डॉक्टर साहब?
0: पूरा देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए भी सॉफ्टवेयर भारत सरकार द्वारा कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाया गया है
1: जी।
0: ये भी जो वेब एड्रेस पहले मैंने बताया उसमें अवेलेबल है उसके अंदर में साइंटिफिक तरीका से जो खाद कितना मात्रा में डालना होगा ये रिकमेंडेशन अवेलेबल है। उसके इतना नहीं उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया जा सकता है स्पेसिफिक कुछ एरिया में जैसे कि ऐसा एरिया कुछ हो सकता है जिसमें जिंक का कमी बहुत है ऐसे बहुत नहीं होता है किसी में लोहा का कमी है किसी में बोरोन का कमियां ज्यादा है वो भी आपको डिजिटल में दिखाएगा। उसके बाद उस एरिया के लिए हम क्या करेंगे जैसे कोरोना का टाइम में आप लोग सब जानते हैं टेलीमेडिसिन शुरू हुआ था उसमें डॉक्टर को फोन करके हम लोग पूछ सकते थे ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए। सिमिलरली इसमें स्पेसिफिक अगर कोई पोषक तत्व का आपका कमियां है और किसमें बहुत ज्यादा होगा यानी कि टॉक्सिक लेवल में है उस केस में भी क्या करना चाहिए इसके लिए भी आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं ये नंबर भी अवेलेबल है
1: जी। तो इसके बाद बात करते हैं हम मृदा सूचना प्रणाली की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में तो आप सभी जान गए होंगे अब मृदा सूचना प्रणाली क्या है डॉक्टर साहब ये बताएं सभी श्रोताओं को।
0: मृदा सूचना प्रणाली एक ये भी भारत सरकार का एक प्रोग्राम है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मृदा सूचना प्रणाली में जैसे भागलपुर जिला का हम लोग उदाहरण लेते हैं भागलपुर जिला में बहुत सारा ब्लॉक है जैसे ये सॉयल हेल्थ कार्ड मिशन चलाया जा रहा है तो पूरा जिला

0: एक डिजिटल मैप बनाया गया है। डिजिटल मैप में पूरा डिस्ट्रिक्ट का, पूरा बिहार राज्य का, पूरा देश का भी ऑफ डिजिटल फर्टिलिटी मैप ये बनाया गया है। फर्टिलिटी मैप मतलब उसके अंदर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जितना पैरामीटर 12 पैरामीटर है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और GIS बोला जाता है, GIS का माध्यम से ये मैप बनाया गया है। इस मैप से आपका मिट्टी का क्या स्टेटस है ये रियल टाइम आप मॉनिटर कर सकते हैं। रियल टाइम का मतलब है सिर्फ एक बार भी नहीं, टाइम इंटरवल में इसका रिविजिट किया जाएगा, दोबारा टेस्ट किया जाएगा किसमें आप जो फसल उगा रहे हैं, जो रिकमेंडेशन दे रहे उसके बाद भी किस तरह का चेंजेस आ रहा है, ये भी हम लोग रियल टाइम में देख पाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे हमारा हेल्थ भी डायनेमिक स्टेटस का मतलब है आज ठीक है, कुछ दिन के बाद खराब भी हो सकता है, इसलिए ऐसा भी मिट्टी का भी ऐसा हाल है, इसलिए इसको डायनेमिक प्लेटफॉर्म जो रियल टाइम में एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का थ्रू से जोड़ के पूरा राज्य तथा पूरा देश में बनाया गया है।
1: मतलब उसमें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो मृदा है उसमें क्या कुछ है, क्या कुछ की कमी है, जो 12 पैरामीटर्स आपने बताया उस हिसाब से,
0: उस हिसाब से प्लस टाइम स्केल में एक साल में, दो साल में कितना चेंजेस आ रहा है।
1: मतलब एक बार ही सिर्फ वो डाटा उपलब्ध नहीं रहता है, रिन्यू होता जाता है।
0: हाँ, रिन्यू होता है, इसलिए इसको रियल टाइम बोला जाता है।
1: जी जी,
0: तो ये इंफॉर्मेशन आज हम लोग सब लोग परेशान है, सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका क्या इम्पैक्ट सबका ऊपर आ रहा है। एग्रीकल्चर में भी बहुत क्लाइमेट चेंज का प्रभाव फसल का पौधा भर में भी आने वाला है, तो इसलिए मृदा भी ये जो चेंजिंग क्लाइमेट के साथ कैसे चेंज हो रहा है इसका बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो ये जो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और रियल टाइम बेसिस में ये पूरा देश, जैसे हमारा देश में है ऐसा करके पूरा वर्ल्ड में भी ये चलाया जा रहा है, उसमें भी हमारा देश एक पार्टनर है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी खासियत के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे तो आपने बता दिया कि इसके क्या कुछ फायदे हैं, लेकिन एक किसान भाइयों को थोड़ा समझाएं कि क्या खासियत है मृदा सूचना प्रणाली की।
0: मृदा सूचना प्रणाली का खासियत, पहले जैसे हम लोग डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड में पहले भी चर्चा किए है, इसमें जो वेब एड्रेस मैंने बताया था उसमें जो एक किसान पोर्टल है जिसमें जाकर आपके पास आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: उसमें जैसे नमूना पंजीकरण मोबाइल ऐप,
1: ऐप का कोई नाम है उका?
0: नहीं, ये वेब पोर्टल जो सॉइल हेल्थ DAC.gov.in है, और किसान का जो ऐप है इसका नाम है किसान सुविधा।
1: अच्छा, किसान सुविधा ऐप का नाम है।
0: हाँ, इसके अंदर में नमूना पंजीकरण, सॉइल हेल्थ जो टेस्ट रिपोर्ट इसका ऐप है, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड ऑनलाइन नहीं एक ऑप्शन रखा, ऑफलाइन के लिए भी रखा गया है अगर कोई प्रिंट आउट लेना चाहेंगे तो। फिर किसान कॉर्नर में जाके आपका नमूना आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक मतलब आपका सैंपलिंग हुआ, उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसमें प्रिपेयर हुआ कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, ये ट्रैकिंग किया जा सकता है। फिर आप अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। फिर जैसे बताया था कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा, किसका टॉक्सिसिटी है और डिफिशियंसी है, उसके लिए भी वो ब्लिंक करेगा, ब्लिंक मतलब रेड ब्लिंक करेगा, उसका मतलब है इसमें समथिंग प्रॉब्लम है, कोई टॉक्सिसिटी है और कोई डिफिशियंसी है ज़्यादा, तो उसके लिए भी एक्सपर्ट ओपिनियन का ऑप्शन उसमें है। फिर फसल के लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीन्स सटीक मात्रा में कौन सा टाइप ऑफ खाद देना है, सिर्फ खाद ही नहीं उसके साथ अगर आपके पास ऑर्गेनिक अवेलेबल है जैसे फार्मी कंपोस्ट है, फार्मी एंड मैन्योर है और दूसरा टाइप का कोई भी ऑर्गेनिक लोकल लेवल में अवेलेबल है वो भी आप डाल सकते हो। फिर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताएगा कितना खाद ऑर्गेनिक डालने से आप बचा सकते हो, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं ऑर्गेनिक को हम उपयोग करेंगे तो मृदा स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मृदा का जितना भी क्वालिटी है
1: उसको बनाए रखता है।
0: उसको बनाए के रखता है
1: जी। तो किसान भाइयों, आज एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर हमारे बीच डॉक्टर निंटू मंडल सर थे और उन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं और मुझे लगता है कि इसका उपयोग आप सभी करेंगे तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा मृदा के बारे में जानने के लिए कि आपके क्षेत्र में, आपके खेत में जो मिट्टी है उस

0: में क्या कुछ कमी है या फिर कुछ तत्वों की अधिकता है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और बताई ही नहीं जाती हैं, उसको आप कैसे सुधार सकते हैं वो सारी भी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ आप सबके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 cm की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर

30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 हैं। जिनके खेत में मूंग लगे हैं, उन्हें बता दे मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्कार, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस दर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी। हमारे साथ हैं टीकन भाभी भी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बाहर ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अब भी है, क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बछिया आपकी बेटी की उम्र की है, और आपकी इस बात को समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल लगते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है। क्या एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
0: ये फर्क समझना जरूरी है। किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल, बांझपन, शायद सबसे खतरनाक अफवाह।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि एचपीवी वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं

0: जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वे मां हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से मां है। ये अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
1: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
0: समझ में आता है, लेकिन सोचो, अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान ले तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
0: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजार घरों तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है, वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
0: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं, तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
2: ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं? कुछ लोग कहते हैं, इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों, बाद में ले लेंगे।
0: पर आधिकारिक जनसंदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है, ये बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
0: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
2: अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
0: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया।
0: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उसी पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
2: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज मां है। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है।

0: कहती हूं, मुद्दे को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूं?
0: कहना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है। ये टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो पूछे, क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वो पूछे, क्या इससे मैं आगे चलकर मां नहीं बन पाऊंगी, तो कहो ये झूठी अफवाह है।
2: ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
0: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि ये किस लिए है। ये भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
2: बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वो हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूं क्योंकि दुनिया आसान नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वो बोली ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
0: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता है।
1: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए। वहां तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौं चढ़ा लेते हैं।
0: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी अफवाह उतनी कम चलेगी।
2: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात। अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधिकारिक जनसंदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
0: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है। अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से, जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी। तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
2: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत। यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाह तेज होती है पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओ, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूं कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है न पूछना ही

0: बड़ी गलती है, और खासकर बेटियों के मामले में। हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों, तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
1: ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
0: एक बात और, मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है, लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
1: और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है, उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
0: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसीलिए मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ चलें, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुंचेगा।
1: अब एक छोटा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी, आपका जवाब क्या होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
0: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले बस घबरा जाती थी।
2: यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरे को समझा पाना भी है।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहां जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर हैं टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूसरी है, प्रक्रिया की। कहां जाएं, किससे पूछें, कागज क्या लगेंगे, भीड़ होगी या नहीं, कहीं लौटना ना पड़ जाए। हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती है।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम की है जब वो लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म व बिना डर सेवाओं के लाभ उठा सकें। इसीलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं, कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना। उपलब्ध सरकारी प्रचार सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना होना सही इलाज के लिए बाधा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: ये बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर ये बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते। हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्च डराता है।
2: और यही कारण है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहर के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आई है तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथा, जहां लागू हो, UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए, पूछने में शर्म ना करें। स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़े आता है।
2: बिल्कुल सही, इसलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट,

0: ओटीपी ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो। तकनीक मदद के लिए है, छाटने के लिए नहीं।
1: ये बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
0: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं। तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं को किसी सरकारी केंद्र पर ले चले। बहुत अच्छा आइडिया है, पास वाले में चलते हैं। तब तक हमारे स्रोतों को सेहत सही लाभ कई का गीत सुनाइए।
1: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टेकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है, उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों की भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साझा करें।
0: मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली। पर जब वहां बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वही उतर गया। यही तो भरोसा बनाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहां बैठा इंसान भी होता है। अगर वो सम्मान से बात करे तो सेवा का असर दुगना हो जाता है।
1: और यही एक बड़ी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
0: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहां महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा ये अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, ये जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आधिकारिक संदेश साफ कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
1: और उपलब्ध सरकारी संचार में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लड़कियों की बात है, हमसे क्या लेना।
0: यही बात मेरे मन को लगी। मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, जब कुछ लक्षण होंगे तब देखेंगे, पर तब तक देर हो जाए तो।
2: इसलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
1: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में ये सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर। ऐसे में क्या करे।
0: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने निकलूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसलिए निर्णय की धुरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का अधिकार नहीं है।
0: और अब मुझे ये भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वो सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वो जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
1: ये बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचारकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश

0: मिलेगा, समझ नहीं तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए SSL के जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं, जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी, वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ, फिर तारीख मिलेगी। किसी ने UN कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल। पर तुमने पूछा ना? हाँ, पूछा। तब समझ आया कि विकल्प है। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक, नहीं तो केंद्र पर भी जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है। मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। श्रोताओं, ध्यान से सुन लीजिए। स्वास्थ्य सेवा में जानकारी मांगना झिझक का नहीं, अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि ये लड़कियों के लिए मुफ्त है, तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसी चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है। सुविधा होती है पर खबर नहीं पहुंचती, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाह भी पहुंच जाती है। इसलिए जानकारी को सिर्फ जारी कर देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर करता है जब वो गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बात होती है।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UVIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे को अंतिम सच न माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से न हिचकें।
1: ये सूची मैं लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाता है, पर लिखी चीज साथ रहती है।
2: लिखो, और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके को लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है। पहले जो डर था, अब उसकी जगह एक जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है। जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जेठानी को भी कहूंगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वो हमेशा कहती है, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूंगी, समय नहीं बनता, निकालना पड़ता है।
2: सही। और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं, अपने जीवन की कीमत पहचानने की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूंगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा

0: अधूरी नहीं होनी चाहिए।
1: बहुत सही, यही है सेहत सही लाभ कई। एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम और सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। 1. 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। 2. जहां सुविधा हो, यूविन पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो, सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। 3. डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4. सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण है। 5. परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6. सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7. जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना और उसे लेना दोनों आपकी ताकत है। और साथियों, यहां एक बात और जोड़ना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में न लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था जवाबदेह हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
0: और जवाबदेही दो तरफ की होती है, व्यवस्था को समझाना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
2: अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ता है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनना पड़ता है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी संदेश जीवित रहता है।
1: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और संस्थानों के साथ दूरी जैसी चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा। नहीं, असली काम तब पूरा होता है जब घर की महिला कहे, मुझे समझ में आ गया।
2: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्यों है, कहां मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
0: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
1: और एक अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी न मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध न हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
2: अब मैं ये भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, टिककर करना पड़ता है।
1: और शायद यही इस पूरे सिलसिले की सबसे बड़ी सीख है। सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से

0: एमआर टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
6: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों आपको बता दें अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें कार्बन डाइजिम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2,

राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी कद्दू खीरा नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करे और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों के स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही।

0: കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. और बहुत सारी बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी के लिए, किसान भाइयों और बहनों, और बहुत कुछ जानने को भी आपको मिलता है. तो आज भी एक बहुत ही लाभप्रद बातें आप सभी के बीच हम रखेंगे. और आज हमारे आज विषय हैं, हम आपको बता दें कि कार्बन का प्रबंधन आप कैसे करेंगे. और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर श्वेता सांभवी मैम. और मैं आपको बता दूँ, ये सॉयल साइंस डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर. और बहुत सारी जानकारी आज मैम हमें देंगी. तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद अनु. किसान भाइयों, आज जो मैं आपको थोड़ा कार्बन प्रबंधन मिट्टी में हम कैसे करेंगे इस पे मैं आपको थोड़ा बताऊंगी. और आज के समय में जलवायु परिवर्तन, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, कि समय के साथ जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है. तो मिट्टी है, मिट्टी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है या सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी में आपका कार्बन
0: जी.
1: तो कार्बन को मिट्टी में बनाए रहने से मिट्टी में जो जीवाणु है उनकी आपको नंबर्स या उनका जो की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. और इससे हम कार्बन को मिट्टी में बनाए, और जितने भी पोषण तत्व है मिट्टी में वो आपको कार्बन के मिट्टी में रहने की वजह से, जिसको हम जनरली ऑर्गेनिक कार्बन या आप उसको कहो कि जो जैविक कार्बन होता है हम उसको वो कार्बन कहते हैं. वो ऐसा नहीं है जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो कार्बन वो आपको मिट्टी में कैद रहता है और उससे आपके जितने भी जीवाणु है मिट्टी में उसी की वजह से वो जिंदा रहते हैं.
0: अच्छा.
1: तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जो पिछले कुछ दशक में, 2-3 दशक से, पहले तो यूरोप इन सब में हुआ, संरक्षित खेती, संरक्षण खेती यानी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. तो आपको जैसा कि पता होगा कि भारत जो है ना, भौगोलिक विभिन्नताओं से परिपूर्ण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है
0: जी.
1: हमारे देश के लगभग 58% से ज्यादा लोग अपनी जीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है. और इस प्रकार कृषि रोजगार और जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. जिस तरह से जलवायु परिवर्तन से देश की कृषि प्रभावित हो रही है, ऐसे समय में जरूरत है कि कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना, जिससे फसल उत्पादन पे कोई असर ना पड़े, अच्छा उत्पादन मिलता रहे. और ऐसी ही तकनीक है संरक्षित खेती या संरक्षण कृषि, जिसको हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, या इसको किसान भाई जीरो टिलेज या सीड ड्रिल, इन सब के माध्यम से जो खेती कहते हैं वो कहते हैं. यह एक पद्धति है जिसमें कि कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ और टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है. और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि मृदा, जल, वातावरण, जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है. संरक्षित कृषि की वजह से जमीन की उत्पादकता में काफी इजाफा होता है, साथ ही साथ यह पानी, ऊर्जा और जमीन की उर्वरता का भी संरक्षण करती है. संरक्षित खेती में हम क्या करते हैं ना कि सब मिट्टी की न्यूनतम जुताई की जाती है, जिससे क्या होता है कि आपको ईंधन, मानव श्रम, इन दोनों की बहुत ज्यादा बचत होती है. आजकल आज के समय में आपको भी पता होगा कि ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोई भी मशीन है वो उनसे चलता है और उसकी कीमत में कितनी अत्यधिक वृद्धि हो गई. पेट्रोल आज 100 के पार है, डीजल भी लगभग 100 पहुंच चुका है. तो जब हम न्यूनतम जुताई करेंगे तो इनकी बचत होती है. और आज के समय आपको जो मजदूर है, मजदूर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो हम मजदूरी को भी बचा सकते हैं, क्योंकि हम जुताई अगर कम करेंगे तो हमें मजदूर

0: कम जरूरत होगी और आपको ईंधन भी आपका कम लगेगा।
1: तो ये कुछ बातें हैं इससे जुड़ी हुई। और प्रबंधन की बात करते हैं मैम, तो किस प्रकार से हम प्रबंधन करें कार्बन प्रबंधन?
0: देखिए, कार्बन प्रबंधन के लिए क्या है ना कि मिट्टी में जैविक जो कार्बन है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका देसी खाद। देसी खाद जैसे हम गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब हरा खाद, बहुत सारे जब हम धान की खेती करते हैं तो धान से पहले हमें जो समय मिलता है उस समय हम लगा देते हैं आपको कुछ भी ढेंचा, ये सब हरा मूंग, ये सब लगा देते हैं, इसको हम हरा खाद कहते हैं और इसको हम फिर जमीन में आप डाल देते हैं। तो इनका पर्याप्त उपयोग करने से हम जैविक कार्बन को बढ़ा सकते हैं। अगर जमीन में जैविक कार्बन बढ़ता है उससे नाइट्रोजन की मात्रा खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कार्बन जो है वो नाइट्रोजन को जो जितना एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में उसको अपने आप में खींचता है। तो संरक्षित खेती में मिट्टी को की स्वास्थ्य और उससे पैदावार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो मिट्टी का सतह है उसमें फसल अवशेषों का पर्याप्त आवरण हो। आवरण मतलब कि फसल अवशेष, जैसे हम फसल काटते हैं उसके जड़ और जो ऊपर की थोड़ी ठूंठ रह जाती है उसको हम अगर अच्छी तरह से प्रबंधन करें कि उसको मिट्टी में वापस डाल दें, उससे हम क्या कहते हैं कार्बन वो जब सड़ता है कंपोस्ट बनता है उससे आपको मिट्टी में कार्बन और दूसरे जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, दूसरे जो है वो आपको नाइट्रोजन, ये सब मिट्टी में आते हैं। अब मृदा में फसल अवशेष का स्थायी आवरण होने के कारण उसमें जो सूक्ष्म जीव है उनकी जैविक गतिविधियां बढ़ जाती है और इससे मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ना फसल को समुचित मात्रा में जितने भी पोषक तत्व है वो प्राप्त होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थों का मृदा में भौतिकी गुण, जैसे उसकी संरचना, जो मिट्टी की संरचना है, जल धारण की क्षमता है, उसका भार है, जो हम जितना उर्वरक है, जो हम यूरिया पोटाश ये सब जो ऊपर से डालते हैं इसका उपयोग, इसके जो उपयोग क्षमता, मतलब हम जितना डालते हैं उतना आपको जो आपके पैदावार है या हम जो लगाते हैं उसको वो मिल सके, जो पौधे लगाते हैं उसको वो मिल सके। अगर कार्बन रहेगा तो वो कार्बन उसको जितना प्रदान करने में, उसको उपयोग करने में मदद करता है। जो पोषक तत्व है, अगर हम जैसे बारिश हो गई तो पोषक तत्व क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व आपका बारिश के पानी के साथ निकल जाते हैं, उसको बह जाता है। तो हम रिटेंशन मतलब कि उसको रोकना, तो अगर कार्बन मिट्टी में रहता है तो उसको रोकते हैं। और जो ये खाद, ये कंपोस्ट, जो हम देसी खाद, जो हम गोबर खाद है या हम कचरा को खाद बना देते हैं, बहुत सारा अभी हम लोगों ने देखा है कि जो सिटी वेस्ट है या घर का कचरा उसको कहा जाता है कि अलग अलग रखिए, आप किचन के कचरे को अलग रखिए और जो प्लास्टिक है, शीशा है, इस टाइप का टिन वगैरह को अलग रखिए और इसको हम फिर खाद बना देंगे। और इससे क्या होगा कि उसको खाद बना के हम उसको खेत में डाल सकते हैं, जो मिट्टी के आसपास जो जड़ है, जो पौधे उसके जड़ के आसपास, उसको हम मतलब साइंटिफिक टर्म से राइजोस्फीयर कहते हैं। तो इन राइजोस्फीयर में क्या है ना कि जितने भी सूक्ष्म तत्व है, आपके बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जीवाणु जो है ये मदद करते हैं सारे पोषण तत्व को उपलब्ध कराने में, उसकी उपलब्धता को बढ़ाने में। तो जितना खाद रहेगा उसमें उतने जीवाणु ज्यादा पैदा लेंगे। केमिकल्स में कभी भी जीवाणु नहीं हो सकते हैं। तो इन सब की वृद्धि के लिए हम केचुआ खाद और ये सब डालते हैं, जिससे मिट्टी में जैविक कार्बन जो है वो हम उसको बढ़ा सकते हैं और उसको हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं।
1: जी, तो मैम अगर जलवायु की हम बात करें तो जलवायु में इसकी क्या भूमिका है अगर हम ये सारे प्रबंधन करते हैं तो?
0: अब इन सारे प्रबंधन से क्या होता है कि जितना हम अभी तक देखिए कृषि क्या है, मुख्यतः कृषि के तीन मुख्य स्तंभ है, मिट्टी, पानी और बीज। लेकिन अभी जो परंपरागत कृषि तकनीक, जैसे कि अत्याधुनिक जुताई हो रही है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है और जैविक खाद का उपयोग कम हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत गिरावट आ गई है। अब जितना मिट्टी में उपस्थित जितना जैविक कार्बन है उसको समान रूप से सभी जीवाणु इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उससे मिट्टी की जो भी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण है ये इसमें कमी आ रही है। अब इन कमी और जो जलवायु में जो परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी में देखिए मिट्टी में जो जितने भी जैविक आपके जीवाणु रहते हैं वो आपको एक तरह से बैलेंस करते हैं, बैलेंस मतलब बनाए रखते हैं। अगर मिट्टी में पानी ज्यादा रहता है तो वातावरण में वही पानी अगर रहता है तो वातावरण के टेम्परेचर को, उसके तापमान को नियंत्रण करने में मदद करता है, क्योंकि वो जब मिट्टी जब धूप होती है तो वही पानी पहले भाग

0: रहता है तो मिट्टी बहुत जल्दी गर्म नहीं होती है। और हाँ, तो उस तरह से क्या होता है ना कि अगर जो वैश्विक उष्मीकरण है यानी जो गर्मी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इनको कम करने, इसको इसको कम करने में जो ये जैविक कार्बन है ये मदद करता है। वो वातावरण से जो भी जो आपका उष्म है उसको, टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने में उसको मदद करता है। इस तरह के प्रबंधन से सिर्फ ये नहीं होता है कि हम उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, सिर्फ कि पौधों के आप उत्पादकता को बढ़ाते हैं, इसके साथ आप वातावरण में जो जितने भी हार्मफुल यानी जो आपके कीटनाशक इन सब का जो आपके जो निकलते हैं उससे जो भी आपको जो आपको हानि कर सके, हानिकारक जो पदार्थ सब निकलते हैं केमिकल्स, वो आपके वातावरण में जो जाते हैं उसको ये अपने अंदर सोख लेता है, उससे वातावरण आपका प्रदूषित नहीं होता। अगर वातावरण जो प्रदूषित होता उसी से आज की स्थिति में हमारा जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि जो ऊपर के सतह है उसमें ये केमिकल्स जाके जमा हो रहे हैं और उसकी सतह में छेद कर रहे हैं, जिससे हम जो आपका ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का मेन है कि हम उसमें आपका ओजोन लेयर जो है उसमें आपको छेद हो रहा है और वो ओजोन की परत पतली होने या उसमें छेद होने की वजह से वो किरणें हमारे तक पहुंच रही है। तो मेनली जो केमिकल्स है इनकी वजह से, अगर हम केमिकल्स को वातावरण में कम जाने दें, इसको हम जमीन में ही रख लें, तो ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा और उसके पोल्यूशन को रोकेगा, तो बहुत मदद करता है। अगर कार्बन मिट्टी में अच्छा रहे तो ये सिर्फ आपके पैदावार के लिए नहीं, आपके पौधों के लिए नहीं, आपके वातावरण को भी बहुत तरह से संरक्षण प्रदान करता है
1: जी। और एक अंतिम सवाल ये है जो अक्सर ये जानना चाहते हैं हमारे श्रोतागण और हमारे किसान भाई कि मिट्टी पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि मिट्टी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए कि मिट्टी अच्छी होगी तभी जो फसल है वो अच्छे होंगे, तो क्या इसका क्या असर होगा मिट्टी पर वो भी बता दें मैम।
0: देखिए, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन के बढ़ाने मात्रा बढ़ने से मिट्टी का आपका मिट्टी का स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, जो खाद्य सुरक्षा है मतलब जो आपके फूड है उसमें पेस्टिसाइड या किसी भी चीज के इनकी गुणवत्ता को हम कम बढ़ा सकते हैं। जैसे पेस्टिसाइड को हम मिट्टी में ही रख लेंगे, कार्बन अपने में रख लेगा, तो वो खाने में या उस फल फूल में नहीं जाने देगा। जो जल है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, और हम कार्बन अच्छे रहने से हम रसायन का प्रयोग हमको कम करना होता है, क्योंकि जो आपको जो भी पोषक तत्व है कार्बन की वजह से वो वातावरण से मिट्टी में जाता है और उससे आपको मिल जाता है। अब इसे भूमि को अपरक्षण भी को भी रोका जा सकता है, जो हम कहते हैं कि बारिश होती है और बहुत ऊपरी तह से बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स जो बह जाते हैं पानी में
1: जी।
0: हाँ, तो वो उसको वो रोकने में सफल रहता है,
1: मतलब बैलेंस बनाए रखने में जी।
0: हाँ, बैलेंस बनाया रहता है आपका पोषण प्रबंधन, खाद और इन सब का प्रयोग से आपका जल संरक्षण और इसका संरक्षण होता है, मतलब जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर का रिटेंशन, पानी का रिटेंशन, पानी को हम रोक सकते हैं मिट्टी में और लंबे समय तक वो पानी उपलब्ध होता है। एक अनुमान के अनुसार कहा गया है कि अवक्रमित मिट्टी में केवल 1 टन कार्बन युक्त मिट्टी बढ़ा देने से प्रति हेक्टेयर फसल को कई किलोग्राम तक बढ़ाया जाए। अगर हम किसी तरह 1 टन कार्बन 1 हेक्टेयर में हम उसको कार्बन को रिटेन कर सके मिट्टी के अंदर, तो हम कई केजी तक उसकी फसल को हम बढ़ा सकते हैं। और मिट्टी में जितने उपस्थित कार्बन से जितने भी जीवाश्म है उससे निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस को हम प्रतिवर्ष 75% तक अवशोषित करने की क्षमता रखती है, और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के दौर में यह सबसे बड़ी राहत की बात हो सकती है। अगर हम मिट्टी में कार्बन बढ़ाए तो 75% तक हम जितना भी आपके हार्मफुल है एलिमेंट्स जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, ऐसे हम जो भी गैसेस निकल रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कार्बन कितना ज़रूरी है मिट्टी के लिए, फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए। तो आशा करते हैं कि इस प्रबंधन को आप अपनाएंगे और अच्छे से खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि,

जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12।

0: 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस, एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
6: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
7: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बेसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है, या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है, हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं। बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं, उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं। उसी के तरह बैसिलस हो गया, या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
6: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
7: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफून की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है।

0: तो ये हुआ कि डायरेक्ट. इनडायरेक्ट में क्या होता है, हाँ इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं. तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कॉम्पिटिशन करता है. तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है. तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है. और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है. यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोलैसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है. तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है. तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है. तो इसीलिए ये बहुपयोगी है.
1: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बैसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फ़ायदा पहुंचाता है
0: जी,
1: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है
0: जी.
1: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बैसिलस?
0: तो जैसे मैंने बताया पहले से कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है. तो मिट्टी से, मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते हैं कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो. इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीत ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं.
1: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं. बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज़ करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है. तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में. तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है. पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे. तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर एक किलो बीज है तो एक किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं. उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर. फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो. इस तरह से बीजोपचार किया जाता है. और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है. अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा. तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है. फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं. तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है, और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है. फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो, और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है. इस तरह से आप कर सकते हैं. तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं. और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं. तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं.
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है. जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का

0: पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियां होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है. तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा. अब अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा. और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोनास जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं जो CIBRC के अंडर आते हैं. तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है. दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंगिसाइड्स है वो मधुमक्खी मारते हैं तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता. तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता. तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं. तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है.
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे. तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा. तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है. उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट. बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कि ये बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे. तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है.
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिल
0: जी. बिल्कुल.
1: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें.
0: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है. जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते. बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े कितनी भी बारिश क्यों ना हो वो वहां पे थ्राइव कर लेता है. तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में. इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में आपके फसल में देखने मिलेगा. और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है. जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते.
1: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है. तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई. किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही. उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार. नमस्कार.
2: उन्नत कृषि
3: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बज गई भैया देश की बीन.

0: टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हाँ, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है। और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी सुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है, और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए। तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए। उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो

मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: नजरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है, इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
4: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
6: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली 3-4 तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
4: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
6: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन

0: लैंड है, अपनी जो जमीन है उस पे हम सीधे बुवाई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुवाई दो तरीके के होती है, एक तो हमारी सूखी बुवाई होती है और एक गीली बुवाई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुवाई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुवाई करते हैं, अपने धान की बुवाई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुवाई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लॉविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुवाई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुवाई करना कैसे है, हम सीधी बुवाई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुवाई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारे रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुवाई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, बहुत ज्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफी सारे फायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं, तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं, तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं, तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं, तो उस समय उसको हम निकालते हैं, और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं, उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को। तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
1: पडलिंग यानी कि
0: हम कई बार, एक पडलर होता है, तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे, वो अच्छे अच्छे फाइन, मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेती हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं, तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया, तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला, और निकाल कर उसने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी, जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे। तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पे कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट

करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है। यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें। और पानी हमेशा रहना चाहिए, सबसे खास बात जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले तो वो 20 से 25 दिन पुराना था, यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक पडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी, तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरीगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरीगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25 से 25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स और सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने, हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है,
स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का

0: कमाने, उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे, तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें, तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग, मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, और जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए, आप उन 3 में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है।
0: जी,
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है, अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं, प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर दो तीन दिन में दे रही है, तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा। और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड

0: लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका नेचुरल जैसा सी रहा था आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा, तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें। और ब्रॉडकास्ट करने के बाद, जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्रीविधि के लिए बताया था डेपोग नर्सरी, तो ये डेपोग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पर भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी, तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डेपोग नर्सरी। तो ये डेपोग नर्सरी हम श्रीविधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डेपोग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्रीविधि में यूजुअली डेपोग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितने तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: 19
3: खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है सापेक्ष

आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी

आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, अंग उमंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम अंग की बात करते हैं, अंगिका की बात करते हैं, अंग प्रदेश की बात करते हैं, तब हमारे दिमाग में, या फिर आप जो भागलपुर से नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने कभी ना कभी भागलपुर का नाम सुना है, तो वो सिल्क सिटी की बात ज़रूर करेंगे। सिल्क जो हमारे भागलपुर का बहुत मशहूर सिल्क है, तसर सिल्क, जो अपने देश में तो अलग अलग हिस्सों में जाता ही है, विदेशों में भी तसर सिल्क की बहुत मांग होती है। तो किस तरीके से हमारा भागलपुर, हमारा प्यारा भागलपुर सिल्क सिटी बन गया और क्या इसका इतिहास रहा है, क्या ये मुगलों के काल में शुरू हुआ या अंग्रेजों के समय पे शुरू हुआ या फिर इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, आज इस बारे में हम जानेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे। बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। और अगर हम बात करें ना कि भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जो जाना जाने लग गया है और इतनी प्रसिद्धि मिली है भागलपुर के सिल्क को, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? माना जाता है कि प्राचीन काल से भागलपुर का नाता सिल्क से रहा है। और अगर हम भागलपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो उनमें से एक नाम था चंपा, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। और चूंकि हमारा भागलपुर गंगा नदी के किनारे है और आपको ये पता है कि आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो शहर या जो भी राज्य नदी के किनारे बसा होता है, वहाँ पर जो व्यवसाय होता है वो काफ़ी फलता फूलता है। अपने इतिहास में ये सारी बातें पढ़ी होंगी। तो क्या हुआ कि गंगा नदी एक व्यापारिक मार्ग था और गंगा नदी के किनारे हमारा अंग महाजनपद, तो माना जाता है कि यहाँ रेशम और वस्त्र व्यापार की परंपरा काफी पुरानी है। और क्योंकि गंगा मार्ग से वस्त्रों का आदान प्रदान होता था, तो उनमें एक सिल्क भी था। अगर बात करें तो खास तौर से पूर्वी भारत यानी कि मगध या बंगाल से यहाँ पर वस्त्रों का आवागमन होता था। अगर हम उस वक्त की, मतलब प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में प्रत्यक्ष रूप से जो कारखाना के स्तर हैं उसके प्रमाण काफ़ी कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि उस वक्त वस्त्र की यहाँ पर बुनाई होती थी और रेशमी कपड़ों के व्यापार के भी संकेत कई सारे मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा भागलपुर है, यहाँ पर काफ़ी वन हुआ करता था, जंगल हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो वन आधारित तसर है यानी कि रेशम है, इसका उत्पाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता था और स्थानीय स्तर पर भी इसे काटा जाता था, बुना जाता था। इसी वजह से माना जाता है कि जो परंपरा रही होगी काफी प्राचीन रही होगी। और अंग जनपद को हम चंपा के नाम से इसलिए भी जानते थे क्योंकि यहाँ पर चंपा के पेड़ काफी ज्यादा थे। और वहीं अगर हम पाल काल की बात करें ना, मतलब कि 8वीं से 12वीं सदी के बीच में, तो उस वक्त पे इस क्षेत्र में पाल शासकों का काफी प्रभाव था। और उस वक्त का जो प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसके कारण यहाँ पर काफी बौद्ध भिक्षु भी आते थे, उनका भी आवागमन बढ़ा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यात्रा काफी बढ़ी। और जब लोग बाहर से आते

है ना, तो व्यापार भी फलता फूलता है। तो ऐसे में जब उनसे संपर्क हो रहा था तो उनके वस्त्रों को देखा गया जिसमें रेशमी कपड़े भी शामिल थे, तो इन कपड़ों का भी आदान प्रदान बढ़ा। और वहीं अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में रेशम उत्पादन की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि भागलपुर क्षेत्र भी इस कारीगरी से जुड़ा हुआ था। और अब तक तो हमने बात की कि प्राचीन काल और मध्य काल में क्या हुआ, लेकिन मुगल काल में देखा जाता है कि सिल्क का जो व्यवसाय था इसे काफी विस्तार मिला। मुगलों ने क्या किया, वो कर प्रणाली लेकर आए, बाजार और संरक्षण भी उन्होंने दिया बहुत सारे मामलों में। तो इस माध्यम से क्या हुआ कि जो कारीगर थे, जो इधर उधर फैले हुए थे, अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे, तो अब कारीगरों को संगठित मुगलों ने किया था। और इसके साथ ही शाही दरबार में रेशमी वस्त्रों की मांग काफी अधिक थी, तो इसकी वजह से भी रेशम का उत्पादन बढ़ा और इसकी जो पहचान है वो भी काफी मजबूत हुई। शाही दरबार में मांग थी तो पहचान तो मजबूत होनी ही थी। और प्राचीन काल में जो उल्लेख है रेशमी वस्त्रों के, वो बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में इसके दस्तावेजी प्रमाण काफी प्रबल रूप से मिलते हैं और बड़े पैमाने पर इसका उल्लेख मुगल काल में दिखता है और बहुत स्पष्ट दिखता है। मध्य काल में रेशम उद्योग का काफी विकास हुआ। मुगल काल में माना जाता है कि भागलपुर रेशम बुनाई का प्रमुख केंद्र बन गया था और यहाँ पर स्थानीय कारीगर हथकरघा, यानी कि जो अभी भी आप देखेंगे चंपानगर में, हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता है। तो हैंडलूम से रेशमी कपड़े तैयार करते थे और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो तसर रेशम के लिए बहुत अनुकूल था, तो इस वजह से भी यहाँ पर तसर रेशम का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। और तसर रेशम के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाही दरबारों में इसकी मांग काफी ज्यादा थी, तो ये एक विशेष परिधान में उस वक्त पे शामिल हो चुका था। वहीं अगर हम बात करें अब ब्रिटिश काल की, तो माना जाता है कि जो भी सिल्क के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए ये स्वर्णिम दौर था, क्योंकि 18वीं से 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भागलपुर के रेशम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया, क्योंकि वो देश से बाहर भी जा रहे थे और उनका मुख्य कारण तो यही था ना भारत में आने का, कि वो व्यापार कर सके। और यहां भागलपुर का जो तसर सिल्क था इतना कमाल का था कि उन्हें इसमें भी अवसर दिखा, तो उन्होंने यहाँ पर के जो तसर सिल्क थे उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया और फिर यहां से रेशमी कपड़े यूरोप तक निर्यात होने लग गए थे ब्रिटिश काल में। तब भागलपुरी सिल्क की एक पहचान बन गई थी और ये एक ब्रांड बन गया था कि ये भागलपुरी सिल्क है। और इस समय में बहुत बड़ी संख्या में बुनकर परिवार इस उद्योग से जुड़ गए थे, पहले से जुड़े हुए थे लेकिन जब ये एक ब्रांड बन गया और भागलपुरी सिल्क को एक बहुत ही मजबूत पहचान मिली, तब बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए थे, तसर सिल्क के व्यवसाय से। अगर हम भागलपुरी तसर सिल्क की विशेषताओं की बात करें तो इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा होता है थोड़ा, और ये काफी खूबसूरत दिखता है। ये हल्का होता है पर मजबूत होता है और काफी टिकाऊ भी होता है। और कहते हैं तसर सिल्क को कुछ लोग एसी, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप तसर सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं या फिर चादर ओढ़ रहे हैं तो फिर ये गर्मियों में आपको ठंडे का एहसास कराते हैं और वहीं सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखने की क्षमता भी होती है तसर सिल्क में। और ख़ास तौर से अभी भी बहुत जो जिन्हें सिल्क की अच्छी पहचान है, जो सिल्क के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद करते हैं, वो ये भी पसंद करते हैं कि उनके पास जो सिल्क के उत्पाद पहुँच रहे हैं, जो कपड़े पहुँच रहे हैं, वो हाथ से बुने हों और पारंपरिक डिज़ाइन में हो। उसकी बात ही अलग होती है, उसका एहसास ही अलग होता है। और भागलपुर में अभी भी कुछ जगहों पर हाथ से बिल्कुल पारंपरिक तरीके से सिल्क के जो चादर हैं वो बनाए जाते हैं, सिल्क की साड़ियां बनाई जाती है। और लेकिन अब हम बात करें तो आज भी हजारों परिवार रेशम के उद्योग से जुड़े हुए हैं, पावर लूम है और आधुनिक डिज़ाइन का भी प्रयोग किया जा रहा है और ये प्रयोग बढ़ा भी है क्योंकि वो सस्ते होते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं, तो वैसी भी डिमांड आज के वक्त पे बन रही है जिसकी वजह से आधुनिक डिज़ाइन का प्रयोग बढ़ा है। वहीं सरकार द्वारा भी कई सारे सिल्क क्लस्टर योजनाएं भी चलाई जाती है, लेकिन उद्योग को कच्चे माल की कमी होती है और मशीनों की जो लागत आती है, और बाजार में भी एक प्रतिस्पर्धा आ गई है, एक कंपटीशन आ गया है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग सस्ता चाहते हैं, सुंदर चाहते हैं, फिर चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। तो इस वजह से अब बाजार में आधुनिक डिजाइन आ गए हैं और जो हाथ से बनाया करते थे उनकी मांग थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी जिन्हें सिल्क की पहचान है, जिन्हें सिल्क के कपड़े काफी अच्छे लगते हैं, वो आज भी हाथ से बने हुए सिल्क की डिमांड
डिमांड करते हैं और ओरिजिनल सिल्क की डिमांड करते हैं। दोस्तों हमारे भागलपुर में तो तसर सिल्क काफी फेमस है, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग तरह के जो प्राकृतिक रेशम है वो पाए जाते हैं और जिनमें

जिनसी की चार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो मलबरी रेशम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा उत्पादित रेशम है तो वो मलबरी रेशम ही है। और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, तो शहतूत, जैसे कि हम अंग्रेजी में मलबरी कहते हैं, उसके पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उसी से मलबरी सिल्क का उत्पादन होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। और मलबरी सिल्क की ये विशेषता होती है कि ये काफ़ी चिकना होता है, चमकदार होता है और मुलायम भी होता है। ये खास तौर से कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। वहीं हम तसर सिल्क के बारे में तो अब तक बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि ये वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कीड़ों से बनाया जाता है। और क्योंकि हमारा भागलपुर, हमारा जो अंग जनपद था, एक वक्त पे यहाँ पर काफी घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ पर जो कीड़े होते थे उनसे तसर सिल्क बहुत ही आसानी से बनाया जाता था। और ये हल्का सुनहरा रंग का होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। और अभी मैंने बताया कि इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये एसी जैसा फील देता है, गर्मी में आपको ठंडे का एहसास कराएगा, ठंड में आपको गर्मी का एहसास कराएगा। और इसका जो उत्पादन होता है तसर रेशम का, वो खास तौर से बिहार में होता है, बिहार में विशेषकर भागलपुर में होता है, इसके अलावा झारखंड में होता है और छत्तीसगढ़ में भी तसर रेशम काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा ईरी सिल्क भी है, ये अरंडी के पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उससे ये प्राप्त किया जाता है। ये मुलायम काफी होता है, गर्म होता है और इसे कहते हैं कि ये अहिंसा सिल्क भी है, क्योंकि इसमें ना कीड़े को बिना मारे ही धागे से निकाल दिया जाता है। अगर आपको सिल्क बनाने के प्रोसेस के बारे में बताएं तो जो कीड़े होते हैं उन्हें पहले पानी में खौलाया जाता है, उससे क्या होता है कि कीड़े मर जाते हैं और उनके चारों तरफ जो रेशे होते हैं फिर उसे निकाला जाता है। लेकिन एरी रेशम इनसे थोड़ा अलग होता है, इसमें कीड़े को मारने की प्रक्रिया नहीं होती है, बिना कीड़े को मारे ही इसे सिल्क निकाल लिया जाता है। और ये खास तौर से असम और उत्तर पूर्व भारत में काफ़ी प्रचलित होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें की हिंसा नहीं पसंद है और वो नहीं चाहते हैं कि किसी को भी नुकसान पहुंचे, तो वो एरी रेशम का उपयोग ज्यादा करते हैं। वहीं एक और सिल्क है मूंगा रेशम, ये केवल असम में पाया जाता है। इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा पीला होता है और ये काफी टिकाऊ होता है और ये काफी महंगा भी होता है। तो ये जो कुछ प्रकार के रेशम है वो अपने भारत में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भागलपुर में खास तौर से तसर सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। और तसर सिल्क आज भी भागलपुर से देश के अलग अलग हिस्सों में और साथ ही विदेशों में भी इसकी मांग की जाती है तसर सिल्क की। तो आपके पास भी शायद कोई तसर सिल्क के कपड़े होंगे, कोई शॉल होगा और उस पे मंजूषा या फिर मधुबनी का काम करवा लीजिए तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको बाजार में भी ऐसे कपड़े मिल जाएंगे, जहाँ पर आप सिल्क के कपड़े लेने जाएंगे वो आपको ऐसे कपड़े दिखाएंगे जो कि हाथ से बुने हुए हैं, उसके ऊपर हाथ से उस पे कलाकारी की हुई है, तो वो अलग फील देता है, ऐसा महसूस कराता है जैसे आप अपने जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और अंग उमंग कार्यक्रम में हम यही तो करते हैं, अपनी मिट्टी के बारे में बताते हैं, अपने अंग प्रदेश की मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए आज अंग उमंग कार्यक्रम में। इतना ही, बस जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि ध्यान रखें कि जहां भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो इससे सिर्फ आप खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाएंगे और इससे हमारे शहर की तस्वीर भी बदलेगी। तो थोड़ा भी जहां भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई का ख्याल जरूर रखें। इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए।

0: आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ कहीं।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं कोदो मिलेट के बारे में। कोदो मिलेट जो कि काफी फायदेमंद होता है किसान भाई बहनों के लिए भी और जो उसका उपयोग करते हैं उनके लिए भी। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे कोदो मिलेट की खेती की जाती है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर, सबसे पहला सवाल कि क्या कोदो एक जलवायु अनुकूल फसल है?
6: कोदो बिल्कुल ही जलवायु अनुकूल सी फोर क्रॉप है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की श्री अन्य फसलों में कोदो मिलेट्स भी एक महत्वपूर्ण श्री अन्य या पोषक अनाज अथवा मोटे अनाज की फसल है। ये सभी मोटे अनाज या कंदन फसलें या पोषक अनाज या फिर हम श्री अन्य की फसलें कहें, ये सभी के सभी जलवायु अनुकूल है, क्योंकि इन सबको बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। सुखाड़ की स्थिति में भी ये अपना उत्पादन दे जाती हैं और साथ ही साथ कम उर्वर जमीन में भी इनका उत्पादन मिल जाता है। उच्च तापमान पर भी ये सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो आज जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक लेवल पर जल की कमी हो रही है, सुखाड़ की स्थिति आ रही है, तापमान का बढ़ना आप लोग जान ही रहे हैं, तो ऐसे ही समय में श्री अन्य फसलों का महत्व बढ़ जाता है। बिहार में देखा जाए तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों सिचुएशन साथ साथ रहता है। साउथ बिहार में सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है, जबकि नॉर्थ बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इस वर्ष हमारे मौसम वैज्ञानिकों का जो पूर्वानुमान दिया गया है और हम लोग देख भी रहे हैं कि ई एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात विगत वर्षों की तुलना में कम हो रही है और अनुमान है कि इस वर्ष 40% तक बरसात में कमी होगी। तो ऐसे विषम परिस्थिति में ये जो श्री अन्य की विभिन्न फसलें हैं, सावा, कोदो, कौनी, चीना, ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और निश्चित तौर पे किसान भाइयों के लिए एक लाभ की लाभकारी फसल है।
4: जी सर, अगर हम अब बात करें कि कैसे कोदो मिलेट की खेती करनी चाहिए और कब करनी चाहिए?
6: देखिए, कोदो मिलेट की खेती हमारे किसान भाई लोग बहुत परंपरागत तरीके से बहुत प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। हम 1960 के बाद ही गेहूं चावल पर निर्भरता डिपेंड किए हैं, तो ये कोई नई फसल नहीं है, ये प्राचीन फसल है। लेकिन चूंकि गेहूं और चावल की उत्पादकता ज़्यादा मिलने से ये सभी फसलें विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य की स्थिति है कि बरसात में कमी हर जगह होने लगी है, हर रीजन में बरसात कमी होने लगी है, तो वहाँ इन फसलों का

0: तो बढ़ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कोदो मिलेट को अपने बिहार राज्य की बात करें तो जितने भी किसान भाइयों की ऊपरी जमीन है जहां जल जमाव नहीं हो पाता है, ऊपरी और मध्य जमीन में, हम कोदो मिलेट को बरसात शुरू होने से या यो कहें कि 15 जून से लेकर के अगर हम 15 जुलाई के बीच में करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद खेती साबित होती है। इसके लिए हमें खेत की तैयारी कर लेना चाहिए, अच्छे से तैयार 2 से 3 बार जुताई किया हुआ खेत ज़्यादा सही रहता है। हालांकि आजकल हम लोग इन सभी मिलेट फसलों को जीरो टिल विधि से भी बुआई कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो किसान भाइयों के लिए अपना ऑप्शन है, जीरो टिल मशीन है तो जीरो टिल से भी बुआई कर सकते हैं, अदरवाइज 2 से 3 बार जुताई करके पाटा चलाने के बाद खेत तैयार हो जाता है। उसमें खाद की मात्रा अभी जो हम बताएंगे उसको डाल करके इसकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जब भी समय मिले कर लेना चाहिए। बात आती है इसमें उर्वरक प्रबंधन की, क्योंकि जितने भी हमारी ये मिलेट की फसलें हैं इनको धान की कंपेयर में जस्ट आधी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। कोदो मिलेट को भी कहें तो किसान भाई लोग, आप अपने खेत में जितना धान के खेत में खाद देते हैं उसका जस्ट आधा देना है इसमें, आधे खाद में और बिना सिंचाई के भी ये खरीफ में आराम से फसल आपको प्रति एकड़ 9 से 10 क्विंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है कोदो मिलेट। तो अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो इसके लिए जो रिकमेंडेड है वो प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 35 से 40 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत पड़ती है। अब जो किसान भाई लोग नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए एक हम मोटी मोटा बता दें कि आपको लगभग 50 किलोग्राम यानी एक बोरा यूरिया, 45 से 50 किलोग्राम यूरिया और एक बोरा डीएपी, आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ पर्याप्त हो जाता है डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें। जबकि नाइट्रोजन यानी जिसको हम यूरिया के रूप में दे रहे हैं, हमने बताया एक बोरा यूरिया पर्याप्त होता है जो 45 किलोग्राम की होती है, तो यूरिया की मात्रा 2 बार में देना है। पहला बुआई के 20 से 22 दिन पर जब इसमें कल्ले यानी टिलर निकलना शुरू करते हैं, दूसरा बुआई के करीब 55 से 60 दिन पर जब इसमें बालियां निकलने की स्थिति में होती हैं। क्योंकि कोदो मिलेट जनरली 100 से 105 दिन की फसल है तो नाइट्रोजन को लगभग कम से कम 2 बार में देना आवश्यक हो जाता है जिससे कि नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप देखें तो जितना आप अपने धान में खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, उसका लगभग आधा मात्रा ही इसमें देने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसका बीज दर का, तो प्रति एकड़ की बात करें तो केवल 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त हो जाता है प्रति एकड़ के लिए। बुआई की विधि की बात किया जाए तो इसको कतारों में अगर बुआई किया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। कतार से कतार की दूरी आप 22 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं, अर्थात 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय विशेष ध्यान देना है कि बीज की गहराई उथली रहे। जैसे हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो 1 इंच से कम ही गहराई रखते हैं, मतलब गहराई किसी भी कंडीशन में 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर अगर बोते हैं तो सबसे अच्छा जमाव होता है। तो विशेषकर हमें यही ध्यान देना होता है जब हम मशीन से बुआई करते हैं, किसी कारणवश हमारा सीड ड्रिल 1 इंच से ज़्यादा गहराई पर बो रहा है तो दिक्कत होता है। उसके लिए ध्यान दिया जाता है कि जब हम सीड ड्रिल से या जीरो ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हों तो हमारा 10% बीज जमीन पर दिखना चाहिए। अब 10% बीज अगर जमीन पर इक्का दुक्का दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका गहराई सही है। अगर कोई भी बीज जमीन पर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप गहरा बो दिए हैं, फिर आपका जमाव नहीं होगा। तो इसलिए एक विशेष सावधानी देना है कि गहराई 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में रखें, किसी भी कंडीशन में 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न बोएं। अब बात आती है इसमें
1: उत्तम प्रजातियों की जी सर,
0: क्योंकि हम अगर परंपरागत प्रजातियां लेते हैं तो उसका उत्पादन कम है। तो कोदो की अभी हमारी यूनिवर्सिटी बिहार कृषि विश्वविद्यालय अभी हम लोग के पास कोई अपनी प्रजाति नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर की प्रजातियों को पिछले 3 वर्षों में यहाँ टेस्ट किए हुए हैं, जिसमें इंदिरा कोदो 1 बहुत ही अच्छी प्रजाति है। समझ लीजिए कि

0: इंदिरा गोदवान लगभग 105 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ 12 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। 12 कुंटल दाने आपको प्रति एकड़ मिल जाते हैं मात्र 105 दिनों में। दूसरी प्रजाति है JK-155। JK-155 भी अपने आप में बहुत अच्छी प्रजाति है और लगभग यह भी 11 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे देती है, करीब 105 से 110 दिनों के बीच में पककर तैयार हो जाती है। तीसरी प्रजाति है JK-439 और अगला है JK-65। इन सब प्रजातियों का भी उत्पादन करीब 10 कुंटल तक प्रति एकड़ मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो हमारी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, हाई यील्डिंग प्रजातियां हैं, जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं, इनका ही सिलेक्शन करें। तो इसमें इंदिरा कोदो 1 अथवा JK-155, JK-65 इन प्रजातियों को का चयन कर सकते हैं। जो भी किसान भाई अभी इच्छुक हैं, वो अभी हम 20 किसानों को फ्री में बिल्कुल निशुल्क 2-2 केजी बीज डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर इंदिरा कोदो 1 और JK-155 का यूनिवर्सिटी से उपलब्ध करा देंगे। आप इसको अपने खेतों पे लगाएं और दूसरे किसान भाइयों को भी प्रोत्साहित करें।
1: जी सर, अगर अब हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो वो किस प्रकार से किया जाए?
0: कोदो देखिए एक बहुत ही मतलब खरपतवार के प्रति सेंसिटिव फसल है। अगर हम बुआई के 15 से 35 दिन के बीच तक खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं, उत्पादन में 50-60% तक की गिरावट हो जाती है। इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडी मिथिलीन का उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडी मिथिलीन का प्रति हेक्टेयर 500 से 800 लीटर पानी में आवश्यकता अनुसार घोल करके छिड़काव करना चाहिए। अब सक्रिय तत्व का मतलब है कि 30% का आता है, तो बाजार का प्रोडक्ट जो है 3.3 लीटर हो जाता है। तो आप किसान भाइयों के शब्दों में कहें तो लगभग 1 एकड़ में 1.25 लीटर पेंडी मिथिलीन जो बाजार का प्रोडक्ट है वो पर्याप्त हो जाता है। आवश्यकता अनुसार आप 400 लीटर पानी में घोल करके, या आप पानी कम भी कर सकते हैं, 200 लीटर में भी घोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ड्रोन से करेंगे तो मात्र 50 लीटर पानी में ही हो जाएगा, लेकिन आपका दवा जो है प्रति एकड़ 1.25 लीटर पेंडी मिथिलीन पड़ना चाहिए बाजार का प्रोडक्ट। तो इसे बुआई करके तुरंत बाद आप स्प्रे कर दीजिए खेत में, इसे अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आएंगे। फिर उसके बाद बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए 2,4-D 58% का रसायन लिया जा सकता है, जिसका लगभग 25 ml दवा प्रति टंकी पानी में ले लिया जाए, या यूं कहे 1.5 ml प्रति लीटर की दर से आप व्यवहार करें तो आ जाता है करीब 24 से 25 ml प्रति टंकी। टंकी जो 15 लीटर की होती है उसे करिए, प्रति एकड़ लगभग आपको 10 टंकी पानी देना जरूरी हो जाता है। तो इससे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मर जाते हैं, फील्ड में अन्य प्रकार के खरपतवार जो बच जाते हैं उसको हाथों द्वारा निराई करके समाप्त किया जा सकता है।
1: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप किसान भाई बहनों को 2 किलो बीज मुफ्त में दे रहे हैं, तो इसके बारे में एक बार थोड़ा विस्तार से बता दीजिए।
0: इसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, मिलेट उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट वैल्यू चेन। तो इस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट के तहत हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसमें हम जो अच्छी प्रजातियां हैं उन्हीं का बीज किसान भाइयों को देंगे। तो जो JK-155 है उसका बीज हमारे पास उपलब्ध है, इंदिरा कोदो 1 का बीज भी उपलब्ध है। तो लगभग 20-25 किसानों को भी हम फ्री में जो पहले आएंगे पहले ले जाएंगे 2 किलो बीज हम दे देंगे। बाकी जो इंटरेस्टेड किसान हैं वो बिहार सरकार के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके वहां से भी बीज प्राप्त कर लेंगे, वहां भी फ्री में बीज मिल जाएगा। और वहां एक सुविधा और है, बिहार सरकार मिलेट उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपया प्रति एकड़ उनके खाते में इनपुट के रूप में पैसा दे रही है और 2,000 रुपये का ऑलरेडी इनपुट दे देती है। तो इस प्रकार देखा जाता है बिहार सरकार प्रति एकड़ आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेट उगाने के लिए आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दे देती है, जिससे आपका इसके प्रति रुझान बढ़े। तो इस अवसर का लाभ लेना चाहिए।
1: सर, किसान भाई बहन क्या कैसे मतलब बीज प्राप्त कर सकते हैं वो डायरेक्ट यहाँ विश्वविद्यालय
0: में आकर के? मेरे यहाँ भी

0: आकर के बात कर सकते हैं, या डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म में जाकर के वहाँ से भी बीज ले सकते हैं।
1: जी सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई कोदो मिलेट के बारे में। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: भैया देश की बीन, टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले एक ऐसे फसल के बारे में जो खास तौर से आजकल के जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावा मिलेट की उन्नत खेती के बारे में, और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं शस्य विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
3: सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या जब हम सावा मिलेट्स की बात करते हैं तो ये जलवायु अनुकूल फसल है?
5: देखिए, सावा मिलेट्स जिसको हम बार्नयार्ड बोलते हैं, ये जलवायु अनुकूल फसल है। जलवायु अनुकूल का मतलब ही है कि ऐसी सभी फसलें जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, जो कम पानी में आसानी से उग जाएं और उच्च तापमान में भी चल सके, क्योंकि मौसम परिवर्तन में सबसे अधिक समस्या हो रही है तापमान का बढ़ना और दूसरा पानी की कमी होना। इस वर्ष अगर हम बात करें तो देखिए कि इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव से हमारे बिहार राज्य में लगभग 40% बरसात की कमी दर्ज की गई है। अर्थात जो बरसात आपके क्षेत्र में पिछली बार हुआ है या पिछले 30 वर्षों में हो रहा है उसकी तुलना में 40% कम होगा, अर्थात 2/3 से भी बरसात कम होगा। तो ऐसे समय में क्या हो संभावनाएं हैं कि जिन किसान भाई लोगों ने धान की खेती लगाया है या लगाने जा रहे हैं, विशेषकर ऊपरी जमीन या मध्यम जमीन में, उनकी धान की खेती प्रभावित होगी। प्रभावित होने का तात्पर्य है या तो उसका उत्पादन कम होगा, या कहीं कहीं जो विशेष ऊपरी जमीन होगी उस जमीन में जल धारण की क्षमता भी नहीं होगी, वहां धान की फसलें सूख भी सकती हैं। तो उत्पादन कम होने से धान की खेती इस वर्ष घाटे की सौदा हो सकती है, विशेषकर ऊपरी एवं मध्यम जमीन में, असिंचित अवस्था में। जहां सिंचाई की सुविधा है वहां हम धान की सिंचित रोपाई करेंगे, लेकिन धान वहां भी इतना ज्यादा पानी का डिमांड हो सकता है कि धान बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो ऐसे सभी असिंचित क्षेत्र जो ऊपरी जमीन है, मध्यम जमीन है, जहां जल का जमाव नहीं होता है, उनके लिए जलवायु अनुकूल फसलें जैसे रागी, सावा, कोदो, चीना, कुटकी, इन सभी फसलों को हम लोग श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। 2023 से हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वैश्विक लेवल पे इन सभी फसलों को श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। तो ये सभी फसलें जलवायु अनुकूल हैं, अर्थात एडवर्स कंडीशन में, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी ये आपको मुनाफे का सौदा करती हैं। आप इनको बो दीजिए, ये आपको कुछ न कुछ रिटर्न दे के ही जाएंगे। ये फसलें देखा जाए तो जलवायु अनुकूल ही नहीं, ये पारिस्थितिक अनुकूल भी हैं, क्योंकि हमारे पारिस्थितिक

0: शास्त्र में हम लोग भी शामिल होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी होता है, एनिमल भी होता है, सब कुछ शामिल है। तो देखा जाए तो इन फसलों को लगाने से हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ है, पर्यावरण को हानि भी कम होगी, खेत की उर्वरता का लाभ भी कम होता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी कम निकलती हैं, इनको जल भी कम चाहिए, इनको खाद भी कम चाहिए। जब खाद कम देंगे, जल कम देंगे, तो हमारा जो भूमिगत प्रदूषण है वो भी नहीं होगा, नाइट्रेट का उत्सर्जन भी नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस भी कम होगी और हमारा मानव स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जब हम सेवन करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के जो पोषण हैं, प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि से परिपूर्ण हैं। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि अपने पुराने समय में इन्हीं सभी कंदन फसलें, इनको बोलते हैं कंदन फसलों को, का सेवन करते थे, जिनको आज हम श्री अन्न की फसलें कह रहे हैं, जिसमें सामा भी शामिल है, इन सब का सेवन करके इन सब के ऊपर आधारित थे। और देखिए कि वो लोग का औसत आयु जो है 250 वर्षों की होती थी। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल पारिस्थितिक अनुकूल है, इकोसिस्टम के अनुकूल है। तो इस वर्ष हमारे पास चूंकि एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात कम हो रही है, इसलिए किसान भाइयों इसकी खेती को आप अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जलवायु अनुकूल तो है ही, साथ ही हमारी आय को बढ़ाता है और सबसे बेहतर बात कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तो ऐसे में श्री अन्न और खास तौर से जब हम आज बात कर रहे हैं सावा मिलेट्स के बारे में, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो सर अभी सवाल ये है कि अब जो किसान भाई बहन अगर खेती करना चाहते हैं सावा मिलेट्स की, तो वो खेती कब करें और कैसे करें?
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि देखिए, सावा मिलेट्स एक ऐसा फसल है जिसको हम अपने बिहार राज्य में वर्ष में दो बार अच्छे से बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जितनी भी प्रजातियां हैं सभी प्रजातियां 90 दिनों से कम अवधि में, लगभग 85 दिन में पककर के तैयार हो जाती हैं, 80 से 85 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, अर्थात 3 महीने की बुआई से 3 महीने के अंदर ही आपके ये कट के तैयार हो जाती हैं। तो हम लोग देखिए, इसकी बुआई इवन मसूर है, चना है, सरसों है, और कुछ क्षेत्रों में गेहूं की कटाई के बाद भी गर्मी में इसका उपयोग बुआई कर लेते हैं। तो गर्मी में भी एक अच्छा समय होता है, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में हम बुआई कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा समय चल रहा है जिसको हम खरीफ की फसल कहते हैं, तो खरीफ में हमको जो ही बरसात का पानी मिल जाता है हम बुआई कर दें। अभी देखिए इस बार बरसात थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो अभी इसका उपयुक्त समय है, अभी हम आज के डेट से इसकी बुआई करें और 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर लेंगे तो हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे करें। तो देखिए, सावा मिलेट एक बहुत ही मोटा अनाज की फसल है, अर्थात इसको हम कहीं भी थोड़ा बहुत जुताई करके सीड को किसान फेंक देता था तो भी कुछ न कुछ उत्पादन दे देता था। आज हम लोग इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से करने की सलाह देते हैं। तो इसके लिए होता है कि हम इसकी खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर लें, खेत जो है ऐसा रखें जिसमें पानी का कभी जमाव ना हो, ऊपरी जमीन में ही बुआई करें। तो खेत को अच्छे से तैयार करके अब हम इसमें बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ मात्र 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और किसान भाई इसकी बुआई जो करें वो बेहतर हो कि कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी हम लोग कहते हैं 22.5 सेंटीमीटर, अर्थात लगभग 9 इंच की दूरी पर कतार से कतार की दूरी रखना है। और गहराई जो बीज का हो उसका विशेष ध्यान देना है कि किसी भी दशा में 1 इंच से ज़्यादा गहराई पर बुआई इसकी नहीं करना है, अर्थात जो गहराई है बुआई की वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखनी है और कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर अर्थात 9 इंच पर करना है। किसी कंडीशन में हम 25 सेंटीमीटर पर अर्थात 10 इंच की 9 से 10 इंच तक हम इसको कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं, बहुत अच्छा इसका पौधा उत्पन्न होता है और अच्छा लाभ मिलता है। अब बात आता है इसमें जो है बोने की विधि का। तो बोने की हमारी कई विधियां हैं, जैसे हम कतारों में बोएं फ्लैट बेड पर, और जिन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत जल जमाव की समस्या होती है वहां आजकल हम लोग क्या करते हैं, चौड़ी चौड़ी बेड बना देते हैं। बेड की चौड़ाई हम लोग लगभग 90 सेंटीमीटर रखते हैं, उस पर 4 लाइन सामा की जाती है जिसको हम लोग BBF मेकर बोलते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो मेकर। तो जिन किसान भाइयों के पास रेज बेड मेकर या BBF मेकर है, वो लोग थोड़ा सा रेज बेड पर या BBF पर इसकी बुआई करें और

0: वहां भी स्पेसिंग 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार में बुआई करें। उससे क्या फायदा होगा कि अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जो BBF 90 सेंटीमीटर या BBF 150 सेंटीमीटर वाइड हम बेड बनाते हैं तो उसके बाद 30 सेंटीमीटर का फरो भी होता है, तो जो बरसात ज़्यादा होगा तो बेड पर का पानी फरो में जाते हुए कूड़ों में जाते हुए वो बाहर निकल जाती है। तो इससे कहता है कभी भी पौधे के जड़ के पास जल जमाव नहीं होता, उससे फसल का उत्पादन जो है 20-25% बढ़ जाती है और कम खाद में 25% खाद भी कम देना पड़ता है उसमें। तो बेहतर होगा हमारे बिहार राज्य के सभी जिलों के किसानों से मैं जो है निवेदन करूंगा कि हो सके तो इसको रेज बेड या बीबी ब्रॉड बेड एंड फरो पर ही बुआई करें तो इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात आती है इसमें जो है इसका कौन कौन सी प्रजातियां सिलेक्शन करें। तो देखिए प्रजातियों के जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो अभी तक हमारे बिहार किसी विश्वविद्यालय में हम लोग बहुत से लोकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी हम लोग भी अपनी प्रजातियों को निकालने के स्थिति में आ चुके हैं, एक साल में बाद हमारी प्रजातियां आ जाएंगी। लेकिन बाहर की जो प्रजातियां हम लोग टेस्ट किए हैं उसमें अधिक उत्पादन देने वाली एक प्रजाति है DHBM 23-3। ये प्रजाति इतनी अच्छी है कि इसकी उत्पादन क्षमता 12 क्विंटल प्रति एकड़ है और मात्र 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर से निकली है जिसको हम बोलते हैं RAU 3 और अगला प्रजाति है RAU 9। तो ये दोनों प्रजातियां राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं और इनकी उत्पादन क्षमता है करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक, तो इसको भी लगा सकते हैं और औसतन ये 85-86 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। और कुछ प्रजातियां हैं बाहर की VL 207, VL 172, ये दोनों प्रजातियां भी लगभग 9 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन देती हैं और लगभग 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। VL 29 भी एक सावा की अच्छी प्रजाति है जिसकी उत्पादन क्षमता करीब करीब 10 से 11 क्विंटल है और ये बहुत ही हाई यील्डिंग है, इसकी भी प्रजाति कहीं से भी मिल जाए किसान भाइयों को तो लगा सकते हैं। तो VL 29 भी ले सकते हैं और इसका उत्पादन क्षमता है करीब 10 क्विंटल प्रति एकड़ और ये पककर तैयार होती है लगभग 88 दिन में। तो इस तरह से सांवा की जो 5-6 प्रजातियां हैं सिर्फ इन्हीं को लगाएं और वैसे तो बहुत सी प्रजातियां हैं लेकिन कम उत्पादन वाली प्रजातियों को न लगाएं।
1: जी सर, अगर हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है?
0: देखिए सांवा मिलेट्स चूंकि एक तरह से ड्राई लैंड की फसल है, वर्षा आधारित फसल है, तो इस सभी फसलों में खरपतवार का ज्यादा अतिक्रमण होता है। खरपतवार का समय पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो उत्पादन में भारी गिरावट हो जाती है। इन फसलों को कोशिश करना चाहिए कि बुआई के 10 दिन बाद से लेकर 35 दिन तक खेत जो है खरपतवार से मुक्त रहे। तो उसके लिए बहुत सी प्रजातियां बहुत सी विधियां हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी अच्छे से करें। अगर हो सके तो गर्मी में अगर हम खेत को 7-8 दिन जोत करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत से खरपतवार जो पेरेनियल वीड्स हैं, बहुवर्षीय खरपतवार हैं, उनकी जो जड़ें हैं, सकर्स हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं धूप की वजह से। उसके बाद अगर हम देखें तो उसकी बुआई करें। और बहुत से हमारे ड्राई लैंड वीडर हैं जैसे कि सिंह हैंड हुआ है, शर्मा हैंड हुआ, आजकल क्या है कि 20-22 हज़ार रुपये में जो पावर वीडर आ रहे हैं उसका भी उपयोग करके हम कतारों के बीच में मैकेनिकल वीडिंग कर सकते हैं। अगर हमें केमिकल उपयोग करना है तो बुआई के तुरंत बाद हम लोग हर्बिसाइड है पेंडीमिथिलीन इसका उपयोग करते हैं, उसके लिए 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। अगर हम किसान भाइयों के शब्दों में बोलें तो प्रति टंकी पानी में लगभग एक टंकी में 15 लीटर पानी होता है तो आपको 30 ml पेंडीमिथिलीन डालना है, 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति 15 लीटर पानी में डालना है और एक एकड़ में करीब 8-9 टंकी पानी या 8-10 टंकी पानी उपयोग में करें। तो इस तरह से बुआई के 24 घंटे के भीतर अर्थात आपने बुआई कर दिया उसके तुरंत बाद आप इस पेंडीमिथिलीन को 30 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए तो अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक दवा है 2,4-D, 2,4-D तीन ग्रुप में आती है जो है, एक 58% का होता है, एक जो है आपका करीब कम डोज का होता है 30% के आसपास। तो अब हमको देखना है कि हम कौन सा, एक पाउडर वाला होता है 80% का, तो अगर हम 58% वाला लेते हैं बाजार से, तो उसका

0: करीब 22 ml प्रति टंकी पानी यानी 1.5 ml प्रति लीटर की दर से देना है और बुआई के 20 से 22 दिन पर हमें स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, मुख्य रूप से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार बचते हैं या जो थोड़ा बहुत और खरपतवार बचते हैं उसको हमें 2-4 लेबर लगा करके मैनुअली निराई करनी होती है। क्योंकि ये सभी फसलें जो है हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग करें या केमिकल का प्रयोग करें तो थोड़ा सा उचित नहीं होता है, इसलिए कम से कम हमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना है। तो ये जो हमने विधि बताई, इस तरह से हम खरपतवार का कुछ हद तक प्रबंधन कर सकते हैं, बचा खोचा हमें मैनुअली ही मानव द्वारा खरपतवारों को निराई करके से बाहर करना है।
1: जी सर, अगर हम उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो सावा मिलेट्स में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है?
0: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ये हमारी श्री अन्न की फसलें हैं इनमें कम खाद कम पानी की जरूरत होती है। अब ये देखिए कि कम खाद कम पानी में आपको ज़्यादा पोषण देती हैं, इसीलिए इनके पोषण वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इनका नाम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने पोषक अनाज रखा, फिर इनके महत्व को और देखते हुए इनको थोड़ा और सम्मान दिया गया, इनका नाम 2023 में श्री अन्न रखा गया। तो आज के डेट में हम श्री अन्न कहें या पोषक अनाज कहें या मोटा अनाज कहें, सब एक ही है, लेकिन मोटा अनाज अब कहने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं से इनके सम्मान को धूमिल करने के बराबर है, इसलिए श्री अन्न कह करके ही इनको हम थोड़ा सा सम्मान दें। तो जो श्री अन्न की फसलें जिसमें सावा भी शामिल है, इसमें जैसा हमने पहले कहा कि कम खाद की जरूरत पड़ती है, तो देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर मात्र 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ती है। अगर किसान भाइयों को हम बोलें तो अपने फसल में ये लोग 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP और 0.5 बोरी पोटास प्रति एकड़ व्यवहार करें। पोटास एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेतों में कतारों के बीच में दें या खेतों में मिला करके जुताई कर दें, जबकि नाइट्रोजन को हम 2 भाग में स्प्लिट करेंगे, 2 भाग में बांट के देंगे। पहला नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से, जैसे हमने बोला 1 बोरा यूरिया पर्याप्त हो जाता है, तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के जो है 20 से 22 दिन पर, अगला 20 किलोग्राम हम बुआई के लगभग 50 दिन बाद जब इसमें बालियां निकलनी होती हैं, बालियां निकलने के करीब 1 महीने बाद ये पक्के तैयार हो जाते हैं। अगर 50-52 दिन पर बालियां निकल रही हैं तो 82-84 दिन पर ये पक्के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से यूरिया को कम से कम 2 बार में बांटना है। तो किसान भाइयों, आपके लिए अगर हम थोड़ा सा आपकी भाषा में बात करें तो 1 बोरा यूरिया, 1 बोरा DAP और 0.5 बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको देना है। पोटास और DAP की पूरी मात्रा बुआई के समय देना है, खेतों में मिला देना है, जबकि यूरिया का पहला डोज आपको 25 किलोग्राम से प्रति एकड़ देना है बुआई के 20 से 22 दिन पर। इससे देने से कल्ले और टीलर अच्छे निकलते हैं और ग्रोथ अच्छा होता है। दूसरा डोज देना है जब बालियां निकलने लगे, मतलब बुआई के लगभग 50-52 दिन पर, तो अच्छा आपको इसका लाभ मिलता है, उत्पादन अच्छी होती है। और मैं किसान भाइयों से बताना चाह रहा हूं कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सावा की जो अच्छी प्रजाति है DHBM 23-3, इसका बीज उपलब्ध है। इसकी उत्पादन क्षमता है 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़, मात्र 85 दिन में पक्के तैयार होने वाली प्रजाति है DHBM 23-3। इसका बीज यथाशीघ्र हमारे यहाँ से प्राप्त कर लें और ये बीज हम प्रगतिशील किसानों को निःशुल्क देंगे। दूसरी प्रजाति हमारे पास VL 29 भी है, इसका सीड थोड़ा कम है, लेकिन जो भी हमारे पास 10-20 किसान अभी आ जाएंगे उनको भी हम फ्री में ये बीज अभी देंगे, अपने खेतों पे लगाएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद।
1: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि श्री अन्न की खेती किस प्रकार से किसान भाई बहन कर सकते हैं और ये बहुत ही उपयोगी है जैसा कि आपने बताया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सावा मिलेट्स की खेती करेंगे और आप अधिक मुनाफा भी कमाएंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर द स्पीड गेटिंग देम vaccinated immediately is

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका, नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना

विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सब और दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूले। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे, 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें।

संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए खास कार्यक्रम एग्जाम के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले उनके खास कार्यक्रम रेडियो रिविजन में। दोस्तों, रेडियो रिविजन में आज आपके कोर्स ABP 121 यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का रेडियो रिविजन होने वाला है और आज आपके कोर्स लीडर डॉक्टर अवधेश पाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: सर, रेडियो रिविजन शुरू कीजिए।
1: नमस्कार सभी ABP 121 के बच्चों को। मैं यहाँ आपके कल, चूंकि आपका 14 तारीख को एग्जाम है, इंटरम एग्जाम, और मैं आपके ये इस कोर्स के रिवीजन के लिए उपस्थित हूँ यहाँ पर। आपको जैसे पता है कि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जो 30 मिनट्स के लिए जिसमें होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट 1-to-1 आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और सेकेंड पार्ट जो है आपका, उसमें सब्जेक्टिव होते हैं, तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट नोट्स होता है और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे आपका ये सभी सिलेबस को आपने देखा ही होगा, कवर किया होगा, सारा कोर्स आपका इसमें कंप्लीट है। और सिलेबस जो है आपका मेजरली दो भाग में बटा हुआ है, एनवायरमेंटल स्टडीज और दूसरा आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें जो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं आपके क्लासेस में भी सारा बताया हुआ था कि एनवायरमेंटल स्टडीज वाला जो पार्ट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से कवर करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक बार पूरे सिलेबस को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन, क्या प्रोबेबल क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं और किस प्रकार के इसको कवर करने की आप तैयारी करेंगे। तो आप सिलेबस को अगर अपने पास रखेंगे और देखेंगे तो पहला आपका जो यूनिट है एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर में, तो वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, और इसमें आपको जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल स्टडीज़ के बारे में बात करनी है, रिसोर्सेज के बारे में बात करनी है जो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में आते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, फूड रिसोर्सेज हो गए, तो एनर्जी रिसोर्स हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड रिसोर्सेज। तो ये सारे जितने रिसोर्सेज के बारे में आप बात करेंगे तो उनका कैसे यूज होता है, उनका एक्सप्लोटेशन कैसी होती है, ओवर एक्सप्लोटेशन कैसी होती है, और किस प्रकार से उनको हम लोग बचा सकते हैं और उनसे उनका यूज में किस तरीके से हम लोग सारे रिसोर्सेज को फ़ायदा में लेकर आएंगे और उनको कैसे हम बचा सकते हैं, और कारण क्या है इनका, ये सब रिन्यूएबल का एग्जॉस्ट होने का कारण क्या है, कैसे उनको हम लोग रोक सकते हैं, उसकी बात पर आप थोड़ा सा विचार करिएगा। और इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में जितने भी हमने बताया रिसोर्सेज, उनको आप थोड़ा तैयार कर लेंगे। और इसमें रोल ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में, उस पर भी एक ध्यान देने की बात आएगी। हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आए। और इसमें तो एनर्जी के बारे में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और वो कैसे उनको रीगेन किया जा सकता है, कैसे उसको बताते हैं, और एनर्जी का अल्टरनेट सोर्स क्या हो सकते हैं, ये सब थोड़ा कोर्स होगा। मैं थ्रू आउट द सिलेबस के बारे में अगर बात करते हैं तो पूरे सिलेबस को आप उस टर्म पर पढ़ने का कोशिश करिए जो कहीं पर लेटेस्ट, कहीं पर वर्ल्ड में

कहीं आपके उसमें कहीं ये घटना घटी हो इससे संबंधित, तो वो एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा चीज़ है जो आए दिन कहीं ना कहीं प्राय रूप में ग्लोबली होते रहता है, तो जो चीज़ कहीं हो रहा होता है तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से बन जाता है। तो जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन आजकल जैसे हमारा होता है पेट्रोल वगैरह के दाम बढ़ने का, चाहे उसमें इथेनॉल मिलाने का, ये सब एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो मैं भी लोगों का ध्यान उधर जाता है तो एक्सटर्नल के दिमाग में जाता है, उसका क्वेश्चन बन जाता है। आपका दूसरा यूनिट आता है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के अंदर में आपको पढ़ाया गया है सब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इकोसिस्टम का, उसमें प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स ये सब क्या होते हैं, कैसे एनर्जी फ्लो करता है फ्रॉम वन इकोसिस्टम के लेवल से दूसरे इकोसिस्टम दूसरे लेवल तक, तो इनके बारे में पढ़ना है। इकोलॉजिकल सक्सेशंस के बारे में आपको पढ़ाया गया था, तो ये सब जो कि आपका सीधा सीधा शॉर्ट नोट्स में आता है और इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे। फूड चेन्स और फूड वेब क्या होता है, फूड वेब के बारे में बताया गया था आपको, फूड चेन्स के बारे में बताया गया है। फूड चेन के अंदर में कोई एक चेन दे दिया जाएगा, वहाँ एक मिसिंग जो लिंक होगा उसके बारे में लिखना होगा कि इसमें कौन सा चीज़ फिट कर सकता है। तो फूड चेन में आपको होता है कि एक प्रोड्यूसर होता है, उसको कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर होता है, ऐसे कर करके चेन ऊपर तक जाती है, तो उसमें आपको फिलअप करने के लिए एग्जाम्पल के उसमें पूछा जा सकता है। और इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताया गया था आपको, पिरामिड ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ बायोमास एक्सेट्रा वगैरह के बारे में पढ़ाया गया था, उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे इसको कवर करना है और पिरामिड्स कौन सा पिरामिड अपसेट डाउन होता है उल्टा होता है वो सब के बारे में आपको बताया गया है, आप उसे थोड़ा सा कवर करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कितनी परसेंट एनर्जी जो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाने पर लॉस होता है, कैसे लॉस होता है, ये सब के बारे में आपको इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एग्जाम्पल के नाम टाइप में आप देख सकते हैं कि कोई इकोसिस्टम के बारे में आपको डिस्क्राइब करने की बात आ सकती है या एग्जाम्पल लेकर इकोसिस्टम के बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में बहुत आपके बहुत सारे टाइप्स के थे, तो उसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेकर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के बारे में बोला जा सकता है कि सपोज करिए फूड चेन ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम है ना, स्ट्रीम इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर्स के बारे में बोल सकते हैं, ओशियन इकोसिस्टम, तो इनका एग्जाम्पल लेकर आपको इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे आप किताब में देखिएगा, नोट्स में भी आपको दिया गया है, जिसमें वन वर्ड्स को बहुत सारे क्वेश्चन बनने के प्रोबेबल चांस होते हैं, है ना, जैसे आपका इकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है, तो ये सब एग्जाम्पल में भी आएगा और आपका चैन के रूप में भी आ सकता है कि कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन वी कम टू नेक्स्ट चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है एंड इट्स कंजर्वेशन, ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सिलेबस में, इस कोर्स में आपका सबसे मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट वो है पार्ट है, तो जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के कारण क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको मतलब वो करना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे आर्टिकल सेक्शन शेड्यूल ये सब में कहाँ पर ये सबको मेंशन किया गया है उनके बारे में थोड़ा सा आप याद कर लेंगे देख लेंगे, आपको ये सब प्रोवाइड किया गया है। और इसमें आपको आती है डेफिनेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आएगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, हमारे इंडिया का कितने बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, इंडिया को कितने उसमें बांटा गया है, वो सब आपको बताया गया है, वो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे के उसको वो करेंगे। और इसमें आपका सोशल एथिकल एसेटिकल ये सब वैल्यू जो है वो सब आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। और एक तरह से आप देखिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया या कंजर्वेशन की बात अगर करते हैं तो ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर क्या इसका पोजीशन है, नेशनल लेवल पर क्या है, हमारे स्टेट लेवल पर लोकल लेवल पर क्या इनका वो है, तो उसको बताया गया था आपको कि कितने हमारे नेशनल पार्क है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व से, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब का बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। इंडिया को क्यों मेगा डाइवर्सिटी नेशन कहा जाता है, इसमें बहुत तरह के आपको एनवायरमेंटल कंडीशन से आपको ट्रॉपिकल से लेकर मेडिटेरेनियन से लेकर टेम्परेट रीजन ये सब टाइप के मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बताए थे। तो उसमें देखिएगा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितना है, कहाँ कहाँ पर है, उनकी क्या खासियत होती है, हॉटस्पॉट की क्राइटेरिया क्या होती है, तो ये सब आप ध्यान दे लीजिएगा, उसमें आपको ये सब इम्पोर्टेंट आएगा, आपको एक दो एग्जांपल के साथ किया जाएगा, जैसे आपको हम लोग इसमें बताए थे इंडो बर्मा के बारे में, वहाँ पर आपको पिक्चर प्लांट होता है नेपेंथिस खासियाना, एपेंडिजम क्या होती है, और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की हम लोग बात करेंगे तो थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी को, क्या क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का।

हैबिटेट लॉस का कारण होता है, पोचिंग की बात होती है ना, तो उसमें आप थोड़ा सा देख दें, मैन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम क्या होता है, ये IUCN क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये सब के बारे में आपको रिवाइज कर लेना होगा। ये सारी चीज़ आपको बताए गए हैं, उनको फिर से एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्लियर रहिएगा उसमें। और कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे तो उसमें इन सीटू और एक्स सीटू की बात कर रहे थे। इन सीटू में आपको पूरा उन्होंने बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व्स है अपने इंडिया में कितने हैं, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ये सब बहुत तरह के, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट्स के साथ हम लोगों ने लिंक किया हुआ था। और बिहार में हम तो बिहार का रेफरेंस से आपको जानना चाहिए कितने नेशनल पार्क है, कितने सेंचुरीज है, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एक बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब कॉन्सेप्ट जो होता है, तो उसमें कोर रीजन, पेरिफेरल रीजन होता है, बफर जोन होते हैं, उनका क्या खासियत होता है क्या नहीं, और कितने नंबर्स में हैं वर्ल्ड में या फिर आप इंडिया में कितने नंबर में बायोस्फीयर रिजर्व से, सबसे लार्जेस्ट कौन था, ओल्डेस्ट कौन था, कौन कहाँ पर है, कौन किस चीज़ के लिए मशहूर है, कौन सा स्पीसीज वहाँ पर मिलता है, प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, तो ये सब आपको नोट्स में दिया गया, स्लाइड्स में भी आपको पढ़ाए हुए हैं, दिए गए हैं, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से ये कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप आजकल पोल्यूशन का बहुत मतलब वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, मेराइन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इनके रेफरेंस से आपको इनका कॉज क्या है, इनका इफेक्ट क्या होता है, इनका इम्पैक्ट कितना है, कितने लेवल तक ये जाकर हैजार्डस वो इफेक्ट डालते हैं, और इनका कंट्रोल मेजर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हर एक पोल्यूशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। न्यूक्लियर हैजर्ड्स के बारे में मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियर हैजर्ड्स के बारे में कैसे उनको मैनेजमेंट किया जा सकता है, न्यूक्लियर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से सोर्स होता है न्यूक्लियर लीकेज का, और वो सब के बारे में करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट और ये सब के बारे में बताया गया था। अर्बन पॉपुलेशन जो है, अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, जैसे शहरीकरण ज़्यादा हो जाती है तो कैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ने का चांसेस होता है, उनको कैसे रोकथाम किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको बताया गया है। और इंडिविजुअल्स के क्या रोल होता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन में, तो इसके और इसके रिलेटेड जो है आपका बहुत सारे एक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल एक्ट्स है, पोल्यूशन एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। एक्ट्स का तो एक अलग से आपको मैंने एक चैप्टर और नोट्स भी दिया हुआ था, जिसमें पूरा आपको एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स जितने भी हैं उनके बारे में आपको जानना है कि वो कब इस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ पर हुए थे, किससे रिलेटेड है वो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन शेड्यूल ये सब में कहीं मेंशन है तो उनका नंबर याद कर लीजिएगा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। सोशल इश्यूज और एनवायरमेंटल जो होते हैं उनका इंपॉर्टेंट बहुत अपना एक खास है, क्योंकि आजकल एनवायरमेंटल चीज़ों को सोशल इश्यूज के साथ ज़्यादा जोड़ा जाता है, तो उसमें आपको करना होगा ये अनसस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है, अपना अर्बन का प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाने पर, वाटर कंजर्वेशन क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, शहरीकरण के दौरान में कैसे उसको हम लोग करते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल एथिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब शॉर्ट नोट्स में आएंगे। इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सब ऑब्जेक्टिव में भी आपके आ सकते हैं, जिसके सोर्स आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों होता है, कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन से गैसेज रिलेटेड, कौन कहाँ से क्या इसका प्रॉब्लम है, वो सारे चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से आप मतलब कर सकते हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के बारे में भी आपको जानना होगा, न्यूक्लियर एक्सीडेंट में दो चार एग्जांपल हम लोगों ने दिया हुआ था आपका, चेर्नोबिल वगैरह का, हिरोशिमा का, तो उनके बारे में जानना है, उनका डेट्स याद रखिएगा किस जगह पर हुआ था, वो सब के बारे में आपको जानना होगा। प्लस ये जैसे मैंने एक्ट के बारे में तो सब आपको बता ही दिया, आपका एक और इम्पोर्टेंट इस पर ये है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट का, जो आपका सेवन्थ यूनिट है, तो इसमें आपको जैसे पॉपुलेशन इज द कॉज फॉर एवरी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है उससे रिलेटेड कैसे हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी पॉपुलेशन हो, कम जनसंख्या हो, ह्यूमन राइट्स की बात उसमें आती है, फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम की बात आती है, आपकी बीमारी जो होती है वो फैलने की सोशल सोसाइटी में होती है उनको कैसे रोक दिया जाए, चाइल्ड वेलफेयर की बात आती है, तो ये सारे रिलेटेड भी आपके एनवायरमेंट से है जुड़े हुए, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जो आपको क्लास में वो किया गया है। और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका तो आपको थोरो वो स्टडी कराया गया है, जिसमें आपको नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बताया गया था, जिसमें आपका फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सबके बारे में एक एक करके बताया गया है। अगर कॉमन क्वेश्चन आता है एनवायरनमेंट के लिए तो आपने आपको जैसे बताया गया था कि उसमें बिफोर डिजास्टर्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या करते हैं, आफ्टर डिजास्टर क्या करते हैं, वो चार पाँच टॉपिक आपका उसमें बताया गया था, प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, मिटिगेशन कैसे किया जाएगा।

0: होती है, रिस्पॉन्स कैसे होता है और रिहेबिलिटेशन और ये सब के बारे में आपको डिटेल में ये सब बताया गया है, उनको लेकर आपने इसमें अच्छे से वो करना है। प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट की बात जब आती है तो एक एक डिजास्टर्स का अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, और अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं उनके बारे में, ड्रिल्स होती है, मॉक ड्रिल्स, उसके के बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से बताएंगे। एंड रिसेंटली अगर कहीं पर डिजास्टर्स हुए हुए होंगे, मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो उससे संबंधित आपके क्वेश्चन इसे आ सकते हैं, इसको उसको आपके कोर्स के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको करिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा मल्टीपल चॉइस और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आएंगे, और दूसरे में आपका शॉर्ट नोट्स होगा। शॉर्ट नोट्स आपका टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्वेश्चन जितना मार्क्स का होता है उतना ही का करना चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाकर टॉपिक वाइज उसको डिस्क्राइब करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट, उसमें कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सब पढ़ाया गया, आप उसको अच्छे से करिए। थैंक यू, चलिए ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच सर, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो स्टूडेंट्स कल एग्जाम दीजिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: Coco, Kasi.
1: Kasi, Coco, Kasi.
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ। और हर रोज कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ खास बातें, क्योंकि आपको पता है कि जब उन्नत कृषि कार्यक्रम आप सभी के सामने हाजिर होता है तो डेफिनेटली आप सभी के लिए कुछ खास बातें हाजिर होंगी। तो आज ऐसे ही एक विशेष जो हमारा विषय है वो है धान में खरपतवार प्रबंधन। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एस के चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और वैसे मैं बता दूं कि हमारे किसान भाइयों और हमारे श्रोतागण, आप सभी को बता दें कि जब हम खेती करते हैं तो ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम अपने फसलों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें, और ऐसे में सबसे ज़रूरी होता है कि खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अपने फसलों को खरपतवार से कैसे बचाएं और किस तरीके से बचाएं। तो इसे ही कहते हैं खरपतवार प्रबंधन, और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर एस के चौधरी। तो सबसे पहले जब बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, तो डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है।
7: नमस्कार किसान भाइयों, बिहार में धान की खेती मुख्य रूप से खरीफ मौसम में की जाती है, परंतु यहाँ इसकी उपज क्षमता प्रति हेक्टेयर औसत से बहुत कम है। और तो और बिहार में लगभग 35 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है, जो कि अपेक्षाकृत कम है। इसका मुख्य कारण है इस खेती में तकनीकी ज्ञान की कमी। धान की खेती प्रायः 3 प्रकार की जमीन में की जाती है। बिहार में इस खेती 25% ऊपरी जमीन में, 25% मध्यम जमीन में और 40% निचली जमीन एवं 10% गहरे पानी वाले क्षेत्र में की जाती है। विगत वर्षों में वर्षा की कमी होने के कारण या आवश्यकता अनुसार समय पर वर्षा नहीं होने पर धान की रोपाई समय से नहीं हो पाती है।

0: तथा किसान सही समय सही किस्म के चुनाव बिचड़े की तैयारी इत्यादि ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यह है तकनीकी ज्ञान से कि किस जमीन में किस प्रकार की किस्म का चयन करें, कितना खाद दे, कितनी पानी की व्यवस्था करे, उसका कीट व्याधि का सुरक्षा किस प्रकार करे, इस सब में तकनीकी किसान को अभाव रहता है। और तो और मेरा आज का विषय है खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन एक ऐसा है जो अगर नहीं करेंगे, अगर समय से नहीं किए तो इसमें उपज में बहुत कमी हो सकती है। और तो जो धान सीधी बुआई होता है उसमें 100% तक का यील्ड जो उपज है वो कम हो जाती है।
1: मतलब कि जो 100% यील्ड है वो उपज कम हो जाती है अगर इसका प्रबंधन ना करें तो। और इसलिए हमारे किसान भाइयों को घाटा भी हो सकता है अगर ये व्यवसायिक तौर पर अगर फसलों को बेचने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं बाजारों में तो। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि इसलिए 100% यील्ड के लिए आपको खरपतवार प्रबंधन करना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब आप आगे भी कुछ कह रहे थे।
0: बोले अभी जो खरपतवार प्रबंधन है इस पे अगर समय से कर लिए तो उपज बढ़ेगा ही, साथ साथ इसका क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों पे प्रभाव पड़ता है।
1: हाँ।
0: जिस खेत में बहुत से खरपतवार रहता है उसमें उपज तो कम होता ही है, लेकिन उस जो उपज का जो चमक जो होता है धान की वो भी कम हो जाती है, इसका मार्केट वैल्यू या उसका प्राइस
1: कम
0: दूसरे से कम हो जाएंगे।
1: और हमारे किसान भाइयों का मेहनत भी बेकार चला जाता है, जितना वो मेहनत करते हैं उतना फसल उन्हें प्राप्त भी नहीं हो पाता है।
0: तो हमारे बिहार में मुख्यतः दो प्रकार के धान लगाते हैं, एक तो जिसमें समय की कमी हो तो सीधी बुआई करते हैं, दूसरा नर्सरी लगा के उसको कदवा करके फिर से ट्रांसप्लांटिंग करके लगाते हैं। तो दोनों विधि से खरपतवार नियंत्रण अलग अलग तरीके से होता है। जैसा कि देखेंगे पहला हम बता देते हैं धान का जो खरपतवार है सीधी बुआई से लगाने वाले धान में किस तरह से करें, तो मैं एक करके बताता हूँ जो कि आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ध्यान में रखना चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। धान को बीज को खेत में डालने के बाद तथा उसको अंकुरण होने के पहले एक बहुत ही कारगर दवा है, नाम है पेंडीमिथिलीन, जो कि ये प्री इमरजेंस है। प्री इमरजेंस कहने का मतलब है जो उसमें मतलब वो खरपतवार निकलने से पहले आप उसमें डाल दीजिए, स्प्रे करिए, जो कि मार्केट में स्टॉम्प 35-30 ईसी के नाम से मिलता है।
1: अच्छा।
0: इसको आप 1333 मिलीलीटर प्रति एकड़ या 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में नमी होने पर छिड़काव अवश्य रूप से करें। या अगर ये दवा अगर बाजार में नहीं उपलब्ध है तो इसका एक अलग है ऑक्सीड्राइजील, जो मार्केट में टॉप स्टार या रेफेट नाम से मिलता है, ये 50 ग्राम प्रति एकड़ या नहीं तो 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से स्प्रे करें। इससे बहुत हद तक खरपतवार नहीं निकलेंगे खेत में। उसके बाद धान जब अंकुरण हो गया, धान खेत में लग गया, उसके बाद भी अगर आप ठीक से खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो एक भी नहीं आएगा। धान अंकुरण के बाद निम्नलिखित खरपतवार नाशी है जो कि हम लोग रिकमेंड करते हैं या चाहे बोलते हैं ये किसान आप लोग खेत में स्प्रे निश्चित रूप से करें। धान में वैसे तो बहुत तरह से खरपतवार निकलते हैं, और तो और खरीफ मौसम में खरपतवार निकलना एक नेचुरल या चाहे प्राकृतिक ये है जो उसमें सारे क्लाइमेटिक कंडीशन फुलफिल करता है। तो इस विधि से भी खरीफ में ज़्यादा घास निकलता है अपेक्षाकृत रबी मौसम में। तो धान अंकुरण के बाद 4-5 खरपतवार नाशी है जो कि मैं बता रहा हूँ। पहला है बिस पेरीबैग सोडियम, जिसको मार्केट में नॉमनी गोल्ड के नाम से मिलता है, ये 10% ईसी से मार्केट में है उपलब्ध। आप इसको 80-100 ml प्रति एकड़ या नहीं तो 250 ml प्रति हेक्टेयर को आप स्प्रे करिए, जो कि 15-20 दिन बाद आप इसको खेत में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है फिनोक्सोप्रॉप, जो कि 9.3 ईसी के मात्रा में मार्केट में मिलता है, जो 400 ml प्रति एकड़ या चाहे 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में स्प्रे करें, ये धान को अंकुरण के 25 दिन के बाद। उसके बाद तीसरा दवा है इथॉक्सी सल्फिरान, जो कि मार्केट में सनराइज के नाम से मार्केट में मिलता है, जो कि 40 का दर जो है 40 ml प्रति एकड़ या नहीं तो 100 ml प्रति हेक्टेयर,

0: ये चौड़ी पत्ती के या मोथा कुल के लिए है, जो कि 15 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथा दवा है एजीम सल्फिरॉन, जो कि मार्केट में 50 WDG के नाम से उपलब्ध है। ये 1820 ml प्रति एकड़, नहीं तो 50 ml प्रति हेक्टेयर, ये सिर्फ मोथा कुल के लिए है। ये भी 25 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये सब तो थोड़ा दवा महंगा होगा, एक सबसे किसान भाइयों के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ती दवा है 2,4-D इथाइल ईस्टर, जो मार्केट में 38 EC के नाम से मिलेगा। ये चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए है। इसको आप 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करिए 20 से 25 दिन के बाद। ये जितने भी दवा के नाम बताएं, ये धान में सीधी बुआई के लिए उपयुक्त है।
1: सीधी बुआई के लिए,
0: सीधी बुआई कहने का मतलब इसमें नर्सरी नहीं लगाते हैं, चाहे ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं, बस धान में ये प्लॉइंग करके आप उसमें या तो चाहे लाइन स्वइंग से या नहीं तो स्प्रे मतलब छिड़काव विधि से आप धान लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: धान की दूसरी विधि है लगाने की, नर्सरी पहले लगाइए 20 से 21 दिन के बाद उसको उखाड़ के ट्रांसप्लांटिंग करिए, जो कि कदवा करके खेत में लगाते हैं डिफरेंट स्पेसिंग में 20 से 25 या 25x25 या 15x25। इसी हिसाब से दूसरा विधि है धान के नर्सरी विधि से लगाने के लिए, खरपतवार नाशी अलग है। अगर आप धान को नर्सरी लगा लिए हैं, 20 से 25 दिन हो गया है, तो आप उसको उखाड़ के और मेन फील्ड जो कदवा किए हैं उसमें आप लगाएंगे, उसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग अलग होता है। उसमें सबसे प्रमुख जो दवा है वो है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो मार्केट में मीचेट नाम से मिलता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है 50 EC के नाम से मार्केट में मिलेगा। मीचेट 50 EC, इसका जो दर है 1.5 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये आप स्प्रे करिए 2.5 लीटर से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर। ये 4 से 5 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब आप चार ट्रांसप्लांटिंग कर देने के 4 से 5 दिन के बाद आप इसको बालू में मिक्स करके और अच्छे तरीके से मिला के इसको खेत में छिड़काव करें। और ये ध्यान रखिएगा जो खेत में 1 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, तब इसको आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत बहुत सारे जो खरपतवार है वो इससे नहीं निकलेंगे इसके निकलने से बाद। अगर ब्यूटाक्लोर नहीं मिले तो पेट्राक्लोर है, जो मार्केट में रेफेट नाम से मिलता है, 750 ग्राम AI है, 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर को। ये भी 3 से 7 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, धान का 3 से 7 दिन के बाद लगाने के बाद इसका स्प्रे करिए। दूसरा तीसरा दवा है ऑलमिक्स, जो कि इसमें 2 खरपतवार नाशी का कॉम्बिनेशन है। पहला क्लोरीमिरॉन और दूसरा मेट सल्फिरॉन। ये एक जो डब्बा में आता है 4 यूनिट का रहता है, वो 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। ये 15 से 20 दिन के बाद आप इसको ट्रांसप्लांटिंग में स्प्रे कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और ये भी बताया कि कब करना चाहिए, दवाओं के बारे में बताया कि कौन कौन से दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि बिस्पैरबिक सोडियम के बारे में कहा, इथॉक्सी सल्फ्यूरान के बारे में कहा। और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आपने बहुत सारी बातें की डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर एक और सवाल दिमाग में आता है कि अगर खरपतवार प्रबंधन करते हैं इसका लाभ हम जानना चाहेंगे। आपने बताया जैसे कि 100% यील्ड होता है, इसके अलावे कुछ लाभ अगर हो तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: खरपतवार नियंत्रण करने से बहुत से ही लाभ है। खरपतवार क्या है, जो किसान भाइयों नहीं लगाते हैं वो अपने आप जो उपज जाता निकल आता है उसको खरपतवार कहते हैं। अगर खरपतवार खेत में रहेगा तो इसका एक तो लाभ ये है, सबसे जो प्रमुख लाभ है इसका उपज बढ़ेगा। दूसरा अगर लाभ देखेंगे तो दूसरा जो आप खाद देते हैं, जो आप उर्वरक देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, वो क्या होता है, अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो खरपतवार का नेचर या चाहे आदत होता है वो क्या करता है, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करने का। तो आप जो खाद देंगे धान के लिए वो क्या करेगा, खरपतवार ले लेगा। तो आपको समुचित जो उपज होना चाहिए जितना खाद देने से, उसमें कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है और तो और वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट, धान को नहीं जाके चल जाएगा खरपतवार में। तीसरा फायदा ये है, जो धान में प्रमुख जो होती है उसका नेचर होता है टिलरिंग देने का, टिलरिंग तभी देगा जब उसमें स्पेस होगा, जगह होगा। और खरपतवार क्या करता है, जो बहुत

जल्दी से ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई खेत में बहुत तेजी से होता है, तो वो धान को बहुत कम स्पेस देता है, जिससे कि टीलर निकलने की जगह ही नहीं छोड़ता है। और उसके अलावा बहुत सा है, जैसे पानी दिए, पानी की जो धान को चाहिए वो खरपतवार ले लेगा। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो फायदा है, अगर खरपतवार नियंत्रण कर देंगे तो ये सारे जितना भी लाभ है वो खरपतवार

0: बजाय ज्यादा और तेजी से ग्रोथ हो जाएगा।
1: अच्छा, तो इसीलिए जरूरत है खरपतवार प्रबंधन की, और डॉक्टर साहब आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आप खरपतवार प्रबंधन यानी कि आप फसल लगाते हैं तो आप टाइम टू टाइम समय पर आप देखते रहें कि फसलों में अगर खरपतवार आ रहे हैं तो आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो इसलिए इसका प्रबंधन ज़रूर करें और खास ख्याल रखें अपने फसलों की सुरक्षा का। तो और भी बातें और भी विशेष चर्चाओं के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे आप सभी के सामने, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए खास कार्यक्रम एग्जाम के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले उनके खास कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। दोस्तों, रेडियो रिवीजन में आज आपके कोर्स ABP 1-2-1 यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का रेडियो रिवीजन होने वाला है, और आज आपके कोर्स लीडर डॉक्टर अवधेश पाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा।
1: सर, रेडियो रिवीजन शुरू कीजिए।
2: नमस्कार सभी ABP 1-2-1 के बच्चों को। मैं यहाँ आपके कल, चूंकि आपका 14 तारीख को एग्जाम है, इंटरम एग्जाम, और मैं आपके दस ये इस कोर्स के रिवीजन के लिए उपस्थित हूँ यहाँ पर। आपको जैसे पता है कि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जो 30 मिनट्स के लिए जिसमें होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट 1-2-1 आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और सेकंड पार्ट जो है आपका, उसमें सब्जेक्टिव होते हैं, तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट नोट्स होता है और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे आपका ये सभी सिलेबस को आपने देखा ही होगा, कवर किया होगा, सारा कोर्स आपका इसमें कम्प्लीट है। और सिलेबस जो है आपका मेजरली दो भाग में बटा हुआ है, एनवायरमेंटल स्टडीज और दूसरा आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें जो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं आपके क्लासेस में भी सारा बताया हुआ था कि एनवायरमेंटल स्टडीज वाला जो पार्ट है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से कवर करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक बार पूरे सिलेबस को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन, क्या प्रोबेबल क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, और किस प्रकार के इसको कवर करने की आप तैयारी करेंगे। तो आप सिलेबस को अगर अपने पास रखेंगे और देखेंगे, तो पहला आपका जो यूनिट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर में, तो वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, और इसमें आपको जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल स्टडीज़ के बारे में बात करनी है, रिसोर्सेज के बारे में बात करनी है जो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में आते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, फूड रिसोर्सेज हो गए, तो एनर्जी रिसोर्स हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड रिसोर्सेज। तो ये सारे जितने रिसोर्सेज के बारे में आप बात करेंगे, तो उनका कैसे यूज होता है, उनका एक्सप्लोटेशन कैसी होती है, ओवर एक्सप्लोटेशन कैसी होती है, और किस प्रकार से उनको हम लोग बचा सकते हैं, और उनसे उनका यूज में किस तरीके से हम लोग सारे रिसोर्सेज को फ़ायदा में लेकर आएंगे, और उनको कैसे हम बचा सकते हैं, और कारण क्या है इनका, ये सब रिन्यूएबल का एग्जॉस्ट होने का कारण क्या है, कैसे उनको हम लोग रोक सकते हैं, उसकी बात पर आप थोड़ा सा विचार करिएगा। और इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में जितने भी हमने बताया रिसोर्सेज, उनको आप थोड़ा तैयार कर लेंगे। और इसमें रोल ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में, उस पर भी एक ध्यान देने की बात आएगी, हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आए। और इसमें तो एनर्जी के बारे में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, और वो कैसे उनको रीगेन किया जा सकता है, कैसे उसको बदलते हैं, और एनर्जी का अल्टरनेट सोर्स क्या हो सकते हैं, ये सब थोड़ा कोर्स होगा। मैं थ्रू आउट द सिलेबस के बारे में अगर बात करते हैं, तो पूरे सिलेबस को आप उस टर्म पर पढ़ने का कोशिश करिए जो कहीं पर लेटेस्ट, कहीं पर वर्ल्ड में, कहीं आपके उसमें कहीं ये घटना घटी हो इससे संबंधित, तो वो एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा चीज़ है जो आए दिन कहीं ना कहीं प्राय रूप में ग्लोबली होते रहता है, तो जो चीज़ कहीं हो रहा होता है तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से बन जाता है। तो जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन, आजकल जैसे हमारा होता है पेट्रोल वगैरह के दाम बढ़ने का, चाहे उसमें इथेनॉल मिलाने का, ये सब एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो मैं भी लोगों का ध्यान उधर जाता है, तो एक्सटर्नल के दिमाग में जाता है, उसका क्वेश्चन बन जाता है। आपका दूसरा यूनिट आता है इकोसिस्टम।

इको सिस्टम के अंदर में आपको पढ़ाया गया है सब, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इको सिस्टम क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इको सिस्टम का, उसमें प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स ये सब क्या होते हैं, कैसे इनर्जी फ्लो करता है फ्रॉम वन इको सिस्टम के लेवल से दूसरे इको सिस्टम दूसरे लेवल तक, तो इनके बारे में पढ़ना है। इकोलॉजिकल सक्सेशंस के बारे में आपको पढ़ाया गया था, तो ये सब देखिए आपका सीधा सीधा शॉर्ट नोट्स में आता है और इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे। फूड चेन्स और फूड वेब क्या होता है, फूड वेब के बारे में बताया गया था आपको, फूड चेन्स के बारे में बताया गया है। फूड चेन के अंदर में कोई एक चेन दे दिया जाएगा, वहाँ एक मिसिंग जो लिंक होगा उसके बारे में लिखना होता होगा कि इसमें कौन सा चीज़ फिट कर सकता है। तो फूड चेन में आपको होता है कि एक प्रोड्यूसर होता है, उसको कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर होता है, ऐसे कर करके चेन ऊपर तक जाती है, तो उसमें आपको फिलअप करने के लिए एग्जाम्पल के उसमें पूछा जा सकता है। और इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताया गया था आपको, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एक्सेट्रा वगैरह के बारे में पढ़ाया गया था, उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे इसको कवर करना है और पिरामिड्स कौन सा पिरामिड अपसेट डाउन होता है, उल्टा होता है, वो सब के बारे में आपको बताया गया है, आप उसे थोड़ा सा कवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कितनी परसेंट एनर्जी जो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाने पर लॉस होता है, कैसे लॉस होता है, ये सब के बारे में आपको इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एग्जांपल के नाम टाइप में आप देख सकते हैं कि कोई इकोसिस्टम के बारे में आपको डिस्क्राइब करने की बात आ सकती है, या एग्जांपल लेकर इकोसिस्टम के बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में बहुत आपके बहुत सारे टाइप्स के थे, तो उसमें आपको एग्जांपल के तौर पर लेकर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के बारे में बोला जा सकता है कि सपोज करिए फूड चेन ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम है ना, स्ट्रीम इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर्स के बारे में बोल सकते हैं, ओशियन इकोसिस्टम, तो इनका एग्जांपल लेकर आपको इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे आप किताब में देखिएगा, नोट्स में भी आपको दिया गया है, जिसमें वन वर्ड्स को बहुत सारे क्वेश्चन बनने के प्रोबेबल चांस होते हैं, है ना, जैसे आपका इकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है, तो ये सब एग्जांपल में भी आएगा और आपका चेन के रूप में भी आ सकता है कि कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन वी कम टू नेक्स्ट चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है एंड इट्स कंजर्वेशन, इट्स ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सिलेबस में, इस कोर्स में आपका सबसे मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट वो है पार्ट है, तो जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के कारण क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको मतलब वो करना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे आर्टिकल सेक्शन शेड्यूल ये सब में कहाँ पर ये सबको मेंशन किया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, देख लेंगे, आपको ये सब प्रोवाइड किया गया है। और इसमें आपको आती है डेफिनेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आएगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, हमारे इंडिया का कितने बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, इंडिया को कितने उसमें बांटा गया है, वो सब आपको बताया गया है, वो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे के उसको वो करेंगे। और इसमें आपका सोशल, एथिकल, एस्थेटिकल ये सब वैल्यू जो है वो सब आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। और एक तरह से आप देखिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया या कंजर्वेशन की बात अगर करते हैं, तो ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर क्या इसका पोजीशन है, नेशनल लेवल पर क्या है, हमारे स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर क्या इनका वो है, तो उसको बताया गया था आपको कि कितने हमारे नेशनल पार्क है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व से, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब का बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। इंडिया को क्यों मेगा डाइवर्सिटी नेशन कहा जाता है, इसमें बहुत तरह के आपको एनवायरमेंटल कंडीशन से, आपको ट्रॉपिकल से लेकर मेडिटेरेनियन से लेकर टेम्परेट रीजन, ये सब टाइप के मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बताए थे। तो उसमें देखिएगा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितना है, कहाँ कहाँ पर है, उनकी क्या खासियत होती है, हॉटस्पॉट की क्राइटेरिया क्या होती है, तो ये सब आप ध्यान दे लीजिएगा, उसमें उसमें आपको ये सब इम्पोर्टेंट आएगा, आपको एक दो एग्जांपल के साथ किया जाएगा, जैसे आपको हम लोग इसमें बताए थे इंडो बर्मा के बारे में, वहाँ पर आपको पिचर प्लांट होता है, नेपेंथिस खासियाना, एपेंडिजम क्या होती है, और सबसे बड़ी बात आती है कि आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की हम लोग बात करेंगे, तो थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी को, क्या क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, हैबिटेट लॉस का कारण होता है, पोचिंग की बात होती है ना, तो उसमें आप थोड़ा सा देख दें, मैन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम क्या होता है, ये IUCN क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये सब के बारे में आपको रिवाइज कर लेना होगा, ये सारी चीज़ आपको बताए गए हैं, उनको फिर से एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्लियर रहिएगा उसमें। और कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे, तो उसमें इन सीटू और एक्स सीटू की बात कर रहे थे, इन सीटू में आपको पूरा उन्होंने बताया था बायोस्फीयर रिजर्व्स है अपने इंडिया में कितने हैं,
और अंडरस्टैंड

नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ये सब बहुत तरह के क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट्स के साथ हम लोगों ने लिंक किया हुआ था। और बिहार में हम तो बिहार का रेफरेंस से आपको जानना चाहिए कितने नेशनल पार्क है, कितने सेंचुरीज है, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एक बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब कॉन्सेप्ट जो होता है तो उसमें कोर रीजन, पेरिफेरल रीजन होता है, बफर जोन होते हैं, वो उनका क्या खासियत होता है क्या नहीं, और कितने नंबर्स में हैं वर्ल्ड में या फिर आप इंडिया में कितने नंबर में बायोस्फीयर रिजर्व से, सबसे लार्जेस्ट कौन था, ओल्डेस्ट कौन था, कौन कहाँ पर है, कौन किस चीज़ के लिए मशहूर है, कौन सा स्पीशीज़ वहाँ पर मिलता है, प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, तो ये सब आपको नोट्स में दिया गया, स्लाइड्स में भी आपको पढ़ाए हुए हैं दिए गए हैं, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से ये कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आप आजकल पोल्यूशन का बहुत मतलब वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, मेराइन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इनके रेफरेंस से आपको इनका कॉज क्या है, इनका इफेक्ट क्या होता है, इनका इम्पैक्ट कितना है, कितने लेवल तक ये जाकर हैजार्डस वो इफेक्ट डालते हैं, और इनका कंट्रोल मेजर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हर एक पोल्यूशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। न्यूक्लियर हैजर्ड्स के बारे में मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियर हैजर्ड्स के बारे में कैसे उनको मैनेजमेंट किया जा सकता है, न्यूक्लियर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से सोर्स होता है न्यूक्लियर लीकेज का, और वो सब के बारे में करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट और ये सब के बारे में बताया गया था। अर्बन पॉपुलेशन जो है, अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, जैसे शहरीकरण ज़्यादा हो जाती है तो कैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ने का चांसेस होता है, उनको कैसे रोकथाम किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको बताया गया है। और इंडिविजुअल्स के क्या रोल होता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन में, तो इसके और इसके रिलेटेड जो है आपका बहुत सारे एक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल एक्ट्स है, पोल्यूशन एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। एक्ट्स का तो एक अलग से आपको मैंने एक चैप्टर और नोट्स भी दिया हुआ था जिसमें पूरा आपको एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स जितने भी हैं उनके बारे में आपको जानना है कि वो कब इस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ पर हुए थे, किससे रिलेटेड है वो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन शेड्यूल ये सब में कहीं मेंशन है तो उनका नंबर याद कर लीजिएगा, आप फिल इन द ब्लैंक्स और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। सोशल इश्यूज और एनवायरमेंटल जो होते हैं उनका इंपॉर्टेंट बहुत अपना एक खास है क्योंकि आजकल एनवायरमेंटल चीज़ों को सोशल इश्यूज़ के साथ ज़्यादा जोड़ा जाता है, तो उसमें आपको करना होगा ये अनसस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है, अपना अर्बन का प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाने पर, वाटर कंजर्वेशन क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, शहरीकरण के दौरान में कैसे उसको हम लोग करते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल एथिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब शॉर्ट नोट्स में आएंगे। इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सब ऑब्जेक्टिव में भी आपके आ सकते हैं, जिसके सोर्स आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों होता है, कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन से गैसेज रिलेटेड, कौन कहाँ से क्या इसका प्रॉब्लम है, वो सारे चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से आप मतलब कर सकते हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के बारे में भी आपको जानना होगा, न्यूक्लियर एक्सीडेंट में दो चार एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया हुआ था आपका चेर्नोबिल वगैरह का, हिरोशिमा का, तो उनके बारे में जानना है, उनका डेट्स याद रखिएगा किस जगह पर हुआ था, वो सब के बारे में आपको जानना होगा। प्लस ये जैसे मैंने एक्ट के बारे में तो सब आपको बता ही दिया, आपका एक और इम्पोर्टेंट इस पर ये है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट का, जो आपका सेवन्थ यूनिट है, तो इसमें आपको जैसे पॉपुलेशन इज द कॉज फॉर एवरी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है उससे रिलेटेड कैसे हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी पॉपुलेशन हो, कम जनसंख्या हो, ह्यूमन राइट्स की बात उसमें आती है, फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम की बात आती है, आपकी बीमारी जो होती है वो फैलने की सोसाइटी में होती है उनको कैसे रोक दिया जाए, चाइल्ड वेलफेयर की बात आती है, तो ये सारे रिलेटेड भी आपके एनवायरमेंट से है जुड़े हुए, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जो आपको क्लास में वो किया गया है। और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका तो आपको थोरो वो स्टडी कराया गया है जिसमें आपको नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बताया गया था, जिसमें आपका फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड सबके बारे में एक एक करके बताया गया है। अगर कॉमन क्वेश्चन आता है एनवायरनमेंट के लिए तो आपने आपको जैसे बताया गया था कि उसमें बिफोर डिजास्टर्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या करते हैं, आफ्टर डिजास्टर क्या करते हैं, वो चार पाँच टॉपिक आपका उसमें बताया गया था, प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, मिटिगेशन कैसे की जाती है, रिस्पॉन्स कैसे होता है, और रिहेबिलिटेशन और ये सब के बारे में आपको डिटेल में ये सब बताया गया है, उनको लेकर आपने इसमें अच्छे से वो करना है। प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट की बात जब आती है तो एक एक डिजास्टर्स का अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है,
और अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं उनके बारे में, ड्रिल्स होती है मॉक ड्रिल्स, उसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से बताएंगे। एंड रिसेंटली अगर कहीं पर डिजास्टर्स हुए हुए होंगे, मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो उससे संबंधित आपके क्वेश्चन इसे आ सकते हैं, इसको आपके कोर्स के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछा।

0: जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको करिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा मल्टीपल चॉइस और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आएंगे, और दूसरे में आपका शॉर्ट नोट्स होगा। शॉर्ट नोट्स आपका टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्वेश्चन जितना मार्क्स का होता है उतना ही का करना चाहिए। और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाकर टॉपिक वाइज उसको डिस्क्राइब करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट, उसमें कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सब पढ़ाया गया, आप उसको अच्छे से करिए। थैंक यू, चलिए ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच सर, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो स्टूडेंट्स कल एग्जाम दीजिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए।

और धान के सबौर द्वीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड

प्रेशर नियमित जांचते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं. बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा. भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है. भिंडी जो है टमाटर बैंगन मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है. वर्ष में हम लोग इसको दो बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार तीन बार भी उगा सकते हैं. और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है. साथ साथ में जो है कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी ये भी बहुत सारा पाया जाता है. और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है. और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है. और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं. गर्मियों में भी उगा सकते हैं तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है. और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है. तो ये सारे किस्म हरे रंग की है. साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा. ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है.
0: मैम बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
1: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए. तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं और उसके बाद में दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं. और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पे जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है. और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है.
0: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
1: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है. और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है. और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4

0: किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर लगता रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पे एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
0: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए। और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है। और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं बुआई करेंगे। और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज़ में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग

0: जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तोड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है। और जब फसल में तोड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं और अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहीं अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीकू क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और ख़ास तौर से महिलाओं को ज़रूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है, और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज़्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है, पदार्थ है, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जिसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती है और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी, बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं, या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं, या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्ग को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है। और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है, और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा। इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुनझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया।

लिया है। लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है, तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद, या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो, या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं, तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे, और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं, तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज 5,000 कदम चल रही हैं, उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध, यानी कि दही, पनीर, या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद है वो आप खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं। और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए, और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही ले। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही। इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें, और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जाँच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए, और साथ ही बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर ज़रूरत आपको लगे तो। दोस्तों, महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे, और अगर समय पर इसकी जांच कर ली जाए और जांच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है, और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐंठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है, या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जांच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें, और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल, और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: Yo, what's up?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और हर रोज की तरह आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती से जुड़ी बातें। और अभी फिलहाल यहां इस समय परवल जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। नए नए अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें परवल भी शामिल हो जाता है गर्मी के मौसम में। अब यहां पर खेती की बात कर रहे हैं तो इस समय हमारे जो किसान भाई हैं परवल की खेती करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे खेती परवल की और क्या क्या सावधानियां बरतनी है हमारे किसान भाइयों को इसकी खेती के दौरान, और भी बहुत सारी बातें परवल की खेती से जुड़ी, इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता कुमारी मैडम। मैं आप सभी को बता दूं ये वैज्ञानिक हैं केवीके सबौर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: थैंक यू अनु।
6: मैडम सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं और किसान भाइयों को परवल की खासियत के बारे में बता दीजिए कि इसमें क्या क्या गुण हैं।
7: परवल एक कद्वरीय सब्जी का महत्वपूर्ण सदस्य है और परवल के बारे में, परवल की बहुत सारी चीज़ें अपने घरों में बनती हैं
6: जी,
7: जैसे अचार है, सब्जी है, चटनी है, इसका लोग कम तेल मसाला में भी अलग अलग उत्पाद बना करके खाना पसंद करते हैं। खास बात यह है भागलपुर के क्षेत्र के लिए कि भागलपुर में लगभग ये जितना भी दियरा का क्षेत्र है उसका मुख्य फसल परवल है और यहाँ हजारों एकड़ में परवल की खेती होती है। किसान के लिए आने वाले समय में कद्दूवरीय सब्जी का एक महत्वपूर्ण उत्पाद की तरह परवल आता है और यह नाथनगर, सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर, कहलगांव, पीरपैंती जैसे ब्लॉकों प्रखंडों में परवल की खेती बहुत बड़े भूभाग में की जाती है और इसमें किसान जो लगाते हैं इसको जब अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में पानी निकल जाता है बाढ़ का, उसके बाद लोग परवल लगाना प्रारंभ करते हैं और परवल लगाते हैं। परवल के साथ साथ वो करेले की बीज को भी डाल देते हैं, करेले की बीज को डाल देते हैं तो परवल समय के आने के साथ साथ परवल अपना बढ़वार में आता है। लेकिन उससे पहले हमारे किसान हैं जो करेले को एक इंटरक्रॉप की तरह लेकर के उत्पाद ले लेते हैं और करेला का फसल को बेच लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो नीचे में परवल लगाते हैं और ऊपर की तरफ मिर्च लगाते हैं, जैसे वो मिर्च का भी उत्पादन अभी परवल के साथ साथ ले रहे हैं
6: जी। मैडम अभी क्षेत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार की क्षेत्र होनी चाहिए जहाँ परवल की खेती हमारे किसान भाई कर पाएँ, या फिर जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु कैसा होना चाहिए इसकी खेती के लिए।
7: परवल मुख्यतः सालों भर भी आप रख सकते हैं अगर है, लेकिन चूंकि यह दीरा क्षेत्र में लगता है तो दीरा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित होता
6: जी,
7: है
6: जी,
7: और
6: जी।
7: जुलाई अगस्त में जब बाढ़ आता है

तो किसानों का स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है फलन पे रहता है, फलन के एकदम उत्कर्ष चरम पे रहता है, उस समय हमारे किसान भाइयों का फसल बह जाता है। तो अब आने वाले दिनों में देखा गया है कि बहुत सारा ऐसा गांव है, आप जैसे खैरपुर है, लत्तीपुर है, इन सब गांव में परवल जो है ऊपरी भूमि में भी किसान अब लगाना प्रारंभ कर दिए हैं, जिससे

0: होती है, और चूंकि परवल जब जमीन पर चलता है तो जहां जहां गांठ होता है वहां वहां से परवल का जड़ें आ जाती हैं और वो ज़्यादा तेजी से फैलाव दीरा वाले क्षेत्र में ही होता है। लेकिन ऐसी ये एक भ्रम के तौर पर ही है, क्योंकि जब ये ऊपरी भूमि में जाने लगे और हमारे किसान इसको अलान पर देने लगे तो इस तरह की समस्याओं का कोई या इस तरह के किसी भी प्रकार का इनपुट वहाँ नहीं रहता है, फिर भी परवल की खेती बहुत अच्छे तरीके से हो रही है
1: जी। तो यहाँ पर अभी मैडम ने बताया कि परवल आप किस क्षेत्र में उगा सकते हैं, और एक भ्रांति के बारे में भी मैडम ने बताया कि लोग सोचते हैं कि ये बालू वाली जगह पर ही इसका जो है उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अभी मैडम ने बताया कि किसान भाई अब जो है ऊपर ज़मीन पर भी इसकी खेती कर रहे हैं। तो अब जो खेती हो रही है मैडम परवल की, उसमें बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है, किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं और सुधार कहाँ पर करनी है। तो कुछ ऐसी बातों के बारे में बताइए जब हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं तो सावधानियां उनको बरतनी चाहिए।
0: जी, परवल में सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को सावधानी यह लेनी चाहिए कि किस परवल में नर और मादा अलग अलग पौधों में होता है
1: जी।
0: तो वो नर और मादा का सही अनुपात को मेंटेन करें, सही अनुपात में लगाएं, और अनुशंसित जो है नर मादा का वो 5 नर मादा पे 1 नर लगाना चाहिए, मतलब कि 10:2 के इस अनुपात में किसानों को लगाना चाहिए। लेकिन किसान भाई से जब बहुत सारे किसानों से जब बात मेरी हुई तो किसानों ने अपना जो बताया कि जब हम 5 और 1 पर देते हैं तो नर है जो बहुत तेजी से फैलता है और मादा को ये कर देता है, ढकने का प्रयास करने लगता है। उस केस में किसानों ने अपना 1:9 का रेशियो अनुपात में लगाया, 1 नर और 9 मादा, तो उनको उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। पहला सावधानी ये है। दूसरा सावधानी क्या होता है कि नर और मादा का अनुपात सही मायने में नहीं रखा जाता है तो परागण की क्रिया सही सही नहीं होती है, और जब परागण की क्रिया सही नहीं होती है तो फल है जो सही अनुपात में लगता नहीं है, जो उनको एक उत्पादन प्राप्त होना चाहिए हमारे किसान भाइयों को उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है कि फल में परागण हो भी जाता है और सही परागण तरीके से नहीं हो पाता है तो छोटे छोटे फल सड़ करके गिरना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे किसान को ही कहीं ना कहीं हानि होती है। किसान इस तरह का अनुपात को पहला मेंटेन करें। दूसरा चीज़ है कि परवल के बारे में कि परवल में सफ़ेद फूल होता है। सफ़ेद फूल होता है तो होता क्या है कि परवल में फल मक्खी की भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं
1: जी।
0: तो किसान को लाइट ट्रैप पर जाना चाहिए, किसान को परवल में लाइट ट्रैप जरूर लगाएं जिससे फल मक्खी से उनको निदान प्राप्त हो जाता है
1: जी।
0: तीसरी समस्या आती है कि चूंकि यह दीरा में ज्यादा लगाया जाता है और दीरा में गंगा जी की मिट्टी में निमाटोड का बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है, जड़ों में गांठ हो जाती है परवल में, और जड़ में गांठ होने जाने के कारण जो पोषक तत्व है सारा ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, और जब पौधा फलन में आता है तो पौधे का जो मांग होता है वो बढ़ जाता है, और उस स्थिति में क्या होता है कि पूरा का पूरा लत सूख जाता है फलन पर आने वाली अवस्था में। तो किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें नीमयुक्त खली का उपयोग करें, नीमयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करें, और साथ साथ गेंदा को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, सरसों को अंतर्वर्ती फसल के तौर पर परवल में लगाएं, जो कि प्राकृतिक रूप से निमाटोड का नियंत्रण हो जाता है
1: जी। मैडम, अभी बाजार में जब हम परवल खरीदने जाते हैं तो 2 किस्म के परवल हमें देखने को मिलते हैं, एक डार्क ग्रीन और एक हल्का ग्रीन, और एक में वाइट धारीदार भी रहता है, तो इसमें क्या अंतर है, क्या बीज से ये अंतर उत्पन्न होती है या फिर क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: परवल की कई प्रजातियां हमारे यहाँ लोकल में लगती हैं, जैसे स्वर्ण रेखा लगती है, स्वर्ण रेखा।
1: तो कौन सी किस्म हमारे क्षेत्र के लिए बहुत मतलब किसान भाइयों को बीज जो है वो चयन करना है?
0: हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक, जो कि बिना धारी वाला होता है, थोड़ा चमकीला होता है, हल्के रंग का होता है,
1: इसको बहुत ज्यादा
0: हाँ करता है। स्वर्ण रेखा काफी दिनों से हमारे यहाँ लग रहा है। बहुत सारी लोकल प्रजातियां हैं, जैसे निमिया है, डंडाली है, ये सब भी किसान लगा रहे हैं। और मुख्यतः किसान परवल का जो लत है बाढ़ में बह जाने के कारण बंगाल से ला रहे हैं, गया से ला रहे हैं, समस्तीपुर से ला रहे हैं, तो किसान अपने द्वारा बहुत सारे ऊपरी भूमि में भी रखे हुए हैं, तो किसान लोकल भी है इसकी आपूर्ति करना

0: प्रारंभ करती है।
1: जी, तो किसान भाइयों, अभी आप जान रहे थे परवल की खेती आपको कैसी करनी चाहिए और क्या कुछ सावधानियां हैं जो मैडम ने बताई, वो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इससे आपको हानि बिल्कुल भी नहीं होगी और मुनाफा, आपके उत्पादन में अधिक मुनाफा मिलेगा आपको। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे। फ्रिक्वेंसी यही है, याद रखिए 90.8 MHz FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और मैं हूँ आरजे अनु। आप सभी का स्वागत है हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम में और आज एक खास विषय आप सभी के सामने फिर से पेश है। और दोस्तों, अगर बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है हमारे किसान भाइयों को इसे उगाने में। जितना पौष्टिक ये होता है, उतने ही मेहनत से इसे उगाया भी जाता है। लेकिन अब कुछ रोग और कुछ व्याधि इसमें लग जाएँ तो सारे के सारे मेहनत वहीं के वहीं धरे पड़ जाते हैं। तो आज हम कुछ रोग के बारे में जानेंगे, जिससे कि हमारे किसान भाई पहले से सतर्क रहें, रोग को पहचान सकें, और अगर वो रोग लग जाते हैं तो उन्हें उनकी रोकथाम वो कैसे कर सकते हैं। तो आज अलग अलग जो विभिन्न प्रकार की जो सब्जी हैं हमारे, जैसे कि मिर्च की बात करें हम, कद्दू की बात कर लें, भिंडी की बात करें, लोबिया या बोरा, साथ ही परवल की बात करें, तो ये जो सब्जी हैं वो प्रमुख तौर पर गर्मी में और साथ ही वर्षा ऋतु में आपको मिल जाएंगे खाने को और बाज़ार में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम इसी के कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय है गर्मी और वर्षा ऋतु में सब्जियों में होने वाले प्रमुख बीमारियां और साथ ही उनका हम प्रबंधन कैसे करें। ये तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर मोहम्मद अंसार। मैं आपको बता दूंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा रोग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। मिर्च से स्टार्ट करते हैं। मिर्च जो है हर मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, हर मौसम में हम इसे खाते हैं। मिर्च में लगने वाले जो रोग हैं, आप उनके नाम बताएं और साथ ही हम उनसे अपने मिर्च के इस पौधों को कैसे बचाएं।

0: सकते हैं उसकी जानकारी बताएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिर्च जो है एक बहुत प्रमुख फसल जो है सब्जी मानी जाती है, जिसका हम लोग बहुत सारी सब्जियों में इसको यूज करते हैं, हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे मुख्यतः गर्मी में और वर्षा ऋतु में सब्जी मुख्य तरीके से उगाई जाती है। इसमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, खास करके जो ये हमारी गर्मी में है और जो बारिश जो शुरू हो जाती है इसमें बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि जब पौधा छोटे अवस्था में ही होता है, जुवेनाइल स्टेज में ही होता है, तो उसी में ही बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। तो किसान भाई जब इसका मिर्च का बीज डालते हैं खेतों में या नर्सरी तैयार करते हैं, उस टाइम इसमें पौधों में गलन लग शुरू लगता है, जिससे शुरू में ही पौधे गल जाते हैं। तो वो क्या होता है कि हमको उसमें पौधे मिल नहीं पाते, जिससे हम लोग उसको मुख्य खेत में रोपाई या ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को ये बात देखने की ज़रूरत है कि जब हम लोग बीज डालें तो ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पर जल जमाव ना हो, चूँकि नमी की मात्रा ज़्यादा होता है खेत में जब, तो उसी वक्त में इसमें जड़ों में गलन इसका शुरू हो जाता है, जिससे ये पौधे धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग इसको इसका जो नर्सरी तैयार करें, जब बीज डालें, तो ऐसे जगह पे हम लोग नर्सरी का की जगह का चुनाव करें जहाँ पे पानी ना भरता हो, जल जमाव की समस्या ना हो, और जो भी हम लोग बेड तैयार करेंगे जिसमें हम लोग बीज डालते हैं उसको मिट्टी से 15 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर उठा के हम लोग बेड बनाएं, उसके अंदर बीज इसमें डालें, तो हम लोगों का काफ़ी हद तक इसमें रोग से हम लोग इसको बचा लेते हैं। दूसरी एक जो बड़ी समस्या मिर्च में आती है, जो अभी हम लोग देखने को मिल रहा है, जो बारिश भी शुरू हो गई है, इसमें फलों का सड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है। फल सड़ता है और दूसरा इसकी जो टहनियाँ होती हैं, तने होती हैं, उसमें उसका सूखना शुरू हो जाता है, उस जिसको हम लोग डैम्पिंग, ये इसको हम लोग इसको एंथ्रेक्नोज डिजीज़ बोलते हैं, हम लोग एंथ्रेक्नोज इसको श्यामरण भी हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें दो तरीके के लक्षण दिखते हैं, एक तो ये फलों का सड़ना और दूसरा तनों का सूखना का। तो हम लोग पहले जब फलों की बात करते हैं, तो फल क्या होता है, फल वो सड़ना शुरू होते हैं जो थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, जिनका पकने की अवस्था में आ जाते हैं, उनमें ज़्यादातर फलों में ये सड़न होती है और फल काले होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। दूसरी समस्या जो इसमें दिखती है, दूसरा जो हम लोग देखते हैं खेत के अंदर, उसमें टहनियाँ इसमें काली होने लगती हैं, ऊपर से सूख करके नीचे की तरफ बढ़ती हैं और देखते ही देखते पूरा पौधा सूख के ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर एक प्रमुख बात यह है कि जो ये बीमारी जो लगी हुई है मिर्च के पौधे पर, ये जो मिट्टी में चले जाते हैं, फल टूट के मिट्टी में गिर जाते हैं, तो ये जो फफूंद है ये मिट्टी में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। जब हम दूसरी बार इसमें मिर्च की फसल दूसरे सीज़न में उगाते हैं तो उसमें वो फिर बीमारी आनी शुरू हो जाती है, तो मृदा जनित हो जाती है। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसमें फफूंदनाशी का हम लोग स्प्रे करेंगे। तो पहला हम लोग जो छिड़काव करेंगे, मैंकोजेब दवा मार्केट में आती है, हम लोग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। और दूसरा जो हम लोग दवा का छिड़काव करेंगे, एक डाइफेनोकोनाजोल करके एक दवा मार्केट में आती है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है, डाइफेनाकोनाजोल है, वो मार्केट में अवेलेबल है, उसको हम लोग ले करके उसका 1 ml 2 लीटर पानी में उसका हम लोग घोल बनाएंगे और कम से कम 7 से 8 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव हम लोग करेंगे। तो इससे निश्चित तौर पे हम लोग देखेंगे कि बीमारी की जो समस्या लगती है वो धीरे धीरे कम होगी। और हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर कोई पौधा पूरी तरीके से सूख गया है तो उसको हम लोगों को खेत से फौरन निकाल के फेंक देना है, क्योंकि वो मिट्टी में जाएगा तो उससे फिर वो आने वाले जब समय में जब हम दोबारा मिर्च लगाएंगे तो उसमें बीमारी फिर से उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी एक समस्या जो हम लोग देखते हैं मिर्च के अंदर, वो पौधों का अचानक सूख जाना, पौधों में फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, फल अच्छी तरीके से तुड़ाई हो रही है, अचानक हम लोग देखते हैं कि पौधा ही सूख गया। तो उसमें हम लोगों का क्या होता है कि इसमें लक्षण जो दिखते हैं हरे भरे पौधों में, कि जो पत्तियां होती हैं वो लटक जाती हैं, जो दिन में जब गर्मी होती है तो उसमें पत्तियां नीचे लटकी हुई होती हैं, और जब रात का समय होता है, शाम होती है, फिर पत्ती वो फिर से वो स्वस्थ दिखने लगती हैं, फिर जब दिन आता है दूसरे दिन तो फिर वो पत्ती सूख जाती है। तो ये 2-3 दिन इस तरीके से चलता है, 4 दिन चलता है, फिर वो फाइनली पौधा वो जो है सूख ही जाता है। तो इससे उसमें क्या होता है, उसके जो वैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, फैल जाते हैं पूरी तरीके से, जिससे जो पानी जो पौधा लेता है ज़मीन के अंदर से वो पानी नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। तो ये जो बैक्टीरियल विल्ट जो हम लोग जीवाणु की वजह से जो सूखना पौधों के अंदर होता है, एक बहुत बड़ी मिर्च की समस्या है। तो इसको किसान भाई सबसे पहले ध्यान दें कि अगर जिस खेत में ये बीमारी अगर लगातार आ रही है, आप लोग मिर्च की फसल लगा रहे हैं, तो कम से कम 3 वर्षों तक हम लोगों को इसके अंदर फसल चक्र का अपनाएं, कोई भी जो मिर्च वर्ग के जो फसल है उसको हम लोग नहीं लें उस खेत के अंदर।

अगर लेते हैं तो ये समस्या बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई किसान भाई इसमें मिर्च लगा रहा है खेत में, तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, जब भी हम लोग मिर्च लगाएंगे तो हम लोग इसको दवा में, इसको ट्रीटमेंट इसका देंगे, इसके जड़ों को हम लोग दवा में इसको डुबाएंगे फिर खेत में लगाएंगे। तो एक दवा मार्केट में के साइक्लिन करके आती है जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, उसको हम लोग एक ग्राम दवा जो है 20 लीटर पानी के करीब से घोल उसको हम लोग बना लेंगे और उसमें जड़ों को थोड़ी देर के लिए डुबा करके फिर हम लोग मुख्य खेत में उसको लगाएंगे, तो इससे जो है हमारी बीमारी की जो लगने की समस्या है वो थोड़ा कम हो जाएगी। अगर खेत में पौधा लगा हुआ है, फलन हो रही है और अब पौधा सूख गया, तब तो हमको फौरन इसमें ऐसी दवा डालना होगा जो खेत में खड़े हुए फसल में उसमें दवा डाली होगी। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे जो दवा का छिड़काव करेंगे इसके जड़ों में देंगे ताकि उसके वेस्कुलर सिस्टम में दवा जाए और जहां वो जीवाणु को मारे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक दवा आती है मार्केट में मुख्य तरीके से मिलती है, तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लेंगे 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बना करके पौधों की जो जड़ों हैं जड़ों में उसको दवा डालना है ताकि वो जड़ से वो दवा अंदर जाए पौधों के अंदर और फिर वहाँ अच्छे तरीके से काम करे। अगर हम लोग इस जो कोई पौधा सूख रहा है और अगर हम लोग दवा पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो हो सकता है कि वो दवा प्रभावी ना हो, तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना है। और जो एक मिर्च में हम लोग यहाँ देखते हैं बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है जिसके अंदर पत्तियाँ ऐंठ जाती हैं, उसको हम लोग यहाँ के भाषा में कुकड़ी भी बोलते हैं, मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में हम लोग उसको कर्लिंग बोलते हैं। तो पत्ती उसमें क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो वो एक विषाणु जनित बीमारी है जिसको हम लोग लीफ कल वायरस की वजह से बोलते हैं, वो बीमारी आती है। तो ये जो बीमारी होती है ये मुख्य तरीके से जो है एक कीट होता है जिसको हम लोग सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, वो सफ़ेद मक्खी से वो बीमारी एक पौधों से दूसरे पौधों में फैलती है। तो वो बीमारी ग्रसित पौधे से रस चूस करके वो स्वस्थ में जब भी जाएगी रस वहाँ से अपना खाना लेने के लिए, तो वो विषाणु वहाँ पे भी चला जाएगा। तो इस तरीके से देखते देखते पूरे खेत में वो कर्लिंग की समस्या आ जाती है जो पत्ती ऊपर की तरफ ऐंठ जाती है। तो इस तरीके से अगर इसमें पत्ती का ऐंठना ही नहीं होता है, पत्ती भी ऐंठती है, पौधा भी छोटा रह जाता है, पौधा झाड़ी नुमा भी हो जाता है और इसके अंदर अगर फल फूल लगते भी हैं तो वो छोटे और गठीले तरीके से हो जाते हैं जिनका कोई मार्केट में उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। तो इसका हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से कोई बीमारी दिखती है तो अगर पौधे अगर खेत में अगर इस तरीके से अगर कोई लक्षण आपको दिख रहा है तो फौरन उस पौधे को उखाड़ के नष्ट कर देना है और इसको हम लोगों को फौरन खेत में इसको दवा का छिड़काव करना है जो सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए दवा दी जाती है। तो इसके लिए हम लोगों को इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का मार्केट में खूब अवेलेबल है, इसको हम लोग 1 ml प्रति 3 लीटर के हिसाब से, या दूसरी दवा थायामिथक्साम करके आती है 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से, इसका हम लोग 7 से 8 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सफ़ेद मक्खी है उनका खेतों में जो लगे हुए हैं उनको हम लोग नियंत्रित करेंगे, जिससे बीमारी जिससे फैलती है उसको हम लोग कम कर देंगे। इसको रोकने का और भी अच्छा तरीका है कि हम लोग नर्सरी अवस्था में ही इसको रोकना शुरू करें, क्योंकि नर्सरी में जब हम लोग बीज डालते हैं तो किसान भाई खुले में लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पत्ती 2-3 पत्तियाँ निकल आती हैं तो उसमें सफ़ेद मक्खी लगनी शुरू हो जाती है, तो वहीं से वो बीमारी वायरस जो है फैलना शुरू हो जाता है नर्सरी की अवस्था से ही। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी नर्सरी लगाएं तो उसको हम लोग बारीक एक जाली आती है उस जाली से हम लोगों को नर्सरी को ढकना है। तो उससे 2 चीज़ें होंगी कि एक तो बीमारी जो वायरस फैलाने वाले कीड़े हैं वो नहीं उसके अंदर जाएंगे नर्सरी के अंदर, और दूसरा और भी जो पत्ती को चबाने वाले कीट हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो नर्सरी आपने तैयार करी है उसके पौधे जो होंगे वो स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से होंगे, और जब वो मुख्य खेत में जाएंगे रुपाई के लिए तो उसमें भी बीमारी कम आएगी। यदि आती है तो हम लोग इसका जो दवा अभी हमने बताया कि सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए उसका छिड़काव करेंगे। दूसरी बात, एक किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी हम लोग मिर्च की फसल लगाते हैं तो हम लोग ध्यान दें कि अपने खेत के चारों तरफ कम से कम 2 लाइन बॉर्डर के तौर पे उसमें हम लोग मक्का या ज्वार उगाएं। तो उससे क्या होगा, जो बॉर्डर वाली जो फसल हम लोग लगाते हैं उससे क्या होता है कि सफेद मक्खी डायरेक्ट खेत में नहीं घुसनी है, वो उनका एक प्रोटेक्शन हो जाता है किनारे किनारे मेड़ों पर। तो 2 लाइन हम लोग मक्के की अवश्य लगाएं उसके किनारे किनारे खेत के मेड़ों पर, जिससे उसमें मधुमक्खी ये वही सफेद मक्खी का उसके अंदर प्रवेश उसके अंदर हम लोग उसको बाधित कर सकें। दूसरा, एक इसमें जो कर्लिंग की समस्या आती है, किसान भाई देखते हैं कि कर्लिंग 2 तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तो जो कुकड़ी होती है ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं जिसको अभी हमने बताया जो विषाणु की वजह से होती है, एक दूसरी समस्या होती है पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो विषाणु नहीं है वो एक माइट होता है छोटा कीड़ा।

0: होता है, आंख से नहीं दिखता है, वो पत्ती के निचली सतह पे लग करके उसका रस चूसता है, जिससे पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, नीचे की तरह की से मुड़ती है और थोड़ी लंबी हो जाती है। तो माइट है, उसके उस माइट को रोकने के लिए स्पायरोमेसिफेन करके दवा आती है। स्पायरोमेसिफेन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका घोल करके छिड़काव करें कम से कम 2 बार 7 से 8 दिन के अंतर पर, तो हम लोग इसको माइट को भी रोक देंगे। तो वो जो इस तरह से अगर पत्ती है तो वो ठीक हो जाएंगी वो।
1: तो ये तो बात हो गई है मिर्च की, मिर्च में लगने वाले रोगों के नाम बताएं डॉक्टर साहब ने आपको, और साथ ही इसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। आजकल देखा जाए तो कद्दू का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई कर रहे हैं सर, तो कद्दू में कौन कौन से रोग हैं कद्दू के पौधे में लग सकते हैं और उनका बचाव कैसे कर सकते हैं हम?
0: जी, कद्दू एक मुख्य फसल है जो गर्मी में और वर्षा ऋतु में दोनों में होती हैं। तो इसको इसमें मुख्यतः तीन बीमारियां आती हैं जिसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। किसान भाई इसमें इसको आप खेत में देखते भी होंगे। एक तो होता है कि पौधा पूरी तरीके से ही सूख जाता है अचानक, तो हम लोगों को देखना है कि उनके जड़ के पास में कोई कीट तो नहीं लगा हुआ है या कोई बीमारी लगी इसको जड़ को, हम लोग उसको देखना है उसको जा करके। तो अगर हम लोगों को जड़ों में अगर देखता है कि अगर कोई काले रंग का कोई घेर लेके घेरा हुआ या कवर कर रखा है तने को, तो हम लोग समझते हैं कि उसके अंदर कोई फफूंद लगा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो अभी हमने बताया है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या कार्बनडाजिम दवा आती है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसको हम लोगों को जड़ों में उसका डालना है उस दवा को, वहाँ ड्रेंचिंग करना है उस दवा को। और अगर हम लोगों को मैं उस टाइम अगर पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो हो सकता है ये बहुत प्रभावी ना हो, क्योंकि जड़ों से सूखना शुरू होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये है समझना है कि जो जड़ में फफूंद लगा है उसको हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। तो हम ये 2 दवा का अगर छिड़काव करते हैं तो इससे पौधों का सूखना रुकेगा। जब हम लोग बीज लगाते हैं कद्दू का, तो सबसे पहले हम लोगों को वही देखने की ज़रूरत होती है, हम लोग ट्राइकोडर्मा का यूज करें। ट्राइकोडर्मा हम लोगों को जो है वर्मी कंपोस्ट जो हम लोगों के पास में ये जो मिलता है, हम लोग 100 किलो जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर 1 किलो के करीब हम लोग जो मार्केट का जो मिलता है फॉर्मुलेशन, उसको हम लोग मिला करके 14 से 15 दिन के लिए उसके छावदार स्थान पर रखते हैं ताकि उसके अंदर वो ट्राइकोडर्मा अच्छी तरीके से फैल जाए। जब हम लोग गड्ढा बनाते हैं कद्दू वर्गीय फसलों को लगाने के लिए, उसमें लौकी हो सकती है, परवल है, या आपका ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, तो इन सब में जो हम लोग लगाते हैं बीज लगाते हैं, तो हम लोग पहले गड्ढा बनाते हैं। उन गड्ढे में पहले हम लोग वर्मी कंपोस्ट, वो भी ट्राइकोडर्मा मिला हुआ, उसको हम लोग पहले गड्ढे के अंदर भर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ पे अगर कोई इस तरह से फफूंद होगा तो ट्राइकोडर्मा उनको रोकेगा, और जिससे हमारे जो पौधे निकलेंगे उसके अंदर उनमें जड़ों में इस तरह से कोई विकार या कोई बीमारी इस तरह से नहीं दिखेगी। तो अगर हम लोग ट्राइकोडर्मा वर्मी कंपोस्ट में मिले हुए वर्मी कंपोस्ट को अगर हम लोग डालते हैं गड्ढों में, तो उससे हम लोग बीमारी काफ़ी हद तक रोक लेते हैं। दूसरा, पत्तियों पर जो एक बीमारी लगती है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक पाउडर की परत सी जम जाती है, दो पाउडरी मिल्ड्यू हम लोग उसको बोलते हैं कि एक इस तरह से परत जमती है, तो देखते हैं कि पूरा पौधा ही सफ़ेद हो जाता है। जब हम लोगों की नमी बहुत ज़्यादा खेतों के अंदर होती है तो उस वक्त ये बीमारी ज़्यादा आती है खेतों के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी है कि जब भी कोई इस तरह से हम लोग बीमारी आने की संभावना जो बनी रहती है, तो हम लोग बीमारी आने से पहले ही मैंकोजेब जो 2 ग्राम या 2.5 ग्राम जो दवा है उसको प्रति लीटर के हिसाब से पहले से ही छिड़काव करके रखेंगे खेत में, जिससे उसके अंदर इस तरह से कोई बीमारी ना आए, पहले से ही हमने छिड़काव करके उसमें रखना है। दूसरी बात है जो हम लोग देखते हैं कि और भी फफूंदनाशी अगर मान लो बीमारी आ भी गई है खेत में, लग रही है बीमारी की बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हम लोग उसके अंदर जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं जो है वो उसको हम लोगों को डालना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम, क्योंकि उसमें फिर हम लोग कोई दवा डालेंगे तो काम नहीं करेगा इस तरीके से। तो हम लोग हेक्साकोनाजोल आता है, डेब्यूकोनाजोल आता है, तो या हेक्साकोनाजोल या ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का मिक्स्ड फॉर्मुलेशन आता है, मिला हुआ रहता है, तो इस तरह से जो दवा आती है इनका दवा हम लोग ले करके वो 1 ग्राम के हिसाब से इसको हम लोग लेके पत्तियों पर छिड़काव करना शुरू करेंगे, ताकि जो उस तरह से जो फफूंद ऊपर लगी है वो उसको हम लोग साथ समय ठीक कर सकें। अभी जो मिर्च ये कद्दू वर्गीय फसलों में जो हम लोगों को एक उभरती हुई समस्या जो दिख रही है वो विषाणु जनित बीमारियों की है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो लक्षण हम लोगों को मिर्च में टमाटर में जो दिखते थे, पत्तियों के अंदर पीला हो जाना या पत्तियों के ऊपर कुकड़ी हो जाना, पत्तियां ऐड जाती हैं, उस तरीके की समस्याएं अब हम लोगों को कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिल रही है। उसमें आपका खीरा, तरबूज, करेला, खीरा, इस सारे में जो है इस तरह की बीमारी दिखती है, जिसमें पत्तियां पीली हो जाती हैं, मोज़ेक तरीके का दिखने लगता है, उजला हो जाता है और पत्तियां ऐड जाती हैं। तो ये एक विषाणु जनित बीमारी है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को

0: ज़रूरी चीज़ करना यह है कि जो ये बीमारी वही मक्खी सफ़ेद मक्खी से फैलता है जो मिर्च के अंदर जो इस तरह से कुकड़ी या कर्लिंग उसके अंदर बीमारी को फैलाता है। तो हम लोगों को यहाँ देखने की ज़रूरत यह है कि अगर वो हम लोग ये बीमारी अक्सर लगनी कब शुरू होती है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई जो मिर्च उगाते हैं या टमाटर उगाते हैं, टमाटर मुख्यतः रबी की फसल है, जब टमाटर की फसल ख़त्म होने वाली होती है तो उसके बीच में कद्दू वर्गीय फसलों को लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारी कद्दू लगाते हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो उसके अंदर जब जो विषाणु इसमें लगता था टमाटर के अंदर, वो विषाणु वो कद्दू वर्गीय फसलों में चला जाता है, तो टमाटर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब कद्दू वहाँ पे जो पौधा तैयार होता है उनमें मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पौधों में उस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमको देखना है कि जब भी हम लोग इस तरीके से कोई बीज लगाएं किसी टमाटर के में या मिर्च में किसी फसल में, तो उसमें हम लोगों को टाइम से उसके अंदर दवा का छिड़काव करना ज़रूरी है, ताकि जो सफ़ेद मक्खी टमाटर या मिर्च में लगती हो वो इसके अंदर कद्दू वर्गीय फसलों में ना आने पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि जब पत्ती दो तीन पत्तियाँ निकल आएँ तब हम लोगों के अंदर इमिडाक्लोप्रिड या थायमेथोक्साम जो अभी हमने दवा बताया है इसका हम लोगों को छिड़काव करना शुरू कर देना है। 7 से 8 दिन के अंतर पर इस दवा को हमको छिड़कते रहना है। दूसरी चीज़ है, जैसे अभी हम लोग बताएं कि जो बॉर्डर वाले हैं, जो किसान जो मुख्य खेत है उसके किनारे किनारे पे हम लोग क्या करते हैं, दो लाइन मक्के की या ज्वार की हम लोग क्या करते हैं लगा देते हैं, तो उससे सफ़ेद मक्खी का जो खेत के अंदर जो प्रवेश होता है उसको हम लोग रोकते हैं। तो इससे हम लोग देखते हैं कि बीमारी को हम लोग बहुत हद तक कम कर देते हैं।
1: अगर गर्मियों की बात करें, हमारे साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें, तो भिंडी अभी बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है और लोग इसे खाते भी हैं, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, भिंडी उत्पादन के समय बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई रोगों के बारे में जानें और उनका बचाव कैसे करें, भिंडी के पौधे में जो रोग लगते हैं उनको पहचानें, तो कौन कौन से रोग इस पौधे में लग सकते हैं और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
0: जी जी बिल्कुल, जो भिंडी की फसल है हम लोग देखते हैं कि मार्च से ही आनी शुरू हो जाती है और अभी बरसात में भी खूब भिंडी मिलती है हम लोगों को। भिंडी हम लोग दो सीज़न में लगाते हैं, एक तो हम लोग गर्मी वाला लगाते हैं, एक वर्षा ऋतु वाला लगाते हैं, दोनों अलग अलग में लगाते हैं। तो जो गर्मी में हम लोग लगाते हैं, जो मार्च के करीब लगाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें जो भिंडी में है जो मुख्यतः जो बीमारी आती है वो मोज़ेक की समस्या है, जिसमें पत्ती एकदम गोल्डन की तरह मोज़ेक चमकती हुई दिखती है खेतों में, अगर हम लोग देखते हैं उसको हम लोग येलो वेन मोज़ेक बोलते हैं। तो उस तरह से खेत में एक चमकदार पत्ती जो पीली उजली सी दिखनी शुरू हो जाती है, तो भिंडी में एक सबसे बड़ी बीमारी यही हम लोगों को दिखती है खेतों के अंदर। अब आते हैं हम लोग भिंडी के सीज़न के ऊपर। जो भिंडी दो सीज़न में जो हम लोग लगाते हैं, एक तो हम लोगों का लगाने का समय है जब हम लोग ये मार्च में लगाते हैं, दूसरा एक वर्षा ऋतु में जब हम लोग जुलाई वगैरह में लगाते हैं जो अभी आ रहा समय। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो गर्मी में लगाते हैं मार्च के समय में, उसमें कम जो बीमारी होती है उसमें थोड़ा कम आती है, और जब हम लोग इधर देखते हैं जो बरसात में लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके की समस्या आती है जिसमें पत्ती पूरी तरीके से पीली हो जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जब भी किसान भाई लगाएं तो इसमें दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। जब भी हम लोग भिंडी लगाते हैं, जो चूँकि बीज जो मार्केट में मिलते हैं वो ऑलरेडी उनमें ट्रीटमेंट किया होता है, तो उस टाइम हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब पत्ती में जब पौधे बीज डालने के बाद में जब दो तीन पत्तियाँ निकल आती हैं तो उसी टाइम से हमको छिड़काव करना ज़रूरी होता है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि किसान भाई क्या करते हैं कि जब पौधों में बीमारियाँ आनी शुरू हो जाए, पौधा बड़ा हो गया, भिंडी निकलने फूल निकल रहे हैं, फल भी निकल ले रहे हैं, उस टाइम बीमारी आती है, तभी हम लोग दवा छिड़काव के बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जब भी भिंडी में दवा का छिड़काव हमको करना है तो जब पत्तियाँ दो तीन पत्ती निकल के आ जाए पौधे के बीज लगाने के बाद में या सोइंग करने के बाद में, तभी हमको उसी टाइम दवा डालना है, क्योंकि बहुत छोटे पौधे छोटे अवस्था में ही बीमारी आ जाती है और वो पौधा बड़ा बड़ा बड़ा होते होते उसके अंदर वो लक्षण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि शुरुआती अवस्था में ही उसमें दवा डालना ज़रूरी होता है। तब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर ध्यान देंगे कि सफ़ेद मक्खी जो गोल्डन मोज़ेक जो बीमारी आती है वो सफ़ेद मक्खी से फैलता है, ये भी उसी ग्रुप का ही वायरस है। तो हम लोगों को जो सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवा बताई, इमिडाक्लोप्रिड, थायमेथोक्साम, इन दवाओं को हम लोगों को 7 से 8 दिन के अंतराल पर या 8 से 12 दिन के अंतराल पर इन दवाओं का छिड़काव करना है जब 3-4 पत्तियां निकल आए इसके अंदर, उसी चाहे बीमारी हो या ना हो, लेकिन हम लोग को दवा डालना ज़रूरी होता है। अगर हम उस टाइम दवा डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें

0: ट्रांसमिशन या जो सफ़ेद मक्खी से जो वायरस फैलता है, हम उसी अवस्था में सफ़ेद मक्खी को मार देंगे तो पौधा बड़ा होते होते होते अगर उसके अंदर कोई बीमारी आती है तो बीमारी का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तब हमारा फल फूल आता है, है उसमें हमको उपज भी मिलती है। लेकिन अगर शुरुआती अवस्था में अगर विषाणु के लक्षण दिखने शुरू हो गए तब हम लोगों को उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर उसमें फिर हम लोगों के पास में एक ही फिर ऑप्शन रह जाता है कि पौधे को उखाड़ के फेंक देना। तो अगर हमारे पास अगर किसान भाई भिंडी लगाए हुए हैं, अगर एक दो पौधे में अगर कहीं पर भी अगर इस तरह से लक्षण दिख रहा है तो हमको सबसे पहले उस पौधे को हटा देना है। हो सकता है कि उसी एक दो पौधे की वजह से पूरे खेत में वो बीमारी फैल जाए और देखते देखते पूरे पौधे पीले हो जाएं। तो अगर एक दो पौधे में अगर इस तरह से कोई लक्षण दिख रहा है तो बगैर कोई लालच किए बगैर कुछ उसमें दिमाग लगाए उसको हम लोग को हटा देना है ताकि उससे बीमारी दूसरे पौधों में ना फैलने पाए। तो सफ़ेद मक्खी को जो मारने के लिए दवा है उसी को हम लोग छिड़काव करेंगे। दूसरा जो बॉर्डर के लिए भी हम लोग बात कर रहे थे, बॉर्डर पर मक्का या ज्वार की दो लाइन हम लोग जरूर लगाएं इसमें।
1: तो ये बातें हो गई हैं भिंडी की, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब हम लोबिया यानी कि जिसे हम स्थानीय भाषा में बोरा भी कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, साथ ही उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसे भी बताएं।
0: जी, बोरा जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं लोबिया या काउपी हम लोग बोलते हैं उसको, बोरा में हम लोग देखते हैं दो बीमारी बहुत आम है यहाँ पे आती है। एक तो आती है कि जो पत्ते होते हैं उनमें काले काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, इसके हम लोग एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। वो पुरानी पत्तियों जो पत्तियां होती हैं जो नई पत्तियां होती हैं उनमें कम होती हैं, जो नीचे की पत्तियां होती हैं जो थोड़ा पुरानी हो जाती हैं उनमें इस तरह से काले धब्बे बनने शुरू होते हैं। तो कभी कभी वो काले धब्बे क्या होते हैं पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और वो देखते ही देखते पूरे पौधे को गला देते हैं। जब इसमें फलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जब फलियां आती हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि काले काले से धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस ये जो बीमारी आती है इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। देने वाली जो बात है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग मैंकोजेब, बीमारी हो या ना हो हम लोग एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर कर दें। जब पौधा हमारा थोड़ा सा 4-5 पत्ती जब उसके अंदर आ जाए उसके अंदर छिड़काव हमको कर देना है। मैंकोजेब 2 ग्राम के हिसाब से हम लोगों को उसके अंदर छिड़काव कर देना है। यदि उसके बाद अगर उसके अंदर बीमारी आ रही है, उसमें इस तरह से कोई लक्षण दिख रहे हैं कि वो पत्ती काली पूरी हो जा रही है या तने में कालापन आ जा रहा है या फलियों में कालापन लगने शुरू हो जा रहे हैं, तो डाइफेनोकोनाजोल जो दवा है वो 1 ml 2 लीटर के हिसाब से हम लोगों को दवा का छिड़काव कर देना है। तो उससे क्या होगा, वो काले धब्बे जो हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक जो इसमें जो पत्ती में एक समस्या आती है वो गोल्डन मोज़ेक की है। गोल्डन मोज़ेक एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हम लोग देखते हैं कि पत्तियां उजली सी हो जाती हैं उसमें। वही बीमारी हमारे मूंग में भी आती है, वही बीमारी हमारी फ्रेंच बीन में भी आती है, वही बीमारी हमारी इसमें आती है अरहर में भी आती है। तो उसी वही ग्रुप का एक वायरस है जो लोबिया की फसल में लगता है और हम लोग देखते हैं कि पत्तियां देखते ही देखते ही उजली हो जाती हैं। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवाओं का छिड़काव, वही दवा का छिड़काव हमको इसके अंदर करना है 7-8 दिन के अंतराल पर या 10-12 दिन के अंतराल पर। तो उससे क्या होगा, वो सफ़ेद मक्खी को हम लोग कम कर देंगे खेत के अंदर और जो पौधे होंगे जो निकलेंगे वो स्वस्थ होंगे उसके अंदर।
1: अगर गर्मी की बात करें साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें तो जो परवल जो है वो खास सब्जी है इस ऋतु की, तो डॉक्टर साहब इसमें जो लगने वाले रोग होते हैं परवल के पौधों में वो कौन कौन से होंगे और साथ ही इसका रोकथाम हम कैसे करें?
0: जी, परवल हम लोग देखते हैं यहाँ पे गंगा के किनारे या और भी आसपास के किसान जो है काफ़ी परवल उगाते हैं और उनका अच्छा रेट भी मिलता है हम लोग किसान भाइयों को। लेकिन हम लोग कभी कभी इसमें देखते हैं कि बहुत सारी इसके अंदर बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को दो चीज़ इसमें ध्यान देने की चीज़ें होती हैं देखने आए खेत के अंदर। एक तो इसके अंदर जो इनकी लत है, जो वाइन्स है, उसके अंदर कोई सड़न तो नहीं पैदा हो रही जो पूरी लत सूख जाती है। उसमें क्या होता है कि कहीं एक जगह पे हमको दिखता है कि काला घेरा या काला धब्बा दिखता है, वो तने को पूरा कवर कर लेता है। तो देखते देखते वो पूरे तने को पूरा काला कर देता है जिससे वो पूरा पौधा ही सूखना शुरू हो जाता है। पहले एक पार्ट उसका सूखेगा, एक तना सूखेगा, धीरे धीरे वो क्या होगा और तनों पर फैल जाएगा लतों में और देखते देखते वो पूरा सूख जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है कि जब भी इस तरह का कोई लक्षण दिखे, अगर कहीं थोड़ा सा दिख रहा है या किसी एक लत में दिख रहा है तो उसको हमको काट के हटा देना है। अगर इस तरह से लक्षण अगर किसान भाई खेत में देखते हैं तो फौरन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा हम लोग बोले 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका हम लोग खेत में फौरन छिड़काव कर देना है, इससे हम लोग उसको रोक सकते हैं। दूसरा एक जो हम लोग पत्तियों में देखते हैं बीमारी आती है